पड़ा हो, कोई गरीबी की परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई धनवान है तो उसे अनेक तरह की टेंशन्स रहती हैं, उसकी अलग परिस्थिति होती है, डॉक्टर्स की अलग परिस्थिति, तो बिजनेस वालों की अलग परिस्थिति, अधिकारियों की अलग परिस्थिति, तो पॉलिटिशियंस की अलग परिस्थिति। परंतु परिस्थितियों में स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना ही परिस्थितियों को समाप्त करने का तरीका है, क्योंकि जब हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ रहती है तो हमसे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं, हमारे संकल्प सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, और इससे परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हमें ये कला सीख लेनी है, अपने को इतना शक्तिशाली बना लेना है कि परिस्थितियां हम पर हावी ना हो जाएं, हमारी शक्तियां परिस्थितियों पर भारी पड़े। इसके लिए हमें अपने पास ज्ञान का बल भी बहुत रखना है। ज्ञान के बल का अर्थ है ज्ञान की कुछ ऐसी पॉइंट्स जिनके चिंतन से हम परिस्थितियों में भी हल्के रहें। जैसे अपने सारे बोझ बाबा को समर्पित कर दें तो बाबा बोझों को हर लेता है। अपनी सारी समस्याएं बाबा के हवाले कर दें तो उनमें वो बहुत मदद कर देता है। जैसे बाबा के महावाक्य याद करें बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे को तेरे में समर्पित करके बेफिक्र बादशाह बन कर जियो। तुम चिंता न करो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। इनको याद करने से हमें जो बल मिलेगा उसे ज्ञान का बल कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण काम है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है हमें परिस्थितियों में हल्का रखने में। दूसरी चीज है स्वमान का बल। हम कौन हैं और किसके हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। होता क्या है कि परिस्थितियां आने पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो परिस्थितियां हमें भारी लगने लगती हैं। छोटी सी बीमारी भी एक बड़ी परिस्थिति के रूप में अनुभव होने लगती है। लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमारा सारा ज्ञान भी इमर्ज रहता है और हमें अपनी शक्तियों की भी अवेयरनेस रहती है। इससे परिस्थितियों का दबाव कम हो जाता है। और तीसरा है हमें अपने अंदर योग की शक्ति बढ़ाते चलना है। योग ही एक ऐसी विद्या है, कनेक्शन है सर्वशक्तिवान से, कि योग की शक्ति के बिना न तो कोई माया जीत बन सकता और न ही शक्तिशाली। तो हमें योग अभ्यास बहुत बढ़ा देना है, योग के भिन्न भिन्न तरीके सीखकर कर्म में योग को जोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लें, प्लान बना लें, विभिन्न कर्मों में घूमते फिरते, ड्राइविंग करते, बसों में यात्रा करते, हम कैसे कैसे अभ्यास करें ताकि हमारे अंदर योग की शक्तियां बढ़ती रहें। तो आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे जो बहुत सरल है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्वयं को आत्मा देखें और मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में देखें। फिर ज्ञान सूर्य से बाबा परम धाम से नीचे उतरकर मेरे सम्मुख आ गए हैं। सामने देखें उनको 4-6 फुट की दूरी पर, और उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास आज बार बार करेंगे, घंटे में 2 बार तो इसको अवश्य करना है। इससे एकाग्रता भी हमारी बहुत बढ़ जाएगी और हमें बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगर इस अभ्यास को हम बढ़ा दें तो हमें परिस्थितियां बहुत हल्की लगने लगेंगी। हम बहुत बड़े हैं और परिस्थितियां बहुत छोटी हैं, ये आभास होता रहेगा और हम उन

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों और गुणों को पहचान लिया करता है। कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी इन शक्तियों को, आत्मा के इस स्वरूप को पहचान शेष तो जैसे तैसे किसी तरह गाड़ी खींचते हैं। इस संसार में यदि कोई सर्वाधिक कठिन कार्य है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि परमात्मा ने जब मनुष्य की रचना की और जब उसे जीवन यात्रा पर जाने के लिए कह दिया तो देवदूत आकर मनुष्य को संतोष प्रदान करने लगा, लेकिन परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया।

कि यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे अपने जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास नष्ट हो जाएगा। यह एक सत्य है कि मनुष्य जब आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब वह अपने को पहचान लेता है तो उसमें दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह गुण जागृत हो उठते हैं जो न जाने कब से सोए पड़े थे। इस संबंध में न्यूयॉर्क के एक विद्यालय की महिला प्रिंसिपल का उदाहरण पर्याप्त है। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में कहा है, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे अनुभव हुआ मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय ही क्या, अपितु यह सारी धरती मेरे लिए कर्म क्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान एक अध्यापिका के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। देखा अपने आत्म परिचय का चमत्कार। आत्म परिचय पाकर ही कोई व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता से मुलाकात कर लेता है, अर्थात स्वयं को पहचान लेता है, अपनी भीतरी शक्तियों से परिचित हो जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को पकड़ लेता है, तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी होती है जिसे न कोई देख सकता है, न ही जिसकी कोई कल्पना ही कर सकता है। यदि कोई ऐसा साधन निकल आए जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का फोटो खींचा जा सके, तो मनुष्य अपनी शक्तियों को देखकर ही चकित रह जाएगा। प्रायः जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरा कर लेता है तो यह सोचकर चौंक जाता है कि यह उसने ही किया है, लेकिन इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने ही किया है। तनिक कल्पना कीजिए कि विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा होता है। इस तन्हे से बीज में जब इतनी शक्ति हो सकती है, तो मनुष्य के मन में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होती होगी, इसकी कल्पना तो कीजिए। आज आप जो कुछ कर रहे हैं और जितनी शक्ति से कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी पड़ी है। तभी तो कहा है कि आज की अपेक्षा वह काम अधिक महत्वपूर्ण है जिसे भविष्य में करने की कामना आप करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य ही है, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छाएं, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान, अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति व एकाग्रता, इन सब को विकसित कीजिए और सच मानिए कि ऐसा कर आप परमात्मा की आज्ञाओं का ही

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

यह मत सोचिए कि कोई काम ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर सकते हैं या जो किन्हीं अवतारों के लिए ही निश्चित है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपनी आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना मात्र है। फिर वह कार्य कितना भी गुरु गंभीर हो, होकर ही रहेगा। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति न होने के कारण ही अनेक लोग बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता है कि अपनी शक्तियों को न पहचान कर ही वह बड़े कार्य नहीं कर सके। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके द्वारा आप भी संसार में बड़े बड़े काम कर महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको यह मालूम ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने गुण हैं, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। तभी जो आप उन अपूर्व शक्तियों और अपनी आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर अभी तक अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया, तभी वहां के निवासियों को यह पता चला कि यूरोप में अन्य देश भी हैं। पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस के पहुंचने से पहले यूरोप में अन्य देश वर्तमान नहीं थे। इमर्सन का कहना है, इस संसार में कुछ ही व्यक्ति अपने जीवन से आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो अपने कार्यों को पूरा किए बिना ही यहाँ से कूच कर जाते हैं। अत्यधिक बलशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अनेक लोग सफलता प्राप्त न कर पाने पर प्रायः कहा करते हैं, यदि मुझमें लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन ऐसा सोचना, कहना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है कि यदि वह व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता तो लिंकन या रूजवेल्ट से भी कहीं आगे बढ़ सकता था। आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक उनको उनका पता नहीं मालूम, जब तक उनसे परिचय प्राप्त नहीं किया, उन्हें जगाया नहीं, किसी काम में लगाया नहीं, उनकी परीक्षा नहीं ली, तब तक यह कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियां नहीं हैं? अपनी शक्तियों का निरीक्षण परीक्षण कीजिए, जगाइए, उनसे काम लीजिए, फिर देखिए कैसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। दूसरों की सफलता देखकर ही अनेक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। होना यह चाहिए कि हम दूसरों की सफलता की सराहना करें और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हों।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

आत्मविश्वास नामक निबंध में इमर्सन ने एक उदाहरण दिया है। एक बार एक ड्यूक के पास एक शराबी व्यक्ति को नाली से उठाकर लाया गया पर सुला दिया गया। जब उसकी नींद खुली तो सभी नौकर चाकर और अन्य कर्मचारी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे मानो वही ड्यूक हो। इसका परिणाम यह निकला कि वह शराबी व्यक्ति भी अपने आप को ड्यूक समझने लगा और उसका व्यवहार भी ड्यूक की ही भांति शानदार हो गया। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भुलाकर उसी शराबी की भांति

उतावला हुआ फिरता है, लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है तो वह सफलता प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंच जाता है। अधिकांश व्यक्ति अपने को आज असहाय, दुर्बल, व्यर्थ समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति ही अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत करने से प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से पूछने पर प्रायः यही उत्तर सुनने को मिलता है, बस दिन कट रहे हैं, और प्रायः वह ठीक ही कहते हैं। वे केवल जीवन तो काट ही रहे होते हैं, कुछ खा पहन कर, कुछ नष्ट कर, वह कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं, कुछ बो नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं। अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती है, न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद और कितने संकटों का सामना करने के बाद इन शक्तियों की पहचान होती है। अनेक लोगों की शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती हैं कि कोई विशेष घटना ही उन्हें जगा पाती है। बिजली का घोर गर्जन या किसी अजगर का सामना या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है और तब वही सोई शक्तियां प्रचंड हो उठती हैं। कुछ पेड़ पौधों के पत्तों को मसले जाने पर ही वह सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब दूर से चमकते दिखाई देते हैं। यदि उनके जीवन में कोई संकट न आए तो वह नहीं चमक सकते हैं। वैसे लोगों का अधिकांश जीवन व्यर्थ ही चला जाता है।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अचानक ही कोई झटका उन्हें लगता है और इनकी सोई शक्तियां जाग उठती है। उनकी दबी प्रतिभा उभर कर सामने आ जाती है। यह बात हम कर रहे हैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में। लिंकन और सेनापति ग्रांट इन बातों के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। 40 वर्ष की आयु तक ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता था और उसे स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया था कि वह गौरवशाली सेनापति बन सकता था। वह अपने भीतर छिपी शक्तियों से सर्वथा अनभिज्ञ था। बीए तक शिक्षा प्राप्त करते करते वह 32 वर्ष का था। तब उसे एक नौकरी से इसीलिए त्याग पत्र देना पड़ा कि वह अयोग्य था। इसके बाद उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिल गई और वहां भी उसे अयोग्य ठहराया गया। फिर स्टोर कीपर, फिर ट्रेनर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन वही व्यक्ति ग्रांट अमेरिका की सेना का महासेनापति बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने उसकी खोई शक्ति को झकझोर दिया और उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगली दबाए रह गया। घटित कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा या प्रेरणादायी जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहीं से कहीं जा पहुंचता है। यह सब होता है आत्मदर्शन, अंतः प्रेरणा से, जो मनुष्य के जीवन को उच्च से उच्चतर और महान से महत्तर बना देता है। याद रखिए, अपने को पहचान लेना परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफल नहीं हो सकता है, लेकिन अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को पहचानकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कष्टों को झेलते हुए अथवा संघर्षों से लड़ता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो अनेक व्यक्ति अपने आप उसे मिलते जाते हैं और तब उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। आपके भीतर सभी शक्तियां निहित हैं। महान से महत्तर बनने के बीज अंतःकरण में

भी लोभ या कैसी भी चिंता यदि आपके आगे बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक सकती। आप अवश्य ही सफल होकर रहेंगे। लगातार चलते रहना भी अपने आप में एक सफलता है। नए से नए ज्ञान को प्राप्त करना भी एक सफलता है। अपनी आत्मा की शक्तियों को लगातार विकसित करते जाना भी एक सफलता है। आदिकाल से लेकर आज तक मानव सभ्यता की कहानी से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि निरंतर बढ़ते चलो, आगे चलते चलो, अपनी सोई हुई शक्तियों को, अपनी योग्यता को पहचान कर ही आप जितना चाहे उतना ऊंचा उठ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए मुस्कान।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं काल चक्र आप सभी को उन विशाल हृदय ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहा हूं, जिनकी त्याग और तपस्या की भावना

0: लोक सेवा के संकल्प उन्हें एक महान विभूति बनाते हैं। उन्होंने कभी किसी सांसारिक सुख सुविधा की परवाह नहीं की, बल्कि सदा मनुष्य आत्माओं को देते ही रहे। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद ईश्वरीय सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी स्थिति भी सदैव अचल रही, चेहरे का नूर कायम, खुशी व ताजगी कायम रही। थकावट तो कभी उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाई।
1: अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर।

0: जून 1956 की घटना है। तब ब्रह्मा बाबा की शारीरिक आयु लगभग 80 वर्ष की रही होगी। एक दिन अचानक ही किसी शारीरिक व्याधि ने उन्हें घेर लिया। बाबा रात रात भर जागते रह जाते थे।
1: बावजूद इसके चेहरे पर थकावट का कोई चिन्ह नहीं होता था। आबू के स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। यज्ञवत्स थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन बाबा तो मानो निश्चिंत थे।
2: बाबा, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस आयु में वो कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है।
3: चिंता मत करो बच्चे, मैं ठीक हूं। ये तो आप जानते ही हो कि ये पुराना शरीर है। पुरानी चीज को तो कई चट्टियां लगाकर ही चलाया जाता है। बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं है, फिक्र से फारिग रहो बच्चे।
4: बाबा, कैसे फिक्र ना करें आपकी। हम सभी अभी नन्हे एवं कोमल पौधे हैं। हम चैतन्य फूलों को आपके लिए आवश्यकता है।
3: बच्चे, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं। ये तो इस विश्व ड्रामा में बाबा को मुंबई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। शिव बाबा अपने इस रथ द्वारा अब एक दूसरी भी सर्विस कराना चाहते हैं, इसीलिए वे बाबा को मुंबई भेज रहे हैं। बाबा के बच्चे तो जहां तहां हैं, और बाबा को उन सब की सेवा करनी है। मुंबई जैसे महानगर में जहां माया का बड़ा भपका है, वहां वैसे ही लोग ज्ञान नहीं सुनते हैं। परंतु जब बाबा इस स्थिति में जाएंगे तो लोग मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए आप सबको खुशी होनी चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अडिग ही है। अब तो हर हालत में आपका कल्याण ही कल्याण है। ये संगम युग चढ़ती कला का समय है, खुश रहो।
0: असल में बाबा सदैव अपने बच्चों को युक्तिपूर्वक कोई ना कोई गुहे रहस्य समझाते ही रहते थे। बाबा की ये अचल स्थिति भी सूक्ष्म रूप में सब यज्ञवत्सों को यही प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया अथवा शरीर भी यदि बड़ी कठिन परीक्षा की स्थिति सामने लाए तो देह से न्यारा हो जाना चाहिए। आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिके रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि वो रंच मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ ना पाए।
1: मुंबई के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाबा का इलाज करने वाले डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी आयु में इतना कष्ट होते हुए भी उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे और गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन कर रहे थे। यहां तक कि उनसे मिलने आने वाले सभी को

वे ईश्वरीय संदेश देने में भी पीछे नहीं थे। कुछ समय पश्चात यह देखने में आया कि मुंबई शहर की धरनी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा। गोया बाबा जिस सर्विस के लिए मुंबई आए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल रहा।

0: मनुष्यों को हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर की खोज में वे दर दर भटकते रहते हैं, मंदिरों एवं गुरुओं के चक्कर काटते रहते हैं। कई बार उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई। ईश्वर को जाने या पहचाने बगैर उनका धन्यवाद भी करते रहते हैं।
1: लेकिन असल में यह खुशी अल्पकाल के लिए अथवा इतनी क्षणिक होती है कि दोबारा से असंतोष उत्पन्न होने लगता है। दूसरी ओर ब्रह्मा बाबा खुशी एवं उत्साह के साकार पावर हाउस थे। उन्हें इस बात की कापारी खुशी रहती थी कि स्वयं परम पिता परमात्मा से उनका मिलन हुआ है।
0: उन्होंने उन्हें नई सृष्टि की रचना करने, मानव सेवा एवं विश्व कल्याण अर्थ चुना है, इसलिए उन्हें विश्व भर की मनुष्य आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाना है। बाबा कहते थे,
2: बच्चे जब पिता कोई यज्ञ रचता है अथवा कोई शुभ उत्सव मनाता है तो वो अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता है ताकि वे भी उत्सव में सम्मिलित हो सके। अब जब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो पारलौकिक शिव बाबा एवं मुझ अलौकिक पिता ब्रह्मा की संतान है तो हम दोनों पिताओं का अलौकिक कर्तव्य है कि सभी मनुष्य आत्माओं को ये शुभ संदेश दें कि ज्ञान यज्ञ रचा है और परम पिता परमात्मा ज्ञान अमृत बांट रहे हैं। सभी आए और अपना अधिकार प्राप्त करें।
0: ब्रह्मा बाबा स्वयं ईश्वरीय नशे में मग्न रहते थे। वे समय समय पर यज्ञवत्सों को भी परखते रहते, उनसे पूछते रहते कि वे भी सदैव खुश तो रहते हैं या बीच बीच में उनकी खुशी गायब भी होती रहती है। बाबा पूछते थे,
2: बच्चे खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ है ना। देखो हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मिले हैं। वो हमें निरंतर 2500 वर्षों के लिए स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकारी बना रहे हैं। अतः एड़ी चोटी तक हमारी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हमें कापारी खुशी रहनी चाहिए। हमें सतयुग में दैवी राज्य भाग्य पाकर भी ऐसी खुशी न होगी जो कि अभी शिव बाबा के मिलन से है। देखो तो भक्ति मार्ग में जिसे जन्म जन्मांतर ढूंढा, जिसके लिए इतने व्रत तप उपवास हठ किया इत्यादि किए, परंतु ईश्वर फिर भी नहीं मिला। अब कैसे अनायास ही उसने हमें अपना परिचय दिया, हमें अपनाया और हमें सहज रीति अपनी संपूर्ण दिव्य विरासत दे रहा है।

0: बाबा का रात दिन यही विचार चलता रहता था कि कैसे सारी सृष्टि में बसे मनुष्यों को परम पिता शिव के अवतरण की खुशखबरी मिले। ये साल 1957 के नवंबर महीने की घटना है।
1: दिल्ली के लाल किले में विश्व धर्म सम्मेलन होने की सूचना बाबा को मिली तो उन्होंने उसमें भाग ले रहे देश विदेश के धार्मिक नेताओं, मंत्रियों, राजनेताओं एवं आम जनता को ईश्वरीय संदेश देने की योजना बनाई। बाबा की सदैव यही शुभ भावना रहती थी कि किसी प्रकार से सभी का कल्याण हो जाए। उन्होंने सम्मेलन के लिए बड़े आकार के रंगीन चित्र, जिनमें रचयिता परमपिता शिव एवं उनकी रचना सृष्टि चक्र का भी चित्र था, उसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया था। बाबा का निर्देश था कि हर एक को ये निमंत्रण तथा चित्र परमपिता शिव से सौगात के रूप में दिया जाए। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सेवा स्थल पर बाबा ने बृहद रूप से ईश्वरीय सेवा की। महादानी एवं कल्याणी बनकर कर्तव्य करना सिखाया।

0: जिस दौर में ब्रह्मा बाबा विश्व भर में ये ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, वो शीत युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। इसे पूंजीवादी अमेरिका एवं साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध भी कहा गया, जिसमें आणविक हथियारों विषैली गैसों के निर्माण की होड़ लगी थी।
1: लोग सशंकित रहते थे कि कहीं ये शीत युद्ध फिर से लड़ाई में न परिवर्तित हो जाए, इसलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विश्व शांति की आवाज बुलंद की जा रही थी। विभिन्न देशों के धार्मिक नेताओं से अपील की जा रही थी कि वे अपने अपने देशों के राजनेताओं एवं शासकों पर नैतिक प्रभाव डालें कि वे आणविक शस्त्रों का निर्माण न करें।
0: वहीं भारत में कहीं भाषा के आधार पर अलग प्रदेश बनाने का आंदोलन चल रहा था, भूख हड़ताली हो रही थी।
1: दूसरी ओर सरकार की नीतियों के खिलाफ जगह जगह आवाजें उठ रही थीं। इन तमाम मसलों पर अपने विचार रखते हुए ब्रह्मा बाबा ने सभी राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं को पत्र लिखे। बाबा ने लिखा,
2: महाविनाश अवश्यम भावी है और विश्व में शांति एवं शिष्टाचार की स्थापना भी होनी ही है। सभी को चिंता दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि लोग विश्व के आदि मध्य अंत के ज्ञान को नहीं जानते हैं। शांति के लिए आणविक अस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है क्योंकि उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय का विनाश होगा। यह विनाश सतयुग अर्थात संपूर्ण पवित्रता सुख शांति संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। ये तो गुप्त रूप में वरदान है। पवित्रता धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का महाविनाश भी जरूरी होता है। राम राज्य के पहले रावण राज्य का विनाश आवश्यक है। इसके अलावा ज्ञान रहे कि विश्व शांति का स्थापक सिर्फ एक है, विश्व का पिता, शांति का सागर एवं सर्वशक्तिवान परमपिता शिव।

मैं काल चक्र, मनुष्यों की छटपटाहट, बेचैनी एवं शांति की चाहत को भांप सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के इस विचार से भी सहमति रखता हूं कि जब मनुष्य स्वयं किसी न किसी कारण से अशांत रहता है तो वह कैसे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। ऐसे में किसी मनुष्य को विश्व शांति स्थापक की उपाधि देना भी बेमानी है। शांति की जननी तो पवित्रता है। पवित्रता के बिना सच्चा सुख एवं सच्ची शांति प्राप्त करना असंभव है। जब प्रत्येक व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होगी तभी तो विश्व में भी शांति आएगी। ब्रह्मा बाबा की इस आध्यात्मिक यात्रा के कुछ और अनछुए एवं विस्मयकारी किस्से सुनेंगे। कहानी के अगले भाग विस्मयकारी किस्से सुनेंगे। कहानी के अगले भाग में

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हुए एक बार फिर इस श्रृंखला में हम आपके साथ हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। जब नजदीक से देखा तो हमने ये पाया कि चाहे वो रिश्ता घर का हो, परिवार का हो, या फिर बाहर हमारे जहाँ हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस का हो, उस रिश्ते को अगर आज जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है अपने बारे में, उसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लेकर आती हूँ तो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज उस रिश्ते की बात करते हैं जो कि सचमुच खूबसूरत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी सब रिश्ते तो शायद हमारे हाथ में नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं और वो रिश्ता होता है एक दोस्त का। आज कहीं ना कहीं उसमें भी दरार पड़ती नज़र आ रही है। कहीं अपेक्षाएं हैं दोस्त से, कहीं हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं पीड़ा उसमें भी नज़र आ गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इन रिश्ते में भी, इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज उस बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात करना चाह रहे हैं कि जो हर रिश्ते से बड़ा कई बार बन जाता है। हम हर एक की बात छोड़ देते हैं लेकिन अपने दोस्त की बात मान लेते हैं, वो दोस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं उस दोस्ती को भी हमने ऐसा लगता है कि खो दिया है। हम हर बार ये कहते नजर आते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, कहाँ गई वो प्योरिटी दोस्ती में।
1: हम अपने रिश्ते किन चीज़ों पर आधारित करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप हैज़ टू बी परमानेंट। अगर फाउंडेशन कोई टेम्प्ररी चीज़ है तो वो फाउंडेशन हिलती रहेगी जब वो टेम्प्ररी चीज़ में कोई परिवर्तन आएगा। अब हमारी दोस्ती, क्योंकि दोस्त तो हम खुद से चूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई मे बी इट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमारे पास फुल फ्रीडम है। हम अपनी चॉइस से यू नो वी डिसाइड कि हम किसके साथ ये संबंध जोड़ेंगे। बाकी सारे संबंध तो जुड़ जाते हैं या बने हुए मिलते हैं। तो इसमें ये किस बात पर आधारित है? इज़ इट बेस्ड ऑन फिजिकल थिंग्स, अगेन टेम्प्ररी थिंग्स, लुक्स, दूसरा दिखने में कैसा है, फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटस, डिग्री, यू नो पोजिशन, ऑल दीज थिंग्स विच आर टेम्प्ररी। क्योंकि आज बहुत बार हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर दोस्ती बनती है, यू नो ये इस पोजिशन पर है, ये तो बहुत काम की पोजिशन है, इनके साथ दोस्ती बना कर रखनी चाहिए, यू नो तो ये रिश्ता बना कर रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे काम आने वाला है। तो ये रिश्ता क्या होगा? यू नो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन आज पोजिशन है तो आपने रिश्ता बना कर रखा हुआ, पोजिशन गई, रिश्ता फिनिश्ड। तो फाउंडेशन क्या है? तो ये जब हम अपनी दोस्ती ये संबंध में जोड़ते हैं, इसका फाउंडेशन शुड बी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द सोल रादर देन द रोल जो उन्होंने अचीव किया है, अक्वायर किया है इस जीवन में, उस पर आधारित नहीं हो सकता। और जब वैल्यूज पर आधारित होगा तो वो परमानेंट है। और जो परमानेंट फाउंडेशन है वो हर ऊपर नीचे बात को क्रॉस करके चली जाएगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक इन यू, व्हाट इज इट अबाउट यू दैट लाइक, यू नो आई लाइक इट, विच वैल्यू अबाउट यू इज दैट यू नो अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस आई बेस इट ऑन दोज वैल्यूज, तो आपकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आप परिवर्तन हो सकते हैं, चेंज होंगे, दैट विल ऑलवेज बी फॉर द बेटर। एंड वंस आई हैव एक्सेप्टेड यू, कई बार लोग कहते हैं लेकिन उनके अंदर वो वैल्यूज थी जो आज
0: नहीं है,
1: शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर थी जब हमारा ये संबंध जुड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर वो कहीं उस ट्रैक से किसी और रास्ते पर जा रहे हैं, हमने उन्हें देखा है उस रास्ते के ऊपर, तो हम दोस्त हैं, तो हम उन्हें फिर से उस रास्ते पर आने में सहयोग दे सकते हैं, रादर देन सेइंग कि आपके अंदर वो वैल्यूज थी जिनके लिए मैंने आपसे दोस्ती की, अब वो वैल्यूज नहीं है, सो we move apart, then that was never a friendship anyways.
0: Again, दोस्ती जैसा आपने कहा कि अगर हम स्कूल लेवल पर भी बात करते हैं, क्योंकि वहीं से वो उसकी नींव पड़ जाती है, यहाँ देखा ये जाता है कि दोस्त के प्रति भी हम पोजेसिव हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा ही रहेगा, वो मेरे जो मुझसे मेरी जिससे लड़ाई है उसका दोस्त नहीं हो सकता, या अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट
1: अच्छा,
0: है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वो है अगर, तो वो फिर किसी और का दोस्त कैसे हो सकता है।
1: हाँ.
0: So, ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं अभी बिल्कुल स्कूल और कॉलेज लेवल की बातें कर रही हूँ कि जहाँ पे दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पोजीशन लेती है।
1: एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये रिलेशनशिप हम बार बार देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच स्नेह और शक्ति, इसका लेन देन कहें या एक्सचेंज कहें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आत्मा का सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है, और अगर और किसी के साथ हुआ तो इसका मतलब मेरे साथ कम हो जाएगा। नेवर, इट्स एनर्जी विच डजंट हैव अ फिजिकल पैरामीटर। टाइम का फिजिकल पैरामीटर हो सकता है कि अगर आप कल मेरे साथ एक घंटा स्पेंड करते थे, अब आपके और भी दोस्त बन चुके हैं, तो शायद आप मेरे साथ 5 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, बट देन इट वॉज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो वेयर इज द क्वेश्चन कि अगर आपकी औरों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो उसमें मेरे साथ कोई अंतर हो जाता है। ये जो पोजेशन की बात आती है या पोजेसिवनेस की बात आती है, ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू द इमेज कि यू आर माइन, यू नो, ईगो, ये बहुत सटल ईगो है, क्योंकि हमने कहा ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, तो ये एक अटैचमेंट है कि यू आर माइन। एंड अब अगर मैं देख रही हूँ कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमेज को इनसिक्योरिटी होने लगती है कि कहीं यू विल लीव मी एंड गो अवे, और जहाँ वो इनसिक्योरिटी होने लगती है, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग हर्ट एंड आई माइट रिएक्ट कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड दिस कैन हैपन इन एनी केस, मतलब वी हैव सीन कि इवन बिटवीन टू गर्ल्स,
0: दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, नॉट ओनली बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय,
1: एनी रिलेशनशिप कि बिटवीन टू गर्ल्स, ओ हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मेरी फ्रेंड की दोस्ती ना किसी और से हो गई है, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। Why? I need to ask myself. आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है, और वो कितनी भी आत्माओं के साथ हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है, इट इज एनर्जी फ्लो, एंड वो जितना उल्टा सबके साथ फ्लो करे, आई शुड फील गुड। वाई डू आई कीप रिस्ट्रिक्टिंग इट, क्योंकि आई क्रिएटेड दिस इमेज दैट यू आर माइन, मेरी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी के साथ
0: जुड़ गई.
1: क्यों? क्योंकि मुझे अपनी असली आइडेंटिटी भूल गई थी। तो जब हम वो बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं कि यू आर माय फ्रेंड, या आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है, कहें कि यू आर माय फ्रेंड या आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है कि आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है, और जहाँ मुझे लगता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो मेरी वो आइडेंटिटी हिलने लगती है कि यू नो ये तो बहुत लोगों के फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वो मेरी आइडेंटिटी जब हिलती है तब अंदर से डर लगता है।
0: बिल्कुल, और बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो मेरा, कई बार पता चलता है कि ओहो वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है। हियर आई वांट टू आस्क यू समथिंग, दोस्त जब

0: है तो हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें लगता है कि हमें समझ रहा है और हम सब कुछ शेयर कर लेना चाहते हैं। क्या शेयर मुझे कर लेना चाहिए सब कुछ? ये बहुत से सवाल हैं स्टूडेंट बच्चों के भी। क्या मैं कंप्लीट ट्रस्ट कर लूँ अपने दोस्त पे कि वो मेरी बात कहीं और स्प्रेड नहीं करेगा, मेरी हर बात मैं शेयर कर सकता हूँ, या मुझे सोचना चाहिए उस पूरे?
1: सी, इफ इट इज अ फ्रेंडशिप तो वो ट्रस्ट के बिना तो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कौन सी फ्रेंडशिप? अब जहाँ तक शेयरिंग की बात आती है, अगेन दिस विल बी अ पर्सनल डिसीशन हर एक का, लेकिन हमें एक आवश्यकता लगती है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ हम बात करें। और जनरली क्या होता है, हम बात एक्चुअली अपने आप से ही कर रहे हैं। यू नो, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट अ प्रॉब्लम ऑफ माइंड, नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि मुझे आपसे एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई राय नहीं चाहिए उसके बारे में, मुझे सिर्फ कोई चाहिए नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई राय नहीं चाहिए उसके बारे में, मुझे सिर्फ कोई चाहिए जिसके सामने मैं बैठकर वो बोल सकूं, और बोलते बोलते बोलते मुझे खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी।
0: सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: इट्स नॉट कि आप मुझे सोल्यूशन देंगे, क्योंकि उस पोजीशन में तो मैं ही हूँ, वो प्रॉब्लम में मैं ही हूँ, तो उसका सोल्यूशन तो मेरे पास है। लेकिन जनरली वी फील लाइक शेयरिंग विद पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से बात करना और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये हम थोड़ा सा अपने आप से डिस्कनेक्ट होने के कारण वो कर नहीं पाते हैं। तो जब हमें कोई मिल जाता है जिनसे हम वो बात कर सकते हैं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, इफ आई कैन शेयर विद समबडी तो वाई नॉट, बट विद फुल फेथ।
0: शिवानी, एक और एस्पेक्ट में लेती हूँ, कंपटीशन। साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी परसेंटेज मुझसे ज़्यादा आ जाएगी, कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? क्योंकि कम्पीट करना है अगर मुझे, तो फिर दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ कम्पीट कर रहा होगा या कर रही होंगी। सो कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड, और जिसके साथ मैं कम्पीट कर रही हूँ सेकेंड या थर्ड पोजिशन के लिए, वो मेरा दोस्त हो सकता है?
1: येस, हो सकते हैं। जनरली वी फील देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स विच यू नो एवरी वन इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन क्लास, लेकिन कि कॉम्पिटिशन कोई चीज़ नहीं है। आपको मार्क्स चाहिए, आपको एक परसेंटेज चाहिए, वो भी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम बना हुआ है उस अनुसार हमें परसेंटेज चाहिए टू गो इन टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट और टू गो इन टू द नेक्स्ट प्रोफेशन। लेकिन उसमें ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर दूसरे को भी उतने मार्क्स मिले तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सी, इफ माई फ्रेंड डजंट डू वेल, आई विल नॉट लाइक इट, यू नो आई विल फील, बिकॉज द फ्रेंड इज इन पेन, वो दर्द में है तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है? और अगर फ्रेंड खुश है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बाकी इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई अबिलिटी, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ द अबिलिटी, फाइनली एक ने फर्स्ट आना, एक ने सेकेंड आना, एक ने थर्ड, एंड दैट इज डजेंट मैटर। माई परसेंटेज, येस, मे बी दैट मैटर्स, एंड आई जस्ट फ्लो विद इट, एंड इन फैक्ट इट्स फन टू डू इट टूगेदर। It should be fun rather than being a negative undercurrent. We can really do it with that spirit of let's do better than what we did before. Rather than let me do better than you and you do better than me, let me outperform myself rather than outperform you.
0: Thank you. Yes, that becomes
1: That's very,
0: very
1: important.
0: Sister Shivani, ये शायद वो रिश्ता है जिसे हम मान के चल सकते हैं कि हमने चुना है तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यही रिश्ता वो होता है जिसपे हम सबसे ज़्यादा भरोसा भी करके बैठे होते हैं। ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे प्रिय होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ या वो भी छोड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी चॉइस से बुना है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसके लिए क्या मैं वर्क कर सकता हूँ?
1: सी, एक तो वी लिव टू मच इन पीछे क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, रिश्ते कभी टूटते नहीं है, एक एनर्जी कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। ये हो सकता है कि समय परिस्थितियों के कारण हम कभी बहुत ज़्यादा समय मिलते हैं और कभी हम काफ़ी समय नहीं मिल पाते। हो सकता है एक एक कंट्री में चला जाए, दूसरा एक दूसरी कंट्री में हो, तो ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता टूट गया। वी जस्ट अवे, इट्स जस्ट दैट अर्लियर हम एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे, तो वी वर 8 आवर्स टुगेदर, एंड अब हम बिल्कुल एक दो अलग देशों में हैं। रिश्ता कहाँ टूटा? रिश्ता टूटता नहीं है, समय परिस्थिति हमें नज़दीक या दूर ला सकती है, लेकिन हमें अभी कभी नहीं टूटेगा। टुडे, अभी का मोमेंट क्या है, अभी हमारा ये संबंध कैसा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचना, बिकॉज हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर आज हम दोनों एक दूसरे को गारंटी पेपर भी लिखते कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा सो कॉल्ड, या वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन लाइक दैट. हो सकता है कि अगले 10 साल आप एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले, ये पॉसिबल है. या हो सकता है परिस्थितियां ऐसी कुछ आ जाए कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो भी. तो व्हाई गेट इनटू दैट यू नो दैट कंफ्यूजन. इट्स अ कंफ्यूजन एंड इट्स एन अननेसेसरीली कहें जकड़ के रखने की कोशिश करना. रिश्ता ये नहीं है कि आप मेरे ही हो और आप सारी उम्र मेरे ही रहोगे. नो, इट इज वी आर एट द प्रेजेंट मोमेंट टुगेदर एंड हमें ये मोमेंट अच्छा लगता है, अगला मोमेंट अच्छा लगता है. ईच मोमेंट को हम So that's living in the present. और ये living in the present हर एक रिश्ते में important है.
0: मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्त में क्या इतनी ताकत होनी चाहिए? मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की शुरुआत है, चाहे वो कोई भी और लत है, या फिर किसी और नेगेटिविटी की. How can I bring him back?
1: Empowerment with love. क्योंकि लव वो पावर है जो वो वापस उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति दे देती है. लेकिन वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि डोंट स्मोक, डोंट डू दिस, क्योंकि हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये अगर इस आदत की तरफ जा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है. क्योंकि जब भी हम कोई आदत की तरफ जाते हैं उसका रीज़न होता है कोई ना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या तो डिप्रेशन, या घर में कोई इनसिक्योरिटी, या कोई स्ट्रेस, कोई फियर, कुछ इस तरह के नेगेटिविटी होगी. तो एक दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ के रूट पर आना. अभी तक बाह्य रूप से डोंट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजरियस, ये दैट पर्सन ऑलरेडी नोस. सो वी आर नॉट गिविंग लेक्चर्स, वी आर नॉट टू गिव एडवाइस, वी हैव टू टॉक टॉक टॉक, शेयर एंड फाइंड आउट वॉट इज द रूट जिस कारण से हम इस राह पर चलने लगे, और फिर उस रूट को एड्रेस करने की कोशिश करना. वो बिहेवियर तो बहुत छोटी बात है, वो एडिक्शन जिसको ले लिए वो बहुत छोटी बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर क्या पेन है. वो पेन को अगर मैं हील करने में या उसके साथ शेयर करने में वो सहयोग दे सकूं, दैट इज फ्रेंडशिप. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, गिव अ लॉट ऑफ लव एंड फाइंड आउट द रीजन फ्रॉम देयर. दैट विल बी हीलिंग एंड विद एम्पावरमेंट एंड नॉट नेगेटिविटी कि ये क्यों पी रहे हो, ये गलत है,
0: तुम रास्ते पे जा रहे हो तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं करूँगा.
1: सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरा अगर ऐसा कुछ कर रहा है, देयर इज सम, यू नो, बहुत सारी चीज़ें एक पर्दे के आगे होती हैं और पर्दे के पीछे बहुत सारे हैं. एंड जनरली क्या होता है, हम सारा कुछ पर्दे के आगे देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसे हैं, अब ये बदल चुके हैं. अब ये क्यों बदले, उसके पीछे क्या हो गया, वो हम फाइंड आउट नहीं करते. पर्दे के आगे जो जो बदलता है, हम अपना व्यवहार उस अनुसार बदलना शुरू कर देते हैं. द फ्रेंड इज द वन हु विल गो बिहाइंड द कर्टन. एंड ये फ्रेंड एक पेरेंट हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोलीग हो सकता है, या जैसे ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, गो बिहाइंड द कर्टन, फाइंड आउट कि वो व्यक्ति व्हाई इज ही इन पेन, व्हाट्स द रीजन, दैट इज फ्रेंडशिप.
0: शिवानी, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं आज, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा हमारे पास, पूरी हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो टेलीविज़न देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स में भी ये एस्पेक्ट बहुत देखा गया है कि लड़का लड़की जो साथ पढ़ रहे हैं वो दोस्त ना रह के कुछ और ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे सो कॉल्ड प्यार का नाम दिया जा रहा है, और यहाँ जो है मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. कैसे खुद को ये एहसास दिलाया जाए कि ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट, और एक जो आप दोनों हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आगे तक लंबा निभाया जा सकता है?
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, जो आज हमारे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सारे, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जीवन की यात्रा में हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हर चीज़ का एक सही टाइम होता है. और जब हम इस टाइम के विरुद्ध जाते हैं एंड वी ट्राई टू डू टू मच टू सून, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. पढ़ाई का एक समय होता है जहाँ हमारी सारी शक्ति, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, ये सारी शक्ति उस पर फोकस होती है. ये हमारा समय है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, और उसके लिए हमें अपने आप को चैनलाइज करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब हम इस तरह के रिलेशनशिप्स की तरफ खींचते चले जाते हैं, या ज़्यादातर कहीं पीयर प्रेशर की तरफ लगता है कि नहीं, दिस इज़ द थिंग, ये होना ही चाहिए इस तरह का संबंध, और हम इन तरह के संबंधों को जोड़ने की कोशिश करते हैं,

0: एक घंटा पढ़ने बैठे, लेकिन आउट ऑफ वन आवर 45 मिनट्स तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर और थिंकिंग अबाउट हिम. तो नाउ व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई ब्रिंग माई कॉन्सेंट्रेशन बैक. सी वंस आई गिव इट अवे आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स लाइक फॉलिंग डाउन एंड अगेन नाउ स्टैंडिंग अप. लेकिन वो गिरने और खड़े होने के प्रोसेस में चोट लग जाती है और दर्द होता है. तो सबसे पहले तो फोकस बहुत क्लियर हो कि आप पढ़ाई के समय से गुजर रहे हैं एंड दिस इज एन ऑब्स्टिकल. ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पीपल से दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से इट्स अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल जो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ, पूरा करियर एंड योर एंटायर लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ करियर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी. करियर तो फिर भी ठीक है, बने जो भी, लेकिन पर्सनैलिटी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से गुजर जाते हैं. यू नो, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं आई लाइक सो एंड सो, बट उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, है ना. तो जब उन्हें वो रिजेक्शन मिलता है, ये रिजेक्शन एक बच्चे की पर्सनालिटी पर इतना डीप इम्पैक्ट छोड़ देता है, क्योंकि बच्चा इज वेरी स्टिल नॉट मैच्योर. उसे पता नहीं है कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है. उसे ये भी मैच्योरिटी नहीं है कि ये रिजेक्शन वो सामने वाले व्यक्ति की अपनी चॉइस है. मुझे ये लगने लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, यू नो, मेरे अंदर कोई कमी है. एंड इट इज द फर्स्ट सीड ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि आई एम नो गुड. यू नो, जिनको मैंने लाइक किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें मैं क्यों नहीं अच्छा लगा. तो द फॉल्ट इज विद मी. माई सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटली क्रैशेस, टोटली. सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से फिनिश्ड. अब ये पर्सनालिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि देन दे विल से, पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पहले तो सब कुछ ठीक था मेरे साथ, अब ये क्यों हो गया? क्योंकि मेरे अंदर वो रिजेक्शन को फेस करने की मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं वो एज पर नहीं पहुंचा टू अंडरस्टैंड. तो वो मेरी पर्सनालिटी में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है और ये कॉम्प्लेक्स मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप्स में आगे मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हर जगह एक इम्पैक्ट डालेगा. तो ये मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया जिसको मुझे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा. इस एक रिजेक्शन की वजह से मैं मेजोरिटी और रिश्तों में विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे धोखा मिला था, या तो यू नो देयर वाज अ रिलेशनशिप और वो टूट गया तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया. अब अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया उस एज में, वो यंग एज में, आई कैरी दैट लाइफ लॉन्ग एंड आई फील के सब लोग ऐसे हैं, धोखा देते हैं, मैच्योरिटी नहीं है. तो हम कितना नुकसान अपना कर देते हैं इन रास्तों पर अभी.
1: एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा वायलेंस का एस्पेक्ट हम देख रहे हैं वो है कि ऑब्सेसिव, जो कि वो मेरा ही है या वो मेरी है, इस उम्र में ही ये एहसास लेकर और वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंट हो रहा है. हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट, यू नो, देयर कैन बी अ गर्ल जिसको एक लड़का ये कहे कि यू नो आई लव यू एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट ही करता रहे कि वहां से नहीं रिजेक्शन. रिजेक्शन को कितनी बार वायलेंस में कन्वर्ट किया गया.
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज पावर ही नहीं है ना. पावर नहीं है तो जहां रिजेक्शन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो उसे एक आउटलेट चाहिए. तो वो आउटलेट या तो सेल्फ वायलेंस पर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेंगे ना. सो मेनी पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड या अपना डैमेज कर देते हैं या अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सबसे, ये भी सेल्फ डैमेज है. या हम दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतनी नफरत अंदर भर गई है, तो वो आउटलेट कहाँ से आएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें ये जो हमारा एज है, दिस इज़ फॉर सिंपल beautiful friendships, very healthy relationships, जो हम बहुत लोगों के साथ बना सकते हैं. इस एज में आप ये नहीं डिसाइड करने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ अपनी पूरी जीवन जीना चाहता हूँ, दिस इज माई पार्टनर. नो, बिकॉज राइट नाउ हम उस मेच्योरिटी लेवल पर ही नहीं है कि हम वो डिसाइड करें कि किसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहें. एंड जो हम फेज बिताने वाले हैं जिस एज का, अभी हम दोनों उस एज में ही नहीं है. तो रियली हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं. मे बी टुडे यू नो दे मे बी 15 इयर्स ओल्ड या 16 इयर्स ओल्ड, बट बाय द टाइम दे आर 25 दे विल बी टू डिफरेंट पर्सन्स. एब्सोल्युटली टू डिफरेंट पीपल. एंड तो इज इट पॉसिबल कि 15 या 17 की एज में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 या 40 की एज में हम एक दूसरे के साथ रहे? हाउ कैन वी डिसाइड दैट? बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन विल बी समबडी टोटली डिफरेंट.

0: तो इस बचपने की एज में हम वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो हम बहुत सारे गलत डिसीशंस उस वजह से ले लेते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट अ वेरी अर्ली एज हमारी थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी आने शुरू हो गई है. हम वो बॉडीली अट्रैक्शन और उस तरफ जो एक प्योरिटी की एज है, यू नो, चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड प्योरिटी को हम इतनी यंग एज में गवा देते हैं. और इम्प्योरिटी जहाँ आएगी वहाँ पीस वैनिश हो जाती है. एंग्जाइटी, एंगर, ये बहुत जल्दी उस एज में, क्योंकि हमने देखा कि उस दैट इज़ द सीड, उससे अग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब ट्रिगर हो जाता है क्योंकि थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी शुरू हो चुकी है. तो क्या ये वो एज है? एवरी चाइल्ड टुडे, एवरी यूथ टुडे नीड्स टू स्टॉप एंड आस्क देमसेल्व्स के राइट टाइम है, लेट्स डू इट एट द राइट टाइम. हर चीज़ का एक समय है और उस समय पर ही उस संबंध की तरफ हम ध्यान दें. अभी का समय है वेरी गुड फ्रेंडशिप्स. हमें ज़रूरी नहीं है कि एक के साथ एक नाम जोड़कर मुझे रखना है कि दिस इज माय रिलेशनशिप. नो, वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स, व्हाई कांट इट बी लाइक दैट?
1: दैट्स वेरी गुड एक्चुअली. एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हम, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम सहज जुड़ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम ऐसे सहज नहीं जुड़ रहे होते. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होती है. हमने जब कहा कि दोस्त हम चुन सकते हैं, दोस्त वो लोग हैं जो हमें चुने जा सकते हैं, पहली बार हमारे हाथ में ये है, क्या हम जिनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो हमारे दोस्त ही होंगे? या क्या हम देखें कि क्या वो दोस्त हमारे होंगे और इस मोमेंट को तो हम अच्छे जी रहे हैं जो लंबा भी चल पाए?
0: दैट्स व्हाट वी डोंट नीड टू डिसाइड अभी. सी, ये जो हम बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये अभी डिसाइड करने की एज ही नहीं है. हर एज की अपनी इम्पोर्टेंस है. दिस इज द टाइम टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, तो लेट्स कीप इट
1: ओपन
0: एट दैट. लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. उसको स्पेसिफिकली सेपरेट करने की कोशिश नहीं करें कि ये रिलेशनशिप बाकी सब रिलेशनशिप से अलग है. नहीं, दिस रिलेशनशिप इज लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप, वेरी हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. नहीं, ये डिफरेंट है. नो, बिकॉज टुडे फॉर यूथ ऑफ अ चिल्ड्रन इट्स मोर अ फिजिकल अट्रैक्शन. लेकिन अ रिलेशनशिप कभी फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है. इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स सोल्स, बिकॉज इट इज टू सोल्स जिनका कार्मिक कनेक्शन एक लंबे समय तक चलेगा. वो बॉडी कॉन्शियसनेस पर अगर आधारित होगा तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा. और इस एज में जब हम डिसाइड करते हैं जिसकी आप बात करें, दैट्स मोर बेस्ड ऑन बॉडी कॉन्शियसनेस. और उसकी फाउंडेशन ही जब देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो वो फाउंडेशन तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बिकॉज माई अट्रैक्शंस विल कीप चेंजिंग. That is not a solid foundation for a relationship.
1: बिल्कुल. सर शिवानी, ये तो हमने उस उम्र की बात की जो काफ़ी वल्नरेबल भी होती है और जहाँ दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है. लेकिन हर एज में देखा गया है कि फ्रेंडशिप इज वन रिलेशनशिप वी लुक फॉरवर्ड टू. प्रोफेशन में, क्या सेम प्रोफेशन में है हम तब मैं दोस्त हो सकता हूँ? क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि प्रोफेशंस में दोस्ती नहीं होती है.
0: वो इसलिए क्योंकि हमने कंपटीशन डाला है और कुछ भी नहीं है. बाकी दोस्ती कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जहाँ कंपटीशन नहीं होता है. लेकिन जहाँ हमने सोचा नहीं, या तो ये आगे जा सकती है मैं, देन आई विल फील नहीं मैं, क्योंकि फिर आप एक दूसरे से काज शेयर नहीं कर सकते. यू कांट बी योर सेल्फ विद द अदर पर्सन. आपको बहुत यू नो केयरफुल होकर चलना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी ऑन योर गार्ड. दैट्स वाई वी से बाकी तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज संबंध क्या है? दो आत्माओं का संबंध, एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेट करते हैं वो संबंध है. तो उसके ऊपर ना कोई प्रोफेशन इन्फ्लुएंस डाल सकता है, ना कोई पोजिशन, ना कोई स्टेटस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस. वी क्रिएट दोज कॉम्प्लिकेशंस.
1: बिल्कुल. एक दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा है. शिवानी, आज इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. हर रिश्ते की तरह हमने ये भी देखा कि मित्रता, जिसे हम सबसे गहरा रिश्ता मानते हैं, उसमें भी जो कड़वाहट कहीं ना कहीं आ जाती नज़र आ रही है वो हट सकती है. और मित्रता अगर हम जब यंग एज में होते हैं, उस वक्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसे किस परिपेक्ष में लें तो ये फ्रेंडशिप जो है वो सालों साल चल सकती है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर हैं 09999344555, 09999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अब एक और रिश्ता बाकी है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है रिश्ता अपने आप से और परमात्मा से। कैसा होता है ये रिश्ता, इसके बारे में बात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। अब दीजिए इजाज़त, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज सदगुरुवार है और सदगुरुवार के दिन हर लोग सवेरे सवेरे सदगुरु का महिमा गाते, सदगुरु के गुणगान करते हैं। तो चलिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सदगुरु के एक प्यारे से गीत के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं सदगुरु का ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो सदगुरुवार का ये कितना प्यारा सा गीत था दोस्तों। हर एक को लगता है कि उस प्रभु के प्यार में हम मगन रहे, प्रभु को याद करें, तो सदगुरुवार को सभी बहुत प्यार से याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है, उनके बारे में हम आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे। कि सबसे पहले देखेंगे कि आज 14 मई है और 14 मई में किन किन लोगों का जन्मदिन है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो सभी जानते हैं, भारत में ऐसा कौन नहीं कि छत्रपति संभाजी महाराज का नाम नहीं जानता हो। बच्चा बच्चा भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जानता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। मैं मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए बुरीलाल जी, कैसे हैं?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, आपका कार्यक्रम सुन करके आनंद ले रहा हूँ।
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
1: मेरा भी एक गाना है सर।
0: जी जी जी,
1: वो मिल जाए आपसे सुना देना सर।
0: जी जी, जरूर जरूर जरूर।
1: हाँ, प्रभु कागज हो तो बांस लू, कर्म ने बांसियो जाए मेरे प्रभु।
0: अच्छा,
1: ये गाना मिल जाए तो सुना देना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी, सभी आर्जियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेडियो मधुबन क्या है, हमारी एक पाठशाला है।
0: जी जी जी,
1: इसके अंदर नहीं जब तक उपस्थिति नहीं देंगे ने, जब तक हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी।
0: जी जी जी जी,
1: इसलिए दिनचर्या चलाने के लिए आपसे संपर्क करना अति आवश्यक है।
0: जी जी जी जी,
1: और एक दूसरे श्रोता मिलते हैं ने
0: जी,
1: उससे हमारा मनोरंजन हो जाता है।
0: जी जी जी जी,
1: उनकी वाणी से हम कोई मीठी मीठी बातें सुनेंगे, कोई सवाल सुनेंगे, कोई कहानी सुनेंगे, कोई गाना सुनेंगे, तो उससे हमारा दिल भर जाता है।
0: जी बराबर बराबर बराबर।
1: नमस्कार,
0: अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता जो रोज सवेरे सवेरे फोन करते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि इतना प्यार से, इतना खुशी और उमंग के साथ आप लोगों का प्यार मिलता है। आप फोन करते हैं तो आपकी आवाज़, वो मीठी आवाज़ से हमें भी बहुत खुशी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे थे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है, उनके बारे में। जैसे कि कहा हमने कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और खास पुणे में उनका जन्म हुआ था, और स्वराज्य की शपथ लेने वाले वो एक युवा थे। और आज उनके पुत्र संभाजी राजे भोसले का जन्मदिन है, उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम बच्चा बच्चा जानता है, उसी प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी हम जानेंगे। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी ये छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्होंने 1680 से 1690 तक राज्य किया। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी एवं भोग विलासी हो गया था। अपनी मृत्यु के समय शिवाजी ने उन्हें पनाला के किले में कैद रखा था। शंभुजी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव दिखाई देता था। वह विलासी प्रेमी था, किंतु शौर्य की कोई कमी नहीं थी। 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु परांत उनकी पत्नी सूर्याबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजाराम का अप्रैल 1680 में रायगढ़ में महाराज्याभिषेक कराया, किंतु संभाजी ने मराठा सेनापति अंबेराव मोहिते को अपने पक्ष में करके आक्रमण कर दिया। उसने सूर्याबाई एवं राजाराम को कैद कर लिया और रायगढ़ पर अपने अधिकार करके 30 जुलाई 1680 को अपना राज्याभिषेक करवाया। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम नई किरण की शुरुआत की एक धुन आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आज बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र जिसे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, तो उनका आज जन्मदिन है, उनके बारे में कुछ जानकारी दी और कुछ और हम देना चाहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि शंभुजी ने जब नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया उसने 1689 तक शासन किया। कालांतर में शंभुजी के विरुद्ध राजाराम सूर्याबाई और अन्नाजी दत्तों ने एक संगठन बना लिया, परंतु शंभुजी ने इस संघ को बर्बरतापूर्वक कुचलते हुए सौतेली मां सूर्याबाई और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की हत्या करवा दी। शंभुजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण शंभुजी को मुगल सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। लगभग 9 वर्ष तक वह निरंतर औरंगजेब की विशाल सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना करता रहा। तो दोस्तों देखो, ये कोई साधारण बात नहीं, 9 साल तक वो सामना करता रहा। शंभुजी ने साहस एवं निडरता के साथ औरंगजेब की 800,000 सेना का सामना किया तथा अधिकांश मुगल सरदारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भागने के लिए विवश भी कर दिया। 24 से 32 वर्ष की आयु तक शंभु राजा ने मुगलों की पार्श्विक शक्ति से लड़ाई की, एक बार भी यह योद्धा पराजित नहीं हुआ। इसलिए औरंगजेब के साथ समझौता किया होता अथवा उसका आधिपत्य स्वीकार किया होता तो वह 2-3 वर्ष में ही पुनः उत्तर हिंदुस्तान में आ धमकता, परंतु संभाजी राजा के संघर्ष के कारण औरंगजेब को 27 वर्ष दक्षिण भारत में ही रुकना पड़ा। कितना? 27 साल। तो ये संभाजी की ताकत थी। इससे उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदुओं की नई सत्ता स्थापित होकर हिंदू समाज को सुरक्षा मिली। उस समय हिंदू समाज को सुरक्षा दिलाने में छत्रपति संभाजी महाराज का बड़ा हाथ था। ज्येष्ठ शुद्ध 12 शके 1579 यानी गुरुवार दिनांक 14 मई को 1657 को पुरंदरगढ़ पर स्वराज्य के दूसरे छत्रपति का जन्म हुआ जिसे छत्रपति संभाजी महाराज कहा जाता है। जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनकी माता सहीबाई की मृत्यु हो गई थी एवं राजा मात्र सुख से वंचित हो गए, परंतु जिजाओं ने इस अभाव की पूर्ति की। जिस जिजाओं ने शिवाजी को तैयार किया उसी जिजाओं ने संभाजी राजा पर भी संस्कार किए। संभाजी शक्ति संपन्नता एवं रूप सुंदर की प्रत्यक्षता में प्रत्यक्ष थे। 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषणम नायिका वेद शास्त्र। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, सम्राट भाई जी, सरद भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: जी जी जी बोलिए बोलिए बोलिए।
1: बहुत अच्छे हैं और बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी जी जी, बहुत दिनों के बाद हम भी आए हैं। जी जी,
1: सारे दिन हो गए आप तो, वैसे तो हम आपकी आवाज सुनते रहे बंदा जी के साथ, लेकिन रूबरू में आवाज पहली बार आपसे बात हो रही है, लेकिन कार्यक्रम तो हम सुनते रहते हैं बंदा जी के साथ।
0: वाह वाह वाह, धन्यवाद।
1: बातें बताते हैं वहाँ, क्योंकि हम भी जो आप वहाँ जहाँ की सैर बताते हैं, हरिद्वार, अलाहाबाद, कई कई सारी जगह पे आपने बताया, तो हम
0: जी जी
1: ऐसा ही समझ लगे चल भाई हम वहाँ जाके ही आए, क्योंकि सारी बातें हमको मिलने गोवा की, कई सारी बातें जो आप बता रहे थे बन्ना जी।
0: जी जी जी जी,
1: तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है सर कि वहाँ क्या क्या देखने लायक है, वो कहाँ के किस जगह पे जाना है, कहाँ जाना है, सब आईडी हमको मिल जाती है। एक हमारे लिए अच्छी ये सुविधा कर देते हैं कि हम कभी भी जाना चाहते हैं तो हम आराम से आपके बताए मार्ग पर हम जा सकते हैं।
0: जी जी, इसमें वंदना जी का काफी बड़ा योगदान रहता है और वो खास समय निकाल कर यहाँ आकर सेवाएं करती है। जी जी
1: बिल्कुल, हम समझते हैं क्योंकि ये तो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों के लिए
0: वो दिल्ली से यहाँ आकर प्रोग्राम करते हैं।
1: पता है मुझे, हाँ पता है मुझे, और बहुत अच्छी बातें भी बताते हैं, हमको भी खुशी रहती है कि
0: जी जी
1: जो इतना काफी वक्त इतना इधर आके सबको बताना, जहाँ की सबको जो जहाँ जाते हैं पूरी खोज करना और सब वहाँ की बातें बताना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से वो बताते हैं हमको भी एक
0: जी, जी, जी, जी।
1: मौका मिल जाता है चलने का। सर आपको हमारी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं, वल्लाह जी को भी शुभकामनाएं, हमारे जो मित्र हैं बुरेलाल जी है, हमारे सभी चंचन भाई है, हमारे कई सारे मित्र हैं
0: जिलाल
1: जी, तो अच्छा एक बाबा का गाना भी हो जाए तो मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ शायद आपको खोजने में
0: जी जी
1: आए। क्योंकि जल्दी जल्दी फोन लग जाता है तो
0: जी, जी,
1: जाते है कि क्या बताना था, क्या गाना था।

0: बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बहुत अच्छा बढ़िया गाना है बाबा का।
1: जी जी जी,
0: ठीक है सर, तो शायद आपको मिल जाए तो जरूर सुना देना।
1: जरूर जरूर जरूर, अगर ये ज्ञान ये गीत मिलता है तो हम जरूर आपको सुनाएंगे।
0: कोई बात नहीं, नहीं मिले तो दूसरा सुना देना आपकी।
1: जी जी जी जी जी जी,
0: आपको शाम को तो सभी बाबा के गाने अच्छे ही लगते हैं।
1: जी जी जी जी जी, तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

दोस्तों, बदलेंगे तस्वीर विश्व की। जी हाँ, हम बदलेंगे तो विश्व भी बदलेगा, विश्व की तकदीर बदलेगी और आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा। वहाँ मानव भी देवता समान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषणम उन्होंने संस्कृत में और नायिका भेद सहस्रशतक नखशिख हिंदी में इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। जी हाँ, उनका इतिहास पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों के साथ भी या अकबर के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मराठों एवं अंग्रेजों को 1684 में जो समझौता हुआ, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में दास या गुलाम बनाने अथवा ईसाई धर्म में कलंकित करने हेतु लोगों का क्रय करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। साथ ही संभाजी महाराज ने शुद्धिकरण के लिए अपने राज्य में स्वतंत्र विभाग की साथ स्थापना की। छत्रपति संभाजी महाराज एवं कवि कलश ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाए गए हरसूल से ब्राह्मण गंगाधर कुलकर्णी को शुद्ध कर पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का साहस दिखाया। यह एक साहस ही था, क्योंकि यह समय उस समय का एक दौर था जो बलपूर्वक हिंदू से मुसलमान बनाया जाता था। ऐसे समय हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में लेने के लिए हिंदुओं द्वारा ही अत्यधिक विरोध होता था। उस समय कि जो धर्म परिवर्तन हुआ है उसे वापस लेना नहीं चाहिए, इसलिए गंगाधर को त्र्यंबकेश्वर भेजकर वहाँ की प्रायश्चित विधि पूरी कर ली गई। उसे शुद्ध पत्र देकर अपनी पंक्ति में भोजन के लिए बिठाकर पुनः प्रवेश करा लिया। संभाजी राजा की इस उदारता के कारण बहुत से हिंदू पुनः स्वधर्म में आए। जी हाँ, उस समय बहुत सारे ऐसे हिंदू थे कि उन्हें मजबूरी से मुसलमान बनना पड़ा, उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया, लेकिन उनकी मन की इच्छा नहीं थी। तो फिर कुछ समय के बाद उन्होंने फिर अपने हिंदू धर्म में आने की कोशिश की तो संभाजी महाराज ने उन्हें स्वीकार किया। फोंडा का गढ़ पुर्तगाली मराठी सीमा पर था। गोवा की पुर्तगाली सत्ता को उकसाने तथा सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए घेरा देने का जो प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, उसमें फोंडागढ़ एक महत्वपूर्ण द्वार था। उसका नाम था मर्दनगढ़। पुर्तगालियों ने मर्दनगढ़ के तट पर तोपों का वर्षाव चालू रखा था। तट में और एक दरार पड़ी। 9 नवंबर को पुर्तगालियों ने घाटी से अंदर प्रवेश करने का षड्यंत्र रचा था। उस समय संभाजी महाराज राजापुर में थे। उनका ध्यान इस लड़ाई पर केंद्रित था। महाराज ने फोंडा के मोर्चे पर स्वयं उपस्थित रहने का निश्चय किया। वे शीघ्रता से फोंडा पहुंचे। उनका हट एवं ईर्ष्या इतनी दुर्दम्य थी कि उन्होंने 800 सवारों की सुरक्षा में 600 पैदल सैनिकों को भली भांति किले में पहुंचाया। पुर्तगाली उनके धैर्य एवं निडर मानसिकता को देखते रह गए। उन्हें उन पर आक्रमण करने का भान ही नहीं रहा। संभाजी महाराज युद्ध में सम्मिलित हुए। यह देखते ही वायसराय ने अपने मन में ऐसा पक्का निश्चय किया कि यह युद्ध उसे बहुत महंगा पड़ेगा। महाराज की उपस्थिति देखकर मराठों का होश उड़ गया। किलेदार ईसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय योद्धा था। अब वह वृद्ध हो चुका था, परंतु उसमें युवक को हटाने की शूरता, धीरता एवं सुदृढ़ता थी। इस वृद्ध युवक ने पराक्रम की पराकाष्ठा की। उसने अपने लड़के कृष्णा जी के साथ चुनिंदे सिपाही को साथ लेकर गढ़ के बाहर जाकर पुर्तगालियों से लड़ाई की। जिनके साथ वे लड़े उनको उन्होंने पूरा तरह से पराजित किया, परंतु इस मुठभेड़ में ईसा जी एवं उनके सुपुत्र कृष्णा जी को भयानक चोट लगी। 10 नवंबर को पुर्तगालियों ने लौटना आरंभ किया। मराठों ने उन पर छापे मारकर उन्हें अत्यधिक परेशान किया।
तोप तथा बंदूकों को पीछे छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ा। छत्रपति संभाजी राजा की मृत्यु तक पुर्तगाली एवं छत्रपति संभाजी दोनों में युद्ध चालू रहे। तब तक मराठा ने पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहने वाले जो प्रदेश जीत लिया था उसका बहुत सा अंश मराठों के नियंत्रण में ही था। गोवा के गवर्नर रुद्रुक दकाश 24 जनवरी 1688 को पुर्तगाल के राजा को लिखते हैं, छत्रपति संभाजी राजा से चल रहा युद्ध अब तक समाप्त नहीं हुआ। यह युद्ध वायसराय स्कॉट द अल्वेयर के राज्य में आरंभ हुआ। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं छोटा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
7: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
8: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस IPL में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, CBI ने मारे कई जगह छापे, NTA मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2,441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले UAE जाएंगे, LPG और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रूपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय के बारे में जो आप सभी का पसंदीदा भी है। अगर यूं कहे तो उसकी गहराई में जब आप बहुत सारे लोग जानते हुए भी कई बार अनजान हो जाते हैं, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो आज हम कि ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सौंदर्य। तो जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग अपनी शारीरिक बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आचार विचार व्यवहार पहनावा इत्यादि से भिन्न नजर आता है। मगर जैसे कि आजकल देखने में आता है कि हर तरफ, चाहे गांव होंगे, शहर हो, पुरुष हो या स्त्री, हर कोई फैशन की चाह के पीछे भाग रहा है और बिना ये सच समझे कुछ ठोस परिणाम तो निकल नहीं रहा है। पहले तो ब्यूटी पार्लर सिर्फ महिलाओं के लिए हुआ करते थे, मगर अब तो पुरुषों की ब्यूटी पार्लर के साथ साथ बच्चों के भी ब्यूटी पार्लर से तो जैसे हजारों रुपए खर्च करके थोड़ा समय के लिए अच्छा दिखना ही पर्याप्त लग रहा है।
1: एक बात और हम आपको बताते चलेंगे कि जैसे अभी रमेश जी ने बताया कि बच्चों के भी ब्यूटी पार्लर है, तो हाँ, बड़ी छोटे में बच्चों की ब्यूटी पार्लर होते हैं और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये हो सुंदर दिखने की लगातार तो एक तो हम इस अंधी दौर में शामिल होते जा रहे हैं। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कैसा अजीब सा या अलग सा विषय है, लेकिन आप अजीब है और नहीं आपने सोचा है कि भगवान ने जिस रूप में हमें बनाया है वही अब स्वीकार नहीं होता है। हम अपने रूप रंग शारीरिक बनावट को लगातार रिजेक्ट करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो खुदा का है जिसने हमें मनुष्य करने जन्म दिया, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि हमारे सारे अंग पूर्ण है, कहीं हाथ नहीं कहीं पैर नहीं, ऐसा तो सब नहीं है हमारे साथ।
0: जी वंदना जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया, किसी को देखकर कि वो बहुत अच्छा है, वो ब्यूटी पार्लर रेगुलर जाती है, हजारों का खर्च करती है और कितना सुंदर दिखती है, तो हमें भी ऐसा करना है, ये बिल्कुल गलत है। साथियों, मैं चाहूंगा कि इस पर आप सोचिएगा और वंदना जी आपको आगे बताने वाली है, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ब्रेक के बाद। आशा करूंगा गीत आपको बहुत कुछ समझा गया होगा। जैसे सुनते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, तो आपका मन जो है खुशी से झूमने लगता है। साथियों, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पेंटिंग या कोई केमिकल या पाउडर इसकी जरूरत नहीं है ना, तो आपका मन खुश हो जाए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे कि कितना सुंदर दिखती है ब्यूटी पार्लर जाके हजारों रुपए खर्च करके, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत किस अंदाज में है, आइए बात करते हैं वंदना जी से। जी
1: जी दोस्तों, गलत तो इस सेंस में है कि हमारा सबका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल फर्क होता है, और अगर मैं किसी की नकल कर रही हूँ तो उसका, अगर मैं नकल कर रहा है तो मुझे किसी अच्छे सेंस में उसकी नकल करनी है। ऐसा नहीं है कि वो ब्यूटी पार्लर जा रही है तो मैं भी जाऊँ। एक बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि शायद हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मतलब शादी ब्याह है तो जरूर आप जाइए, लेकिन इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना, इसका मतलब आप डॉक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब है हम अपने शरीर को खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं। जो क्या इसका जो प्रभु ने की देह है शरीर का अपमान नहीं है, जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। साथ ही साथ आपने एक बात और नोटिस की होगी कि इतना खर्च करने के बाद भी सिर्फ थोड़े दिनों में ही ठीक देखते हैं, बाकी जैसे कि पहले होते हैं वही स्थिति हमारी वापस हो जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। साथियों, थोड़ा सा चिंतन जरूर कीजिएगा। पहले जो ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करते थे, फैशन की इस रोड में लोग आज महिलाओं के साथ साथ साथ पुरुष भी 100% शामिल होने लगे हैं। तो दिखावा किस चीज का कर रहे हैं और क्यों, ये सवाल हम अपने आप से शायद कभी पूछते ही नहीं, एक्चुअली में पूछना चाहिए। तो नहीं पूछते हैं, इस बारे में सोचते हैं कि इस अंधी दौड़ में शामिल होकर हमें क्या मिल रहा है, इस पर कभी हम विचार ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी जेब खाली करने का रहता है। तो ये एक और विषय आता है, जब खुद अपनी शारीरिक बनावट को रिजेक्ट करते हैं तो बार बार इसको रिजेक्ट करने से हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं और बहुत सारी शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और हम फिर उसके निवारण में लग जाते हैं। और कभी कभी अपने इस विषय में कभी विचार किया है, शायद नहीं। और एक बात चाहिए कि अब तो काफी समय से कुछ और भी बातें आ रही हैं। जी
1: में जो और विकल्प सामने आ गया है वह है सर्जरी का एक विकल्प को भी काफी सारे स्त्री पुरुष अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो शायद कभी हम इस पर विचार करने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। उसके मूल्य को ना जानकर हम अपनी शारीरिक संरचना को काट फाट कर उसे ठीक करने में लगे रहते हैं, जबकि शायद उसको किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती है। पर एक बात और कि उच्च वर्गीय जैसे कि हीरो हीरोइंस को इंटरेस्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अरे उनका तो काम ही है कि उनको बहुत अच्छा दिखाना, स्क्रीन प्रेजेंस के कारण वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर उनका अनुसरण करके हमें क्या मिलता है, सोचेंगे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने वंदना जी। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा विचार तो चल ही रहा होगा। साथियों, जैसे टेलीविजन पर हीरो हीरोइन को जब हम देखते हैं और हमें लगता है कि हमें भी ऐसा बनना है, तो कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं कुछ प्रोडक्ट के, तो वो एडवर्टाइजमेंट करने के तो पैसे ले लेते हैं, उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नुकसान करेगा। हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख के उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं और उससे हमें फायदा भी नहीं होता, तो हमारे ही पैसे चले गए ना।
1: हाँ रमेश जी, वैसे आपको एक बात और बताऊंगा।
0: जी
1: जो हमारी महिला मित्र उसको सारी सुन रही होंगी, वो भी इसके मतलब
0: अनुभवी होंगे। जी
1: इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कितनी सारी चीजें हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा देती हैं, उसको प्रमोट कौन कर रहा है देखते हैं, बड़ी एक्ट्रेस कर रही है, इनके चक्कर में हम लोगों की जेब खाली हो जाती है। तो ये चीजें जो सुन रहे हैं इससे जरूर अपनी लाइफ में दो चार होते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक सवाल यहाँ रमेश जी, लोग यहाँ सोच रहे होंगे की ब्यूटी पार्लर जाना क्या जरूरी होता है, आप बताइए आपके सोच रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा है। और मैं एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर हेमा मालिनी जी को जो है खास करके ये पूछा गया था कि भाई आप जो लक्स या हमाम इन सारे जो अलग अलग नाम बताने की ज़रूरत नहीं है जो ब्यूटी सोप्स होते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आप कौन सा सोप यूज़ करते हैं? जब उनको पूछा गया तो ज़ोर से हंसने लगे, बोला मैं सोप नहीं यूज़ करता, मैं अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए हल्दी और चंदन का मेरी माँ लेप बनाती है, मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, मैंने आज तक कभी सोप यूज़ नहीं किया। तो साथ ही इस बात से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल और इतने पैमाने पर जब बनाया जाता है तो वो मिक्सअप चीज़ें रहती हैं, सिर्फ रैपर पे उस पर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं जो हमें लुभाती हैं, और किसी एक्टर के ज़रिए हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये सही होगा तो हम उस भाव से उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि रियलिटी में हम नेचुरल चीज़ें जो हमारी आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई या हमारे नेचुरल ब्यूटी जो चीज़ें हैं जैसे कि बेसन हो गया, चंदन का पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें काम करती हैं। जी,
1: तो जिससे आपने बताया रमेश जी को मुझे याद आया जो हेमा मालिनी के स्पेशली के बारे में बता रही थी, आपसे मैंने वो इंटरव्यू सुना है।
0: अरे वाह।
1: और वो इंटरव्यू लेने वाले थे, इंटरव्यू तो नहीं एक मतलब कैंडिडेट टॉक था, स्वर्गीय राजीव दीक्षित, उन्होंने हेमा मालिनी से सवाल पूछा था तो तब उन्होंने उसका ये जवाब दिया था कि मैं ये यूज करता हूँ। तो राजीव दीक्षित जी के बारे में तो मतलब लाखों करोड़ों लोग उनके बारे में जानते हैं, तो चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने की, तो एक दूसरी बात यह है कि क्या जब हम किसी को सुंदर बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं शारीरिक सुंदरता नहीं है उसकी, हम क्या हालांकि सुंदरता को देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है, मान लीजिए कोई किसी को सुंदर है तो उसको दूसरा नहीं अच्छा लगता, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए किसी को चांद में दाग नजर आता है, किसी को चांद पूरे और सुंदर नजर आता है, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: जी जी जी, वंदना जी सही कहा आपने, देखने का नज़रिया होता है, और अगर सुंदरता तो बाहरिक नहीं आंतरिक होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक अगर व्यक्ति गुणों से संपन्न है तो शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं है, अगर व्यक्ति गुणों से अच्छा है तो हमें उनके साथ बात करना, उनके व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है। आदमी सुंदर हो अगर गुण ही नहीं है तो फ़ायदा भी क्या होगा? ये तो ऐसे हो गया करोड़पति अगर गुस्सा करके आपको पैसा देता है तो दोबारा आप कभी नहीं जाएंगे, है ना?
1: और जहाँ तक आंतरिक सुंदरता की हम बात करते हैं तो अकेले होता क्या है, जो हमारे आंतरिक गुण होता है, हमारी प्रतिदिन की जो लाइफ होती है, हमारा जीवन होता है, हमारा व्यवहार होता है, वो हमारे आंतरिक गुणों के द्वारा ही चलता है, और इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो हमारे श्रोता भी अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, और इन गुणों को जितना हम धारण करते हैं, और कहते हैं ना इनसाइड आउट, जो हमारे अंदर होता है वही हमारे व्यक्तित्व में सामने वाले को महसूस कर जाता है, तो अगर हम गुणों को जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन तो महक ही जाएगा, और गुणों की खूबसूरती से हम दूसरे के जीवन को भी महका देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे प्रोडक्ट को लेकर एक बात ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं मेडिकल फार्मेसी में काफ़ी टाइम तक काम किया, तो जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी के वो उस पर कोई गारंटी नहीं होती है, लोग जो है नाम और पोस्टर देख के ले लेते हैं, और कुछ ऐसे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भी बिना टेस्ट किए आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपका स्किन को अगर आपको यूज़ करना भी है तो पहले उसको जो है सैंपल लेकर आपको टेस्ट करना है आपके स्किन को, आपके हेयर को सूटेबल है, आपको कोई खुजली तो नहीं हो रहा है, कोई इरेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई लाल दागे तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, अगर चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि उससे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, तो इस तरह की कई चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से हटके अगर हम नेचुरल अपने आप को अच्छे विचारों से खुश रख सकते हैं, गुणों से खुश रख सकते हैं, और नेचुरल अपने आप को अगर सुंदर विचार देंगे तो आप अपने आप ही सुंदर बनेंगे। तो आइए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत संगीत आपके लिए, अभी आप सुनाए हैं रिडमर 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और धीरे धीरे हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि हमें बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं और साथियों सुंदरता की बात करें तो मैं चाहूंगा वंदना, सुंदरता के लिए आप क्या सोचते हैं हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
1: देखिए, जहाँ तक सवाल होता है, एक बात हम सभी ने देखी होगी अपने जीवन में कि जब कभी हम अपने बच्चों का रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि मतलब शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आंतरिक गुण को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और साथ साथ क्योंकि गुणों से हमारा जीवन चलता है। और एक बात और, अब तो सिनेरियो काफी चेंज हो गया है, लेकिन जैसे पहले था, साथ साथ जो परिवार होता है, परिवार में माता पिता कैसे है, वो कितने गुणवान हैं, इसमें बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता था। क्योंकि जो लड़का या लड़की होगी जैसे गुणवान होंगे तो जैसे उनका गुणवान माता पिता के द्वारा जो पालना होता है ऑटोमेटिकली लड़का या लड़की बहुत ही अच्छी होता है। तो पहले इन बातों पर फोकस किया जाता था, यानी कि हमारे गुणवान होने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो बहुत पुरानी जो दादी नानी बोला करती थी, कहती थी पहले दहेज प्रथा थी, सारा दहेज तो टूट फूट जाएगा, कौन जाएगा था। लड़की की एक समय बाद भी होती सुंदरता नहीं रहती है। तो जो हम रहते हैं तो हम जो जीवन बिताते हैं अपने गुणों के द्वारा ही जीवन बिताते हैं, सबको अपना बनाते हैं। ठीक है, शारीरिक सुंदर है, साथ साथ गुणवान है, उसको हम सौम्य स्वभाव जरूर कहेंगे, लेकिन मेरा फोकस और जो मेरी पसंद है आंतरिक गुणों के ऊपर विषय है। इस बारे में रमेश जी आप क्या बताइए, आप क्या बताइए।
0: जी जी, वंदना जी काफ़ी अच्छी बात भी आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का एक अलग जो विषय आपने लेकर हम सबके बीच में आए और बहुत ही अच्छी बात भी आपने बताया। तो जहाँ पर खूबसूरती की बात, सुंदरता की बात हो रही है, साथियों हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है अगर हम सारी ज़िंदगी खुश रहते हैं और साथ ही साथ हम अपने रिश्तों को समझना और समाज को समझ लेते हैं, अपने इस जीवन को समाज के साथ जोड़ के देखें, एक बैलेंस बना रहे। परिवार के साथ भी आप रहते हैं तो सबके साथ बातचीत करें और सबके साथ मिलकर रहे तो वहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है जिसके द्वारा हमारे जीवन में खूबसूरती बनी रहती है। तो आशा करते हैं कि आज की ये बातें आपको दिल तक पहुँची होगी। जी,
1: एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति देखने में सुंदर होता है तो उसमें उसका कुछ योगदान नहीं होता है। अगर वो समझे मैं सुंदर हूँ इस बात को मतलब खमंड करना, क्योंकि ये तो अनुवंशिक यानी जेनेटिक होता है। और कभी आपने देखा होगा जो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका व्यक्तित्व देखने में आकर्षक नहीं होता है और खुद को लो फील करते हैं, तो इसमें आपको लो फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने शारीरिक सुंदरता को तो एक हद तक निखारा जा सकता है, हम उसको पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी डिग्रीज को बढ़ाएं, अपने आंतरिक गुणों को बढ़ाएं, इसलिए हम मेहनत करें ताकि जो हमारा जीवन है उसको समाज में सम्मानजनक रूप से हम खुद को स्थापित कर सकें। और दोस्तों एक बात और होती है कि आपको सभी जानते हैं जब अल्टीमेटली जो कद्र होती है वो गुणों की ही होती है और गुणवान व्यक्ति की धनवान होता है। क्योंकि जो गुणों का धन है आपके पास होता है और खूबसूरती के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने रमेश जी से भी सुना और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम बैलेंस बना के रखते हैं शारीरिक सुंदरता का और अपनी डिग्री का, तो इस बैलेंस से हम खुद को खुश रहती हैं, साथ में हमारे जो रिश्ते हैं नाते हैं समाज में हम खुद को स्थापित कर देती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास होता है जो हम खुद के लिए करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे श्रोताओं को एक खूबसूरत आनंद देते हैं। एक मिनट में बहुत सारे हिंदी पॉपुलर ब्यूटी पर पिक्चराइज किए गए गाने उनको सुनाने वाले हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे पीस है, कट पीस है, एक एक 10-10 सेकंड के हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आनंद मिलेगा। इस आनंद को उठाते हैं अभी।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का ये प्रस्तुति आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और हमें बताइए कि आपका हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा। आप सभी अपने इस आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाएं, गुणों को अपनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ख्वाबों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। आशियाना में दिन की शुरुआत तो एक सुंदर विचार के साथ करेंगे, फिर घरेलू नुस्खे कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा पेन और डायरी लेकर के, लिख लेना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नुस्खे देने वाली हूँ। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे सविता जी के साथ, नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, उसके लिए भी पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, और सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, शिक्षा के साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां। आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। देखिए, पढ़ाई की ऊंची डिग्री होते हुए भी हम जीवन की परीक्षाओं में धोखा खा जाते हैं। डिग्री रूपी कागज का टुकड़ा हमें नौकरी तो दिला सकता है, परंतु आकर्षणों को ना करनी है यह शक्ति नहीं दे पाता है। यही कारण है कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी मनोबलहीनता का शिकार है, समस्याओं से ग्रसित है। शिक्षा के साथ साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति, सामना करने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, पारिवारिक शिष्ट आचरण की शक्ति वगैरह वगैरह, इन सभी का विकास अनिवार्य है। नहीं तो पल भर का मजा और जीवन भर की सजा, इस कहावत को चरितार्थ होते देर नहीं लगती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा। और शिक्षा तो हम सभी को लेनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक शक्तियों का भी बढ़ाना है, और ये तभी बढ़ेगा जब हम थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत, उसके बाद और भी आशियाना में आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे। और बहुत अच्छा लगता है, इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे सफेद दाग पर। सफेद दाग की समस्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स भी करते हैं कि बहन जी क्या करें, एक दाग से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बताऊंगी। देखिए, पहले तो जो सफ़ेद दाग शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खाने पीने का परहेज रखिए। एक तो क्या आपको चने और चने की रोटी ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए इस स्थिति में, ठीक है ना। चने भी खा सकते हैं, कच्चे चने भी, और

आप चने को पीस करके उसकी रोटी बना करके खाइए, लेकिन उसमें नमक न के बराबर लेवे, नमक नहीं लेना है। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कब तक हम नमक ना खाए, तो फिर आपसे नहीं रहा जाता है, तो सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। और जैसे कि चने की रोटी खाते खाते बोर हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। बाकी आप जितने चने की रोटी खाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और इसमें आपको थोड़ा परहेज रखना है, जैसे कि खट्टी चीजें नहीं खानी है, तेल, चावल, गुड़, मिर्च, मसालेदार चीजें, इन सभी को कम कर देना है। और चने की रोटी ज्यादा से ज्यादा खानी है थोड़े लंबे समय तक, ताकि आपके सफेद दाग जब शुरुआत में होते हैं तो ठीक हो जाए, और फिर भी फैलते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बता रही हूँ। दवा और दुआ दोनों ही करिएगा। बथुआ, देखिए बथुआ उबाल करके इसको निचोड़ दीजिए, ठीक है, इसके रस को फिर आप पीजिए, इससे भी सफेद दाग में फायदा होता है। इसकी सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, बथुआ की भाजी आप बना करके, बथुए की भाजी, चने की आटे की रोटी ये आप खाइए, इससे भी काफी फायदा मिलेगा ये, क्योंकि ये चरम रोग के लिए अच्छा है। और बथुए के उबले पानी को आप जहां पर सफेद दाग होते हैं ना, वहां पर आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर अगला नुस्खा आप ध्यान से सुनेंगे। बथुए के कच्चे पत्ते को पीस लीजिए, पीस करके निचोड़ कर इसका रस निकालिए, फिर 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिला करके मंद मंद आंच पर आपको गर्म करना है। जब रस जल करके तेल ही रह जाए तो छान करके आप शीशी में भर लीजिए और रोज सफेद दागों पर लगाइए, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, ठीक है। थोड़े लंबे समय तक लगाते रहिए, इससे धीरे धीरे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। बथुए के कच्चे पत्ते पीस करके इसको निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके इसका रस निकालिए, फिर 2 कप रस में आप आधा कप तिल का तेल मिला दीजिए और मंद मंद आंच पर आप गर्म करिए। जब रस जल करके तेल खाली रह जाए तो छान करके आप कांच की बोतल में भर लीजिए और सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले सफेद दागों पर लगाइए। लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम रिज का और 100 ग्राम ही ककड़ी का रस मिलाकर पीजिए, इससे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। रिज का जानते हैं आप क्या होता है? रिज का होता है जो हम गायों को खाने के लिए देते हैं, जिसको हम चारा भी कहते हैं, ठीक है ना। रिज का थोड़ा सा मोटा मोटा होता है और चारा जिसको हम घास भी कहते हैं वो थोड़ा पतला होता है, तो रिज का इसी को मैं बता रही हूँ। रिज का 100 ग्राम और ककड़ी का रस 100 ग्राम, ठीक है, इन दोनों को मिला करके फिर आप सफेद दाग पर लगाइए, इससे दाग ठीक हो जाएंगे। और पीजिए भी, पीना भी है लगाना भी है, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें खाने पीने से ही बीमारियों पर असर करती है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और कभी कभी उन्हीं चीजों को खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है। तो लगाइए भी और पीजिए भी थोड़े लंबे समय तक, तो सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। जो शुरू शुरू में प्रारंभ होते हैं दाग होना, तो आप इस तरह के नुस्खों को आजमा करके बीमारियों को बीच में ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बहुत बढ़ जाता है उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सालों साल इलाज करना पड़ता है, लंबे समय तक नुस्खों को भी आजमाना पड़ता है और डॉक्टर को भी बताना पड़ता है। तो बस आप ध्यान रखिए, शुरुआत में जो भी बीमारियां होती है तो थोड़ा सा आप उस बीमारी पर ध्यान दीजिए और उसी समय से आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दीजिए। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। फिर से समय हो रहा है एक किस्सा सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। हमारी सखी सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी, क्या कहना है आप, जिसके कहते हैं ना कि सच्चाई जिसके जीवन में है उसके पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है।
3: जी उषा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, सच्चाई की बात आपने की, इतनी बढ़िया जो चंद पंक्तियां आपने सुनाई, सच्चाई महकता गुलाब है। गुलाब कहाँ होता है उषा जी? कांटों के बीच में। तो सच बोलना इतना सरल नहीं है दुनिया में, सच रहना भी सरल नहीं है। सत्य बोलने वालों को सदा कांटों की सेज ही मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें एक खिलता हुआ और महकता हुआ गुलाब बन के ही रहना चाहिए,
2: क्योंकि परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन कहते हैं परिस्थितियों को पार करते हुए अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाते, अपनी मन की स्थिति को बनाए रखते हैं मजबूत के
3: जी,
2: एकदम कहते हैं फौलाद की तरह, और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही इंसान है। बाकी परिस्थितियां तो इंसान के अंदर ही आती है
3: जी, लेकिन आज का जो माहौल देख रहे हैं उसमें सत्य परेशान हो रहा है। हालांकि सत्य की कभी हार नहीं होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी हारता नहीं है।
2: तभी तो कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
3: और सत्य का सूरज कभी छिपता भी नहीं है। झूठ के काले बादल थोड़े ही दिनों से ढक सकते हैं, फिर वो अपनी रोशनी लेकर के सूरज फिर भी आसमान में जगमगाता है और दुनिया उसको फिर से सलाम करती है। तो कहीं ना कहीं सत्य में वो जयते कहा गया है, तो सत्य की विजय निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
2: बिल्कुल सविता जी, तो चलिए हम सत्यता पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य बोलने में एक तो एक सत्य बोलेंगे तो 100 झूठ से बच जाएंगे, और एक अगर झूठ बोला तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ, तो कितना हमारा विकर्म बढ़ेगा, कितना पाप के खाते में हमारा पाप बढ़ता जाएगा
3: जी, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे से तीसरा बोलते हैं, फिर ये जो
2: बहानों पर बहाने
3: हाँ, बहाने पे बहाने और झूठ पर झूठ, ये संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो जो गलत चीजों की जो संख्या होती है, जो आपने पाप का खाता कहा है, तो ईश्वर के हम सब की जो एक फाइल है उसमें हम सब की काउंटिंग होती रहती, कितना हम अच्छा करते हैं कितना खराब करते हैं, तो वो जो संख्या होती गलत चीजों की वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो उससे हमारे पाप का खाता या विकर्म का खाता जो कहा गया अकाउंट बढ़ता ही जाता है, फिर समस्याएं हमारे सामने आती चली जाती हैं।
2: बिल्कुल सविता जी, फिर भी आपको पता होगा कि मतलब लोग फिर भी चापलूसी भी करते हैं, और जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी और मेरी ज्यादा बनती, ठीक है, फिर आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया
3: जी, बिल्कुल,
2: अब आपने मुझे बीच में बुलाया कि देखिए ना उषा जी मेरे साथ ये कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि आपके और उसके बीच क्या हुआ
3: जी,
2: फिर भी मैं आपका ही पक्ष लूंगी, नहीं नहीं सविता जी आप सही हो, और सामने वाले को मैं डांटूंगी, नहीं आप गलत हो
3: जी जी,
2: तो वो भी कहते हैं कि
3: पक्षपात हो गया,
2: वो भी सत्यता नहीं रही।
3: हाँ, क्योंकि हमने सिक्के के दोनों पहलू को नहीं देखा, ना आपने मुझे जाना ना उन्हें जाना
2: जी,
3: क्योंकि आप मेरे मित्र हैं
2: जी,
3: तो इसलिए आप मेरा ही पक्ष लेंगे, और ये भी एक गलत निर्णय होता है, और गलत कहते हैं कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं। और इस जगह पे हमें ऐसे करना चाहिए, अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसी बात आए आपस में झगड़े की, तो बेहतर हो कि हम उस पर ध्यान ना दे दूसरों के झगड़े पे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि हमारे सामने कोई बात आती, होता है कई बार व्यक्ति भाई सोचता है कि कोई हमारा सहयोग करे, सच भी सोचता है झूठ भी सोचता है, तो व्यक्ति उसी से सहयोग मांगेगा जो उसके करीब भी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कहीं भी कि हमें कोई पूछे कि आप बताइए क्या मैं गलत हूँ सही हूँ, तो उस जगह हमें सहेली नाता या जान पहचान ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक हंस की भांति, जो हंस होता है ना कंकड़ और मोती को देखे क्या कर देता, अलग कर देता है, और पानी और दूध को भी अलग कर देता है ना, क्षीर और नीर को कहा गया कि ये शक्ति जो होती परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति एक हंस में होती, इसीलिए देखिए देवी देवताओं को कहा गया हंसानन, हंस का आसन पर विराजमान रहते माता सरस्वती जो दिव्य
2: आसन गरुड़ आसन,
3: हाँ जी, जो दिव्य बुद्धि की दात्री हैं, बुद्धि में दिव्यता भरती है, ज्ञान भरती है, ज्ञान का प्रकाश भरती है, उनका आसन भी हंस होता है। इसीलिए हम मनुष्यों को भी जब भी कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आए, चाहे किसी और के लिए या हमारे लिए, हमेशा हमारी बुद्धि में दिव्यता होनी चाहिए, और हंस आसन पर विराजमान होकर अगर आप कोई भी निर्णय करेंगे उषा जी, तो मुझे लगता है वो सत्य ही होगा, गलत नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल आपने सही कहा है सविता जी। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में जो भीड़ लगती जा रही है, तो हम देखते हैं कि बस वो झूठ और सत्य के आधारित पर ही होता है ना ये सारा खेल, तभी जाकर के कहते देखते हैं कि वकीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सत्य का साथ लोग बहुत कम देते हैं, झूठ का, जिसने पैसे खिला दिए, अच्छे से पोस्ट पोजीशन पर है और वो पैसे खिला दिया, तो फिर उसके लिए 100 झूठ भी लोग बोल जाएंगे, जैसा भी देखा है सविता जी आंखों से कि
3: हो ही रहा है,
2: जी हो रहा है, तभी तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इतना।
3: और देखिए कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, हम भी जीत नहीं पाते हैं कई बार सत्य, हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, लेकिन कई बार हम सबके भी जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि किसी ने हमें मतलब दबा दिया है पैसे देकर, या किसी ने अपना कहीं सोर्स लगाकर, होता है, और इसीलिए आज आप देखेंगे अदालत में इतने

0: मुकदमे हो रहे हैं और कितने पेंडिंग पड़े हैं आज तक सुलझाए नहीं जा सके नहीं। मुझे लगता बरसों बरस बीत जाते, कई बार तो पैरवी करने वाले वकील भी शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते
1: हैं, भी खत्म हो जाते हैं, तो जिन्होंने केस किया
0: वो भी
1: इस दुनिया से चले जाते हैं,
0: पीढ़ी दर पीढ़ी वो कई बार चलते होता रहता है। तो ये सबसे क्या होता है कि खुद के अंदर जब क्षमता नहीं है सत्य को जानने की, परखने की, निर्णय करने की, तब हम अदालत के दरवाजे जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर कई केसेस तो इतने होते हैं कि बड़ी हंसी भी आती है, ऐसा लगता है इसके लिए हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, पास पड़ोसियों की होती है, परिवार की होती है, हम अदालत का भी समय नष्ट करते हैं, अपना भी नष्ट करते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में उषा जी, मुझे लगता है वो एक विधि थी पंचायत वाली
1: जी,
0: कि अदालत तक ना जाके घर की बात है या अपना गांव की बात है या मोहल्ले कबीले जो भी बात होती है उसमें वहीं सॉल्व कर दिया जाता, क्योंकि उस समय लोग जो निर्णय करते थे उनको बहुत अच्छा माना जाता,
1: लोग मिल करके निर्णय,
0: तो कई बार बहुत अच्छा फैसला आता था कि दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हो जाते थे और बहुत सही निर्णय होता था। लेकिन कई बार उसमें भी फिर धीरे धीरे बाद में जा करके समस्याएं उत्पन्न हो गई, उसमें भी वही बात आ गई, पक्षपात हो गया या फिर किसी के साथ लेन देन हो गई तो सत्य को छिपा दिया जाता, तब अदालतें बनाई गई, तब ये होने लगा भाई जज बैरिस्टर और वकील सब शुरुआत हो गई। लेकिन आज देखेंगे फिर भी हम जहाँ के तहाँ रह गए बल्कि और आगे ही बढ़ गए, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब के पीछे हमारी जो सोच है ना वो काम करती है, अगर हमारी सोच सही होगी तो ना हमें किसी अदालत की आवश्यकता है ना किसी पंच की आवश्यकता पड़ती है।
1: इसलिए सबसे पहले तो जरूरत है अपने सोच को बदलने की और सत्य को बोलने की। जब हम सत्य बोल सकेंगे तो अदालत तक नहीं, घर में ही मामला सुलझ जाएगा। और थोड़ी देर के लिए सत्य बोलने पर थोड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे लेकिन बाद में खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए सविता जी, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 90.4।

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार।

0: आरा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। सविता जी, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। तो कहते हैं कि सत्य बोलने में तकलीफ बहुत पड़ती है, तकलीफ को सहना भी पड़ता है, कष्टों को भी सहना पड़ता है, क्योंकि एक सत्य पर कितने ही प्रहार होते हैं, लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं, और उसके साथ क्या होता है वो तो आप जानते ही है।
1: कई बार सत्य को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। उषा जी, आपने देखा भी होगा, और कई बार हम कई घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा दुख भी होता है कि मतलब किसी को न्याय नहीं मिल पाता है, या किसी को आप देखिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। वो होता नहीं है वैसा, लेकिन कई बार लगता है, तो सुन के बड़ी तकलीफ होती है। फिर हम सोचते हैं अरे दुनिया में तो न्याय है ही नहीं,
0: है ही नहीं। जैसे खत्म हो चुका, जैसे हम देख रहे हैं ना दुनिया में किस तरह के जो रेप कांड हो रहे हैं, उसमें जो बच्ची होती है उनके दबा दिया जाता है, उनको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि माता पिता ही वो नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। इसलिए कह रही हूँ कि सत्य बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ईश्वर उसी के साथ होता है जो सत्य बोलता है।
1: और कई लोग ऐसे भी होते हैं उषा जी, कि जो दुनिया से डरते नहीं, दुनिया की परवाह करे बिगर सच का सामना करते हैं और सत्य बोलते हैं, भले उनकी बदनामी हो या कुछ भी हो, तो वो संसार में एक मिसाल कायम कर जाते हैं। महात्मा गांधी जी को ही देखिए, उन्होंने सदा सत्य बोला, सत्य और अहिंसा का पालन किया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके जीवन में सत्य था उषा जी, तभी उनका प्रभाव दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर पड़ता है,
0: तभी उनको महापुरुष के नाम से जाना गया, पदवी भी दी गई।
1: महानता का पहला लक्षण ही सत्य बोलना है
0: जी।
1: और आप देखिए अभी जो आपने जो कविता पढ़ी अभी जो हमारे सेकंड राउंड में, बहुत सुंदर कविता थी, उसमें एक लाइन थी कि क्षमा बनना है, रोशनी करना है, जैसे एक बात है सत्य जो एक रोशनी की भांति है, इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है और ईश्वर रोशनी है, गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ, दोनों का समन्वय है आपस में। तो सत्य और रोशनी, जो सत्य की जो रोशनी है वो ईश्वर है, और ईश्वर से जब हमारी आत्मा भी कनेक्ट होती है, तो आप देखिए हमारे अंदर भी वही सत्य का प्रकाश आता है और हमारी आत्मा भी एक रोशन होती है।
0: और सविता जी, हम देखते हैं कि जैसे कि घर परिवार में कोई बातें करते हैं तो भी क्या कहते हैं, देखो वो एकदम सही बोलती है, सत्य बोलती है, इसलिए अपने सुख दुख की बातें उनके सामने जाकर शेयर करते हैं, है ना। और जिनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो उनके पास जाकर के कोई अपने दिल की बात नहीं
1: कभी
0: करता,
1: नहीं कहता। सत्य में शक्ति होती है कि हर एक व्यक्ति को आपके सामने वो सरेंडर करवा देता है। भले शुरू में ऐसा लगता है कि लोग हमारा विरोध करें, लेकिन आप देखिए जो विरोधी भी होते हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे,
0: और बाद में वो ही सहयोगी बनते हैं,
1: हां सहयोगी बन जाते हैं कई बार, नहीं तो डरते हैं। और अदालत में भी आप देखिए, अगर वकील समझदार है तो मेरा ये मानना है और विश्वास है 100% संसार की कोई भी समस्या हो, कोई भी केस हो, वकील चाहे तो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उसे सत्य निकलवा लेगा, वो कितना भी झूठ क्यों ना बोले सामने वाला, लेकिन अगर वकील समझदार है और सत्य है वकील, तो वो कोई भी केस हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सत्य को निकाल लेंगे, क्योंकि बातों की अगर कला है हमारे अंदर और सत्य को खंगालने की समझ है और परखने की शक्ति है, तो आप एक हंस की भांति छीर और नीर को अलग कर लेंगे, और झूठ भी पता चल जाएगा और सत्य भी पता चल जाएगा। और मुझे लगता है तब शायद जो लोगों का कहना है कि अदालत में न्याय नहीं होता, वो होने लगेगा
0: जी।
1: कई लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना उषा जी, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं या तो उनके कपड़े होते हैं काले रंग के, तो उनको लोग बोलते हैं कि अदालत में सब कुछ काला ही काला,
0: काला
1: है,
0: ही काला
1: और
0: है।
1: कानून की आंख पे पट्टी बंधी, उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बनाया गया है काला ड्रेस बनाया गया है या कानून की आंखों पे, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई, उसका रहस्य उषा जी है। वास्तव में पट्टी इसलिए बांधी गई है, और एक चीज तो लोग देखते ही नहीं, काली पट्टी तो देख लेते हैं कि कानून की आंख में पट्टी बांधी गई, काला ड्रेस है, लेकिन आपने उसके हाथ में पकड़ा हुआ तराजू नहीं देखा। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होते हैं, और पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े पद वाला हो, मान शान वाला हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म या हमारा पारिवारिक व्यक्ति ही क्यों ना, संबंधी क्यों ना, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन चीजों को ना देख के, नजरअंदाज करके हमारे लिए दोनों पलड़े समान हैं। और काला ड्रेस इसलिए दिखाया गया, देखिए जो जजेस बैठते हैं उनकी भी जो गाउन होते हैं वो भी काले कलर की होती है।

0: और आप देखिए वकीलों के भी कपड़े काले दिखाए गए, कोट पहनते, कि काले कलर में यदि आप कोई भी रंग डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा, होगा क्या?
1: नहीं होगा,
0: नहीं होगा। इसीलिए उसमें बताया गया कि अगर हम अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं, जज बनकर बैठे हैं या कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी रंग नहीं लगेगा, ना हमारे संबंधों का रंग लगेगा, ना पैसे का रंग लगेगा, ना बुराई का रंग लगेगा,
1: ना स्वार्थ का,
0: ना स्वार्थ का लगेगा, ना चापलूसी और ना जान पहचान का रंग लगेगा, और ना कपट करने, क्योंकि वहां पे कपट भी होता है। कहा गया है कि कपट करके केस जीत रहे लोग आजकल, तो शकुनी ने भी कपट करके मतलब पांडवों से उनका राज्य हरण कर लिया था। तो जो कपट की जगह बताई गई हो, अदालत कहा जाता है कि हो रहा है, हालांकि मैं इस चीज पर इतना विश्वास नहीं करती हूँ कि सत्य वहां भी है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें सत्य की विजय नहीं हो पाती, तो लोगों की जो धारणाएं हैं वो गलत हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है और सत्यता का पावर है, तो जो हमारा केस लड़ने वाले वकील है उनको हम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हंस की भांति छीर और नीर जैसे अलग हो जाता है, अलग कर देते हैं वो कंकड़ और पत्थर को, उस बुद्धि को आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अदालत की जो गरिमा है वो और अच्छी
1: बनी रहेगी,
0: उसमें बनी रहेगी और चार चांद लग जाएंगे, और जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो भी फटाफट निपटेंगे। और मैं तो कहती हूँ घर ही एक अदालत है, अगर हम घर की बात घर में ही, या जो हमारे आस पड़ोस की भी समस्याएं हैं या हमारे समाज की, उनको वहीं समाप्त कर लें, तो
1: आपस में मिल बैठ करके उन समस्याओं का समाधान वहीं कर लिया जाए, आगे न बढ़ाया जाए तो अच्छा है, बाकी तो जिंदगी
0: असत्य की विजय हो जाएगी, 100% हो जाएगी,
1: बाकी कोर्ट कचहरी में जिंदगी बीत जाती है। हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी
0: समय नष्ट होता है, पैसा भी जाता है,
1: समय स्वास्थ्य संकल्प पैसा सब व्यर्थ होता है, और फिर भी कहते हैं कि परिणाम घास का तीन पान की तरह ही होता है।
0: जी, तो हमारे जो दिमाग है उसको ही एक अदालत समझ के हम सदा सत्य की कुर्सी पर जज बन के विराजमान रहे और निर्णय करते रहे, तो बहुत सरल है हर काम करना।
1: बिल्कुल सविता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें की है आपने कि सत्यता पर अड़िग रहना ही मानवता का धर्म है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है और सदैव हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो रहा है फिर से एक गीत सुनाने का, तो सविता जी सुना देते हैं गीत।
0: बिल्कुल,
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन

जी, तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और ये गीत जो मैंने अभी दो पंक्तियां सुनाई है, तो आप समझ रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो जाता है, बीच बीच में गीत सुनाती रहती है। इसलिए मैंने आप सभी को याद दिलाया, जो हमारी माताएं बहनें व्रत उपवास रखती है उनके लिए, इसलिए गीत की लाइन बोली थे, तो क्यों ना आपको फराली सिखाया जाए। तो चलिए, कितनी बहनें हमारी असमंजस में होगी कि क्या फराल बनाए क्या नहीं बनाए, तो प्यारी बहनों बिल्कुल आप टेंशन मत रखिए, मैं बहुत ही सरल सिंपल फराल सिखा रही हूँ, तो आप चाहे फटाफट बना करके खा सकते हैं, परिवार वालों को खिला सकते हैं। तो आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। ठीक है, पकौड़े तो वैसे ही फटाफट बन जाते हैं, 5-10 मिनट में पकौड़े बना करके आराम से आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो पेन और डायरी आप ले लीजिए, और सामग्री मैं आपको लिखवा रही हूँ। सामग्री इस प्रकार है, सिंगाड़े का आटा लीजिएगा 1 कटोरी। ठीक है, अगर सिंगाड़े का आटा मौजूद नहीं है घर में तो फिर आप राजग्रह का भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लीजिए सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी। फिर आप लीजिए मीडियम साइज के आलू 2 ले लीजिए, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। फिर हरी मिर्च लीजिए बारीक कटी हुई 1। बस सामग्री इतनी सी ही है जो आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। तो पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा, सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी, आलू लीजिए मध्यम आकार के 2, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी स्वाद के अनुसार। फिर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च लीजिएगा 1। तो ये सिंगाड़े के आटे के पकौड़े की सामग्री हो गई है। अब पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ विधि सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सिंगाड़े के आटे में पानी मिला करके पकौड़ा बनाने का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़े से आप अधकटा इसको कूटी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक भी नहीं काली मिर्च को, और मोटी पूरी साबुत भी नहीं रखनी है, अध कचरी कूट करके डालिए। सेंधा नमक, हरी मिर्च ये सब डाल दीजिए। आलू को छील करके काट लीजिए और इसके गोल गोल स्लाइस कर लीजिए, और जो हमने खीरा तैयार किया है ना पकोड़े का, उसमें आप आलू के गोल स्लाइस को डुबाइए और उसके सब तरफ उस आटे के घोल को लगा दीजिए और तेल में छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो जाए फिर आप आंच मध्यम आकर मध्यम पर कर दीजिए, और मध्यम गैस पर आप इस तरह पकोड़े सारे तल लीजिए। मध्यम आंच पर जो हम चीज़ों को सेकते हैं वो अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से भी पक जाती है और बाहर से भी पक जाती है, तो भाई कच्ची खाएंगे तो पेट दर्द करेगा ना, इसलिए मध्यम आँच पर ही आप चीज़ बनाइए। पहले आप फास्ट रखिए गैस को ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आप मध्यम कर दीजिए ताकि इस तरह चीजें अंदर से भी पक जाए। तो ये सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। पुनः दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। सिंगोड़े के आटे में पानी मिला करके पकोड़े का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें अध कचरी कूटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल दीजिए, और आलू की धुलाई करके इसके छिलके उतार करके गोल गोल इसकी स्लाइस कर लीजिए, अलग रखिए इसको। फिर पकोड़े के घोल में स्लाइस को जब आप पकोड़े तलने जा रहे हैं उस समय स्लाइस को आप घोल में डुबाइए, जब घोल चारों तरफ लग जाए बस आप तेल में छोड़ते जाइए, हल्के ब्राउन कलर के चारों तरफ से हो जाए पकोड़े, उसके बाद आप पकोड़ों को निकालते जाइए। तो इस तरह सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार किए जाते हैं। भाई तैयार हो गए हैं, अब इसके साथ आप चाहे तो टमाटर सॉस भी आप ले सकते हैं, या फिर हरी मिर्च की चटनी, या दही ले लीजिए, दही में हल्का सा शक्कर डाल दीजिए और दही के साथ इन पकौड़ों को आप खा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए एक स्वच्छ प्लेट, प्लेट में आप पकौड़े रखिए, दही ताजा हो तो रख दीजिए एक कटोरी में, और कटोरी रखिए प्लेट में, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा को, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा सिंगोड़े के आटे के पकौड़े का, और साथ ही साथ एक गीत तो बनता ही है, तो सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ आती है, थोड़ी सी शारीरिक व्याधि बढ़ती है और गए मेडिकल स्टोर पर दवा लेकर के आए और खा ली, बस एंटीबायोटिक लेकर के आते हैं और खा लेते हैं डॉक्टर के बिना परामर्श के। तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के बिना परामर्श के अगर हम गोलियां लाते हैं तो ये नुकसानदेह होती है। कैसे होती है वो भी आपको बता रही हूँ कि कितने ही शोधों में साबित हो चुका है ये बातें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नुकसान देता है कितनी ही बीमारियों में। ठीक है, जैसे कि सर्दी हो रही है, सर्दी में हम दवा लेकर के आए, ठीक है, सर्दी जुकाम है जबकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती गोली की, फिर भी हम सर्दी जुकाम की बीमारी में गोलियां लेकर के आए, खा ली, खत्म। लेकिन दूसरे जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन जो आवश्यक तत्व हमारे अंदर होते हैं वो भी कितनी बार साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी आवे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेवे। कितनी बार देखिए एंटीबायोटिक से संक्रमण भी फैलते हैं, जैसे कि संक्रमण फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है ना, उनको मारने की संख्या को कम करना या फिर उनसे बढ़ने को, जैसे संक्रमण फैलते हैं उनको बढ़ाने से रोकना। लेकिन जब बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो कोई भी बीमारी आएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही एंटीबायोटिक का असर भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना, गए मेडिकल पर लेकर के आए, खा ली और बात खत्म। तो फिर एंटीबायोटिक गोलियों का असर भी कम हो जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से ये ऐसे अच्छे बैक्टीरियों को भी मारने लगता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ऐसी गलती मत करिएगा। भले हमें सर्दी जुकाम या सिर दर्द ये सब नॉर्मल दिखते हैं कि इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास जावे, क्यों खर्चा करे, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कितना होता है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जाइए डॉक्टर से परामर्श करिए। कितनी बार लोगों को लगता है कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक तो समय हमारा जाएगा, दूसरा फिर मोटी फीस भरनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा समय लगता है अगर भीड़ है तो प्राइवेट में भी कितनी बार भीड़ रहती है ना, फिर भी हम प्राइवेट में इंतज़ार करते हैं, 200 रुपये 300 रुपये की फीस भी भरते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए बिल्कुल नहीं जाते। भाई 200 300 तो वेस्ट खोना है, चलो मेडिकल से डायरेक्ट गोली ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, उसके अनुसार फिर आप दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सोच समझ कर दवाइयाँ देते हैं, वो फिर आपके दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने से रोकेंगे, नहीं तो जो काम के आवश्यक तत्व है वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि देखो उस दवा ने असर किया और हमारा सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि दूसरी कौन सी बीमारी या दूसरा कौन सा तत्व हमारे अंदर ख़त्म हो गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर दूसरी बीमारी हो गई, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि एकदम तो ऐसा होता नहीं है, वो दवा जब असर करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे असर करता है, और धीरे धीरे असर करता है तो फिर बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि फिर से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि फिर से ये प्रॉब्लम कैसे हुई। हम तो यही समझते हैं कि चलो पहले सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, चलिए फिर से चलते हैं मेडिकल पर और दूसरी गोली इसकी भी ले आते हैं, और फिर जा करके ले आते हैं। तो इस तरह बड़ा रोग, कितनी बार बड़े बड़े रोग भी हमारे को हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पुनः आप सभी को कह रही हूँ कि कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी जो बिल्कुल सामान्य दिखती हो, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से काम करिए। बाकी इसके साइड इफेक्ट और फिर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो ध्यान देंगे, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर से समय हो रहा है किस सुनाने का, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: चौको साधुर बसेरे मिले या गाड़ी आई, कबीरे कमाई क्या करे बड़े हरी ना पूरे आस, ओंदो देवे हाथ कोरे टूटे हाथ पसास।
1: अरे भाई।

0: की जय हो। भगत विसल भगवान की जय हो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, आज के कार्यक्रम काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे दिए हैं, ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की सविता जी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी हुई है, तो सत्यता पर हमेशा अड़िग रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आवे। और नए नए व्यंजन में जो आपको अभी पकोड़े सिखाए हैं, आप जरूर बना करके खाइएगा, सिंगोड़े के आटे का पकोड़ा। हमारी माताएं बहनें तो व्रत उपवास रखती ही है, तो इस तरह के फराल भी आप बना सकते हैं। और सामान्य जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छी दी है कि एंटीबायोटिक से बच के रहना है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी है, ठीक है। आज के अनमोल वचन भी इस प्रकार है, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाशी पूरी हो जाए। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सोने का देश बना दे। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, विरह गीत गाने वालों को मिलन गीत गा लेने दो, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, जगा देर से माझी भी अपनी गागर लाया है, ऐसे प्यासे माझी को ज्ञानामृत का पान करा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, अड़िग रहे तरु टूट मध्य से गिर जाया करते हैं, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, सच मानो तो अंधकार के सब बादल फट जाएंगे, जन जन को आओ फिर से पावनता का पाठ पढ़ा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, जो आगे बढ़ मुड़कर देखे वो क्या कर सकते हैं, जिसका चलना काम रहा हो, जिसका चलना काम रहा हो वो क्या कभी थका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, ऐसे उन्मादी में फिर से सोया पुरुषार्थ जगा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, आओ हम समझा दे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता, लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
2: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही, कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही, माँ कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ प्लीज।
3: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी, सारी बात होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी। और थारी दो छोटी बहन भी है, वाको भी सोचनो है मारे।
4: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ। बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चलावा ही नहीं देऊं तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे बताओ।
1: बेटा बीनणी तो घणी अच्छी है ये, पर गुंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनणी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले मारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घना दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी के मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपाऊ, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अतरा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वणी सामान पे बहू रो कोई अधिकार को नहीं वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन, है ना।

0: माँ सीता शक्कर आवे रही है नवा घबराए रही है तो मैं वही हॉस्पिटल लेन जाओगे।
1: चुप बे चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता भणवा वाला हो।
0: भाभी ते सही होबरावियो।
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हा, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीननी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीननी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगिनी के बगैर छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बिनणी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बिनणी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपने भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बिनणी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय घणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, ढीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दरपा मत राधा।
2: दरपावा की बात को नहीं का किसा, आजकल लेड़ो हुए रहे है। मैं आई बिनणी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रहे है बिनणी के साथ में आपे भी ले जाऊ दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बिनणी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है मां के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है, प्रॉपर से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहे ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला

0: होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: बीनड़ी, आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है। डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है। जो भी सलाह देवे वणी अनुसार थारे चालन है। एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरो ध्यान राख जे।
2: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है। और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
3: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए, तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं, तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं, तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजीशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
2: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूं। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलते समय के

अर्थात हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

0: रुक रुक रुक। कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: और ओम शांति सभी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल और मधुबन रेडियो, जो कि अवेलेबल है 107.8 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हमारे आबू रोड और सिरोही के श्रोताओं के लिए। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप जुड़ सकते हैं मधुबन रेडियो के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हम जैसी बात कर रहे थे, बात चल रही थी दिव्यांगता की, और जिसे कहते हैं हमारा फेवरेट शो मन की आंखों से, हमारे मन की बात, हमारी जीवन की बात, दिव्यांगता की बात, पुनर्वास की बात, और इसके साथ साथ जीवन को कैसे हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो सामान्य लोग अपने जीवन में करते हैं। तो इसको करने के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ कोई ना कोई पुनर्वास को लेकर एक्सपर्ट हो या हमारे बीच में उस विषय के जानकार हो। तो हम हर बार किसी न किसी नए व्यक्ति को या फिर किसी जानकार व्यक्ति को, उस विषय विशेषज्ञ को आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज दोबारा से, क्योंकि बात बहुत लंबी है, गहराई की बात है, गंभीर विषय है, तो उस पर बात भी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर नीरज मधुकर, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के CRC सेंटर जयपुर से। डॉक्टर नीरज मधुकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: नीरज जी, हमने पिछली बातचीत में, जो हमारा पिछला एपिसोड रहा, उसमें हमने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सारे विषयों को सतही रूप से छुआ, और हमने उसमें बात करी पेरेंटिंग को लेकर, CRC पर उपलब्ध सेवाओं को लेकर, वयोश्री योजना को लेकर, और दिव्यांग व्यक्ति को दी जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के बारे में हमने बातचीत करी। लेकिन बातचीत का अब ये जो सिलसिला है, जिसमें हम अगले कुछ समय तक या कुछ एपिसोड तक हम विशिष्ट विषयों पर कुछ विशिष्ट तरीके से गंभीर बातचीत गहराई के साथ करेंगे, और ये एक सामान्य बातचीत नहीं होगी, ये कोई आपका ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, ये गंभीर विषय है। तो हमारे श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर अपने कान मजबूती के साथ लगा लें और बात को समझे। और चूंकि बात कान की हो गई है, डेफिनेटली बात आज विषय है डेफ लोगों के बारे में, और डेफ लोगों को संप्रेषण में आने वाली चुनौतियां, उनके भाषा विकास को आने वाली चुनौतियां और संप्रेषण में आने वाली चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको लेकर हमारे बीच में नीरज जी हैं। तो नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेफ व्यक्ति है, जिसका चाहे वो जन्मजात हो या उसने जीवन के किसी अन्य मोड़ पर डेफ मतलब सुनने संबंधी दिव्यांगता जो है वो हासिल कर ली हो, तो उसके लिए कैसे वो अपने जीवन में वापस आ सकता है, पुनर्वास किया जा सकता है, उसकी चुनौतियां क्या है, पहले चुनौतियों बताएं आप, उसके बाद फिर हम आगे बात कर पाएंगे। जी नीरज जी, स्वागत है।
1: जी शरद जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कृष्णा बेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम है रेडियो मधुबन का, इसमें हमें आमंत्रित करने के लिए और इतना बड़ा मंच देने के लिए, ताकि मैं आम जनमानस के साथ जुड़ सकूं, सामान्य मानविकी के साथ जुड़ सकूं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और CRC की स्थापना ही समाज को संबल देने के लिए किया गया है, विशेष तौर पे दिव्यांगजनों और विशिष्ट जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं हमारे समाज के, उनके लिए। लेकिन आज का जो विषय है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि हम बेजुबान लोगों, जिनको बेजुबान बोलते हैं, श्रवण बाधित बोलते हैं, उनके पास अपनी स्पीच नहीं है, और इसकी वजह से कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि वो समाज में अपनी बातों को पूरी तरह रख नहीं पाते। शुरुआती दौर जब देखेंगे तो जब 0 to 6 month की जो कंडीशन होती है, उसमें बच्चा शुरुआती दौर में भाषा का अलग अलग रूप जो है वो उसको अख्तियार करता है, सामान्य संप्रेषण के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए। और मैं इसमें एक चीज और जोर देना चाहूंगा कि खास करके माँ जो है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, आप देखिए दो चीजें आती है, एक तो आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और दूसरा आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो जब हम भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा से पहले, भाषा पूर्व की जो संकल्पना है, हमको उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करनी हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास भाषा नहीं होती, तो वो तो जैसे आप मन की आंखों से देख पाते हैं, वो वैसे टच से, स्मेल से, ऑल्फैक्टरी सेंस, गैस्ट्रेटरी सेंस और बाकी जो हमारे काइनेस्थेटिक सेंस है, प्रोप्रायसेप्टिव सेंस है, ये जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो चाहे संतुलन इंद्रिय की बात करें या सूंघने की क्षमता की बात करें, या आपको एक जानकारी मैं दूं, आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चा होता है छोटा, वो अपनी माँ को शुरुआती दौर में गंध से पहचानता है। जब जन्म लेता है तो वो उसके देखने की क्षमता भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, थोड़ा विजन उसका शुरुआती दौर में हफ्ते 10 दिन तक उसका ब्लर होता है, और उसकी वजह से वो गंध से और टच से माँ को पहचानता है। और यही कारण है कि जब बच्चा रोता है, रोना उसका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। किसी भी चीज की जरूरत उसको पड़ती है तो वो रोता है, रोने के अलावा उसको दूसरी कोई भाषा आती नहीं। लेकिन मैं इस चीज में सल्यूट करना चाहूंगा उन करोड़ों माताओं को जो उस रोने के पैटर्न से पता कर लेते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। पिता को नहीं पता चल पाता, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा समय देती है। इसलिए माँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी धरती पे अगर कोई दूसरा देवता है तो वो माँ है। इसलिए उनका, उनसे बड़ा कोई नहीं, उसने जन्म दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में जब बच्चा रोता है, कभी आप उस चीज को थोड़ा महसूस कीजिए कि कभी तो बच्चे का डायपर गीला हो गया, उसके लिए रोता है। कभी तो उसको डर लग गया है, घबरा गया है किसी चीज से, उसकी वजह से रोता है। कभी उसको भूख लगी है, इसकी वजह से रोता है। कभी उसको बाहर से गांव में घूमने के लिए जाना है, घर से बाहर निकलना है, इसके लिए रोता है। या कभी उसको अलग अलग तरह की जरूरतें हैं, माँ के साथ समय गुजारना चाहता है, इसलिए रोता है। सो रोना को एक प्राइमरी नीड, प्राइमरी कम्युनिकेशन के तौर पे लिया जा सकता है कि बच्चे को कुछ भी आवश्यकता होगी तो वो रोएगा। और रोने के पैटर्न से माँ को पता चल जाता है कि वो किस चीज के लिए रो रहा है। वो उसके पापा के साथ बाहर घूमने जाने का टाइम हो गया, या उसको डायपर चेंज करना है, या ऐसी जो भी जरूरतें हैं। So, पहली चीज तो ये हुआ कि जो भाषिक संप्रेषण होता है, जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, उससे पहले भी संप्रेषण होता है, उससे पहले भी वो अपनी चीजों की अभिव्यक्ति कर पाता है लोगों के सामने, और लोगों को समझ भी पाता है। जैसे ही माँ उसके पास आती है, उसको आलिंगन करती है, गोद में लेकर के पुचकारती है, तो उसके बाद जैसे ही टच मिलता है, स्मेल मिलता है, उसको समझ में आ जाता है मेरी माँ। उसके बाद वो धीरे धीरे चीजों को और पहचानना शुरू होता है। आप देखिए, बच्चा जब एक आध साल के आसपास का रहता है या उससे थोड़ा छोटा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोगों को पहचानने के लिए उनके चेहरे से नहीं पहचानता, उनके कपड़े से नहीं पहचानता, पर उनको मतलब उसकी पहचान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे, जितना लोग शर्ट पैंट पहनने वाला है, धोती कुर्ता पहनने वाला है, ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन है। पायजामा शर्ट पहनने वाले हैं, उसको मुछे हैं उसकी, तो एक उसके दिमाग में जो एक संकल्पना बनती है कि अच्छा, मेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा, फीमेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा। सो अपनी मम्मा से और अपने पापा से, वो दोनों के कपड़ों, पोशाक, रहन सहन, उन सब चीजों को देख करके ऑब्जर्व करता है, और जितने मेल मेंबर होते हैं सबको पापा बोलना शुरू करता है। एक 8 महीने 10 महीने का बच्चा जो है सबको पापा बोलता है, महिलाएं अगर है तो सबको मामा बोलता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट है वो अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, और उसकी वजह से कंसेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद वो धीरे धीरे फिर कंसेप्ट अलग अलग जो भी होंगे, उसके विजुअल कंसेप्ट है, या काइनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है, लैंग्वेज का कंसेप्ट है, सेंसिटाइजेशन उसकी जो हो रही है, सो सेंसरी नीड्स है, ये सब अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है। और हर एक कॉन्सेप्ट के डेवलप होने के लिए एक पर्टिकुलर विंडो है, वो विंडो पर्टिकुलर एक एज के बाद खुलता है। हम 6 महीने के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको तैरना आएगा पानी में, लेकिन वो तैरने की आप सिखाना जब शुरू करेंगे तो ये हो सकता है कि आपका ज्यादा रिग्रस एक्सरसाइज कराए तो 6 महीना पहले आ जाएगा, 2 महीना पहले आ जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहुत छोटा सा बच्चा एकदम बड़े बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू करे। समाज में उसको बातचीत करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है जो डेफ पर्सन होते हैं। मैं यहाँ पे 2 भाग में बांटना चाहूंगा। डेफ पर्सन जितने भी हैं उनके लिए, एक तो होते हैं जो कंप्लीटली डेफ है, माने लीगल भाषा में अगर बात करूं तो एक होते हैं डेफ और दूसरे होते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। टर्मिनोलॉजी की भाषा अगर बात करूं तो 60 डेसिबल्स का अगर लॉस है और 70 डेसिबल तक का सुनने की आवाज, सुनने की जो क्षमता उनकी आती है प्योरटोन एवरेज निकालने पे, तो ऐसी परिस्थिति में, या सामान्य बात करूं तो जो सामान्य बातचीत की आवृत्तियों को सुन पाता है उसको तो बोलेंगे नॉर्मल। सामान्य आवृत्ति से थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि कोई अगर बुजुर्ग लोग घर में है तो थोड़ा तेज लाउड साउंड में इनसे बात कीजिए तो सुन पाते हैं, अदरवाइज नहीं सुन पाते। तो ऐसी परिस्थिति में उसको डेफ के कहने के बजाय हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, ऊंचा सुनने वाले। और तीसरी जो कंडीशन है, 70 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज उनको सुनाई पड़ रही है, माने लाउड साउंड देने पे भी नहीं सुनाई पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको डेफ की श्रेणी में रखें। तो ये तीन श्रेणी हुए, नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी, दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग और तीसरा डेफ। और क्राइटेरिया जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें तो 60 से 70 डेसिबल तक के हार्ड ऑफ हियरिंग का केस, और 70 डेसिबल से ज्यादा अगर होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में वो डेफनेस की कंडीशन में उनको रख सकते हैं। फिर उसका भी और क्लासिफिकेशन है, बहुत वो ज्यादा डीप में आज नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सामान्य जनमानस के लिए है, तो टेक्निकल भाषा से बचना चाहूंगा। ये है
0: जी सर। जी जी बिल्कुल, आपने ना केवल डेफ व्यक्तियों के और उनके चिन्हीकरण कैसे किया जा सकता है, उनकी समस्याओं के को के आधार पे, उनकी समस्याओं की चुनौती या उसकी उसकी सुनने की क्षमता के आधार पे आपने उसकी परिभाषा तय करी। निश्चित रूप से आपने जो बात शुरू की है, हमने चूंकि ये बात की कि हम उन लोगों की बात करेंगे जो श्रवण बाधित हैं, तो उनका पुनर्वास भी आवश्यक है और पुनर्वास को लेकर भी हमें बात करनी है। नीरज जी, इसके पुनर्वास को लेकर एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है और हम एक डेफ व्यक्ति को जन्म से अर्ली इंटरवेंशन करके कैसे सामान्य मुख्य धारा में ला सकते हैं? जी नीरज जी,
1: मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये जो डेफ पर्सन है, शुरुआती दौर में सर अपने समाज में इतना अवेयरनेस नहीं था। जब बहुत पहले की बात करें, 19th सेंचुरी की बात अगर करते हैं, तो उस समय में डेफ पर्सन को और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को, दोनों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही थी, एक साथ एक समझा जाता था, कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं हैं कि डेफ पर्सन शादी नहीं कर सकता, डेफ पर्सन सोसाइटी के साथ एसिमिलेट नहीं हो सकता, डेफ पर्सन पढ़ करके क्या कलेक्टर बन जाएगा। ये जो चीजें लोगों के मन में विचार आता है, ब्लाइंड पर्सन के लिए भी आता है, डेफ के लिए भी आता है, और उनको समाज से आइसोलेट कर। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा सरद सर, कि सबसे पहली चीज है फैमिली का एक्सेप्टेंस। और मैं चर्चा कर रहा था कि बच्चे का जब जन्म होने के लिए होता है तो परिवार में कितनी खुशियां होती है, लोग कितना उम्मीद से एक एक एक दिन गुजारता है। जो तीन अलग अलग ट्राइमेस्टर्स हैं, पहला ट्राइमेस्टर्स, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, 9 महीने का जो टाइम है, और हर आदमी प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। और उसके बाद जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद जब शुरुआती दौर में कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे का जन्म जो हुआ वो प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो गई, जन्म लेने में ज्यादा समय लगा, या बच्चे के गले में कोई ऐसा एम्बिकल कॉर्ड फंस गया, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बच्चे का कोई एस्फिक्सिया की कंडीशन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। माता को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से दिक्कत हुई, वैक्सीनेशन, माँ जो है उसको अलग अलग तरह का कोई हेपेटाइटिस का टीका नहीं लग पाया टाइम पे, या बीपी का प्रॉब्लम है उसका, शुगर का प्रॉब्लम है उसका, इन सब चीजों की वजह से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और इस कंडीशन में जब बच्चे का जन्म हो गया, अब डॉक्टर ने देख करके उनको बताया, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बात है कि डेफ बच्चे की पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि ये बच्चे में नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी होगी या डेफ होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि स्क्रीनिंग का ऐसी कोई व्यवस्था अभी हमारे सारे पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे नहीं है, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि साउथ में इस पर ज्यादा थोड़ा फोकस है। सो एक टेस्ट किया जाता है जन्म के टाइम में, जिसको बोलते हैं अफगार स्कोर निकाल। अफगार स्कोर में बहुत सारी चीजों के बारे में देखा जाता है, जैसे उसका अपीयरेंस क्या है, या उसका जो पल्स रेट है वो कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, इन सब, हार्ट बीट कैसा है, इन सब चीजों के आधार पे पता किया जाता है कि बच्चे में डिफॉर्मिटी आगे आएगी कि नहीं, या डेवलपमेंटल इश्यूज आएगा कि नहीं। एक छोटा सा टेस्ट और है जिससे पता किया जा सकता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि अफगार स्कोर में गड़बड़ हो रहा है, स्कोर बराबर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एक टेस्ट होता है, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्ट, और वो सीआरसी में उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से हम लोग शुरुआती दौर में ही बच्चा का हियरिंग सेंसिटिविटी पास है कि फेल है ये पता चल जाता है, ताकि उसकी अगर कोई ऐसा कोई इशू आने वाला हो तो फिर स्पेशल उसके लिए इंटरवेंशन प्रोसेस शुरू कर सके। घर में अगर बच्चा 2 महीना, 3 महीना का हो गया, 4 महीने का हो गया, उसके बाद 4 से 6 महीने होते होते बच्चा बाबा बाबा दादा दादा करना शुरू करता है। अब वहां पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि क्या उनका बच्चा 6 महीने का हो जाने के बाद, 7 महीने का हो जाने के बाद शुरू किया बाबा बाबा, बैबलिंग स्टेज उसको टेक्निकली बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस आवाज निकलता रहता है बाबा बाबा बा दा दा दा इस तरीके का। तो अगर ये स्टेज नहीं आया तो बच्चे के पेरेंट्स के कान खड़क जाने चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू है, बच्चा 4 महीने के बजाय 6 महीने में ऐसा कर सकता है, 8 महीने में कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब सिग्निफिकेंट डिले है, तो फिर तुरंत हमको ऑडियोलॉजिस्ट के पास या जो ENT डॉक्टर्स हैं उनके पास मिलना चाहिए, या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो नजदीक का हो, CRC हो, DDRC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या RBS के स्कीम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहां जाकर उसकी टेस्टिंग कर सकते। सो ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से बच्चे को शुरुआती दौर में सहायता मिल सकती है और उसका स्क्रीनिंग संभव हो सकता है। ये भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं ये निःशुल्क है BPL कैटेगरी के लिए, छोटे जो बच्चे हैं BPL कैटेगरी में उनके लिए, अदरवाइज कहीं कहीं 10-20-50 रुपए का एक नॉर्मल चार्ज होता है। जिस टेस्ट को आप बाहर कराने के लिए जाते हैं 2000 रुपए चार्ज लगता है, वो उस टेस्ट के लिए CRC में, DDRC में या नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी आपके पास है वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ये सारे टेस्टिंग अवेलेबल। एक तो ये बात हुई, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में आगे लेकर के चलो शरद से, चूंकि टाइम हमारा काफी कुछ हो चुका है और समय पे खत्म भी इसको करना है। तो बहुत बहुत ब्रीफ में और आम आदमी की भाषा में कोशिश करूंगा कि इसको मैं समझाऊं। सो इसमें अगर हम देखेंगे दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन मानव एक ऐसा प्रजाति है जिसको ईश्वर ने एक खुशनसीबी दी है कि वो संप्रेषण कर सकता है, सामान्य मानविकी के बीच में संप्रेषण कर सकता है, अपनी जरूरतों को बता सकता है, और उसकी भाषा एक निश्चित है। संप्रेषण तो सभी कर लेते हैं, आप देखेंगे कि तो जानवर भी जो है वो आपस में बात तो करते हैं, जैसे शाम के टाइम होते होते सियार जो है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, किसी चीज को हो जाने पे कुत्ता अगर भौं भौं करता है तो आसपास के सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब संप्रेषण तो हुआ, लेकिन लिंग्विस्टिक संप्रेषण नहीं हुआ। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा ये जो लिटरेसी स्किल की बात करते हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, अरिथमेटिक स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इसकी बात जब करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो एक तो होता है मानव संप्रेषण और एक होता है एनिमल संप्रेषण, जिसको जंतु संप्रेषण बोल सकते हैं, कि व्यक्ति व्यक्ति से जब बात करता है तो वो हो सकता है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो सकता है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो। मैंने छोटा बच्चा जब भाषा का विकास नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश या जो भी उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें अगर उसका विकास नहीं होता, तब भी वो अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने आसपास के लोगों से बात तो कर पाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा रोता है, लेकिन रोने के स्टेज से जब आगे बच्चा बढ़ जाता है और उसको जरूरत पड़ती है, भूख लगी, तो वो जाकर के सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, कोई सिंबल लेकर, जैसे उसको भूख, हम लोग जो सबसे ज्यादा संप्रेषण करने के लिए माध्यम का चयन करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरल ओरल मोड। अब इसको एक चीज और ध्यान देना है जिसमें हम लोग बोलते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में ओरल ओरल क्यों आया, ओरल ओरल क्यों नहीं, इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद ईयर और ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद माउथ, ओरल से रिलेटेड है माउथ, मतलब सुनना और बोलना, लिसनिंग और स्पीकिंग। सो इसलिए इसको रखा गया है ओरल को पहले, बिकॉज हम कुछ सुनते हैं, इनपुट पहले मिलता है, बाद में आउटपुट निकलता है। छोटा बच्चा जब 4 महीने 5 महीने कंटिन्यूअस भाषा के बाढ़ में रहता है, फ्लड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, कम्युनिटी में सब लोग उससे बात कर रहे हैं, अरे रे रे मम्मा बोलती है उससे, अरे चुप चुप चुप, दूध पीना है क्या, बाहर चलना है क्या, अच्छा मालिश का टाइम हो गया, मालिश करना है क्या, तो ये करके उनसे बात करते, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माँ इतनी अच्छी टीचर है कि वो सारी चीजों को, बच्चे को बेशक नहीं समझ में आता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ माँ उनसे बात करती है कि अगला 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद हमारी भाषा को सीखेंगे और वो बैबलिंग स्टेज पे पहुंचेंगे, वो भाषा की समझ उनकी बढ़ेगी। सो ये है। दूसरा है विजुअल ग्राफिकल मोड में हम रीडिंग राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद विजुअल फेशियल मोड, जैसे हम किसी के हाव भाव को समझते हैं, चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा को समझते हैं, जैसे हमारा बॉस अगर गुस्सा है तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज उनके पास फाइल पुटअप करना है कि नहीं। ऐसा छोटा बच्चा जो है उनको माँ का चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि हम माँ के पास जा रहे हैं तो वहां पे डांट पड़ने वाली है, गाली मिलने वाली है, थप्पड़ पड़ने वाला है या फिर वो खुश होकर के चॉकलेट देने वाली। सो ये सारी चीजें छोटे बच्चे में जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करता है संप्रेषण के। अब देखिए कुछ लेना होता है अगर माँ से उसको या पापा से उसको, बच्चे को आप ऑब्जर्व कीजिए, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, अपनी चीजों को बतलाएंगे, थोड़ा प्यार दुलार करेंगे उनसे, और उनको ये उम्मीद होती है कि इन सब चीजों से रीज करके उनके माता उनके पिता उनको बाहर लेकर के जाएंगे घूमने खेलने के लिए देंगे और कुछ ना कुछ उसको रिवॉर्ड देंगे। सो हो सकता है वो चॉकलेट टॉफी हो सकता है उसको कोई किट खरीद करके दे दिया, खेलने का खिलौना दे दिया, जो भी उनकी परिस्थिति हो या जो भी उनकी अच्छी चीजें हो जो उनको पसंद। इसके बाद एक विजुअल मैनुअल मोड है जिसके ऊपर हम लोग पिछली बार के सेशन में चर्चा किए थे, साइन लैंग्वेज के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, और हमको खुशी हो रही है शरद सर ये बताते हुए और कृष्णाबेन कि यहाँ पे साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने 2 साल का पर्टिकुलर एक कोर्स चलाया है RCI की मान्यता के साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता के साथ, और ये भाषा शिक्षक होंगे और पूरे देश में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी एक अलग अलग भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चिन्हित कर रही है। आसाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पे आसाम का जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि डेफ बच्चों के लिए अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो साइन लैंग्वेज तो होगा ही। साइन लैंग्वेज अगर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी वाले पर्सन अगर सीखना चाहते हैं तो 12वीं के बाद कोई भी एक ऑप्शनल भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चुन सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी डिसेबल्ड पर्सन का, डेफ पर्सन का, और उसमें अगर उनको भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर तो हम कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बहुत जरूरी है हमारे। नेक्स्ट जो इसका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव, हम जब बात करते हैं आपसे तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा भी आ रही है, साथ में हम हाथ भी आपका मूवमेंट करते हैं, पूरे शरीर का मूवमेंट होते रहता है, पोस्चर जेस्चर वो हमारा बदलते रहता है। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल बोल रहे हैं तो बोलेंगे ही, चेहरे के एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। सो इसका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्राइमरी मोड और सेकेंडरी मोड, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में 2 तरह के मोड हो सकते हैं सर। जैसे ओरल ओरल मोड जो है जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि ये लिसनिंग स्पीकिंग का है, वो हमारा प्राइमरी मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। छोटा बच्चा लिखना पढ़ना नहीं चाहता, विजुअल ग्राफिकल स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं है, लेकिन सुनता है बोलता है, धीरे धीरे करके वो सुनने बोलने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बेस बनता है हमारा जो पर्पजफुल कम्युनिकेशन जो है, या जो हमारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है, या उसका प्रोफेशनल ग्रोथ है, लोगों के साथ एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना है, उन सब के लिए ये प्राइमरी मोड का काम करता है ओरल ओरल कम्युनिकेशन। जो विजुअल ग्राफिकल कम्युनिकेशन की बात हमने की वो सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसको आगे चल करके मदद करेगा एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पज के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे में बच्चे ने सीख लिया या 1 घंटे का कोचिंग कर लिया और सीख लिया। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है E3 का मतलब होता है एनवायरनमेंट, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें अगर नहीं होगी तो बच्चे में या व्यक्ति में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आज अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाऊं और 1 घंटे में बतलाता है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए, फर्राटेदार आप फ्रेंच बोलना सीखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। शरद सर, कितना टाइम माँ देती है बच्चे के साथ, कम्युनिटी देता है बच्चे के साथ, तब वो बच्चा 6 महीना में बाबा बाबा करना सीखता है। लेकिन जब डेफ बच्चे की बात हम करते हैं तो उसका शुरुआती दौर में जो प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने किसी की आवाज ही नहीं सुनी। बिकॉज उसके कान से होकर के जो दिमाग तक आवाज जानी चाहिए और वहां डब्बा भरना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जो फाउंडेशन ही नहीं बना प्राइमरी लैंग्वेज का, तो रीडिंग राइटिंग डेवलप होगी कहाँ से। हम शुरुआत में माँ हमको ABCD सिखाई, क ख ग घ सिखाई, और उस क से फिर आगे जाकर के टीचर ने उस बेस पर सिखाया कि क से कबूतर होता है, क से कमल होता है, कब क से कमला है या ख से खरगोश है। तो ये जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है रीडिंग राइटिंग का, ये तो हमारा लिसनिंग स्पीकिंग डेवलप होगा तो ही होगा। डेफ बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है कि उसका प्राइमरी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं लैंग्वेज का, तो फाउंडेशन का ही लॉस है, और उसमें फिर साइन लैंग्वेज उसको मदद करता है। लेकिन साइन लैंग्वेज में भी सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर ऐसा बच्चा जिसके परिवार में कोई डेफ है तो वो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनहेरेंट कैपेसिटी के साथ वो सीख जाता है उनके कम्युनिटी में रह करके और एक्वायर कर लेता है उस लैंग्वेज को, जबकि हमको सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रीडिंग राइटिंग के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है। ये बेसिक चीजें हैं। अब उसमें ऑडिटरी स्किल की बात करें कि ऑडिटरी स्किल डेवलप कैसे होता है, और उसमें हम देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें ऑडिटरी स्किल डेवलप करने के लिए शुरुआती दौर में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब हम लोगों को भी ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन अनोइंगली मिली है। मामा ने कितनी कविताएं और लोरी सुनाई होगी सोने के टाइम में, कितने लोगों ने बात किया होगा, सो उससे ऑडिटरी इनपुट तो हमको मिलता रहा। बोलने का एक्सेंट कैसे हो सकता है, कैसे बात करेंगे, तो वो जो तरीका हमने समाज से अनोइंगली सीख लिया तो हमको कम मेहनत करनी पड़ी। लेकिन डेफ पर्सन चूंकि सीख ही नहीं रहा है तो उनके लिए फिर असिस्टिव डिवाइसेज की जरूरत पड़ेगी, ऑडिटरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, स्पीच ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये पेरेंट्स नहीं कर पाते तो उनको आसपास का, क्योंकि एक घंटा हमारे पास बच्चा आएगा, हम उसमें कोई ऐसा जादू की छड़ी किसी भी है प्रोफेशनल के पास नहीं है कि वो एक घंटे में लैंग्वेज डेवलप कर ले। लेकिन क्या करना है घर पे जाके, यहाँ हम क्या करा रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन, पेरेंटल ट्रेनिंग, सिबलिंग्स का ट्रेनिंग, कम्युनिटी का अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजों के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई। जैसे आज हम अलग तरह के हियरिंग इम्प्रूवमेंट के बच्चे के लिए सुनने की जो मशीन आती है हियरिंग एड, हम वो एडिप स्कीम में फ्री दे रहे हैं। हम पूरे देश में 500 बच्चों का हर साल कॉकलियर इम्प्लांट करती है सरकार, और एक कॉकलियर इम्प्लांट के ऊपर अप्रोक्सीमेट 7 लाख आसपास का खर्च कर रही है। और हियरिंग सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि कॉकलियर इम्प्लांट अगर किसी ने कराया 7 लाख का, उसमें उनका स्पीच थेरेपी का और ऑडिटरी ट्रेनिंग का वो सारा पैकेज फिक्स होता है, लेकिन

0: भाग्य से ये कर नहीं पा रहे हैं या फिर हमारे स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि हियरिंग और लिसनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। जस्ट एक लाइन इस पर लेना चाहूंगा, अगर आप परपजिव लिसनिंग करते हैं, मैंने किसी चीज के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वो लिसनिंग है। जैसे शरद सर यहाँ से बैठ करके मगअप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं होता क्या है ये सारा का सारा, ये जो फंडा क्या है। तो ये आपका पूरा ध्यान इधर है, आप मनसा वाचा कर्मणा, ये जो तीनों चीज कहते हैं उससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप केवल हियरिंग नहीं कर रहे, आप लिसनिंग कर रहे। हियरिंग का जो प्रोसेस है वो तो केवल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारा शरीर, कान तो हमेशा खुला हुआ है, तो उस परिस्थिति में कान में आवाज आई, हमने सुन ली, लेकिन उसको ब्रेन तक पहुंच भी गया और उसको हम भी उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे, कई बार ऐसा होता है आधे बच्चे अटेंटिव है, आधे बच्चे में उसका सुनने के प्रति रुचि नहीं। तो जब रुचि नहीं हुई तो केवल हियरिंग हुआ, लिसनिंग नहीं हुआ, ये चीजें हैं। दूसरी कंडीशन है कि अलग अलग स्टेज पे हम इसमें दिखाने की कोशिश किए हैं प्रेजेंटेशन में कि किस लेवल पे रहेगा बच्चा, तो क्या उसको कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप होता है। जैसे छोटा बच्चा है, ऑडिटरी अवेयरनेस की बात हम करते हैं, सबसे पहले क्राइंग स्टेज जिसकी बात हमने करी, और वो क्राइंग स्टेज के बाद कुइंग स्टेज आता है, स्माइलिंग का स्टेज आता है। बच्चा 3 महीने 4 महीने का हो गया, 2 महीने के बाद से ही वो समझना शुरू कर देता है दूसरे लोगों के स्माइल को समझना, और स्माइल अगर आप करते हैं उसके साथ तो वो भी आपको स्माइल करके रिप्लाई करता है। आप अगर उसको कुछ बोलते हैं, सुनता है तो उस पर आपको रिएक्ट करता है, लोकलाइज करता है आवाज किधर से आ रही है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब पापा की आवाज मम्मा की आवाज अलग है, मेल की आवाज फीमेल की आवाज अलग है, कुत्ते की आवाज बिल्ली की आवाज अलग है, मोबाइल की घंटी और डोरबेल की घंटी इसकी आवाज अलग है। सो उसके आधार पे वो खुश होगा तो हंसेगा, अगर उसको आवाज पसंद नहीं आएगी तो वो रोएगा। सो ये डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है अलग अलग साउंड स्टिमुलस के ऊपर। इसके अलावा हमारा वोकलाइजेशन है, हमने बोला बैबलिंग स्टेज, उसके अलावा जार्गोन्स आते हैं और साल भर होते होते उसमें फर्स्ट वर्ड डेवलप हो जाता है। कहते हैं कोई बच्चा अगर 1 साल का हो गया तो फर्स्ट वर्ड, वन वर्ड का वो सेंटेंस शुरू करता है, वन वर्ड सेंटेंस। मम्मा को जाकर बोलेगा भूभू और मम्मा समझ जाती है कि उसको दूध पीना है, वो दूधू बोलेगा, भूभू बोलेगा या कुछ भी बोलना है तो एक शब्द बोला और वही पूरा एक सेंटेंस के रूप में मान करके मम्मा उसको समझ करके और रिएक्ट करती है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा और मैं आगे चलना चाहूंगा कि हमारा रीडिंग स्किल की बात जब हम करते हैं, सामान्यतः लोग समझते हैं कि रीडिंग स्किल का मतलब तो हुआ पढ़ने से संबंधित, लेकिन हम पढ़ तो कई बार अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजीज को ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो किसी तरह उसको सीख करके, किसी तरह छोटी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी सीख लेते हैं तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना एक विजुअल एक्टिविटी है, लेकिन अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन भी उनको है क्या? हम कई बार अखबार पढ़ते हैं, छोटे बच्चे अखबार पढ़ते हैं और उनको अखबार पढ़ना तो आ गया लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। जैसे मैं इसी में किसी से पूछूं कि लाल शब्द जो है वो या काला जो है वो उसके लिए एक बिहार में टर्म यूज होता है कि लाल भुटभुट है कि टूटू है। अब ये भुटभुट और टूटू ये क्षेत्रीय टर्म, ये वही आदमी समझ पाएगा जो वहां पे रहा है और उसको मगही भाषा आती है। या दूसरी चीज बोले चालत्या बस मगे मदे चढ़ू अगर उतरू नका आपला जीवाला धोखा है, सुनाई तो पड़ गई हमको लेकिन ब्रेन तक पहुंच भी गया, लेकिन चूंकि मराठी भाषा का हमारे पास इनपुट नहीं है इसलिए हम उस भाषा में बतला नहीं सकते कि उन्होंने सामने वाले ने क्या कहा। सो चाहे रिटन लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन हो या ऑडिटरी लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन हो, जब तक कॉम्प्रिहेंशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो रीडिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, और उसमें भाषा की जरूरत नहीं होती। रीडिंग में आप पिक्चर को देख करके रीड कर सकते हैं। जैसे कोई एक किसान है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बगल में कुदाल रखा हुआ है, तो कोई लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ में आ सकता है, उसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो। कि ये निहायत गरीब आदमी होगा, आधा फटी हुई धोती पहना है, ऊपर कोई कपड़ा है नहीं, ये मजदूर वर्ग है। दूसरी कंडीशन, बहुत मेहनत करके और पेड़ के नीचे छाव में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे छाव में बैठा है मतलब गर्मी का दिन होगा, बाहर धूप निकली हुई होगी। तो ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ये कैसे होगा, ये हमारा इन्फर करते हैं, इन्फेरेंशियल लैंग्वेज जो हमारे पास अपने इस डब्बे में भरा हुआ है, इस कंप्यूटर में जो भरा हुआ है, उसके आधार पे इन्फर करके, उसके आधार पे अनुमान लगा करके और इन्फेरेंशियल लैंग्वेज हम लोग डेवलप कर पाते हैं उस बच्चे में या व्यक्ति में या हम लोग खुद भी। ऐसी परिस्थिति में अब हम देखते हैं कि ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं रीडिंग के, जरूरतें क्या होती है रीडिंग किसी में डेवलप होना है, लिटरेसी स्किल की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, तो खास करके जब लिटरेसी स्किल में रीडिंग की बात करते हैं तो वो कैसे डेवलप होता है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो छोटा बच्चा हमारे पास आया है तो क्या वो जो फाइनाइट सिंबल्स हैं, लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं, हम जैसे क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं या ए बी सी लिखते हैं, इसमें अलग अलग जो कंडीशंस हैं, अलग अलग जो सिंबल्स बनाते हैं, ए लिखने का तरीका अलग, बी लिखने का तरीका अलग, तो क्या इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, इसको पहचान पाता है। दूसरी चीज उसमें ये है कि क्या वो प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या सिंबल्स जो अलग अलग बने हुए हैं क ख क्या उसको प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या आर्टिकुलेट कर सकता है क्या। तीसरी चीज है कि क्या वो उसको विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या जो शब्द लिखे हुए हैं या अक्षर लिखे हुए हैं क्या उसमें विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या उसको। अगर ये स्किल उसके अंदर नहीं है तो वो मीनिंगफुल वर्ड को पहचान नहीं पाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा और शब्दों को नहीं पहचान पाएगा, तो वो एक साथ जोड़ करके पढ़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति है जो व्यवसायी था और उसने एक बोर्ड बनाने के लिए दिया और बोर्ड पे लिखवाया रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा। अब वो बोर्ड पर लिखने वाला जो होता है वो इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो उसने क्या किया, दुकान बंद रखा जाएगा में बंद में और रखा में रखा का र जो है वो बंद के साथ जोड़ और खा अलग लिख दिया। अब दिक्कत क्या हो गई, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाएगा। छोटी सी चेंज हुई है, केवल एक अक्षर उस शब्द से हट करके दूसरे शब्द में जुड़ गया और रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा के जगह पे पूरा अर्थ ही उसका बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाए, तो उसका पूरा जो बना हुआ बोर्ड था वो बेकार हो गया उसका। सो भाषा की महिमा बहुत अजीब है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है और कई बार हम भाषा को सुपरफेशियल तौर पे समझते हैं, हम उसके इनडेप्थ में जाकर के हम उसको अगर समझते हैं तो फिर व्यक्ति एडवांस लेवल पे उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है, अलग अलग चीजों को गहराई से लिखता है, टीकाकार भाष्य लिखना, उपनिषद का भाष्य लिखना, उसके ऊपर टीका लिखना, ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो बहुत एडवांस लेवल का आदमी हो गया। फिर उनके पास अद्भुत शब्द संकलन है, शब्दों को समझने की क्षमता है, ये सारी चीजें होती है। दूसरा और चीजें हैं कि क्या वो दो शब्दों के बीच में एम्प्टी स्पेस को समझता है, क्या वो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना सीखता है, क्या वो बाएं से दाएं की तरफ जैसा सामान्यतः भाषा में सीखते हैं पढ़ने के लिए, क्या वो कर सकता है क्या, या अगर नहीं कर, कुछ भाषाओं में दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हैं जैसे उर्दू में, उसमें उल्टा पढ़ना पड़ता है, तो क्या इतना उसको नॉलेज है और इतना स्किल डेवलप है। जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो समझ पाते हैं क्या, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का, छोटा बच्चा है उसको हम पढ़ा रहे हैं, अब एक मिलाना शब्द है या काटना शब्द है, काटना शब्द का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे समझना जरूरी है इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से बतलाना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, कि उसमें देखिए कोई छोटा बच्चा है जब हम उसको सिखाते हैं तो किसी शब्द को ऐसे शब्द का संकलन हम करते हैं या चयन करते हैं जिसको हम टेंजिबल रूप में सामने दिखा सके, टेंजिबल रूप में माने वस्तु के रूप में सामने हाथ में दिखा सके जिसको वो महसूस कर सके। जैसे काटना शब्द है तो पेपर काटना, कपड़ा काटना या कोई लकड़ी काटना, ये काटना समझाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बेस पर आगे चल करके उसको ये भी समझाना जरूरी है, जब 8वीं 10वीं 9वीं में पहुंच जाएगा वो बच्चा तो उसी डेफ बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि सजा काटना भी होता है, ततैया का काटना भी होता है, दांत काटना भी होता है, और ये चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है तो कई बार समझ में नहीं आता। बात काटना, अब ये बात काटना कुछ कैची से काटने जैसी चीज तो है नहीं, तो ये लेवल जो है वो बच्चे में बाद में आता है। दूसरी चीज है हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये प्रॉब्लम्स कहाँ करते हैं, सो कॉम्प्रिहेंशन में, सेंटेंस के कॉम्प्रिहेंशन में इनको दिक्कत होती है, तो आइसोलेटेड वर्ड के रूप में उसको पढ़ता है बजाय कंप्लीट एक सेंटेंस के रूप में समझने की। दूसरी कंडीशन है कि जो लैंग्वेज का फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसका समझने में इनको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, संख्याओं के बारे में समझना, मात्राओं के बारे में समझना, अलग अलग मात्रा जैसे आधा किलो पौना किलो ये बताए तो क्या उसको समझ पाता है वो, ये चीज है। दूसरी चीज कि जो वर्ड है उसको आइसोलेशन में पढ़ने के बजाय क्या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ करके पूरे सेंटेंस को पढ़ पा रहा है, वो एक इशू उसमें आती है डेफ बच्चों को। और इसके बाद अब ये कंडीशन आती है राइटिंग की। मैं थोड़ा सा समय का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो समय पे खत्म हो सके। सो राइटिंग में भी इसी तरह की समस्या आती है, और वो जो अपने डिजायर को, अपने विल्स को, अपने जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, थॉट्स है, उन सब चीजों को प्रशस्त करने का, दूसरे के सामने रखने का ये एक माध्यम है, अपने अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी जो है उसको व्यक्त करने का माध्यम है राइटिंग। और इसमें बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो सामान्यतः जब डेफ बच्चों को लिखने के लिए आप देंगे कि आप अपने बारे में 10 लाइन लिखो, तो आप देखिएगा बहुत सिंपलर शब्द जो है वो यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेज यूज करेंगे, शॉर्ट सेंटेंसेज यूज करेंगे, और ऐसी कंडीशन में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेज में। जैसे लिखते हैं कि राम ने खाना खा लिया, राम चला गया, राम अब पढ़ने के लिए जाएगा, राम खेलने के लिए जाएगा। राम के जगह पे वह वर्ड जो है, प्रोनाउन जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता, मैक्सिमम नाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का नहीं। ये उसको एडवर्ब समझने में, वर्ब समझने में, ये सब में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कितने तरह के रीडिंग हो सकते हैं। हम जब रीडिंग की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, इसमें पर्पसिव रीडिंग हो सकते हैं कि किसी पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमको आनंदित होना है इसलिए हम चुटकुला की किताब पढ़ रहे हैं, हमको आनंदित होना है इसलिए कोई मजा आता है तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो किसी को बाइबल पढ़ने में मजा आता है, हो सकता है कि उसको अखबार पढ़ने की लत लग गई हो, हो सकता है कि कोई कहानी पढ़ने की लत लग गई हो, हमारा पर्पस क्या है रीडिंग का। दूसरी चीज है कि हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं जनरली, उनको पहले नन्ही दुनिया की किताब आती थी शरद सर, अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो फनी लैंग्वेज में बना हुआ रहता था, चेहरे उसके कार्टून के बने हुए होते थे, तो इन सब चीजों से बच्चे को सीखने में थोड़ा मजा आता है। और आप टॉम एंड जेरी देखे हैं, उसके जो लैंग्वेज है बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिए सीरियल जब भी देखने के लिए करेंगे, मोटू पतलू बच्चा उसको पसंद करता है, क्यों? उसका भाषा उसकी जो है वो फनी है और वो उसके लेवल की भाषा है और उसको मजा आता है, वो चूहा बिल्ली भाग रहे हैं, मजा आता है उसको, और दूसरे जो अलग अलग तरह के कार्टून्स हैं उसको देख करके। ये अलग अलग टाइप के रीडिंग हो सकते हैं। स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या है हमारा, लाउड हम रीडिंग कर रहे हैं या मन ही मन पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। हमारा असिस्टेंस क्या जरूरत पड़ रही है, बच्चा पढ़ता है, कहते हैं उसको, हम लोगों का इमला पढ़ने के लिए कहता था कि जब क्लासरूम में खड़े हो गए, बारी बारी से टीचर देते थे कहानी को पढ़ो, और बीच में रोक देते थे, पूछते थे वो कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, तुम उंगली रखो उसके ऊपर और बताओ, और प्रायः उसमें बड़ी मार पड़ती थी, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरे लोग बोर होते थे और वो ध्यान ही नहीं देता था। तो ये डेफ बच्चों के साथ समस्या आती है, और उसमें जो लैंग्वेज का असिस्टेंस लेवल है वो कई बार हो सकता है कि बीच बीच में आपको एक आध शब्द पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है तो आपने थोड़ा प्रमोट कर दिया, हो सकता है कि पूरा ही पढ़ करके आपने सुनाया और उसको इमिटेट कर रहा है वो, ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्टाइल्स के ऊपर, अब राइटिंग के ऊपर आएंगे कि कॉपिंग क्या होता है। राइटिंग जो होता है उसमें तीन तरह की राइटिंग हो सकती है, एक तो कॉपिंग हो सकती है, दूसरा गाइडेड राइटिंग हो सकती है, और तीसरा इंडिपेंडेंट राइटिंग हो सकती है। ये लेबल है। जब छोटे क्लासेज में बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे भी और डेफ बच्चे भी, तो हम क्या करते हैं, एक शब्द लिख दिए उसका बोलते हैं नीचे कॉपी करो, या एक लाइन लिख दिए और उसको बोलते हैं कि इसको देख करके लिखो। बेसिकली इसमें हम कॉपिंग का कर रहे हैं, और इसमें उसको दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, केवल देखना है और उसका जो शब्द का या जो उसका सिंबल है उसको देख करके एज इट इज उतारना होता है, देखना देख करके लिखना होता है। दूसरा उससे एडवांस लेवल पे आया तो गाइडेड राइटिंग होती है कि हम उसको बोलते हैं 10 शब्दों में लिखिए या 10 वाक्यों में लिखिए या निबंध लिखिए, डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है, या हम उनको लिखते हैं खाली स्थानों को भरो। तो ऐसी कंडीशन में रीडिंग डेवलपमेंट और राइटिंग डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो रहा है, बिकॉज वहां कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है और एक्सप्रेशन भी हो रहा है। इंडिपेंडेंट राइटिंग की बात हम करते हैं कि बड़ा बच्चा हो गया, अब अपने से लिख सकता है, जैसे शरद सर ने कई सारी किताबें लिखी है, तो वो उनका इंडिपेंडेंट राइटिंग है कि कोई अगर व्यक्ति एडवांस लेवल पे पहुंच गया तो इंडिपेंडेंट राइटिंग कैसे कर सकता है। ये एक हमारा प्रेजेंटेशन था डेफ बच्चों में लिटरेसी स्किल, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, और अब हम शरद सर के पास चलना चाहेंगे अगर इसके बारे में कुछ और चर्चा करनी है। शरद सर
1: जी, मैं सुन पा रहा हूँ, और बिल्कुल जी, तो जी आपने लगभग पूरा अपने पुनर्वास की संकल्पना और उसके उसके पूरे दर्शन के बारे में आपने विस्तार से बताया, और इनफैक्ट पुनर्वास के लिए जो सुविधाएं अवेलेबल है वो भी बताई। क्या ऐसा कोई की बात है जो आप इंटरव्यू में चाहते हो और मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ, और खास तौर पे कि एक सामान्य डेफ व्यक्ति आप तक कैसे पहुंच सकता है? और भारत सरकार ने IRCTC की भी स्थापना की और CERC की भी स्थापना की कई राज्यों में, तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास में कार्य कर रहे व्यक्तियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार से डेफ इंडियन साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में है, कृपया इस बारे में।
0: जी तरत सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को ये बतलाना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये उनका एक सामाजिक दायित्व है कि अपने आसपास में अगर कोई डेफ पर्सन हो, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो या सीनियर सिटीजन हो, उनको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़े। हमारा ये अवेयरनेस कार्यक्रम जो चल रहा है मन की आंखों से, उसका भी पर्पज वही है कि आम सामान्य मानविकी तक सरकार की योजनाओं और बाकी चीजों को, लाभकारी चीजों को, कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाए। मैं उनके साथ CERC का नंबर शेयर करना चाहूंगा, अगर कभी कुछ जरूरत पड़ती है कंसल्टेंसी की या यहाँ से कोई उपकरण लेने की, तो उनके लिए मैं बतलाना चाहूंगा कि आप 0141-268-2075, मैं रिपीट करना चाहूंगा, 0141-268-2075, इस नंबर पर संपर्क करके CERC से कभी भी सेवाओं के बारे में जानकारी, सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खास करके अगर डेफ पर्सन की बात करें तो कहीं भी अगर डेफ पर्सन को स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आ रही है, हम उनकी स्थानीय गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, स्थानीय स्वशासन के साथ मिलकर के उनकी मदद करेंगे ताकि उनको पढ़ाई में व्यवधान न हो। अगर उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की दिक्कत हो रही है तो समग्र शिक्षा का अभियान हर एक विद्यालय को कवर करता है आज के डेट में, सो उसके लिए वो अपने स्थानीय DEO से संपर्क कर सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको टीचर मिल सके। अगर उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ हियरिंग एड उसके पास नहीं है, तो उसके लिए 3 कागज लेकर के CERC से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। या अपने आसपास के जो PMDK है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, भारत सरकार की बहुमुखी योजना है ये और फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके माध्यम से किसी भी तरह का उपकरण किसी भी दिव्यांग जन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है, जैसे दिव्यांग जन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID वो रहना चाहिए 40% या उससे ज्यादा का, तो ऐसी कंडीशन में उनको हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए, उनको कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए 100% डेफनेस की जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, चूंकि उसको जब हियरिंग एड से काम चलता है तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते। कॉकलियर इम्प्लांटेशन का मैं अलग से चर्चा करता हूँ, अभी मैं पहले हियरिंग एड के बारे में बता दूं। सो कोई भी व्यक्ति उसमें हियरिंग एड के लिए आते हैं तो उनको UDID कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र जो 22,500 रुपए तक होगा, अगर आय प्रमाण पत्र तो उनको हियरिंग एड फ्री मिलेगा। 30,000 रुपए तक अगर मासिक आमदनी उनकी है तो उसके लिए उसको 50% का कंसेशन मिलेगा, और अगर आय उनका 30,000 रुपए मासिक से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो पे कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने उनके लिए कोई भी छूट नहीं दिया, पर सरकार का निर्धारित जो रेट है वो दे करके वो सामान को खरीद सकते हैं। अब मैं 4,000 के आसपास का अप्रोक्सीमेट रेट, अभी मैं ध्यान में नहीं है कि 4,000 समथिंग कितना है, लेकिन 4,000 के आसपास का एक हियरिंग एड मिलता है और वो उनको फ्री मिलता है। 8,000-8,500 रुपए का हियरिंग एड उनको फ्री देते हैं, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल। अब कॉकलियर इम्प्लांटेशन की बात करें, ऐसे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हों और उनको सुनने में दिक्कत और इतनी दिक्कत है कि हियरिंग एड से उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उनको कोई एसोसिएटिव डिसेबिलिटी नहीं। तीसरी कंडीशन है कि उनका सारा वो टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है, लैंग्वेज टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और जितना भी तरह के टेस्ट होते हैं वो सब प्रोसेस पूरा हो गए, तो ऐसी कंडीशन में अगर सब जगह से ये पता चल गया कि यह कॉकलियर इम्प्लांटेशन का सुटेबल केस है, देन सरकार उनको 7 लाख रुपए तक का कॉकलियर इम्प्लांटेशन का खर्चा अनुदान के रूप में देती है। वो उनको नहीं मिलेगा, वो आकर के हमारे पास या जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान है अपना AYJ NISHT मुंबई, वाणी एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, तो उसके पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए। वहां से फिर उनको संपर्क करके और बता दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जाकर के उनको टेस्टिंग करवानी है, और वो टेस्टिंग कराइए NISHT अली अबरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, इसको टाइप करना है, और शरद सर उनके पास पूरा एक वेबसाइट खुल करके आएगा, कॉकलियर इम्प्लांटेशन और एडिप सेक्शन में जब जाएंगे तो उनको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगा, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, इम्पैनल्ड सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां जाकर के वो संपर्क करें, और वो पूरा उनका एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। जी शरद सर,
1: श्रोताओं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीआरसी के माध्यम से हम कॉपीलर इम्प्लांट भी करवा सकते हैं और साथ साथ हियरिंग एड हमें की सुविधा भी हमें प्राप्त हो सकती है। सर एक महत्वपूर्ण विषय रह गया कि

0: इस क्षेत्र में जो पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों, खासतौर पर डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में जो युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध हैं, वे पर हम अलग से कभी गंभीरता के साथ बातचीत करेंगे। पूरा हम चाहेंगे कि इस पर एक पूरा शो है, पूरा एक पूरा ब्रॉडकास्ट करें, हम एक
1: जरूर
0: सेशन
1: जरूर
0: कि
1: जरूर।
0: कौन कौन से अवसर पुनर्वास के
1: रोजगार के जितने अवसर हैं उस पर हम लोग अलग अलग डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक एक घंटे का अलग से सेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं
0: जी
1: सामान्य तौर पर बता दूं कि उनके लिए सामान्य क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर है, जिसको ओपन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, 4% सीटें उनके लिए रिजर्व है, चाहे किसी भी चीज की वैकेंसी आए। दूसरा, बहुत सारे बैकलॉग वैकेंसी जाते रहते हैं जो पर्सन्स विद हियरिंग इम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। तो अब इनको ध्यान रखना है रोजगार समाचार पत्र पे, इनको ध्यान रखना है जो डेफ पर्सन है हमारे, उनको ध्यान रखना है कि कहाँ से अलग अलग वेबसाइट्स का हम चयन कर सके, या freejobalerts.com, हालांकि वो प्राइवेट वेबसाइट है, लेकिन बावजूद उसके डिस्क्लोजर के साथ बात करना चाहूंगा कि उस पर जाकर के अगर चेक करते हैं तो कहीं से भी आता है कोई एडवर्टीजमेंट तो उसपे तुरंत वो अपलोड करते हैं, इसलिए वो भी एक अच्छा वेबसाइट है। बाकी जितने भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान है या कंपोजिट रीजनल सेंटर्स है, उनके वेबसाइट्स पे जाकर के, अभी गूगल में जाकर के जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में वो चाहते हैं, सीआरसी जयपुर, सीआरसी पटना, सीआरसी अहमदाबाद, सीआरसी गोरखपुर, सीआरसी लखनऊ, इतना लिखना सफिशेंट होगा, वेबसाइट खुल जाएगा, वहां सामने पहला पेज दिख जाएगा वेबसाइट का। सो ऐसी कंडीशन में वो सारी जानकारी वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से और कौन कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में सारी चीजों के बारे में चर्चा करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि उनको खजाने की चाबी दे दूं कि आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। जी सर, चलो
0: जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मन की आंखों से इसलिए कि कुछ चीजें यदि आपकी सामान्य आंखों से छूट जाए तो दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट शक्तियों से हम उन चीजों को से जोड़ सकें। इसलिए नजर की नहीं, नजरिए की जरूरत ज्यादा है जीवन जीने के लिए। तो आप ऐसे ही सुनते रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम को, और आप सुन रहे थे नीरज सर को। आप फिर किसी प्रोग्राम में नीरज सर के साथ और इस विषय पर गंभीर बातचीत के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं अंतिम एक शब्द के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, बहता कान सावधान। कभी भी कान से अगर मवाद निकलता है, पस निकलता है, कान में डिफॉर्मिटी दिखती है बाहर से दिखने वाली, या कान में रैसेज हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, बच्चा बार बार कान को खुजलाता है, ऐसी कंडीशन में चुप नहीं बैठना है, पूरी जिंदगी खराब हो सकती है उसकी, तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट के पास या हॉस्पिटल में जाकर के संपर्क करें ताकि इंटरवेंशन हो सके। ओम शांति।
0: अति सुंदर, बहता कान सावधान।
1: जी,
0: आपका आभार है।
1: थैंक यू सो मच सर। रेडियो मधुबन और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण का भी आभार, और जो इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट की है हमारी कृष्णा बेन, उनका भी आभार। हमको आपने मौका दिया, सीआरसी परिवार को आपने आमंत्रित किया। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे समाज के कल्याण के लिए, समाज के संबल देने के लिए और उनको एम्पावर्ड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
0: ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ गुजरात से विशेष ओम प्रकाश भंडारी जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आप वसंत मसाला के डायरेक्टर हैं, काफी लंबे समय से आप बिजनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी अपनी एक स्पेशलिटी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आज का हमारा जो विषय है, बिजनेस एंड हार्मनी, या बिजनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के टिप्स क्या हैं, वो सारी चीजों को हम लोग जरूर आज सुनेंगे। क्योंकि एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनके अनुभवों का लाभ लेकर अपने को भी अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड ले आ सकते हैं। तो आइए, आप सभी की तरफ से ओम प्रकाश भंडारी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है।
1: बहुत
0: और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ विशेष वेस्ट बंगाल से इशिता जी जुड़ गई हैं, और मैं चाहूंगा कार्यक्रम के शुरुआत में ओम प्रकाश भंडारी के स्वागत में एक छोटा सा गीत जरूर पेश करें आप, फिर इसके बाद हम लोग बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी
1: ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है
0: जी
1: कार्यक्रम में। तो एक छोटी सी गीत गाने की मैं कोशिश कर रही हूँ।

0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना जी। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। इसी तरह गुनगुनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूंगा ओम प्रकाश भंडारी जी से। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते।
1: बस बस बस
0: तो मैं चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका बिजनेस कहाँ पर सेटअप है आपका, क्या करते हैं आप?
1: मैं ओम प्रकाश बापूलाल जी भंडारी और
0: जी
1: अहमदाबाद में रहता हूँ। और हमारा जो सब बिजनेस की शुरुआत हुई थी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जालौर से हुई थी। आज से 52 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने शुरुआत करी थी। और हमारी जो धीरे शुरुआत जो करी थी फादर ने बहुत कम कैपिटल से, फिर धीरे धीरे बिजनेस डेवलप करा। और आज अभी दो प्लांट है, जालौर और देहरादून स्थित, दो दो जगह प्लांट है।
0: अच्छा, जी ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग आज का जो हमारा विषय है, आपका दो प्लांट है ये आपने बताया, और छोटे से आपने शुरू किया था लेकिन अभी अच्छी तरह से आपने सेटअप किया है और क्वालिटी मेंटेन किया है आपने, आपके पैकिंग्स भी अच्छे हैं मैंने देखा। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बिजनेस और हार्मनी, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, कि आप बिजनेस करेगा कि हार्मोनी या खुशी, तो हमारे दिमाग में प्रॉफिट भी रहे और वो होता रहे तो हमारी हार्मोनी बनती है, या इसके अलावा हम कैसे अपने आप को हार्मोनी में रखें, तनाव में ना रहें, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि भाई जैसे नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बैंक का लोन है, लोगों का पैसा बैक, वो जो काम करने वाले हैं, स्टाफ है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वो सारी चीजें करते करते थोड़ा सा व्यक्ति तनाव में रहता है कुछ समय तक। तो मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत में जो चीजें आपने की है, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बिजनेस के साथ साथ हारमोनी को कैसे मेंटेन करें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ जी
1: हाँ आवाज आ रही।

0: आ रही है आवाज, आ रही है आपकी।
1: अच्छा, हाँ तो मतलब वो हारमोनी जो रखना है, तो जैसे बिजनेस तो हर कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, सबके अलग अलग स्टेप होते हैं कि कोई बिजनेस की शुरुआत इनिशियल बेस पे करता है, कोई जो फादर का बिजनेस है वो शुरू करता है, और कोई नया ही अलग कंसेप्ट लेके आता है, तो सबके तरीके अलग हैं। वो डिपेंड है अपने आसपास किस तरह का माहौल है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना आप इंटरेस्ट की कितना समय बिजनेस में देते हो, उससे बिजनेस का तो मैं बात करता हूँ कि बिजनेस किसी ने शुरुआत करी तो इनिशियल बेस पे, तो उसको रिस्क लेना सीखना चाहिए कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें रिस्क तो हर कोई बिजनेस में रहता है, तो उसमें वो रिस्क लेना सीख जाएगा तो वो सफलता मिल सकती है। दूसरा फैक्टर काम करता है सोल कॉन्फिडेंस। अगर अपने में मन में कॉन्फिडेंस अच्छा है, पॉजिटिव है, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत हो सकते हैं। सब कुछ अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है, अपन जैसा सोचते हैं इस तरह का मिलता जाता है। अपन अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर नेगेटिव में सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो इस पे डिपेंड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप किस तरह के वातावरण में रहते हो, आपके आसपास फ्रेंड सर्कल वो सब कैसे हैं, आपको एडवाइस करने वाला ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पे डिपेंड करता है। फिर एक और बात होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, उसका कंफर्ट जोन का त्याग करना। जैसे अपन थोड़ा सा भी काम करके थक जाते हैं, और कई व्यक्ति बहुत दिन तक बहुत काम करते हैं, मतलब बहुत देर तक काम करते हैं, तो उनका मन का विल पावर अच्छा होता है, इसलिए बहुत देर तक काम कर सकते हैं, तो इसलिए वो उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, और काम में सफलता मिलती है, तो वो चाहता है कि नहीं मुझे मतलब एक काम किया सक्सेस रहा, दूसरा काम किया सक्सेस रहा, तीसरा सक्सेस रहा, तो उसका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो वो विल पावर कहाँ से आएगा? विल पावर पॉजिटिव एटीट्यूड से आएगा, अच्छे लोगों के संपर्क से आएगा, अच्छे बुक्स रीडिंग से आएगा, या मोटिवेशनल अपन किसी से भी स्पीच सुनते हैं उससे आ सकता है। तो जैसे मैं हूं, तो मैं राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, तो उससे मुझे मोटिवेशन। ऐसे सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबका अलग अलग वो होता है सिस्टम, वो कोई किससे जुड़ता है, कोई किससे जुड़ता है। तो पर्टिकुलर आज मैं मेरी बात करना चाहूंगा कि मैंने राजयोग एजुकेशन जो अभ्यास किया, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना समय किस पे देना है, वो सब मालूम पड़ता है। नहीं तो अपन देखते हैं कई लोगों का समय मोबाइल में, टीवी में, न्यूज़पेपर और काफी चीजों में, दोस्तों के साथ बातचीत करने में, घूमने में, उसमें चला जाता है, तो वो मैनेजमेंट टाइम का नहीं कर पाते हैं। तो इसके
0: बिल्कुल
1: लिए
0: बिल्कुल
1: मेडिटेशन अपने को सही दिशा दिखाएगा कि आप ये काम करना है, ये जरूरी है, अभी प्रायोरिटी पे ये काम करो, बाकी का काम नहीं करो। और एक और बात होती है सफलता पाने के लिए, अच्छे से अच्छी जानकारी हासिल करना है हमें, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं पहले उसके बारे में, उसके संबंधित पूरी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस काम करना चाहते हैं उस बिजनेस संबंधी कंपनी में हमें काम करना चाहिए, जैसे कई लोग उसमें जॉब करते हैं इनिशियल बेस पे, और उसके बारे में जानते हैं, डिटेलिंग में जानते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, उसका बारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं, किस तरह का प्रोडक्शन होता है
0: जी
1: वो लेते हैं, ऐसे काफी तरह के पहलू होते हैं। सिर्फ एक पहलू नहीं होता है कि व्यक्ति सक्सेस गया तो उसको देख के मैं फक सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो मैं सफल करूंगा, सफलता पाऊंगा, वैसा नहीं होता है। वो व्यक्ति सफलता अगर पाना चाहता है तो खुद को खुद से करना होता है, खुद को डेवलपमेंट करना होता है, खुद को अच्छी नॉलेज जानकारी हासिल करना होता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना होता है, तो उससे बिजनेस में सफलता मिल सकती है। और अपन जो भी बिजनेस करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत आगे बढ़े बिजनेस में, 1 साल 2 साल हुआ, तो बिजनेस में काफी चीजें मुसीबतें आती है, उसको धैर्यता से सामना करना पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी बाबूलाल जी थे, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो साइकिल पे जाते थे, उस तरह की थी, अनाज किराने का धंधा किया। उसके बाद उनको एक विचार आया कि एक मसाले की दुकान खोले, तो अक्खे मिर्ची हल्दी धनिया वगैरह बेचने लगे वो दुकान पे। फिर एक बोरी लाते थे, एक बोरी का पेमेंट करते थे, एक बोरी लाते थे, एक बोरी का पेमेंट करते थे। तो वो करते गए, पर उसके सामने मुसीबतें बहुत आई, जैसे बीमारी का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा, काफी चीजों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने धैर्यता बिल्कुल नहीं खोई। तो आज की तारीख में वो सफल व्यक्ति हुए और वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया। उनकी एक और सोच ने मुसीबत से बिल्कुल नहीं डरे और धैर्यता का सामना अच्छी तरह से किया, तो उन्होंने सफलता अच्छी पाई।
0: जी जी
1: एक और बात होती है कि बिजनेस में सफल पाने के लिए थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना है हमें, और
0: बिल्कुल
1: पथ दर्शन से दूर रहना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा दूर रहेंगे दूसरों की बातों में, दूसरों को कौन क्या कर रहा है वो देखने की बजाय, अपना खुद का सोचे कि अपने को क्या करना है, उसने क्या कहा वो नहीं सोचना है, पर अपने को क्या करना है वो सोचना है। तो अपना समय बिजनेस के लिए अवश्य बचेगा ही बचेगा। जैसे मैं यदि सुबह में उठ जाता हूँ तो मेडिटेशन भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, बिजनेस के बारे में काम भी कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में सोच भी सकते हैं कि आज सुबह मुझे आज दिन में क्या क्या जरूरी काम है, वो नोटिंग भी अपन कर सकते हैं। नोट नोट नोटबुक में अपन नोट पे नोट बना सकते हैं। तो अपने को
0: जी
1: ध्यान
0: जी
1: होगा कि आज ये काम करना रहेगा, तो उसी पे अपना पूरा फोकस रहेगा। तो कई लोग अपन देखते हैं रात को 12, 1, 2, 3 बजे सोते हैं, देर देर तक, तो वो जरूरी समय नहीं होता है, वो जरूरी काम नहीं
0: बिल्कुल
1: होता है, टाइम वेस्ट करते हैं। उसकी जगह जल्दी उठने का अभ्यास करने से ये चीज बहुत काम में आती है, और सुबह का एक पावर स्टेमिना मिल जाता है, परमात्मा से शक्ति मिलती है, तो काम करने की शक्ति मिलती है, सही तरीके से सही काम करने का मौका मिलता है। और एक और बात, अपन बिजनेस में सफलता पाने के लिए योजनाएं बनाना है और उसके अनुसार काम पर जुट जाना है। हमारे बिजनेस में बिजनेस प्लान बनता है कि आज इतने इतने स्टेट स्टेट डेवलप करने हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फंड रिक्वायरमेंट, मटेरियल प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, ऐसे कई तरह की अलग अलग तरह की स्कीम होती है। वो प्लान अप्रैल के पहले 1-2 महीने पहले सब उस पे वर्कआउट करते हैं, और उस पे ये बाद में मीटिंग वगैरह होती है, सबका राय लिया जाता है, दूसरे लोग कैसे सफल पाए उसका स्टडी किया जाता है, और
0: बिल्कुल
1: एक प्लान बनाते हैं कि अपने को नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एक्टिविटी करना है, क्या डेवलप करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए अपने को पूरा फोकस उस पे जाता है, और एक बिजनेस प्लान बन जाता है। तो अपन उसी पे राह पे चलेंगे, नहीं कि उसमें क्या होता है, एक्चुअल में हमारे बिजनेस में भी जैसे एक चीज कर रहे
0: जी
1: हैं या एक मार्केट डेवलप किया, कुछ भी आता है ना, तो 10 बातें और आ जाती, नहीं, कि आप आज अपन ऐसा करें ऐसा करें, पर हम देखते हैं कि भाई हमारा प्लान तो ये था, अगर नया नया आइडिया आता है साइड पे हम नोटिंग करते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए वो करेंगे। अभी जो अपना ऑलरेडी प्लान बना है, अपन नए नए तरीके नई नई बातें ले आते हैं, तो दूसरी जो पहले का जो पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ उसमें सफलता नहीं मिली, और तीसरा चौथा काम शुरू हो जाता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसके लिए वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर फोकस होना चाहिए, नई बातें को एडोप्ट नहीं करना चाहिए, उसका नोटिंग होना चाहिए
0: जी
1: और सही समय पे उसको अप्लाई करना चाहिए, नहीं कि जो अपना काम चल रहा है उस पर दूसरी चीज एडिशन करने चाहिए। अपन देखते हैं स्कीम, जैसे जो भिखारी होता है उसको तुरंत पैसा चाहिए की आस रहती है, जो नौकरियात वाला होता है उसको 1 महीने में सैलरी की आस रहती है, ऐसे बिजनेसमैन होता है तो वो 5-7 साल तक मेहनत करता है, वेट करता है और उसमें इंतजार करता है कि भाई हम कैसे इसको डेवलप करें, कैसे सक्सेस आए, उसके बीच उसके बहुत सारी तकलीफें आती है, पर उसको छोड़ता नहीं उस बात को, और फिर इतना स्टेप पे आ जाता है कि दो तीन पीढ़ी तक, जनरेशन तक उसको अर्निंग हो जाती है। तो ये पेशेंस का काम है, धैर्य का काम है, सहनशीलता का काम है, और इसमें साथ साथ नम्रता भी
0: अच्छा
1: चाहिए।
0: इन्फॉर्मेशन आपने दिया।
1: हाँ, नम्रता भी होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो ये सब बातें मिला के बिजनेस में सफलता मिल सकती है। बिजनेस
0: मिल
1: में सफलता एक तरीके से नहीं मिलती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: अपन देखते हैं कि कई लोग, अपन देखते हैं कि कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कोई छोटा बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा, कोई मीडियम, ऐसे अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं। अब छोटा व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ये बिजनेस वसम मसाला प्राइवेट लिमिटेड जैसा करना है, या रिलायंस जैसा करना है, या टाटा जैसा करना है, तो वो क्यों नहीं कर पाता है, वो स्टेप पे, लेवल पे क्यों नहीं जाता है। तो एक चीज उसमें एक काम करता है, कर्म, अपने पुण्यवानी कर्म जितने होंगे पुण्य कर्म, तो उस अनुसार अपनी प्राप्ति होती है। तो अपने को जिस बिजनेस में जहां पे भी जुड़े हैं, अपने कर्म पे पूरा पूरा ध्यान देना है कि अपना कर्म अच्छे से अच्छा हो, लोगों की सहायता के लिए हो, लोगों को काम में हम कैसे आ सकते हैं, परोपकार कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहते हम कि भाई आपके पास है जो सबको दे दो, पर सिर्फ आप मन की भावना अच्छी रखो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, और आप जितना कर सके, आपका 1% 2% जितना भी कर सके सहायता, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो आप ये कर्म बंधन अच्छा बनता जाएगा, और ये पुण्य जमा होता है वो ही अपने आगे काम आता है, और उसी अनुसार अपने को आगे से आगे मिलता जाता है। तो अगर अपनी पोजीशन अभी जैसी है वैसी है, अपने को एक्सेप्ट करना है उसे, वो ऊपर का लेवल नहीं देखना है कि ये देख के दुखी नहीं होना है कि वो लोग सफल बहुत हो रहे हैं दिन प्रतिदिन और मेरी सफलता नहीं मिल रही है। उसकी जगह अपने को कर्म, नए पुण्यवान कर्म कैसे बने उसका बैलेंस रखना है, हारमोनी रखनी है। वो हारमोनी चार तरह की होती है, एक तो सोशल हारमोनी होती है, दूसरी बिजनेस की हारमोनी होती है, तीसरी परिवार की हारमोनी होती है, चौथी होती है अपनी आत्मा का कल्याण। तो सबका बैलेंस रखना होता है। ऐसा नहीं कि भाई अपन सिर्फ केवल बिजनेस ही बिजनेस करें 12 घंटे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सिर्फ अपन परिवार के साथ रहे 12 घंटे, वैसा भी नहीं होता। सिर्फ अपन आत्मा का कल्याण करें, वैसा भी नहीं होता है। सबका डिवाइडेशन होता है, सबका एक समय होता है। जैसे आत्मा का कल्याण करना है, कर्म बंधन अच्छे बांधने हैं, पुण्य कर्म जमा करने हैं, तो सुबह का परमात्मा ने बताया है अमृत वेला का समय 4 से 4:45 तक बहुत सुहाना रहता है, परमात्मा शक्तियां रहती है। जिसको भी अपन मानते हैं, जिस धर्म में मानते हैं, जिसको जानते हैं, उसको हमें याद करना है, उसके गुणों को याद करना है, वो गुण जीवन में अपनाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि आप 100% उनके जैसे बन जाओ, पर एक शुरुआत आप कहीं ना कहीं से करेंगे तो धीरे धीरे आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे। अभी 10% है तो कल 20% होगा कि मैं से मुझे मीठा बोलना है, मुझे गलत काम नहीं करना है। इससे मेरे पिता ने सोचा था कि मैं मिलावट और भ्रष्टाचार से दूर रहूंगा, मैं जो कर्म करूंगा, तो जैसे किसी के मंदिर में बैठे हुए आत्मा है, जिसे मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर आत्मा या दो भ्रुकुटी के बीच में होती है, वो आत्मा
0: जी
1: मंदिर जैसा स्थान होता है, उसको कभी मैं चीट नहीं करूंगा, चीटिंग नहीं करूंगा, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा। तो इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा देश सेवा का कार्य किया है। कैसे कि भाई सैनिक बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, डॉक्टर लोगों की हेल्थ के लिए सेवा कर रहे हैं, और हम अच्छी क्वालिटी के शुद्ध मसाले 52 साल से प्रोड्यूस करके एक देश सेवा का काम करे, लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो उसका हम ध्यान रखते हुए बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। हमारी हमारी सोच ऐसी है कि हमारे जो मसाले हैं, वसंत मसाले, वो वसंत के मसाले मेडिसिन का काम करें, ऐसा हम चाहते हैं। वो जाए तो लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए हम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारा जो स्टाफ होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बोला जाता है, और हमारे में भी अंदर चीज होती है वैल्यूज, वो देख के वो लोग में वैल्यूज आती है कि ये लोग तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। फिर उनकी सोच बदलने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आदरणीय दीदियों को बुलाया जाता है, झालो प्लांट पे, देहराम प्लांट पे, हमारे मार्केटिंग
0: अच्छा
1: ऑफिस गुरुद्वारा के पास में अहमदाबाद में, वहां पे दीदी आके मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जानकी दीदी हो या मीता दीदी हो या कोई भी दीदी हो, भावना दीदी हो, निरन्ना दीदी हो, तो वो आके मोटिवेशन स्पीच देते हैं और उन लोगों की जीवन की राह, जीवन के पहलू बदल देते हैं, उन लोगों की सोच बदलते हैं। उन लोगों के परिवार में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, तो समस्या का समाधान मिलता है, थोड़ा टाइम मन को रेस्ट मिलता है ध्यान योग करने से, और इसी तरह उनका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनकी सोच बदलती है। तो उनकी सोच बदलने से काम का जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी बढ़ जाती है, हमको भी फायदा मिलता है, फिर वो लोग व्यसन से दूर रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, तो हम उसका बेनिफिट हमको भी मिलता है, बिजनेस में मिलता है। उनकी सोच के वाइब्रेशन प्रोडक्ट पे पड़ते ही पड़ते हैं। अपन जैसा सोचते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, खाना बनाते बनाते भगवान को याद करते करते अपन करते हैं, तो वो प्रसाद, प्रभु प्रसाद जैसा खाना बन जाता है। तो मंदिरों
0: बिल्कुल
1: में प्रसाद और कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह ये प्रोडक्शन में होते हैं, तो अच्छे भाव से हमारे वर्कर्स जो 650 जितने हैं टोटल स्टाफ, तो वो लोग अच्छी भावना से काम करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि आपका इतना पैसा अच्छा नीति वाला है कि हम जैसे 20,000 या 25,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं तो भी उसमें बचत होती है, दूसरी कंपनी में इससे भी ज्यादा सैलरी था तो हमारी बचत कहीं होती नहीं थी, दवाई दारू में पैसे चले जाते थे। तो एक मन
0: बिल्कुल
1: के विचारों, अच्छे वैल्यूज के जीवन पे बहुत असर पड़ता है। हम हमारे स्टाफ के लिए पूरे साल का प्रोग्राम बनता है, कभी उनको क्या क्या सहाय करने की जरूरत है, कभी कपड़े, कभी हेल्थ चेकअप, कभी क्या क्या, तो वो सहायता करने से एक तो पुण्यवानी कर्म बनते हैं, उनको भी अच्छा एक परिवार जैसी भावना आती है, और एक अच्छा हौसले से काम करते हैं, तो इसी तरह अपने को सफलता मिल सकती है। कि एक बात आती है कि कीप लर्निंग,
0: जी
1: है ना, एक लर्निंग का भी एक होता है कि अपन अपन
0: हाँ,
1: देखते
0: सीखते रहे
1: हैं
0: आगे।
1: आगे से आगे सीखना है कि महान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है, वे अपने काम को पूरा करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, या फिर एक नई सीख ग्रहण करते हैं, वे ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि यह काम मैं नहीं कर सकता या मैं असफल हो गए। वो काम करेगा, सीखेगा, उसमें असफल भी हुआ तो उसमें सीख के नया डेवलपमेंट करेगा, नया चेंजेस लाएगा, और उसमें सफलता अवश्य पाएगा ही पाएगा। जैसे हमको एक समस्या, हमने बिजनेस शुरू करा तो ये आई थी,
0: जी
1: हमारे मार्केट में कम रेट के लो क्वालिटी के इतने मसाले आते थे, तो वो हम उस पे हार नहीं माने, उसका एनालिसिस किया, एक एक पैकेट का प्लेसमेंट किया, और
0: जी
1: एक पैकेट का 10 पैकेट हुआ, 10 का 100 हुआ, और इसी तरह बिजनेस बढ़ता गया। तो कीप लर्निंग, कुछ न कुछ हमें सीखना है, कुछ नया नया डेवलपमेंट करना है, ये मैं नहीं कर सकता इस बात पर हम जोर देते, उसकी बजाय मैं इसे कैसे कर सकता हूँ वो हमें लेना है, और अब तक टास्क पूरा कर ले उसका वे समाधान नहीं खोज लेवे तब तक उस काम को पूरा करने के लिए नए तरीके खोजते ही रहना चाहिए, खोजते ही रहना चाहिए, एक तरह से अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीखते ही रहना हमें चाहिए। और बाकी बात
0: बिल्कुल
1: कि डिटेल रिकॉर्ड्स, जैसे अपना बिजनेस का रिकॉर्ड होना भी जरूरी है, कितनी अपनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितनी
0: कहाँ आप
1: अपनी,
0: सुंदर रेडियो मधु
1: हाँ आइए आवाज, हेलो,
0: आ गया
1: आई
0: किसी का ना, इसीलिए लिया। हाँ जी,
1: कीप डिटेल्स ऑफ रिकॉर्ड, अपने बिजनेस का रिकॉर्ड होना चाहिए, कितनी अपनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है। कई बार पता चलता है कि एक्सपेंस कहीं ज्यादा हो रहा है और फिर अपन बाद में पछतावा होता है कि ये क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, एडवर्टाइज में ज्यादा हो रहा है, कभी परिवार की समस्या आती है उसमें ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए
0: जी।
1: पापा की पॉलिसी थी कि जैसे उनकी इनकम 1 लाख रुपया थी तो बचत 2000 महीने की, 1000 रुपया महीने की करते थे। फिर आगे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई तो वो बचत को बढ़ाते गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो वो चीज जो बचत होती है जीवन में बहुत आगे काम लगता है। अपन लोग देते व्यापारी बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, पर उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके परिवार में कोई सामाजिक फंक्शन आ गया है, विवाह मैरिज आ गया है, बीमारी आ गई, मकान बनाना है, कार लाना है, तो वो बिजनेस में से पैसे निकाल के उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। पहले ये सोचना है कि अपनों को क्या लाना है, मकान बनाना है तो उसका फंड का प्रोविजन करते जाइए, अपने पास 50-60% ऊपर फंड हो तो मकान बनाने का प्लान करें, नहीं कि अपने पास फंड नहीं है और बिजनेस में से निकाल के बना ले, अपने पास
0: तो
1: पैसा
0: रोलिंग
1: नहीं
0: में
1: है,
0: अटक जाएगा
1: हाँ कार लेने का प्लान कर ले तो ये भी गलत है।
0: धीरे
1: और अपने पास 10 लाख रुपया है तो अपन 10 लाख की कार लाए, हमारे पिताजी जितनी कैपेसिटी थी वैसा वैसे ही कार लाते गए, 10 लाख की वो कार भी हमने यूज की, मारुति की भी यूज करी, और आज की तारीख में अपने पास अच्छा पैसा है तो मर्सिडीज भी यूज कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है
0: बिल्कुल
1: कि उसी मर्सिडीज ले आए, हम चाहते तो 5 साल 10 साल पहले भी मर्सिडीज ला सकते थे, जो जिस समय जैसी जैसी सुविधा है वैसा वैसा उपयोग चीजों का करना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल दिखावे का शोबाजी का बहुत बड़ा चल रहा है, शादी ब्याह में
0: जी
1: देखते
0: जी
1: लोग दिखावे के लिए बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, कैपेसिटी होती है 20 लाख की और खर्चा करते हैं 50 लाख 1 करोड़ रुपया, वो भी एक गलत चीज है ना। मेरे पिताजी 20 लाख की कैपेसिटी तो 15 लाख या 20 लाख तक सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं कि 20 लाख का 50 लाख तक खर्चा कर देंगे, तो वो चीज
0: बिल्कुल
1: के लिए जीवन में अच्छी है। और रिकॉर्ड भी रखने से और अपनी अर्निंग के अनुसार बचत करने से बहुत अच्छा रहता है। फिर एक बात होती है, गिव डिस्काउंट टू योर कस्टमर, कस्टमर को जितना हम बेनिफिट देंगे उतना हमें सफलता मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: जैसे
0: बिल्कुल
1: अपन देखते हैं उसका जो टर्नओवर है 1200 करोड़ रुपया, तो वो सफल कैसे पाए, उसने एकदम मिनिमम मार्जिन से बिजनेस चालू करा, एकदम मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट में उनका 2% भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता है, पर उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, उन्होंने रॉ मटेरियल जो होता है वो सीजन के पहले इन्वेस्ट करते हैं तो कम रेट में मिल जाता है, उसका उसमें प्रॉफिट मिल जाता है, वो टाइप करते हैं खुद प्रोडक्शन जो फार्मर से उनसे टाइप करके कम रेट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें हासिल करते हैं, तो उनकी
0: बिल्कुल
1: पॉलिसी है कम रेट में ज्यादा क्वांटिटी देना। सबकी अलग अलग बिजनेस की अलग अलग पॉलिसी होती है, वाघ बकरी चाय है तो उसकी पॉलिसी होती है
0: जी
1: प्राइस अलग अलग टेस्ट डेवलप करना, जैसे मैं चाय यहाँ रखूंगा गुजरात में वो चाय राजस्थान में काम नहीं लगेगी, वो चाय महाराष्ट्र में काम नहीं लगेगी, तो सबका अपना सोचने का तरीका अलग अलग होता है। अपन बिजनेसमैन सक्सेस कैसे हुए वो स्टोरी पढ़ के या सुन के उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसने
0: बिल्कुल
1: कैसे किस तरीके से सफलता पाई है, कैसे स्टेप लिए है, क्या क्या स्टेप लिए है वो देखना है, और अपने में इंडस्ट्री में वो सेट हो रहा है कि नहीं वो देखना है ना। वो होगा तो अपन वो अपना सबका क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग अलग
0: बिल्कुल
1: अलग सबका वो रहता है सिचुएशन, ऐसा नहीं कि आपका
0: जी
1: सिचुएशन सिचुएशन है आपका वो है तो मैं आपको देख के मैं आपका कर लूं, आप प्रायोग से जुड़े हुए हैं तो आप तो बहुत हैप्पी है और आपने डिओस मतलब आपने वहां पे रह के पूरा अभ्यास किया है आबू में रह के रमेश भाई जी ने, तो मैं चाहूंगा कि आपके जैसे मैं भी बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम फैमिली में
0: बिल्कुल
1: रहते हैं, हम को सबके अपने अपने सरकमस्टेंसेस रहते हैं तो सबको अपने अपने अनुसार चलना पड़ता है, पर एक बात ये है
0: बिल्कुल
1: कि अपने को अपने जीवन में चेंजेस किस तरह ला सकते हैं, तो राज्यों के अभ्यास से ला सकते हैं, इसमें अवश्य सफलता
0: जी
1: मिलती है। उससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहला हेल्थ पे इफेक्ट अच्छा आता है, अपनी हेल्थ अच्छी बनी रहती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, क्या करना क्या नहीं करना वो एक समझ आती है। दूसरा बिजनेस में अपना टाइम सेव हो जाता है, अपना टाइम किस चीज में फोकस करना उसी पे अपना फोकस जाता है। तीसरा फैमिली से मधुरता से रिलेशनशिप बढ़ जाती है, आत्मा
0: बिल्कुल
1: आत्मा की स्मृति का अभ्यास किया जाता है, उससे आत्मीयता सब लोगों से बढ़ जाती है, तो अपने कस्टमर से भी बढ़
0: जी
1: जाता है, सब अपने लगते हैं उसको। मैं वो चीटिंग करके बहुत सारा धन ले लूं, ऐसे भाव नहीं आते हैं। ज्यादा कम प्रॉफिट में ज्यादा टर्नओवर कैसे करूं, वो एक सोच डेवलप होती है। और ये जमाना कंपटीशन का है, अपन देखते हैं कि कई लोग कंपटीशन बहुत करते हैं, एकदम लो मार्जिन में भी कर लेते हैं, और कई लोग ज्यादा प्रॉफिट में भी करते हैं। तो कम प्रॉफिट वाला भी चीज अच्छे सफलता दिला सकता है। और फिर अपने को कुछ ना
0: जी
1: कुछ नया नया प्रॉपर्टी करना।
0: जी जी
1: हाँ जी,
0: बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे हम बिजनेस में सफलता पा सकते हैं, ये आपने बताया और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। वो आपने ए टू जेड शुरुआत से लेकर एंड तक की बातें आपने बताया कि शुरू शुरू में आपको जो है बहुत ही छोटे स्तर से भी आप शुरू कर सकते हैं और मार्केट सर्वे करके भी आप अपने आप को परख सकते हैं और आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और लोगों के जेब में जेब के अनुसार हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी ना हो लेकिन लोग खरीद सके ऐसा उनका मार्जिन हो। तो ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया क्योंकि आपने अनुभव किया है और आप पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो आज बिजनेस को आपने मेंटेन करके उसके जो है एक अच्छा स्टेटस बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो वसंत मसाले हैं उनके बारे में भी बताइए, किस किस टाइप के आप मसाले ही बनाते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐड किया है आपने?
1: हम जैसे बेसिक मसाले होते हैं चिली, टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड्स पाउडर। और दूसरे हमने डेवलप किया है पिकल मसाला, जो 12 महीने तक लाल रहता है, उसमें कालासपन नहीं आता है, वो हमारी विशेषता
0: अच्छा
1: है, बहुत फेमस है। मतलब सभी स्टेट में ऐसा डेवलप किया है कि कोई भी स्टेट में कोई भी कंट्री में यूज करेगा व्यक्ति, मल्टीपर्पज यूज कर सकता है। और अंगूर है, उसका भी अचार बना सकता है, इंस्टेंट अचार भी बना सकता है, कभी अचानक गेस्ट आ गए तो भी यूज कर सकता है, फॉरेन में स्टूडेंट जाते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं,
0: अच्छा
1: पे ब्रेड पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कुमठी कश्मीरी मिर्च, उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर होता है, कम पिटास
0: अच्छा
1: डाला, वो हमारी बेस्ट चीज है। ऐसी कोई भी कंपनी इस तरह की क्वालिटी नहीं बनाई है, बनाती तो है पर इस तरह की क्वालिटी नहीं बनाई है। इसका प्रोक्योरमेंट हम बहुत सही तरीके से करते हैं, उसका प्रोक्योरमेंट करते हुए लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं, हमारे यहाँ लेबोरेटरी भी है और
0: अच्छा
1: ऑटोमेटेड प्लांट है हमारा, जो 2 लाख स्क्वेयर फीट एरिया में है। और उसमें एक बोरी कट होती है, उसमें बीज, डंखल, कंकर सेपरेट होते हैं, कि वो बोरी का मिर्ची जैसे आगे आगे बढ़ता है प्रोसेस के लिए, तो ग्राइंडिंग होता है, 2 बार छननी होती है, उसमें से बारीक डस्ट भी निकल जाती है, बैक्टीरिया भी रिमूव होता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे प्रोडक्शन करती है, उस तरह का प्रोडक्शन और FSSC रूल्स का फॉलो करते हैं, BRC रूल्स की प्रोसीजर चल रही है, ISO 20 की है हमारे पास, NMR भी है, कई तरह के सर्टिफिकेशन है, उसका रूल्स फॉर्म फॉलो करते हैं। और रॉ मटेरियल का हर का बेच का टेस्ट होता है, हर क्वालिटी का टेस्ट होता है। और क्वालिटी और टेस्ट हमारे भाई राजकमल है वो डेवलप करते हैं, हमारे एक और ब्रदर है आशीष, वो क्वालिटी प्रोक्योर करते हैं। हम 4 भाई का जॉइंट फैमिली है, हमारे सबसे बड़े भैया चंद्रकांत भैया बहुत कम एज में उन्होंने बिजनेस शुरुआत में जुड़ गए थे, मतलब समझो 12-14 साल में
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो उन्होंने वो नहीं की पर ये प्रैक्टिकली कॉलेज अप्लाई किया, जरूर नहीं कि वो एजुकेशन लेना वो क्वालिफिकेशन लेना, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में जुड़ गए, तो आज वो सफलतम व्यक्ति बने रहे हैं। और सब पूरा ओवरऑल देखते हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं, हमारे लिए रिस्पेक्ट, ऐसा हमारा परिवार है, 20 जनों का जॉइंट परिवार, हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ साधु संतों का आवागमन भी होता है, सभी संतों का हम वेलकम करते हैं। और 150 जगह चेक होता है, जैसे
0: अच्छा।
1: हाँ वजन चेक होता है, क्वालिटी चेक होता है, रॉ मटेरियल चेक होता है, डिस्प्ले में है।
0: जी जी
1: 100 का चेकिंग होता है। हमारे मार्केटिंग है MP, गुजरात, राजस्थान और फॉरेन में 14 कंट्री में जाता है, UK में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, साउथ अफ्रीका और बाकी की और कंट्री में भी जाता है। तो हमारा बाबा पुराना बिजनेस है, और इसमें नई नई प्रोडक्ट रखी, जैसे कि आखे मसाले, होल मसाले,

0: जीरा, राई, मेथी, वो जैसे पानी पूरी मसाला, सांबर मसाला, पाव भाजी, चना छोले, किचन किंग मसाला, ऐसे सब तरह के मसाले प्रोवाइड कर रहे हैं हमने, तो
1: जी,
0: इस ये प्रोडक्ट
1: बहुत
0: है
1: ही अच्छी
0: एक।
1: बात आपने बताया क्वालिटी के बारे में और कौन कौन सी चीजें आपके हैं ये भी आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को अच्छा लग रहा है। और कर्नल साहब जो हैं राजस्थान से जुड़े हुए हैं, सोलंकी साहब ने आपके लिए याद भेजा है और आपके लिए लिखते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और ओम प्रकाश जी, शुद्ध विचार, मन मन में लगन और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कहकर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं, जिससे हम बिजनेस में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपने कहा है। इसके साथ ही आपको याद करते हुए शुभकामनाएं दी और बहुत ही अच्छी वार्ता हो रही है, ये भी बताया। प्रवीणा जी ने भी बहुत ही अच्छा वार्ता जानकारी मिल रही है, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अब कितना टाइम हमको लगता है किसी नए बिजनेस को अगर हम शुरू करते हैं तो कितना टाइम का वेटिंग करना चाहिए हमें? जैसे आपने कहा कि 1 महीना मजदूर जो है वेट करता है अगर कोई कंपनी में काम करता है, और जो साइट पे काम करता है वो डेली इनकम करने के लिए सोचता है, तो एक बिजनेसमैन कितना समय तक अपनी नया अगर शॉप ही है या कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कम से कम कितना टाइम उनको वेटिंग पीरियड में रहना है ताकि उनका एवरेज इनकम शुरू हो जाए?
0: हाँ, वो अपने सरकमटेंसेस पे डिपेंड है, सबका अलग अलग सरकमटेंसेस रहता है।
1: अच्छा।
0: जैसे किस फील्ड से आप आए हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना फंड है, उस हिसाब से वो बात मैटर करती है। अगर आपके फैमिली में बिजनेस है और आप उसमें जुड़े, तो ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड बना हुआ है। आजकल कई बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स से जुड़ना नहीं चाहते और अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, पर अगर फादर जुड़ के उसमें नवीनता लाए, ऑनलाइन बिजनेस करवाए, उसमें भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट रखे, तो वो अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। और कई स्टूडेंट देखते हैं, जैसे शार्क टैंक में दिखाते हैं कि कई लोग बहुत सफल हो रहे हैं, नए नए आइडिया ला रहे, नए नए प्रोडक्ट ला रहे, नए नए कंसेप्ट ला रहे। एक एग्जाम्पल है कि निर्मल पढ़ा हुआ, MBA किया हुआ लड़के ने
1: जी जी
0: एक आटलरी खोली चाय नाश्ते की, और रेडी टू कुक। तो उसने आटलरी खोली, सक्सेस रहा, एक का दो पांच दस ऐसे 20 चैनल खोल लिए। एक टी पॉट करके है, उसने ऐसा कंसेप्ट लाया कि आपके यहाँ चाय दुकान पे आइए, इंटरनेट सर्फिंग कीजिए, आप आराम से बैठे टाइम स्पेंड करें, तो कॉलेजियन बिजनेसमैन वहां के बैठते हैं, साथ में नाश्ता वगैरह प्रोवाइड करता है। तो वो कंसेप्ट लेके एक ब्रांच खोली, दूसरी तीसरी ऐसे, शायद आउट ऑफ कंट्री में भी उसने ब्रांचे खोल दी। तो कहने का मतलब कि नए नए कंसेप्ट लाना चाहिए, नए नए आइडिया लाना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए। आप जो करना चाहते हो उसमें पहले कस्टमर का सोचो, ऐसे कस्टमर आप जाओ, उनका उनके सर्वे करो, किस तरह की क्वालिटी पसंद है, किस तरह की सर्विस पसंद है। जैसे दुकानदार है, मैं दुकानदार की चलो बात करता हूँ, कि दुकानदार के यहाँ कस्टमर आता है तो दुकानदार कस्टमर क्या चाहता है कि उसके प्रेम से बोले, मिठास से बोले, अच्छे से स्माइल देके बात
1: बिल्कुल
0: करे, तो उस दुकानदार के यहाँ बिल्कुल है ना। एक तो ये, फिर दूसरी बात कस्टमर चाहता है क्वालिटी, इसके यहाँ क्वालिटी अच्छी है, दूसरे दुकान पे लाइन लगती है, एक दुकान पे लाइन नहीं लगती है, तो क्या रीजन कि वो क्वालिटी बेस रखता है। तीसरी बात है, इतना डिस्काउंट कस्टमर को अपन प्रोवाइड करते हैं। फिर चौथी बात है सर्विस, जैसे किसी के यहाँ फंक्शन है, किसी का कुछ है, तो आप सर्विस घर तक माल पहुंचा देंगे, तो सर्विस, तो ये तो मेन बेसिक बात होती है। पर साथ साथ में अपन सब बैलेंस करते जाएंगे, फैमिली का बैलेंस, कर्म में पुण्य कर्म जमा करने का बैलेंस, फिर बिजनेस में नए नए आइडियाज लाने का बैलेंस, तो सोचेंगे कि अरे अपने पास इतना टाइम कहाँ है। कोई भी दुकानदार के हम जाते हैं, आपको राजू गैस करो, तो बोले हमारे पास टाइम कहाँ है, सुबह से दुकान खोलते 9 बजे, रात को 8-9 बज जाती है, बाद में हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो हम कैसे करें, हम अकेले व्यक्ति है। आजकल जॉइंट फैमिली कम होती जा रही है, वो भी लॉस हो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो एक सिंगल पर्सन कैसे करेगा, क्या करेगा। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया, राजयोग का अभ्यास करने से सुबह का टाइम मिल जाता है, रात का टाइम बच जाता है अपना बिन जरूरी, दूसरा तीसरा एनर्जी सेव होती है,

0: तो स्टेमिना मिल जाता है। चौथा, अच्छी अच्छी नई नई सोच आती है कि सिर्फ मैं किराना का कर रहा हूँ तो किराना ही नहीं करना है, उसमें मुझे नई दो प्रोडक्ट ऐड करनी है कि जो जैसे इंटीरियर एरिया है वहां पे प्रोडक्ट सिटी में मिलती है वैसी प्रोडक्ट में ला के सेल करूँ, वो क्वालिटी में वैसे दू, इस तरह का वो करूँ। तो फिर उसका एडवर्टाइज भी करना है, अपनी दुकान का एडवर्टाइज
1: जी
0: पेपर
1: जी
0: में हैंडबिल देके या पेपर में एड या मैं सर्विस प्रोवाइड करके ऐसे दुकानदार कर सकता है। तो ये हुई दुकानदार की बात। और जो बिजनेस फैक्ट्री प्लांट लेवल पे सोचता है, तो कोई बिजनेस में शुरुआत करता है 10-20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, सबका अलग अलग फंड होता है, अलग अलग
1: बिल्कुल
0: एक्सपीरियंस होता है। तो एक भाई ऐसा करा कि जो मिट्टी होती है उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मिट्टी की ऐसी काफी चीजें बनी, जैसे मिट्टी का कूलर बनाए, फिर मिट्टी का एक फ्रिज बनाए, तो वो नेचुरल तरीका था, ट्रीटमेंट था, और उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, हमारा गुजरात का सौराष्ट्र का वो भाई। तो उसने एक नया कंसेप्ट लाया, वो सक्सेस हुआ। तो
1: ओम प्रकाश जी,
0: वे
1: काफी अच्छी बातें रहा है। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज आपके यहाँ बताना चाहेंगे आप, थोड़ा सा मैं सभी का बताना चाहेंगे आप, एक संदेश दीजिए, उसके बाद फिर हम पूरा
0: एक
1: करते हैं।
0: संदेश
1: जी
0: जी
1: दीजिए, उसके बाद फिर हम पूरा
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: बस आप इन्हें शुभकामना करना चाहूंगा, आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, तो आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मन के शुभ भाव अच्छे बनाए रखे, मन के शुभ भाव भी जैसे बनाए रखे, किस तरह ने गलत करा है तो उसके प्रति शुभ भाव किस तरह ने गलत करना है कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, रखना है कि अपोजिट को सद्बुद्धि दे, कंपनी में आप गलत कर रहे हैं तो उसको बोले कि भगवान सद्बुद्धि दे, तो अपने को देश के लिए सोचना है, परिवार के लिए सोचना है कि भगवान परमात्मा की केयर में आ रही है, भगवान सब सुखी हो रहे हैं, सब स्वस्थ बन रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो वो अच्छा बन रहे हैं, तो वो अपने सोचेंगे कि इसका बुरा हो सोचेंगे कि बुरा साथ में होता है,
1: बिल्कुल
0: अपना बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, देश सेवा का काम करना है, भलाई का काम करना है, और बैलेंस रखना है सब तरह का, परिवार में और ऐसे स्पिरिचुअलिटी में, ये सोशल में, और ऐसे मैंने बताया उस तरह बैलेंस रखना।
1: चलिए, ओम प्रकाश भंडारी जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया, अपना अनुभव शेयर किया, वसंत मसाला का पूरा हिस्ट्री आपने बताया, और साथ ही साथ किस तरह से बिजनेस आप करते हैं वो भी बताया, और बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी आपने तरीका बताया, और उसके साथ में बिजनेस के साथ साथ हारमोनी कैसे अपने मन को शांत रखने के लिए, हारमोनी बनाए रखने के लिए बिजनेस करते हुए, तो अपने मन को बैलेंस रखने के लिए आपने राजयोग का सहारा लेने के लिए बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिला, और मुझे लगता है कि हमारे जो नए मित्र जो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी बातें उनके लिए बहुत काम आएगी, जो नए युवा बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपकी ये बातें उनके जीवन के सफलता के नए नए आयाम खोलने में कारगर सिद्ध होगी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी तरह काम करते रहें, पुण्य का काम भी करते हैं आप, वर्कर्स का ध्यान रखते हैं सबसे बड़ी बात ये है, और उनका ख्याल रखते हैं, उनका मेडिकल फैसिलिटी, उनके कपड़े लत्ते और उनकी जरूरतों को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं, तो ये आपकी सफलता का एक और मायना है कि आप जिनके साथ जुड़ते हैं या जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनका ख्याल रखना भी आपका फर्ज बनता है, जिससे आपके बिजनेस में उन्नति होती है, दुआएं मिल जाती है, ये भी आपने कहा, तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी जो दर्शक मित्र देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन अच्छे अच्छे बातों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आप भी सफलता पाएं, अच्छा बिजनेस करें, और सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना करते रहें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली, हैप्पी और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप सभी को, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है जब मैं छोटा था तो मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता था। एक बार जब क्लास में मेरे कंधे पर एक मकड़ी गिरी तो मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरी क्लास के सभी बच्चे डर गए। सुना दोस्तों, बादल गरज रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है।
1: सुनी दीपू और बेला आज मीना के घर पे इकट्ठा हुए हैं, चलो हम भी वहीं चलते हैं।
2: क्या हुआ सुमी, तुम डर क्यों गई?
3: चाची, जब भी बादल गरजते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा आसमान ही गिर जाएगा। मैं तो बहुत डर जाती हूँ।
4: इसमें डरने की क्या बात है सुमी, बारिश से पहले बादल तो गरजते ही हैं।
5: दीपू, हम सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, तुम्हें भी तो किसी चीज से डर लगता होगा, है ना?
4: हाँ, सांपों से। एक बार मैंने एक सांप को अपने घर के बाहर रेंगते हुए देखा। वो था तो मुझसे बहुत दूर, मगर उसे देखते ही मैं सीधा अंदर भागा माँ के पास।
6: अगर ध्यान से चलो और सांपों से दूर रहो तो वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। दीपू,
4: सो तो है। बेला दीदी, अब इतनी बड़ी हो गई है, आप तो किसी भी चीज से नहीं डरती होंगी, है ना?
6: दीपू, मैंने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन मुझे गहरे पानी से बहुत डर लगता है। कुआं, नदी, तालाब, इन सब के पास जाते ही मेरे पांव कांपने लगते हैं।
7: चाची, मैं अब जल्दी ही तैरना सीखूंगी, इससे मेरे पानी का डर छू हो जाएगा।
5: और तुम अपने डर को छू करने के लिए क्या करोगी सुमी?
3: चाची, मैं तो जोर जोर से गाऊंगी।
8: जोर से गाऊंगी, शोर मचाऊंगी।
5: और तुम दीपू?
4: मैं तो अपने पास हमेशा एक डंडा रखूंगा सांपों को दूर रखने के लिए।
3: अरे मीना, तुमने तो हमें बताया ही नहीं, तुम्हें किस चीज से डर लगता है?
9: मुझे जब मैं और राजू छोटे थे ना सुमी, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता था।
5: राजू, मीना, याद है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे डर को कैसे छू किया था?
10: हाँ माँ।
6: तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्या किया था मीना, हमें भी बताओ ना।
4: हाँ मीना,
3: बताओ ना।
9: सुनो, जब हम पहुँचे घर के अंदर, कमरे में था घना अंधेरा, टप टप टप कुछ टपक रहा था, जोर से धड़का दिल ये मेरा।
11: छठ बाबा ने बटन दबाया, बल्ब ने उजियारा फैलाया, हंसे सभी हम जोर जोर से, क्योंकि नल था खुला हुआ।
9: थर थर थर हम लगे कांपने, क्योंकि हिली थी ये धरती, झांका जब खिड़की से बाहर, रेल थी वो छुक छुक करती। और उस दिन के बाद से जब भी हमें डर लगता है हम इसी किस्से को याद करते हैं।
3: चाची, आपको कभी भी डर नहीं लगा?
5: सुमी, एक बार मुझे बहुत डर लगा था रानी को देखकर।
4: रानी को देखकर?
3: ओफो दीपू, सुनने दो ना। सुनाइए ना चाची।
5: तो सुनो, रानी को पैदा हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। वैसे तो रात को जब भी रानी नींद से जागती थी तो उसकी आवाज सुनकर मेरी भी आँख खुल जाती थी, लेकिन उस रात वो बिना हिले बिल्कुल चुपचाप लेटी रही।
4: फिर क्या हुआ चाची?
5: फिर मैंने रानी को पास से देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। जब मैंने उसे छुआ तो जाकर उसने जरा सा पैर मारा, लेकिन वो छुए बिना हिलडुल ही नहीं रही थी।
6: चाची, आप तो काफी घबरा गई होंगी।
5: मेरा तो दिल ही बैठ गया बेला। यही नहीं, रानी ने दूध तक पीना बंद कर दिया, याद है ना मीना?
9: हाँ माँ। पता है बेला दीदी, वैसे तो रानी को जब भी भूख लगती थी वो रोने लगती थी,
5: मगर उस दिन ना ही रानी के मुंह से आवाज निकली और ना ही वो हिली डुली। पता है बच्चों, जब मैंने रानी को गोद में लिया तो वो बिल्कुल ठंडी लग रही थी। रानी को इस हालत में देखकर मैं सचमुच डर गई।
11: फिर आपका डर कैसे छू हुआ माँ?
5: राजू बेटा, मैंने सोचा मेरा डर तो तभी छू होगा जब मुझे ठीक से पता चल जाए कि रानी को हुआ क्या है। मैं उसे तुरंत डॉक्टर बाबू के पास ले गई।
6: चाची, फिर डॉक्टर बाबू ने रानी का इलाज किया है ना?
5: नहीं बेला, डॉक्टर बाबू ने हमें बताया कि रानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और उसका अस्पताल में इलाज कराना जरूरी है, इसलिए मैं और मीना के पिताजी रानी को अस्पताल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि रानी को अस्पताल लाकर हमने बहुत समझदारी का काम किया। रानी की हालत काफी गंभीर थी।
3: फिर तो रानी ठीक हो गई ना चाची?
5: हाँ सुमी, रानी ठीक हो गई। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स बहन जी ने रानी का इलाज किया और उसकी जान बचा ली।
12: और आप रानी को घर वापस ले आए, है ना चाची?
5: नहीं दीपू, रानी का पूरा इलाज करने के लिए हमें उसे अस्पताल में 2 दिन तक रखना पड़ा।
6: पर रानी को हुआ क्या था चाची?
5: रानी को ठंड लग गई थी बेला। डॉक्टर ने कहा कि पैदा होने के कम से कम 1 महीने तक के नवजात बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस उम्र के बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी नहीं होती।
6: तो चाची, हमें कैसे पता चल सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी है?
5: घर में सभी को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए बेला। जैसे अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे, या हिलना डुलना बंद कर दे, या उसका शरीर छूने में ठंडा लगे,
6: तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना चाची?
5: यही नहीं बेला, कभी कभी उन्हें उल्टियाँ भी आ सकती हैं, या वो सुस्त हो जाते हैं, या उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इन सभी को खतरे के लक्षण मानकर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, नहीं तो बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
3: माँ, आपने अच्छा किया जो रानी को समय पर अस्पताल ले गई। आपके इस डर ने ही रानी को बचा लिया।
6: तुमने ठीक कहा मीना, चाची के डर की कहानी सुन के मैंने तो ठान लिया है।
5: क्या ठान लिया बेला?
6: चाची, कविता दीदी है ना?
5: कविता दीदी?
6: मेरी मौसी जी की बेटी। जब उनका बच्चा पैदा होगा, मैं पहले महीने में इस बात का ध्यान रखूंगी कि मुन्ने को ठंड ना लगे, और उस पर पूरी नजर रखूंगी ताकि अगर कोई खतरे के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसका इलाज करवा सकें।
5: और तुम यही बात अपनी कविता दीदी को भी समझा देना। नवजात शिशु में खतरे के लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
6: जरूर समझाऊंगी चाची।
3: अरे, अब तो बादल भी नहीं गरज रहे, बारिश भी रुक गई है। मीना, तुम्हारे साथ बात करते करते मैं तो अपना डर भूल ही गई। देखा सुमी, कितना मजा आया?
8: मजा आया, डर को भगाया।
1: तो समझे दोस्तों, अगर 1 महीने या उससे छोटी उम्र के बच्चे में कोई भी खतरे के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। अब चलो चलकर देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
3: होता जब बच्चा बीमार दिखते हैं कई आसार।
8: ठंडा शरीर ना हिले डुले, ले जाओ अस्पताल बिना भूले।
1: क्या कविता बनाई मीना और मिट्ठू ने मिलकर। अब एक गाने का मजा भी लेते हैं।

0: गाना तो सचमुच कमाल का था। अब चलते हैं मीना की क्लास में।
1: क्या कहा, क्यों?
0: अरे भाई खेलना नहीं है। चलो जल्दी चलो।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे एक नया खेल। मैं आपको तीन चार कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
3: जी बहन जी।
2: आज की पहली कड़ी है एक मशहूर इमारत के बारे में। पहली कड़ी, दिल्ली की मशहूर इमारत भारत की है शान। जिसने बनवाया था उसको था वो मुगल सुल्तान। कोई बता सकता है इसका नाम?
4: क्या होगा?
5: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है गोलू, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों। सामने इसके जामा मस्जिद, पीछे यमुना बहती, आजादी के दिन तो सबकी नजरें इस पर रहती।
6: समझ गया बहन जी, इंडिया गेट।
2: इंडिया गेट तो सही जवाब नहीं है मोनू।
7: हाँ बहन जी, क्योंकि इंडिया गेट ना तो यमुना के पास है ना ही जामा मस्जिद के, इसलिए इंडिया गेट सही जवाब नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने। तो बच्चों सोचो सही जवाब।
6: अगली कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है मिली, तीसरी कड़ी बताती हूँ। तो सुनो बच्चों, तीसरी कड़ी, जब लहराता इस पे तिरंगा लगता खूब कमाल। आम भी है और खास भी है, ये रंग है इसका लाल।
5: मैं समझ गई बहन जी, लाल किला।
2: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी, योर इंग्लिश टीचर। एंड एज यू ऑल नो, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वी लर्न इट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक टुडे, वी रीड इट कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं और बुक का नाम है गोल्डन रेस। लेसन अभी जो चल रहा है वो है लेसन 6। टेक्स्ट हम सबका पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं, ग्रामर पोर्शन में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में है होते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं आज। तो फर्स्ट है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इनवर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो कहने वाले के वास्तविक जो शब्द हैं वो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए होते हैं। सेकंड, इन द इनडायरेक्ट स्पीच द इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड दैट, और उनके बीच में क्या लगा देते हैं, एक वर्ड होता है दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और खासकर किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। द कॉमा आफ्टर द मेन वर्ब्स डिसअपीयर्स, और मेन वर्ब के बाहर जो कॉमा होता है वो भी चला जाता है। नंबर 4, द टेंसेस एंड द प्रोनाउंस आर ऑल्सो चेंज्ड। टेंस और जो प्रोनाउन होते हैं काल और सर्वनाम वो भी बदल दिए जाते हैं। 5th है, वर्ड्स दैट इंडिकेट्स नियरनेस, जो पास के शब्द होते हैं आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स दैट सिग्निफाई डिस्टेंस, दूर के शब्दों में वो बदल दिए जाते हैं। ओके, लेट्स गेट फेमिलियर विद सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट विल बी ऑफ अवर इमेंस यूज वाइल लर्निंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको अब समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता सेड टू गीता, माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। इन दिस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पहला वाला भाग कॉमा के साथ लिखा हुआ है, सीता सेड टू गीता कॉमा, फिर दूसरा वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा में है, माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, मेरी माता जी मधुर गीत गाती हैं। सेड टू इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पहला वाला भाग है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सीता वाज, सीता इज द सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट है ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड गीता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स और माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स आर द एक्चुअल वर्ड्स सेड बाय सीता टू गीता, और ये वो शब्द है जो सीता ने गीता से कहे विद इन इन्वर्टेड कॉमास, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो दूसरा वाला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और यही सब हमें पढ़ना है कि हम कैसे इनको पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। भाई डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रॉमिस्ड एक्सेट्रा। तो जो सेड टू होता है वो टोल्ड में, एडेड, ऑब्जर्व्ड, रिमार्क्ड, प्रोमिस्ड इन सब में बदल दिया जाता है. सेड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, और केवल सेड जो है वो टोल्ड में बदल सकते हैं. ओनली व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो भी तब जब ऑब्जेक्ट हो बाद में, नहीं तो नहीं. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड विल नॉट चेंज, तो सेड को चेंज नहीं करते. द अदर वर्ब्स मे बी यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच डिपेंडिंग अपॉन द मैनर एंड द पर्पस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. और जो दूसरी वर्ब्स होती हैं खासकर रिपोर्टेड स्पीच में, वो वाक्य के अनुसार बदलती हैं या उद्देश्य के अनुसार बदलती. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू श्याम, जैसे कि उदाहरण के लिए उसने श्याम से कहा आई एम गोइंग टू अजमेर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. तो अब ही टोल्ड श्याम दैट ही वॉज गोइंग टू अजमेर, उसने श्याम को बताया कि वो अजमेर जा रहा था. रमेश सेड राहुल इज वेरी क्लेवर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. रमेश रिमार्क्ड दैट राहुल वॉज वेरी क्लेवर. इस तरीके से बदलते हैं. सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज्ड, उसमें फिर जो टेंस है वो भी बदल दिया जाएगा इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. ही सेड, देखिए ये पास्ट टेंस हो गया, ही सेड पास्ट सिंपल, आई एम वेटिंग, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग, ये चेंज हो गया ना. नंबर तीन, वी कैन लर्न इट इन अ बेटर वे थ्रू दिस टेबल. अब एक नीचे टेबल दी हुई, उससे हम समझ सकते हैं इसको. एक तरफ है लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट और राइट की तरफ है इनडायरेक्ट. देखिए प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल पास्ट इनडेफिनेट या पास्ट सिंपल में बदल जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं, अब इसमें वो भी देख लीजिए, टेबल में सब कुछ दिया हुआ है. ऑक्सिलरी वर्ब विल, हम ये मॉडल्स में भी पढ़ चुके हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, वाज वर had been, okay. Fourth rule है, if the reporting verb is in present tense or future tense, the tense of the verb in the reported speech will not change. अगर reporting verb present or future में है, यानी पहला वाला भाग, तो जो second भाग है हमारा reported speech का, वो नहीं बदलता. जैसे देखिए madam says, अब ये madam says क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, से के साथ एस लगा है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. मैडम सेज दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, टेंस भी चेंज नहीं हुआ. मीना विल से ही वॉज रॉन्ग, मीना विल से दैट ही वॉज रॉन्ग, यह भी चेंज नहीं हुआ. एक्सेप्शन इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सम यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट. अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, जैसे हमेशा जो चीज होने वाली है, जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, द टेंस ऑफ द वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड, तो वो नहीं चेंज होगा. द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग. He told me that he goes for a walk daily in the morning. Next, fifth rules जो है वो rules for changing pronouns. अब pronoun के लिए भी एक table दी हुई है. Let us first have the table of pronouns, type of persons and therefore pronouns, persons, subjective, objective. I, me, first person, okay. तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ओके, शी का हर, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा। कुछ कुछ पैसे वॉइस जैसा है। पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव, मे माइन माई सेल्फ, अवर अवर्स अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिज का हिमसेल्फ, हर हर्स हर सेल्फ, इट्स इट सेल्फ, दियर दियर्स दियर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी दूसरे वाले भाग के रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ही सेड, जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। तो अब इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको कैसे चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड डू इट हिमसेल्फ, इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। शी सेड टू मी यू आर रॉन्ग, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग। अब मी था तो मी का आई हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिमेन अनचेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। आई सेड टू हर शी हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग, आई टोल्ड हर दैट शी हैड हेल्प्ड हर मदर इन कुकिंग। तो नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर फिफ्थ, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, ठीक है। वे हमने शुरू में पढ़ा था आज ही, तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, नियरनेस डिस्टेंस में, पास के शब्द दूर के शब्दों में, जैसे नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ का हो जाएगा देन, टी एच ई एन, हियर का देयर, एच ई आर ई का टी एच ई आर ई, टुडे का दैट डे, ठीक है, टुडे का यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, टुमोरो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, दिस का दैट, दीज का दोज, अगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, दस सो, नेक्स्ट डे वीक, द फॉलोइंग डे वीक, मंथ, ठीक है, द फॉलोइंग मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एक्सेट्रा का द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, ईटीसी, जस्ट का देन, जस्ट यानी जे यू एस टी का टी एच ई एन, जस्ट का भी देन। सिक्स्थ रूल्स है, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव को भी हमें चेंज करना आना चाहिए। सेड एज ए रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू asked or inquired of, asked या inquired of में हो जाता है said, interrogative में। inverted commas and question marks are removed, ये तो पता ही है आपको, inverted commas और question marks को हटा दिया जाता है। questions by the finite verb or its auxiliaries in which the answer is in yes or no, we introduced if, whether, as connector of both the clauses. यहां पर yes या no वाले question है, तो वहां पर that की जगह if या whether लगा दिया जाता है। होता है in WH type questions, WH words are used at the beginning of the reported speech. The word order is changed from that of a question to that of an ordinary statement. और interrogative को affirmative बना दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं, तो उन examples को हम पढ़ेंगे और उन examples के अनुसार फिर हमें थोड़ा सा picture और clear हो जाएगी। तो ठीक है, examples पढ़ते हैं अब हम। The judge asked देखिए, द जज आस्क्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाउ ओल्ड आर यू सोहन? तो जो जज ने सोहन से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, द जज आस्क्ड सोहन हाउ ओल्ड ही वाज, द जज आस्क्ड सोहन, अब सोहन जो है ऑब्जेक्ट बन गया है। सेवेंथ, रूल्स फॉर द चेंजिंग ऑफ imperative sentences, imperative sentences, आज्ञार्थक वाक्यों को कैसे बदलना है, the appropriate reporting verb, expressing command, request, order or advice is used in the reported speech. Two, infinitive in place of inverted commas is used. Example देखिए imperative का, he said to me, please keep your mobile on silent mode. He requested me to keep my mobile on silent mode. देखिए, verb से पहले to लगा दिया हमने, है ना, और please हट जाएगा, okay? दूसरा example देखिए, the teacher said to the boys, don't make a noise. Negative sentence है, the teacher forbade the boys to make a noise. Or द टीचर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। आठवां, इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश, सच वर्ब्स आर। देखिए इसको समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर एक्सक्लेमेशन विशेष जैसे कुछ शब्द हैं तो उसमें इसी तरह के वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं, जैसे एक्सक्लेम चिल्लाना, विश किसी के लिए दुआ करना, कॉन्ग्रेचुलेट अभिवादन मतलब बधाई देना, अप्लॉड भी एक तरह से प्रशंसा करना, एक्सेट्रा। अब एग्जांपल देखिए, ही सेड अलास इट इज अ ग्रेट लॉस, यानी ये दुख का वाक्य हो गया ना, he exclaimed with sorrow that it was a great loss. He said, may you live long. He wished me that I should live long. Change the following sentences into indirect speech. अब ये यहां से exercise शुरू हो गई है, तो I think कि हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर मंडे से हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सेड, देखिए जॉन सेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल जॉन सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आई वर्क एवरी डे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जॉन सेड दैट ही, आई का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि जॉन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो वो है थर्ड पर्सन, तो ये ही आई भी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, यानी ही वर्कड, प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा, ही वर्कड एवरी डे, जॉन सेड दैट ही वर्कड एवरी डे, मोहन सेड, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, आई एम प्लेइंग द गिटार नाउ, तो मोहन सेड दैट ही वॉज प्लेइंग द गिटार देन, नाउ का देन हो जाएगा, ही सेड ही हैज बॉट अ न्यू कार रिसेंटली, ही सेड दैट ही हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ही हैड बॉट अ न्यू कार रिसेंटली। शालिनी सेड आई विल गो टू सिनेमा टुमारो, शालिनी सेड दैट शी वुड गो टू सिनेमा टुमारो, विल का वुड हो जाएगा। सीता सेड टू मी, सीता टोल्ड मी दैट शी, आई का शी हो जाएगा, क्योंकि सीता क्या है, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और वो रिमाइन है, तो शी कैन का कुड हो जाएगा, शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मदर सेड, सिक्स्थ है, मदर सेड टू द सन, माँ ने बच्चे से कहा, आई हैव कुक्ड pasta for you. Mother told the son that she had cooked pasta for हिम, अब यहां पे यू का हिम हो जाएगा क्योंकि सन भी थर्ड पर्सन है. शी सेड टू मी यस्टरडे आई सॉ द मूवी पिंक. शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन द मूवी पिंक द प्रीवियस डे. तो कुछ एग्जाम्पल्स यानी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन है, सिस्टर सेड डोंट पुट दिस टी शर्ट ऑन. देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सिस्टर आस्क्ड, सिस्टर फॉरबेड टू पुट दिस, टू पुट दैट टी शर्ट ऑन. दूसरे तरीके से, सिस्टर ordered not to put that t-shirt on. Okay, the teacher said to the boys don't make a noise. ye to example hi tha, the teacher forbade the boys to make a noise, hai na, example mein bhi tha as it is. to is exercise mein 20 questions hain, abhi humne 10 questions kar liye hain. kuch aage chalke hum ek aadh question aur. sarla said, फिर आई हैव फॉरगॉटन माई ई मेल पासवर्ड. सरला सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर ई मेल पासवर्ड. इसमें प्रोनाउन चेंज करना था. ओके, तो ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब इसके बाद हम सेवेंथ लेसन जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो आप सब इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूजफुल है. हमेशा की तरह कुछ ये ग्रामर के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो ये टॉपिक्स तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, टेंसेस, इसलिए आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है. सो आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड गुड बाय.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो पंकज भैया। हाय वेदान भैया।
1: हाय दृष्टि, कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो?
1: हम लोग भी ठीक हैं।
0: अरे भैया, रेडियो चालू करो ना प्लीज।
2: क्यों?
0: क्योंकि ना अब मेरा शो आने वाला है जो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था।
2: अच्छा, इतने दिनों से तुम्हें अब याद आई है रेडियो की?
0: अरे मेरा बहुत मन कर रहा है मेरा खुद का शो सुनने का।
2: अच्छा अच्छा, हम भी सुनते हैं, काफी अच्छा होगा ना।
3: तुम्हें पता है इंसान की खून की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
0: यानी कि वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे में
3: प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर।
0: अरे वाह, कितना मजा आया मुझे और कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली, और हमारे दोस्तों को भी मुझे लगता है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
3: हाँ बिल्कुल, जरूर मिली होगी।
0: तो दोस्तों, बातों को अभी यही ठहराते हैं,
3: विराम देते हैं।
0: हाँ, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: भैया आपने लास्ट टाइम कब शो रिकॉर्ड किया था?
1: मैंने तो याद नहीं मुझे ठीक से, हाँ काफी समय हो गया।
0: और विधान भी आपने?
2: मैंने तो सितंबर के पहले वीक में रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरे फिर एग्जाम्स आने लगे।
0: ओ हाँ, अभी तो मेरे एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं।
3: हेलो बच्चों।
0: हाय दीदी।
2: हेलो दीदी,
3: कैसे हो आप लोग?
2: मैं ठीक हैं,
1: आप कैसे हो?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट मैंने आप लोगों की बातें दूर से सुनी।
0: ओ, आपने हमारी बातें सुन ली?
3: हाँ, और लग रहा है मुझे रेडियो के प्रोग्राम सब लोग अपने बहुत याद कर रहे हैं।
0: बहुत ज्यादा, हम कितना मस्ती करते थे प्रोग्राम रिकॉर्ड करते समय।
3: तो चलो एक काम करते हैं, आज अपनी रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ ठीक है,
3: ठीक है। तो रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करने से पहले पहले अपने बारे में कुछ बताओ आप लोग। दृष्टि?
0: मेरा नाम दृष्टि अरोरा है और मैं 7th में पढ़ती हूँ और सेंट जॉन्स में पढ़ती हूँ।
2: और मेरा नाम वेदांत है, मैं 11th साइंस में पढ़ता हूँ BS मेमोरियल स्कूल में।
1: मेरा नाम पंकज है और मैं 12th साइंस में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आबू रोड में।
3: अच्छा, और आप लोग कब से रेडियो पे आ रहे हो? पहले वेदांत आप बताओ।
2: मैं सबसे पहले रेडियो में तब आया जिस समय रेडियो मधुबन में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था, दिसंबर में आया था 2012 में आया और बहुत मजा आया था। सबसे पहले जो दीदी थी जिनसे मैं मिला वह थी सुभाश्री दीदी, और फिर सुभाश्री दीदी ने मुझे सबसे मिलाया, पूरी टीम से मिलाया। और दीदी, सबसे ताजुब की बात तो यह है कि उस समय टीम बहुत छोटी थी, लेकिन अब देखो हमारे पूरा परिवार बन गया है, कितने सारे लोग हो गए हमारे यहाँ।
3: अरे वाह, मतलब आपकी तो बहुत लंबी लंबी मेमोरीज है रेडियो के साथ। और दृष्टि आप बताओ।
0: मैं इसी मार्च में आई हूँ अभी।
3: अच्छा।
0: और मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से मिली थी, विशाल भैया ने मुझे उनसे मिलाया था। और कृष्णा दीदी ने हमें सब कुछ स्वीटली बताया और हमारे साथ बहुत अच्छे से काम किया। और पंकज भैया आप कब आए थे?
1: मैं 5th अप्रैल को यहाँ आया था मम्मी के साथ। मम्मी इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं घर पे बहुत तोड़म फाड़ी करता था।

0: जुड़े तो श्रोता जो हमारे थे वो भी हमारे फ्रेंड बन गए।
1: हाँ, और पंकज आपने क्या सीखा?
2: म्यूजिक सीखा मैंने तो, खास करके मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव था पहले से ही, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ने के बाद मेरी म्यूजिक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ।
1: ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक क्लासेस की वजह से है जो कृष्णा दीदी ने लगवाई है।
3: अच्छा, आपने म्यूजिक सीखा। और एक बात और बताओ, आप लोगों ने जब शोज के रिकॉर्डिंग्स की उस दौरान भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा?
1: बहुत कुछ।
3: क्या सीखा बताओ?
1: शो को कैसे स्टार्ट करना है, हमेशा बातों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, और हर चीज में न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है।
0: और हमने यह भी सीखा कि कैसे हम एडिटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कैसे हर एक शो को शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का इंटरव्यू लेना है तो कैसे ले सकते हैं। और हम सबकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हुई है रेडियो मधुबन में, क्योंकि कभी कभी कुछ दो तीन वर्ड्स हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है।
3: और जो शो आप करते हो उसमें आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाते भी हो, है ना विकांत?
0: जैसे उड़ान में हम लोग वर्ड पावर वगैरह सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत इम्प्रूवमेंट होता है।
3: तो दूसरों को सिखाने के लिए पहले हमें भी सीखना पड़ता है। और पंकज आपने क्या क्या सीखा रिकॉर्डिंग्स के टाइम?
2: रिकॉर्डिंग्स के टाइम तो मैंने यही सीखा कि मेरे पहले काफ़ी वर्ड्स रिपीट हो जाते थे, लेकिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसके अलावा भी बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुआ।
3: बोलने का तरीका सीखा हमने। बोलने का तरीका तो हर जगह काम आता है ना?
1: हाँ जी।
3: अच्छा, अब ये बताओ, इतना कुछ सीखने के साथ इतने दिन आप लोग आए हो, इतने साल महीने आप लोग आए हो, तो मस्ती तो बहुत की होगी।
1: बहुत ज्यादा
2: अनलिमिटेड है।
3: तो वो सबसे ज्यादा हंसी वेदांत को आ रही है। तो वेदांत ये बताओ, सबसे ज्यादा मस्ती कब की थी? वो वाला मोमेंट कौन सा था जो आपको अभी तक याद है?
0: सबसे ज्यादा मस्ती हम लोग ने तब की थी जब हम लोगों को दीदी सिखा रही थी कि कैसे स्टोरी कंटिन्यू करना है। जैसे कोई एक स्टोरी शुरू करता है फिर उसको कंटिन्यू करते ना स्टोरी, तो उसमें हम लोग जैसे दीदी ने स्टोरी शुरू की, फिर हम लोग ने उसको कहाँ से कहाँ, गांव से जंगल, जंगल से फिर सिटी, और फिर कहाँ कहाँ उस स्टोरी को कंटिन्यू करा। खूब मस्ती आई थी उस दिन।
3: अच्छा, ये आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है विदान?
0: बिल्कुल दीदी, गर्मी की छुट्टी में जिस समय ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की।
3: अरे वाह, मतलब ट्रेनिंग में लर्निंग भी और मस्ती भी।
2: उसमें तो मुझे भी बहुत मजा आया था, वो जो पपेट के साथ स्टोरी बना रहे थे।
1: हाँ, उसमें तो सच्ची बहुत मजा आया था। वो पपेट्स को मतलब हिलाना भी था, और साथ इतने क्यूट पपेट्स थे, हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे पपेट्स के साथ।
3: अच्छा पंकज, आप बताओ क्या किया आप लोगों ने उस टाइम?
2: हम पपेट्स के साथ स्टोरी बना रहे थे। जैसे एक पपेट है जो एक राजा की तरह होता है, और एक कुछ भी मतलब जैसे एक मंकी है तो उसके लिए भी स्टोरी, और मैंने स्टोरी बनाई थी एक मंकी और एक क्रोकोडाइल के ऊपर।
3: अच्छा, मतलब पपेट्स के साथ आपको स्टोरी बनानी थी।
2: हाँ दीदी।
3: और सबसे अच्छी स्टोरी किसकी बनी थी?
2: सबकी मजेदारी थी।
1: हाँ, क्योंकि सबकी स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, समझ ही नहीं आता था स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई।
3: हाँ, लेकिन ये आर्ट भी आप लोगों ने सीखी। हाँ, स्टोरी बनाने की आर्ट।
0: और
3: हाँ।
0: कई बार तो पपेट मंकी है तो फिर शेर बन जाता था किसी न किसी से।
3: अच्छा, और दीदी के साथ या फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे उसमें भी तो आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी।
2: रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल मस्ती नहीं की।
3: अच्छा दृष्टि, तो आप बताओ क्या मस्ती की?
1: हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, हम बैठ जाते थे, बैठ कर फिर जो हम लोग बातें मस्ती सब शुरू हो जाती थी। नीचे से हंस रहे होते थे, दीदी बोलते थे क्या है ये, मत हंसो, दूसरे का डायलॉग ही खराब हो जाता था।
3: लेकिन हंसी नहीं रुकती थी, है ना?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
2: वेदांत को तो इतनी हंसी आती थी कि वो हंसते हंसते डायलॉग ही बोलता था।
3: और वेदांत, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
2: एक दिन शायद ऐसा हुआ था कि आधे घंटे से ये एक ही डायलॉग बोल रहा था। क्योंकि इसको इतनी हंसी आ रही थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा।
0: और डायलॉग बहुत छोटा सा था कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा।
3: कई बार छोटी छोटी चीजों में भी हमें बहुत मजा आता है ना, कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सीखते सीखते भी हम बहुत मस्ती करते हैं, है ना?
1: हाँ जी, स्कूल में भी जैसे हम कितनी

0: मस्ती करते सीखते सीखते
1: लर्निंग के साथ साथ मस्ती भी।
0: वरना हमेशा जब भी कोई हम लोग पढ़ते हैं तो मस्ती नहीं करते ना, तो मजा नहीं आता पढ़ने में या फिर कोई चीज करने में।
1: चलो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और शो चल रहा है बच्चों की दुनिया, जहां बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे साथ अपनी रेडियो की मेमोरीज। तो एक बात बताओ, आप लोगों को आए हुए बहुत अलग अलग टाइम हुआ है, किसी को 5 महीने तो किसी को 4 साल। सबसे पहले दिन जब आप लोग रेडियो में आए थे तो वो दिन तो जरूर याद होगा
1: अच्छे से एकदम।
0: तो दृष्टि बताओ, सबसे पहले दिन आप रेडियो में आए थे तो क्या किया था?
1: जब मैं सबसे पहले दिन रेडियो में आई थी तो मतलब शाम हो गई थी, 7 बज गए थे, और ना दीदी और सारे बच्चे ना मिलकर लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर स्टैंप लगा रहे थे, और फिर वेदांत भैया जाकर उसको शेल्फ में अच्छे से रख रहे थे और जमा रहे थे बहुत अच्छे से।
0: और फिर आपने क्या किया?
1: फिर हम लोग मतलब दीदी ने बोला कि अभी तो जाने का समय हो गया, और आकाश भैया और उन्नति दीदी अपने दूसरे शो की तैयारी कर रहे थे, और फिर हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जब हम वेदांत भैया के पास गए तो वेदांत भैया ने बोला हमने तुम्हें कहीं देखा है। हमने उनको कितनी कोशिश करी याद दिलवाने की, लेकिन उनको याद ही नहीं आया।
0: मतलब आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा सबके साथ।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा। और मैं जिस दिन पहले दिन ही आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वही रहू, निकलो ही ना वहाँ से। इतनी अच्छे से सब लोग बात कर रहे थे और सब मस्ती कर रहे थे।
0: और पंकज आप बताओ।
2: मैं जब फर्स्ट दिन आया था तो मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से मिला, फिर उसके बाद आरुषि दीदी से मिला, फिर आरुषि दीदी ने मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट कर दी थी, और हम फर्स्ट दिन से ही पढ़ने के जो टेक्निक्स होते, तरीके होते, वो सीख रहे थे, रीडिंग एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने फर्स्ट दिन से ही रीडिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद सेकेंड दिन ओवरलैपिंग के ऊपर भी एक्सरसाइज करी थी, और तीसरे दिन हमने टंग ट्विस्टर किया था।
0: मतलब अपनी आवाज की क्लैरिटी के लिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है ना?
2: हाँ दीदी,
0: बहुत सारी मेहनत।
2: फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद तो हमारा शो स्टार्ट हो गया था, बच्चों की दुनिया,
0: जो अभी भी चल रहा है,
3: अभी भी श्रोता सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल। और वेदांत आप बताओ, आपको आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, तो फर्स्ट डे याद है आपको?
3: फर्स्ट डे याद है ना, क्योंकि रेडियो का फर्स्ट डे तो हर किसी को याद रहेगा, भले कितने भी साल हो जाए। सबसे पहले सुभाषी दीदी मुझे मिली, मैं एक्चुअली एक भैया के साथ आया था जो यहाँ पर एडिटिंग किया करते थे रेडियो मधुबन में, उनके साथ आया था। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले सुभाषी दीदी से मिलाया, फिर सुभाषी दीदी ने मुझे कृष्णा दीदी से मिलाया, और फिर यशन भाई जी से मिलाया, फिर धीरे धीरे मोना दीदी जी के साथ, पहले जब वो उड़ान करती थी तो उनके साथ थोड़े थोड़े वॉइसेस पोएम स्टोरी दे या, फिर उसके बाद धीरे धीरे शो ही शुरू हो गया उड़ान का मोना दीदी जी के साथ, और फिर अंकिता दीदी भी आई, और फिर दीदी अब जियो जिंदगी कर रही है, तो फिर मैं उड़ान करने लगा अकेले।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो आपने फर्स्ट डे की बात की, आज आप लोगों को कौन सा ऐसा चेंज है जो अपने में दिखाई पड़ता है फर्स्ट डे से अब तक?
1: हमारे बहुत सारे वर्ड ओवरलैप नहीं होते।
0: अच्छा, और
1: बातें करते करते मतलब इतना होता था कि कोई कोई वर्ड साथ में ओवरलैप हो जाते तो पता ही नहीं चलता था वर्ड क्या बोल। लेकिन अभी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि पता चल जाता है, हाँ ये वर्ड ओवरलैप हुआ, और अब ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो गई है।
0: और पंकज आप बताओ।
2: और तो जैसे हम किसी पे कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी बातें किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो हम कैसे उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालें, तो ये सब हमने सीखा, और हमारे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आए।
0: मतलब हम अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखें ये हमने सीखा। कई बार हम सोचते तो हैं पर बोल नहीं पाते हैं ना, तो रेडियो से हमें ये भी समझ में आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत आपने क्या सीखा?
3: हम लोग पहले जैसे मिक्सअप नहीं हो पाते थे, अब जब मिक्सअप होने लग गए हैं, कोई एक बात शुरू करता तुरंत फ्रिक्वेंटली हम उसे कैच करके बोल देते हैं, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, मतलब स्पॉन्टेनियस हम सब हो गए हैं, खूब ज़्यादा मिक्सअप हो गए एक दूसरे से। जैसे कई देशों के बारे में जाना, मतलब एक एक देश के बारे में जो हमने बताया, तो सबसे अच्छी लिटरेसी किस कंटिनेंट की रही अब तक, यूरोप की सबसे अच्छी लिटरेसी HDI रैंक रहा, ये सब हमने नॉलेज रहता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी अलग अलग जगह, मीन्स थोड़ी मोड़ी जगह जो हमें नहीं पता थी, कोनार्क वगैरह, इसके बारे में हमारे बड़े जानते हैं, वो अब हम भी जानते हैं।
0: मतलब हमारे GK भी इम्प्रूव होता
3: है बहुत ज़्यादा।
0: ये तो एक बहुत अच्छी लर्निंग है वेदांत की। और इसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा तो है ही, बट कुछ डिफिकल्टी भी थी जो आपने फेस किया, आपको लगा अरे मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे तो डर लगता है? ऐसा कुछ था कभी?
1: लाइव करते समय, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करके शो रखते हैं तो उसमें हम रिपीट भी कर देते हैं, फिर वो कट जाता है, लेकिन लाइव करते हैं तो मतलब रिपीट कर ही नहीं सकते, तो लाइव करते समय एक वो रहता है, बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो अभी भी डिफिकल्टी होती है उसमें।
0: लाइव करते समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी।
0: और पंकज?
2: मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे फर्स्ट टाइम में हुई थी लाइव करते समय,

0: लेकिन आप थी तो काफी हिम्मत मिली थी
1: मतलब थोड़ा सा डर लगा
0: थोड़ा सा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल,
1: उसके बाद नॉर्मल हो गया। मतलब एक बार हम कोई चीज कर लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। और वेदांत,
2: पहले जैसे हम लोग डरते थे थोड़ा माइक में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज तो था नहीं, हमें लगता था कि माइक में बोलेंगे वो तुरंत रेडियो में सुनाई देगा, इससे पहले हम लोग माइक के सामने आने से डरते थे। लेकिन अब इतने फ्रिक्वेंट हो गए कि स्कूल में भी अगर कोई कंपटीशन होता है डिबेट वगैरह का तो हम बहुत अच्छी तरह भाग लेते हैं और अच्छा प्राइज भी जीतते हैं। और लाइव वाली ये जो पहले मेरे साथ भी मेरे को डर लग रहा था कैसे बोलो कैसे बोलो, लेकिन अब आदत हो गई, अब बहुत अच्छे से लाइव भी होता है हम सबका।
1: अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है,
2: कॉन्फिडेंस बढ़ा है
1: स्कूल में भी आप बोल देते हो।
2: स्कूल में भी मतलब रेडियो में जो हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्कूल में भी काम आ रहा है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ इतना कुछ सीखा, आपने डर को फेस भी किया और बहुत सारी मस्ती भी की, आप लोग कौन कौन से शोज का हिस्सा रहे, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने अभी तक किया? दृष्टि आप बताओ।
3: मैं उड़ान के शो में ही होती हूँ मोस्टली। हाँ, और एक हमारी ड्रामास थे वो, और मैं कॉमिक्स उड़ान के बाद जो कॉमिक्स होती है उसमें भी थी, और उड़ान का एक स्पेशल लाइव शो आया था उसमें भी थी।
1: अरे वाह, ये तो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए और वैरायटी भी। पंकज आप बताओ।
0: मैंने तो सबसे पहले बच्चों की दुनिया स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उड़ान में कॉमिक्स में एक दो बार किया है, और गुड मॉर्निंग आबू भी कई बार लाइव किया मैंने, और बाल सभा भी किया है, और बाल सभा में जितनी मस्ती की है उतनी कहीं नहीं की है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से याद है।
3: ये तो पूरा का पूरा
2: बिल्कुल।
1: और वेदांत आपने?
2: मेरा सबसे पहला शो तो उड़ान था, फिर एक बार मदर्स डे था, मदर्स डे में एक बार आशियाना में भी था थोड़ी देर के लिए, और फिर खुशी के नगमे में भी एक बार बज रहा था संगीत तो भाई जी ने एक बार रखा था, फिर गुड नाइट विद दादी माँ, और पहले एक शो आता था नन्ही परी सोने चली, और बाल सभा। और दीदी हम सब तो एक चीज भूल ही गए, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 15 अगस्त को, हम लोगों ने रेडियो मैराथन रखा जो 24 घंटे लाइव था, हम सब उसमें भी थे, दृष्टि भी थे, यश भी थे, और सब जितने भी आर्जेस थे सबने लाइव किया था उस दिन।
1: मतलब साथ में सबने सहयोग करके एक बहुत बड़ा इवेंट किया
2: बिल्कुल रात तक,
1: मतलब आप लोगों ने बहुत मेहनत की। चलो अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजा दो। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ तक तो आपकी बहुत लर्निंग हुई, अब आगे आप लोगों के क्या प्लान्स है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?
3: मुझे फ्यूचर में रेडियो पे प्रोडक्शन सीखनी है और बहुत अच्छा आरजे बनना है, मेरा बहुत मन है आरजे बनने का।
1: प्रोडक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है दृष्टि। पंकज आप बताओ।
0: मैं भी एक बहुत ही अच्छा आरजे बनना चाहता हूँ।
1: आप बहुत अच्छा आरजे बनना चाहते हो जिसके लिए और बहुत सारी मेहनत करनी है ना पंकज?
0: हाँ दीदी।
1: और वेदांत आप बताओ।
2: जैसे कि हम जानते हैं कि आरजे मतलब हर फील्ड की नॉलेज
1: और बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो आगे के एम्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग तैयार हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। तो उस जोश को हमेशा हमें बनाए रखना है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ नया सीखते जाना है।
3: हाँ दीदी।
1: चलो इसी के साथ हम हमारी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में और बात करेंगे एक नए टॉपिक पे बच्चों की दुनिया में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकते, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। आज हम उनके उन कथनों को याद करेंगे जिनमें उन्होंने हमें बताया था कि भारत की जनता को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसी हो जो हमें पूर्णतः शिक्षित बनाए। वो कहते थे,
1: अच्छी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है। भारत का भविष्य भी काफी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान पीढ़ी इस समस्या का हल किस प्रकार प्रस्तुत करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाश्चात्य भावपत्र और पूर्णतः राष्ट्र विरोधी हमारी ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि से एकदम विसंगत है। ये तो हमें उन अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिली है जिन्होंने हम में कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को दृढ़ता व संरक्षता प्रदान कर सकें।
2: उन्हें समय के परिवर्तन का पूरा ज्ञान था। उन्होंने देश विदेशों में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझा था कि हम भारतीयों को लीक से हटकर कुछ और तरह की शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम प्रचलित परिपाटी से अलग कुछ आत्मसात कर सही मायने में मनुष्य बन सकें। उन्होंने कहा था,
1: समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरू और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे।
0: स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्जन करते हुए उन्होंने गहराई से इन बातों पर विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थी। अपनी मातृभूमि को अन्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा से मंडित देखना उनकी सर्वाधिक इच्छा थी। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर अध्यात्म से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
2: भारतीय परंपरा के अनुसार जब जब संस्कृति और सभ्यताएं अधिपतित हुई हैं, जब जब मानवीय मेधा भ्रमित हुई है, तब तब जीवन की नई दिशाओं की ओर संकेत करने तथा मानव हृदय में शक्ति और विश्वास की लहर भरने के लिए महान मनीषियों का अवतरण हुआ है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक मनीषी थे। उन्होंने स्पष्ट और कभी कभी लौकिक भाषा में पुरातन भारत से भी अधिक और महत्तर अपने भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अतः आज जब हमारा मन शिक्षा की समस्या से उद्वेलित है, ये उचित ही होगा कि हम स्वामी जी के शिक्षा विषयक विचारों से परिचित हों, क्योंकि हमारी पीढ़ी की इस ज्वलंत समस्या पर स्वामी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन हमारे बालकों की शिक्षा प्रणाली के नियोजन की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी से कभी पूछा गया था, आज की विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? उन्होंने उत्तर दिया था,
1: क्यों, वो तो आधी से अंत तक दोषों से भरी हुई है। ये बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है? यदि इतना ही होता तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां, देखो ना लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है, एक क्षेपक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोक गीतों से अधिक महत्व नहीं रखते।
2: एक अन्य अवसर पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की थी जिसे वो बताया गया था कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है, और उसने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लिए पीट पीट कर अधमरा कर डाला था।
0: यद्यपि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा बहुतों को मालूम है, फिर भी प्रस्तुत संदर्भ में उसकी पुनरावृत्ति उचित है। स्वामी जी ने कहा है,
1: शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विचार एक विशुद्ध वेदांतिक धारणा है। इसकी उपलब्धि मानव जीवन के स्तर और गौरव को अत्यधिक परिवर्धित कर देती है। इसकी स्वीकृति निष्ठा और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, और यह आत्मविश्वास पौरुष एवं चरित्र का सार है।
2: यद्यपि यह परिभाषा एक सर्वकालिक सत्य है और सभी लोगों के हित के लिए है, फिर भी आज के इस अलगाववादी युग में, संकीर्ण भावनाओं के युग में, ये परिभाषा विशेष महत्व रखती है। स्वामी जी पुनः कहते हैं,
1: शिक्षा है क्या? क्या वो किताबी ज्ञान है? नहीं। तो क्या वो बहुमुखी ज्ञान है? वो भी नहीं। शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा संकल्प शक्ति के अभिव्यक्ति को और उसके प्रवेग को संतुलित एवं लाभप्रद बनाया जाता है।
0: स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सूक्ष्मताओं पर भी पूरी स्पष्टता से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। मोटे तौर पर वे पाश्चात्य विज्ञान को वेदांत के साथ समायोजित करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि इस प्रकार दोनों के मिलन से ही विश्व में समृद्धि और शांति का युग आएगा। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जीवन के कठिन और अरुचिकर कार्यों को सहज बना दिया, पर यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने जिस अवकाश की उपलब्धि की है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वैदेशिक नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से ज्ञान की उन विविध शाखाओं का अध्ययन करें जो हमारी अपनी है। साथ ही हम अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। हमें तकनीकी शिक्षा तथा उन सब बातों की आवश्यकता है जिनसे हम उद्योगों का विकास कर सके, और नौकरी ढूंढने के बदले अपने पैरों पर खड़े रहकर इन उद्योगों के द्वारा जीविका के लिए यथेष्ट उपार्जन कर सकें तथा दुर्दिनों के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: वर्तमान समय में भाषा की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। नई व्यवस्था में अंग्रेजी, अन्य प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत का क्या स्थान होगा? स्वामी जी के उपयुक्त उद्धरण से तथा उनके अन्य लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को महत्व प्रदान किया था।
0: शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार करते हुए निवेदिता ने अपने नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है,
3: यदि सभी मनुष्य एक ही भाषा में वार्तालाप करें, एक ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना और समान लक्ष्यों की अनुभूति करना सीखें, यदि सभी को समान शक्तियों के प्रति समान रूप से प्रतिक्रियाएं प्रकट करना सिखाया जाए और उन्हें इसके लिए सक्षम भी बनाया जाए, तभी तो हमारी एकता स्वयंभू बनकर प्रकट होगी और अटूट बनेगी।
0: प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत के विषय में स्वामी जी ने कई अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि वे प्रादेशिक भाषाओं के विकास पक्ष को महत्वपूर्ण समझते थे, फिर भी वे दृढ़ता पूर्वक संस्कृत की महत्ता को अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा अधिक मानते थे। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भाषा जीवन के अलग अलग कार्यों की पूर्ति करती हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा की देन बहुत अधिक है। स्वामी जी कहते थे,
1: संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।
2: रामानुज, कबीर और चैतन्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यद्यपि इन महापुरुषों ने निम्न वर्ग को ऊपर उठाया, किंतु उन्होंने संस्कृत विद्या का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा,
1: बुद्ध तक ने एक गलत कदम ये ले लिया कि उन्होंने जनता को संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित नहीं किया। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं तो वे केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, और केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें संस्कृति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज भले ही विकसित और उन्नत हो जाए, पर जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं किया जाता, तब तक समाज की विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता।
0: वे भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सर्वोपरि स्थान देते थे। उनका कहना था,
1: संस्कृत पुरातन विद्या का कोष है। वो मानव जाति के सबसे उदात्त विचारों का विग्रह है। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित नहीं है, वे इसकी सशक्तता और गंभीरता का तनिक भी परिचय नहीं पा सकते। ये हमें केवल हमारी प्राचीन महानता का ही ज्ञान नहीं करा सकती, अपितु हम में वो श्रद्धा और आत्मविश्वास भर सकती है जो आज विदेशी प्रशासन और अराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कारण जड़ से हिल गए हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे के पर्याय हैं।

0: वादन तो वे जानते ही थे, साथ ही लाठी भांजना, कुश्ती और पाक कला में भी वे पारंगत थे। वे इस विषय पर भी हमें अपना सुझाव देना नहीं भूले।
1: एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशियावासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। कला हमारे धर्म का ही एक अंग है।
2: उन्होंने कलात्मक पात्रों, सुंदर साड़ियों तथा कलात्मक धोतियों की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दीन हीन कृषक की मिट्टी से बनी झोपड़ियों तथा अनाज रखने की कोठियों तक में कला का दर्शन कराया और बताया कि हमारी स्थापत्य कला किसी अनजान कारीगर के सपनों की प्रस्तरमयी विग्रह है। जैसे पश्चिम का आदर्श उपयोगिता है, वैसे ही भारत का आदर्श कला है।

0: जी का विचार था कि जापान में पश्चिमी उपयोगिता और भारतीय कला का सुंदर समन्वय घटित हुआ है, जबकि भारत मूर्खता पूर्वक पाश्चात्य उपयोगितावाद का अंधा अनुकरण कर रहा है। वे चाहते थे कि भारत में भी दोनों का सुंदर समन्वय हो।
1: स्वामी जी कहा करते थे कि व्यक्ति के समान राष्ट्र की भी अपनी एक विशिष्ट प्रतिमा होती है और उसके विकास का एक विशेष मार्ग होता है। हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति स्वामी जी के प्रेम का उल्लेख करती हुई भगिनी निवेदिता अपनी मास्टर एज आई सॉ हिम नामक ग्रंथ में लिखती हैं,
2: स्वामी जी के लिए प्रत्येक नवीन वस्तु प्राचीन निवेदन के भाव से शुद्ध की हुई थी। माँ सरस्वती का चित्र आंकना स्वामी जी के मतानुसार उसकी पूजा करना था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना मानो घुटने टेक कर रोग और मलिनता के पिशाचों के नाश के लिए प्रार्थना करना था। धार्मिक एकाग्रता की शक्ति के लिए मानवीय मेधा को उसकी चरम पूर्णता के स्तर पर पहुंचा देना उनके विचार से एक आवश्यक तत्व था। वे अध्ययन को तपस्या मानते थे और हिंदुओं की ध्यानोन्मुखता को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धियों में सहायक समझते थे। इस प्रकार शिक्षा स्वयं में की गई साधना और धर्म का एक अंग है।
0: स्वामी जी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर प्रकार के बल को जरूरी मानते थे, अतः वे शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देना भी नहीं भूले। अपने शिष्य के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था,
3: तुम्हें शरीर को खूब शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए और दूसरों को भी इसे सिखाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अब भी डंबल्स के साथ व्यायाम करता हूँ? शरीर और मन दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। यदि लोगों को शारीरिक बल बढ़ाने की जरूरत समझा दी जाए तो वे स्वमेव उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे। इस आवश्यकता के बोध हेतु ही आज शिक्षा का प्रयोजन है।
1: स्वामी जी अपने देशवासियों को सशक्त और सबल स्त्री पुरुषों के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने अनेक प्रसंगों में अपनी ये आंतरिक इच्छा व्यक्त की है।
3: मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। मेरी तुमसे सही सलाह है, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे।
0: स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने का बल प्रदान करती है।
1: हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी हटाने के प्रयास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी कोशिशें, ये सभी स्वामी जी के विचारों के अनुकूल हैं। इन्हीं कारणों से स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि भारतवासी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, पर वे ये नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक लाभ के लिए अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता से वंचित हो जाएं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था,
3: तुम में एक सुई बनाने की क्षमता तक तो है नहीं और तुम अंग्रेजी की आलोचना करने की धृष्टता करते हो। मूर्ख, जाकर उनके पैरों के पास बैठो और उनसे उन कलाओं, उद्योगों और व्यवहारिकता को सीखो जो जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक है।
0: एक अन्य प्रसंग के लिए आवश्यक है,
3: आज की उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। अधिक अच्छा तो होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में मन लगा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
0: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी आधुनिक जीवन धारा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के अति संरक्षणशील और कट्टर विचार पोषकों की भांति उसका अकारण विरोध नहीं करते। हाँ, पश्चिम के औद्योगीकरण के दोषों को वेदांत के आलोक द्वारा घटाया जा सकता है, पर समय के चक्र को लौटाना संभव नहीं है और ना ये उचित है कि कि आज जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इतने वेग से प्रगति हो रही हो, हम बैलगाड़ी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के युग में वापस चले जाएं। स्वामी जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है,
3: जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सुप्त केसरी तुल्य साहस का विकास नहीं करती, वो भी क्या शिक्षा कहलाने योग्य है?
1: शिक्षा प्रणाली के विषय में स्वामी जी का ये दृढ़ मत था कि प्राचीन गुरु गृहवास की प्रथा को आधुनिक संदर्भ में संशोधित परिवर्तित करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए लागू करना चाहिए। उनका कथन था,
3: छात्र को बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति से संसर्ग में रहना चाहिए जिसका चरित्र ज्वलंत अग्नि के समान पवित्र हो।
1: उनका विचार था,
3: एकमात्र जीवन ही सबसे उत्तम शिक्षक है, क्योंकि पवित्र जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण ही मनुष्य में निहित प्रसुप्त दैवत्य का विकास करता है।
1: उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक प्रतिपादित किया कि
3: यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी और निष्प्रह व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता, तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा।
0: वे चाहते थे कि प्राचीन काल के समान ही सभी विद्यार्थी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है और सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि प्रदान करता है। उसी से अन्य शक्तियां विकसित होती हैं। स्वामी जी श्रद्धा को मूलभूत धर्म मानते थे। श्रद्धा का निर्माण निष्ठा विनम्रता पूज्य भाव और संदेह में अडिग रहने वाला दृढ़ विश्वास, इन सब गुणों के एकत्र मेल से ही होता है।
1: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी आधुनिक दिखावटी एवं उबाऊ शिक्षा की कामना नहीं करते थे, अपितु उन्हें क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा की अपेक्षा थी। जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवीन प्राण शक्ति का संचार नहीं किया जाता, तब तक भारत के नव निर्माण की दिशा में प्रयत्न करना व्यर्थ है। स्वामी जी कहते थे,
3: शिक्षा का भारतीय आदर्श मन का वो नियंत्रण है जिससे हम उसे जहां चाहें ठीक वहीं लगा सकें। एकाग्रता की प्राप्ति उत्तम तो है, पर जब तक उसके साथ हम में अनासक्ति की भी शक्ति नहीं आती, तब तक संभव है कि वो हमें कठिनाइयों के आवर्त में डाल दे। तथ्यों के संग्रह को नहीं अपितु एकाग्रता को ही मैं शिक्षा का मूल समझता हूं। यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित करता और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संग्रह कर लेता।
0: ये कहना अप्रासंगिक न होगा कि आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रणाली में शिशु के व्यक्तित्व के प्रति जो सम्मान का तथ्य पाया जाता है वो अभी आरंभ हुआ है, जबकि भारतीय वेदांत कल्पनातीत काल से इस तथ्य से परिचित था। उस समय शिक्षा यथासंभव व्यक्ति परक थी।
3: सारा ज्ञान मनुष्य में ही निहित है, यही क्यों एक बालक में भी समग्र ज्ञान प्रच्छत्र रूप से विद्यमान है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो उस प्रच्छत्र ज्ञान की अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर कर दे और अपने विद्यार्थियों को ये सिखा दे कि अपने हाथ पैर नेत्र और कानों का समुचित उपयोग करने के लिए वे किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम ले।
1: स्वामी जी ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते थे। वे कहते थे,
3: भारतीय समाज में बौद्धिक वर्ग को एक सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त है, पर प्रत्येक सुविधा के साथ उत्तरदायित्व का भाव भी भरा हुआ है। इस संक्रांति और उतार चढ़ाव की अवधि में ही भविष्य अपना रूप निर्मित करेगा, अतः इस देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह आत्मविश्वास के लिए ज्ञान का अर्जन करे। और उसका दान उन लोगों को भी दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
0: कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हम ज्ञान से भी मूल्यवान और किस वस्तु का दान कर सकते हैं? क्रिया मूलक और सृजनशील ज्ञान के दान से दाता और पात्र दोनों का ही उत्थान होता है। इसी दान के माध्यम से भारतवर्ष उस गौरवमय युग को प्राप्त कर सकता है जिसके अवतरण की घोषणा स्वामी विवेकानंद कर गए हैं।
1: स्वामी जी समाज में एक सर्वमान्य नेता की जरूरत को महसूस करते थे जो अनपढ़ जनता को राह दिखाए, जिन्हें लोग बिना किसी संदेह और प्रश्न के मान लें। प्रजातांत्रिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देशवासी सुशिक्षित हों, विवेकवान हों और अच्छे बुरे का चयन खुद कर सकें। तब तक उन्हें नेतृत्व देने वाले किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। पिछड़ी हुई जनता के लिए स्वामी जी अधिनायक तंत्र के महत्व को पूरी तरह समझते थे। वे कहते हैं,
3: जब शिक्षा के प्रसार के साथ हमारी देश की जनता अधिक सहानुभूति और उदार बनेगी, जब वो अपने विचारों को संप्रदाय या पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालना सीखेगी, तब कहीं संघबद्ध प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसलिए अभी इस समाज के लिए एक अधिनायक का होना आवश्यक है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। कालांतर में हम साधारण मतदान के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे।
0: स्वामी जी भावी भारत के बारे में पूर्णतः आशान्वित थे। उनका मानना था कि भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा कई गुना महिमा मंडित होने वाला है। वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
3: भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई हैं। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
1: पर इसका उपाय क्या है? विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं। और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: आशिया।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

नमस्कार, सफर कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए। 14 मई आज का तारीख है और आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सप्तमी है और पुष्य नक्षत्र है। इसके साथ में मृणाल सेन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अरुण चंद्र गो और शंबाजी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही जगदीश चंद्र माथुर, अल्लाह बख्श, आचार्य रघुवीर, कंडासी कुप्पा स्वामी, एनजी चंद्रवारकर, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को ले चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा क्या है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, न उसके साथ अच्छा करो न बुरा, बस दूर रहो। कहने का भाव ये है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया भी होगा तो उनका साथ तुम अच्छा करो, ना कि बुरा करो, परंतु बुराई से दूर भी रहो। तो ये एक सुविचार है। और इसके साथ में, बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते डह गए। इस अनमोल विचार को वापस एक बार सुनिएगा। बात अगर सह जाते हो तो रिश्ते रह जाते हैं, अगर आपने कह दिया तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा देखिए, रिश्तों में अगर किसी को कुछ बताना हो तो बड़ी विडंबना है कि वो समझ पाए आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को। आप उन्हें बताने से अच्छा आप रिक्वेस्ट कीजिए, बात मन गया तो ठू भी ठीक है, नहीं मन गया तो रिश्ते तो बने रहेंगे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही खूबसूरत विचारों पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं। वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है। ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ। तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए। ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर। टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? If there is any question from the 10th chapter, I will be in trouble. एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी examination hall में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is any question from the 10th chapter or not. और बस उनके आँखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble. Automatically, he's in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने blackout हो जाता है, और जो 9 chapter में से पढ़ा, वो धीरे धीरे evaporate होकर उड़ने लगता है. Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं. जिस college में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन. 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे आर सो डैम टायर्ड. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे. 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही इज सो टायर्ड. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है. क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, ही विल रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड, इफ नॉट द 100 मीटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड. लेकिन 100 मीटर्स इंडियन रिकॉर्ड तो उसको तोड़ना ही था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था. एनर्जी था, बट ही केप्ट ऑन प्रोग्रामिंग, आई एम टायर्ड. ऑटोमेटिकली द बॉडी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द सेम वे. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया, एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, ही हैड एनर्जी एंड ही कुड रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन. राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन. 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माई गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं. और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है. सोते सोते 12 बज जाते हैं. 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा. और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, टक, 10 मिनट सोता हूं. और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है. एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर. एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली. टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला. Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 a.m. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aaram karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin, 4 baje ka alarm rakhta hai. Lekin, 3 baje bhi uthega, 3:15 baje bhi uthega, 3:30 baje bhi uthega. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. It's a way we program ourselves. A sara din he's there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग.
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं, हमारे साथ विशेष जो है एक सूर्य प्रकाश जी आए हुए हैं और उन्होंने आर्मी और सब जगह अपना सेवा दे चुके हैं। अब रिटायर हो गए तो उनका पूरा परिवार यहाँ पर शांतिवन के पास में है और परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोग कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। और उनका बेटा है वो गॉडलीवुड में है और वहाँ पर सेवा दे रहा है, और साथ ही साथ उनकी जो धर्म पत्नी है एजुकेशन सेक्टर में लोगों को जो है मोटिवेट करते रहते हैं, भक्ति और योग इस पर अपने लेक्चर्स देते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। और सूर्य प्रकाश जी खुद भी जो है बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर जाके बच्चे कैसे आर्मी में भर्ती हो सकते हैं उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और एक और बात है यहाँ पर कि हम लोग अपने जीवन में जो कुछ सीख लेते हैं या जिसके बारे में हमें पता है तो निश्चित तौर पे हमें जो है उसके बारे में लोगों को भी बताना चाहिए ताकि लोग भी उन चीज़ों को सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर सफ़र कार्यक्रम को, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरह की सुंदर बातें अगर आपके पास हैं तो ज़रूर दूसरों को बताइए। बताने से ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप सुन रहे हैं सफ़र, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान है।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही 14 मई की, और अब बात करेंगे एक विशेष व्यक्ति के बारे में, मृणाल सेन के बारे में, जिनका जन्मदिन आज है। और मृणाल जी जो है एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है, और इन्होंने सक्रिय होकर इन अलग अलग भाषा में समानांतर जो सिनेमा है उसका एक आंदोलन के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन सारे भाषाओं में इन्होंने अधिकार तो था ही, इसलिए समानांतर फिल्में इन्होंने बनाया। अब देखेंगे जो मेन फिल्में चलती हैं और समानांतर जो फिल्में हैं, 8 फिल्म, वो और इसमें बहुत अंतर है। और अपने समय के सक्रिय वामपंथी रहे मृणाल सेन का जन्म पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में 14 मई 1923 को हुआ। कोलकाता से भौतिक शास्त्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद में जीवन के यथार्थ को रचने से जुड़े और पढ़ने का बड़ा शौकीन इनको रहा। मृणाल सेन ने फिल्मों के बारे में भी गहरी अध्ययन किया और सिनेमा पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिसमें शामिल है उनकी न्यूज़ ऑन सिनेमा 1977 में ये किताब आई। उसके बाद सिनेमा आधुनिकता 1992 में ये एक किताब उन्होंने लिखी, और इस वजह से इन्होंने थोड़ी सी हटके फिल्में बनाई जो लोग जो हैं जिसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मृणाल सेन फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत 1956 में बंगाल फिल्म रात भोरे इससे की, और 1958 में उनकी दूसरी सफल फिल्म नील आकाश रो नीचे ये आई, और ये महत्वाकांक्षी फिल्म उन्होंने भारतीय आज़ादी के आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की। और 1960 की उनकी फिल्म ब्रह्मश्री श्रावण, जो कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित फिल्म थी। आकाश

एक महान निर्देशक के रूप में मृणाल सेन की छवि को विस्तार किया। मृणाल की अन्य सफल फिल्में इंटरव्यू कोलकाता, इस तरह के कलकत्ता टेक्नोलॉजी, ये सारी फिल्में उनकी हैं। और बंगाल फिल्मों की तरह ही मृणाल सेन ने हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रियता दिखाई और इनकी पहली फिल्म हिंदी 1969 में आई कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। फिल्म एक अड़ियल रईस जादे की पिछड़ी हुई ग्रामीण महिला द्वारा सुधार की हास्य कहानी है और साथ ही ये फिल्म वर्ग संघर्ष और सामाजिक बाधाओं की कहानी को प्रस्तुत करती है। फिल्म की विशेष रूप से अगर नए स्टाइल का दृश्य चयन कर संपादन भारत में समानांतर सिनेमा के पर गहरा प्रभाव छोड़ देता है। तो ये उनकी फिल्में थी। तो आइए उनके बारे में और बातें जरूर मैं सुनाना चाहूँगा। और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए बात कर रहे थे हम लोग मृणाल सेन के बारे में। और देखा जाता है कि व्यक्ति फिल्म बनाने या फिल्म की स्टोरी को कैप्चर करके उसे पिक्चर बना के लोगों तक वो स्टोरी अपनी बात बताने में एक जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है। मृणाल सेन भी काफ़ी मेहनत करके किताबें भी लिखी और फिल्में भी बनाई और अलग अलग भाषा में बनाई। इसलिए मृणाल सेन को भारत सरकार द्वारा 1981 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इसके बाद 2005 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1998 से 2000 तक मानक संसद सदस्यता भी मिली। फिल्मों के सृजन संसार को आजीवन समर्पित मृणाल सेन ने कई सम्मान और पुरस्कार बटोरे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है जो उन्हें 4 बार मिला। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी उन्हें कई पुरस्कार मिले। इनमें फिल्म खारिज के लिए कंस में दी प्रिक्स टू डायर जूरी सम्मान शामिल है। और 2004 में मृणाल सेन ने अपनी आत्मकथा ऑलवेज बिग बॉन पूरा किया और 2008 में उन्हें ओशियन सीने फैन फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी प्राप्त हो गया था। तो ये थी कुछ खास बातें मृणाल सेन के बारे में। और मृणाल सेन जो है कोलकाता के भावनीपुर स्थित अपने आवास पर ही आखिरी सांसें ली। सेन जो है लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और 1981 में पद्म भूषण, 2005 में दादा साहेब फाल्के प्राप्त करने के बाद वो 95 साल की आयु में रविवार के दिन 30 दिसंबर 2018 को इनका निधन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें मृणाल सेन के बारे में। और फिल्मों को जो है उन्होंने यथार्थ समझा और लोगों की मानसिकता को देखते हुए लोगों को जिस तरह से हकीकत से जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया था, इसलिए उनको उनके फिल्में उनकी बातें लोगों को पसंद आती रहें। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। और शाम का समय है, 4 और 5 के बीच में आप मेरे साथ रहते हो तो थोड़ा सा आप फ्रेशनेस फील कर रहे होंगे गाने सुनकर। और मैं चाहूँगा कि आप चाय भी पी सकते हैं, धीरे धीरे चाय का सिप पीते हुए कार्यक्रम को सुनिएगा और आपकी मनोरंजन के साथ साथ आपकी चाय के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए अगला गाना अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

Jacob!

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं अब विशेष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में। और विशेष अगर बात करें तो ये उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षण शास्त्री के रूप में कृष्ण स्वामी अय्यर जी को याद किया जाता है। और ये आज ही के दिन 1883 में मद्रास में विशेष रूप से नेल्लोर जिले में इनका जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता मंदिर के पुजारी थे और अपने पुत्र की शिक्षा का उचित प्रबंध उन्होंने ऐसे तैसे कर लिया था। और पिता के पद चिन्हों पर उनकी बात रखने के लिए उन्होंने वकालत की डिग्री लेने के बाद अलादीन कृष्ण

स्वामी अय्यर ने कुछ दिन मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन का कार्य भी किया। फिर इंग्लैंड से शिक्षा लेकर 1907 में मद्रास में वकालत करने लगे और मद्रास विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं से निकट का इनका संबंध था और 1942 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया और 15 वर्षों तक उन्होंने मद्रास के एडवोकेट जनरल के पद पर काम किया। संविधान सभा के सदस्य बने। स्वतंत्रता के बाद कृष्णस्वामी अय्यर देश की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के मुख्य सदस्य थे। उनका दृष्टिकोण उदारवादी था। परंपरागत परिवार से संबंध होने के बाद भी उनका कहना था कि हिंदुओं से संबंधित कानूनों में सुधार होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो अध्ययन किया, लोगों के बीच में वो बात रखी और फिर वकालत का पेशा पूरा करते करते तमिलनाडु में अंतिम समय इनका बीता और 3 अक्टूबर सन 1953 को कृष्णस्वामी अय्यर का देहांत हुआ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। जी हां, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत संगीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, जाते जाते मैं शिवाजी जी के बारे में बताना चाहूँगा। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1680 से 1690 तक राज्य किया इन्होंने। शंभू जी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी एवं भोगी विलासी के व्यक्ति थे। अपनी मृत्यु के समय शिवाजी ने उन्हें पहले के किले में कैद कर रखा था। शंभू जी में अपनी पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था और इसलिए उसमें शौर्य की कमी न थी, परंतु 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी सूर्यबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम का अप्रैल 1680 में रायगढ़ महाराष्ट्र में राज्याभिषेक करा दिया था और शंभू जी ने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में करके आक्रमण कर दिया। उसने सूर्यबाई और राजा राम को कैद कर लिया और रायगढ़ पर अधिकार करके 30 जुलाई 1680 को अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, शौर्य की बात करें तो शंभू जी ने साहस और निडरता के साथ औरंगजेब की 8 लाख सेना का सामना किया था। अधिकांश मुगल सरदारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भगाने के लिए विवश कर दिया और 24 से 32 वर्ष की आयु तक शंभू राजा ने मुगलों की पाक्षिक शक्ति से लड़ाई की और एक बार भी ये युद्ध पराजित नहीं हुए। इसीलिए औरंगजेब दीर्घकाल तक महाराष्ट्र में युद्ध करता रहा। उसके दबाव से संपूर्ण उत्तर हिंदुस्तान मुक्त रहा। यदि उन्होंने औरंगजेब के साथ समझौता किया होता तो उसका आधिपत्य स्वीकार किया होता तो वो 2-3 वर्षों में ही पुनः उत्तर हिंदुस्तान में आ दमकता, परंतु शंभाजी राजा ने उनके संघर्ष के कारण औरंगजेब को 27 वर्ष दक्षिण भारत में ही रुकना पड़ा। इससे उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदुओं की नई सत्ताएं स्थापित होकर हिंदू समाज को सुरक्षा मिली। तो ये थी कमाल शंभाजी राजा की। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए सफ़र कार्यक्रम के साथ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी बहुत सुंदर रीति से मुस्कुराते हैं, सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं और शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों, जब भी बात युवाओं की आती है तो कई बार उनकी कुछ बातें अनदेखी हो जाती हैं और वो बातें होती हैं उनके दिल की, उनके दिमाग की, उनकी जद्दोजहद की। अक्सर कई बार उनसे ये कह दिया जाता है, जो कि पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन इससे उनकी समस्याएं भी ख़त्म नहीं हो जाती कि भाई तुम्हें तो सब कुछ लगा लगाया मिला है या तुमको तो सब कुछ मिला है ना, हमने हमारे ज़माने में जो मेहनत करी है वो तुम्हें क्या पता। और अक्सर ऐसा कहने पर उन्हें ये महसूस तो होता होगा कि हाँ, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेहनत की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, उस चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उस चीज़ का कर्जा भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन कई बार उन्हें यानी युवाओं को ये महसूस होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या हमारे दुख को दुख समझा ही नहीं जा रहा, या हमारी परेशानी को परेशानी समझा ही नहीं जा रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती लाइफ में, और फिर वो अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं अंदर दबाना शुरू कर देते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो हाँ, ज़रूरी है ये समझना कि आप जब यहाँ तक पहुँचे तो उसमें कितना योगदान है, कितना बड़ों ने किया है आपके लिए सैक्रिफाइस, उसका उसकी समझ होना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी कृतज्ञता होना, उसके लिए थैंकफुल फील करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ किसी की समस्या को छोटा आंकना भी सही नहीं होता दोस्तों। आज कुछ ऐसी ही बातें करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, पर फिलहाल वक्त हो गया अगले गीत का। रेडियो मधुबन पर लौट के आएंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: स्वागत है आपका सहयोग में।
2: नमस्कार मैम एंड नमस्कार सभी व्यूवर्स को।
1: जी, प्रज्ञा इज प्रैक्टिसिंग काउंसलर इन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT अजमेर एंड वी हैव द अदर गेस्ट आल्सो डॉक्टर अमृता कात्यायनी। अमृता मैम, वेलकम टू सहयोग सेशन। नमस्कार।
2: नमस्ते मैम जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स।
1: वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT अजमेर राजस्थान। सो अगेन आई वेलकम यू बोथ द एक्सपर्ट्स इन दिस सहयोग प्रोग्राम। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ओवर द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। सो अमृता मैम, यू आर देयर एंड वी हैव द प्रज्ञा मैम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा मैम, what does overthinking mean and how it is affecting the mental health of our students? Kya hai ye overthinking?
2: Ma'am, thank you for taking this question, kyunki aaj hum ek bahut hi crucial topic par baat karne wale hain jo shayad hum sabhi ke life mein kabhi na kabhi aaya hoga, jisko hum kehte hain breaking from overthinking. So aaj ka ye session ma'am specially designed hai un bachcho ke liye, un students ke liye, kyunki humne dekha hai academic pressure, career uncertainty ya social expectations ke karan aajkal ke yuvaon mein overthinking ki problem bahut zyada badh gayi hai. So main पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कितने स्टूडेंट्स या व्यूअर यहाँ ऐसे हैं जो रात को बेड पर लेटकर सोचते रहते हैं, घंटों तक एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं और फिर सुबह उठकर फील करते हैं कि पूरी रात वेस्ट हो गई। सो मुझे यकीन है कि अधिकतर लोगों के साथ में ऐसा होता है, उनका आंसर हाँ होगा और यह बिल्कुल नॉर्मल है। बट जब ये पैटर्न रेगुलर हो जाएगा और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे तब यह कंसर्न की बात बन जाता है। सो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे मैम कि ओवरथिंकिंग क्या है, कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट इससे बाहर कैसे निकला जाए, जो कि मैम समझाएंगे, कात्यायनी मैम बताएंगे। तो ओवरथिंकिंग का सबसे सिंपल डेफिनेशन है किसी भी थॉट, सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार वही चीजें रिपीट करना लेकिन कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशन का ना निकलना। सो बेसिकली यह एक मेंटल लूप की तरह होता है जहां थॉट्स बार बार सेम पैटर्न पे मैम घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और प्रेजेंटेशन कल है। सो नॉर्मल प्रेजेंटेशन में आप नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ओवरथिंकिंग में क्या होता है, आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या मैं भूल जाऊंगा, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्लासमेट हंसेंगे तो नहीं, या अगर मैं स्टैमर कर दूं तो ये साइकिल चलती रहती है आवर्स तक और कई बार पूरी रात, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। सो ओवरथिंकिंग के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे नॉर्मल थिंकिंग से अलग बनाते हैं। पहला है रिपीटेटिव नेचर, यह सेम थॉट को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड प्लेयर हो उसके जैसे। दूसरा है अनप्रोडक्टिव नेचर, डेफिनेटली इससे कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकलता बल्कि प्रॉब्लम ऑल भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। है डिसरप्टिव क्वालिटी, यह आपकी डेली एक्टिविटीज पे इंटरफेरेंस करती है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाती है। और चौथा है मेंटल फॉर्मेशन, थॉट एक साइकिल में ही घूमते रहते हैं विदाउट एनी रेजोल्यूशन, और ये पैटर्न जितना स्ट्रांग हो जाता है ब्रेन ऑटोमेटिकली इसी मोड में चलता रहता है। तो जब भी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, बच्चे उसी एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। मैम कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग के मेंटल हेल्थ इफेक्ट की, तो सबसे इमीडिएट और प्रोमिनेंट है इंक्रीज एंजाइटी। जब आप कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं फ्यूचर इवेंट्स के बारे में या फिर पास्ट मिस्टेक पे ड्वेल करते रहते हैं, तो ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेटेड रहता है। यह क्रॉनिक एंजाइटी क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में। हमने हमेशा देखा है कि एग्जाम पीरियड के दौरान उनका एंजाइटी पीक पर होता है। बजाय प्रिपरेशन पे फोकस करने के वो वरी करते रहते हैं रिजल्ट के बारे में, फेलियर के कंसिक्वेंसेस के बारे में, या एंजाइटी फिजिकल सिम्टम्स भी क्रिएट करती है, जैसे रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, और नेक्स्ट डिसीजन पैरालिसिस भी एक मेजर कंसिक्वेंसेस है ओवर थिंकिंग का, कि जब आप किसी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हैं तो डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, या क्या नेक्स्ट मंथ क्या करना है, तो वो एंडलेस रिसर्च करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल डिसीजन नहीं ले पाते. ये एनालिसिस पैरालिसिस कहलाता है, और यह बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी. देन क्रोनिक स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, इसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी बहुत सीरियस है. ओवर थिंकिंग से हॉर्मोनल में चेंजेस आता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो हमेशा हाई रहता है, तो इससे मेंटल एग्जॉशन होती है और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है. मेमोरी भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है. और ओवर थिंकिंग, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड? यस यस दिस वन. तो ओवर थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो इस प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है. सो बेसिकली जब हम किसी बात को सोच रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑल और नथिंग की, तो अगर मैं परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता तो बेसिकली मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ, या अगर मैं टॉप स्कोर नहीं कर सकता तो कोई मीनिंग नहीं है, दोबारा ट्राई कर देगी. तो इस तरह के थॉट्स बच्चों का एक लूप बना लेते हैं. देन कैटास्ट्रॉफी की जब हम बात करें, कि अगर मैं इस एग्जाम में मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो मैं आगे भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा. सो बेसिकली ओवर जनरलाइजेशन स्टूडेंट्स में एक नेगेटिव इंसिडेंट से ब्रॉड कंक्लूजन निकाल लेते हैं. एंड देन ब्रेन फॉग कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. थिंकिंग से कॉग्निटिव ओवरलोडिंग होती है, ब्रेन में इतने प्रोसेसिंग चलते रहते हैं साइमेंटेनियसली कि एक्चुअल प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए रिसोर्सेस ही नहीं बचते हैं. और स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस की वजह से सारा का सारा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा बेसिक चीजें पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो मेंटल क्लैरिटी को इफेक्ट करता है.
3: बिल्कुल
2: यस
3: जी,
2: मैम. सो लास्टली, सो स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं या सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, यही ब्रेन फॉग के सिम्टम्स हैं. ओवर टू यू मैम.
3: बिल्कुल बिल्कुल. अब अमृता मैम के पास आना चाहते हैं. थैंक यू प्रज्ञा मैम इस प्रश्न के लिए. अमृता मैम, जो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हैं इस, और खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं इस चीज के लिए, वो असुरक्षित माने जाते हैं. मतलब उनके पास लगता है कि बहुत इजी ये चीज उनको कैच करती है कि भाई ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, नथिंग एल्स.
4: यस, वेरी गुड क्वेश्चन मैम. ओवर थिंकिंग की को अभी प्रज्ञा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक रेपिटेटिव थॉट प्रोसेस है, जो कि प्राय अनप्रोडक्टिव होता है. और ये बच्चों की अगर हम बात करें, खासकर एडोलसेंस एज की बात करें, तो ये वो एज है जहां पर कि करियर चॉइस, फिर पीयर ग्रुप में अपने आप को इन्फ्लुएंस दिखा, अपने आप के इस्टेब्लिश करना, ये सारे प्रेशर्स जो है इस एज में काफी ज्यादा होता है. यानी कि सोशल प्रेशर है, उनको एकेडमिक प्रेशर्स है, कैरियर चॉइस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के प्रेशर्स है. तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे के भीतर उस तरह से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर उसे, जैसा मैम ने भी बताया कि ओवर जनरलाइजेशन, इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, तो बच्चा ये सोचेगा कि वो इस फील्ड में जाए या उस फील्ड में जाए. इस तरह की चीजें ही उसके भीतर, ये एबिलिटीज है कि नहीं है. मैम, आई थिंक वी कैन बी विद द फर्स्ट स्लाइड ओनली. या सो इस तरह, नेक्स्ट स्लाइड. तो इस तरह की जब चीजें होते हैं कि बच्चे के जो एडोलसेंस एज है, जहाँ की वो ऐसे चौराहे पे है जिसके सामने, उसके सामने कैरियर चॉइसेस है, सडनली अगर वो क्लास 11th में जाता है तो एकेडमिक प्रेशर इज वेरी, सडनली द लोड ऑफ एकेडमिक लोड बिकम्स वेरी हाई. तो ऐसे स्थिति में देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ फेलियर, कि भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए कि मुझे मुझे कौन सा डिसिप्लिन चुनना चाहिए. इस तरह के सारे जो है डिलेमा है, एंड देयर इज अ फियर, सॉर्ट ऑफ फियर ऑफ फेलियर, और मे बी एंजाइटी रिलेटेड विद देयर करियर चॉइसेस. लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर देयर रिलेटेड विद व्हाट डिसीजन दे हैव टू टेक. ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि बच्चे जो है, ये एक बहुत एकेडमिक प्रेशर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चे को ज्यादा ओवर थिंक करने के लिए जो है प्रमोट करता है, जिससे ओवर थिंकिंग होता है. दूसरी चीज जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. अगर बच्चे को अपने एबिलिटीज, अपने स्किल्स, इन चीजों की जो है वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, if the child is not very much aware what are his strengths and what are the areas where he or she is lacking, to aisi sthiti mein bhi jo hai, they are prone to be suffering from overthinking. Aur perfectionism jo ek cheez hai, जिसमें कि जब हम ये चाहते हैं कि there is like a tendency to be flawless and fear of making mistakes, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा जो है वो काफी जो है overthinking करता है. Peer pressure इस age में बहुत ज्यादा होता है. हम कोई भी academic decision या career related decision हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो social pressure में आकर के या अपने family के pressure में आकर या peer के pressure में आकर लेते हैं. तो ऐसी स्थिति में they are overthinking all the time. उनके कहीं ना कहीं clashes चल रहे होते हैं उनके अपने interest के साथ और जो society उनके ऊपर जो चीजें थोपती है या वो अपने पीयर ग्रुप में जो वो देखते हैं. दिस कैन बी रिलेटेड विद देयर करियर, विद देयर सोशल लाइफ, कि उनमें उन्हें जो है किस तरह से अगर बाहर जाना है तो द चाइल्ड में भी जस्ट ओवर थिंकिंग द होल डे कि आज उसे जो है कोचिंग में के बाद अपना सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि उसे सपोज देयर इज अ फ्रेंड्स पार्टी तो वहां जाना चाहिए. इस तरह के डिलेमाज में ही ओवर थिंकिंग व्हेन ड्यू टू ऑल दिस सोशल प्रेशर्स भी हो सकते हैं. सबसे लास्टली जो इमोशनल फैक्टर मैं कहूंगी कि जो अपना एक पर्सनल एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें मैंने कहा सेल्फ डाउट, जब हम अपने एबिलिटीज और अपने जो हमारे स्ट्रेंथ्स है उसके प्रति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं एंड हमारे भीतर अब खुद को लेकर के जो है बहुत डाउट्स रहते हैं. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माय ओन एबिलिटीज एंड व्हाट डिसीजंस डू आई हैव टू टेक, तो ऐसी स्थिति में जो है एक कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग रहती है. हम कभी कभी चीजों को जैसे कहते हैं गाय का पहाड़ बना देते हैं. छोटी सी घटना को हमें लगता है कि अगर कोई हंस रहा है तो बच्चे को लग सकता है कि वो मुझ पर हंस रहा है एंड होल डे द चाइल्ड में जस्ट गो ऑन ओवर थिंकिंग कि शायद मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं उस तरह का अट्रैक्टिव नहीं हूँ, पीयर ग्रुप मुझे पसंद नहीं करते एंड लाइक दीज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स द चाइल्ड में गो ऑन सफरिंग फ्रॉम दीज ओवर थिंकिंग. सो आई वुड से द अकेडमिक प्रेशर्स, द सोशल फैक्टर, मे बी द फैमिली प्रेशर, द पीयर ग्रुप प्रेशर और द सोसाइटी जो है कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ज्यादा उसको अहमियत देती है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं फंसकर बच्चा जो है वो ओवर थिंकिंग करता है.
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा.

0: और कमेंट्स।
1: यस मैम, थैंक यू अमृता मैम। प्रज्ञा मैम, डॉक्टर प्रज्ञा जी से मैं जानना चाहती हूँ कि कॉमन साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि ये जो बच्चा है ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है, तो क्या लक्षण होते हैं प्रज्ञा मैम उसके, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, बहुत सारे उसके अलग से उसकी पहचाने की बच्चा प्रेशर में है, ओवर थिंकिंग है, बिना बात के ही अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लिया है इस बच्चे ने। जी मैम,
0: बिल्कुल मैम। मैम जैसे अभी आपने कात्यायनी मैम को सुना
1: हाँ,
0: तो आप समझ सकते हो कि ये कितना क्रूशियल है। हमने सारी चीजों को कवर किया और फिर भी मतलब हमें बच्चा ऊपर से लग रहा है कि ठीक है उसको भूख नहीं लग रही है या वो खाना नहीं खा रहा है, बट इंटरनली ये कितना स्ट्रेसफुल है। और जब हम साइंस एंड सिम्टम्स पे बात करते हैं तो मेंटल और कॉग्निटिव सिम्टम्स सबसे प्रोमिनेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। बच्चा पढ़ने बैठ रहा है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसके थॉट्स वंडर हो रहे हैं, वो चीजों में अलग चीजों में मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, सामने बुक खुली हुई है लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। एक पैरा पढ़ने के बाद में रियलाइज होता है उसको कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, माइंड
1: हाँ,
0: क्योंकि कहीं और था। ये जो कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हर डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क कि क्या मैंने सही किया है या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, तो लोग या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये जो सेल्फ डाउट है ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। जब हम बात करते हैं पास्ट इवेंट की, तो पास्ट इवेंट भी बहुत ही टिपिकल सिम्टम है ओवर थिंकिंग का। स्टूडेंट की कोई कन्वर्सेशन हो टीचर से या कोई प्रेजेंटेशन दिया है या कोई एग्जाम ही उसने दिया है तो बार बार उसे मेंटली वो रिहर्स करते रहते हैं कि काश मैंने यह कहा होता इसकी जगह पे, या मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर किया होता। ये जो मेंटल रिहर्सल है ये आवर्स तक चलती रहती है लेकिन कोई भी प्रोडक्टिव आउटकम नहीं निकलता। फ्यूचर वर्किंग भी मैम बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाती है, जैसे कि कॉलेज एडमिशन कहाँ लेंगे या जॉब मार्केट कैसी होगी जब मैं ग्रेजुएशन करूंगा, या सबसे ज्यादा कॉमन कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मैं मीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये एक एक्सेसिव कंसर्न है, ये इवेंट्स में बच्चे के लिए एक एंजाइटी क्रिएट करता रहता है। अब बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो डिसीजन पैरालिसिस जब हम बात करते हैं ये डेफिनेटली बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। क्यों? क्योंकि बच्चा यही नहीं डिसाइड कर पाता है कि वो कौन सी बुक पढ़े, कौन सी नोट्स रेफर करे या कौन सा कोर्स सेलेक्ट करे, कहाँ अप्लाई करे। ये जो डिसीजन है वो एक्चुअली वीक्स ले लेते हैं, मंथ्स ले लेते हैं और इसी में रिसर्च करते रहते हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल डिसीजन लेना ही भूल जाते हैं। और एक्सेसिव रियश्योरेंस भी लेना फ्रेंड से, फैमिली से, टीचर से कि ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। और अवॉइडेंस बिहेवियर भी बच्चे में डेवलप हो जाता है, इंपॉर्टेंट टास्क को वो पोस्टपोन करने लगते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ओवरवेलमिंग फील होता रहता है, जैसे कल करूंगा, वीकेंड के बाद करेंगे, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है। तो ये सब एक्सक्यूज देकर प्रोक्रेस्टिनेशन बच्चों में डेवलप होने लग जाता है। कंपल्सिव लिस्टिंग मेकिंग जो है वो एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सिम्टम, अगर मैं बोलूं तो एक इंटरेस्टिंग सिम्टम ये है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, प्रॉन्स एंड कॉन्स की एंडलेस लिस्ट, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं डिसीजन लेने के लिए। लिस्ट बनाना तो प्रोडक्टिव लगता है उन्हें लेकिन जब ये कंपल्सिव हो जाए और डिसीजन मेकिंग में हेल्प ना करे तो मैम यह ओवर सिम्टम बन जाती है, ये बेसिकली ओवर थिंकिंग का सिम्टम बन जाता है। देन फिजिकल सिम्टम जो हमारे सामने है, स्लीप रिलेटेड, बच्चों में नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिजिकल टेंशन की वजह से बच्चों में हमेशा हेडेक बना रहता है, मस्कुलर टेंशन होती है, शोल्डर में कंप्लेन करेंगे कि नेक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, जॉ क्लिंचिंग की उनकी हैबिट बन जाती है, दांत पीसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और यूजुअली ये उनके रात के समय में होता है। और हमेशा उनसे जब भी आप देखोगे आप उनका एनर्जी लेवल हमेशा कम होता है, हमेशा फटीग फील करते हैं, हमेशा थके हुए फील करते हैं, एनर्जी लेवल उनका लो होता है। और ये किसी नींद की कम, ये बेसिकली न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है या वो नींद नहीं ले रहे हैं, ये मेंटल एग्जॉशन है जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और जब हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इसको रेड फ्लैग जब हम देख रहे हैं हमारे सामने, इसको शुरू करने से पहले मैं बच्चों आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप में से कोई आप में से, इनमें से जो भी हमने सिम्टम को डिस्कस किया, इनमें से कोई सिम्टम आपने अपने में या अपने फ्रेंड्स में नोटिस किया है? और अगर है तो यह कोई शेम की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि 73% यंग एडल्ट्स डेली ओवरथिंकिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल और इंक्रीज स्ट्रेस लेवल का एक नेचुरल कंसिक्वेंसेस है। इंपॉर्टेंस ये है कि हम इन साइंस को आइडेंटिफाई करें, एंड जो रेड फ्लैग आपके सामने है, अगर ये आप इसको महसूस कर रहे हैं तो, और आपने खुद से भी कर लिया है, खुद से भी सेल्फ हेल्प करा है, अपने एंड से भी मैनेज करने की कोशिश करी है, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो बच्चों याद रखो, आप अकेले नहीं हो। सपोर्ट अवेलेबल है मल्टीपल लेवल्स पे। स्कूल काउंसलर्स हैं जो स्पेशली ट्रेन किए गए हैं
1: बिल्कुल
0: स्टूडेंट्स इश्यू हैंडल करने के लिए। हेल्थ
1: बिल्कुल
0: मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। किसी भी एडल्ट को आप डिस्कस करिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, बल्कि आपको ये एश्योर करना है कि सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ओके,
1: बिल्कुल
0: थैंक यू मैम।
1: बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञा मैम। और अब मैं अमृता मैडम से भी जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू बी टेकन टू स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। क्या क्या हम लोग
0: यस
1: इसके सॉल्यूशंस ढूंढ
0: सॉल्यूशन,
1: सकते हैं? राइट मैम
0: यस मैम, सॉल्यूशंस तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले मैं, जैसे पुराने जमाने में कहा गया, कहावत है कि हम जितना अपने मन को अस्थिर रखे और शरीर को जितना जो है चलायवान रखे, तो सबसे पहले मैं बच्चों को कहूंगी कि वो जितना फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, इफ दे वेरी मच इंगेज इन स्पोर्ट्स एंड दीज फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स में वो बाहर जाए, वॉकिंग पे जाए, तो ऐसे जब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो नेचुरली ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दीजिए, और लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंजेस लाइए कि आप अगर ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल के थ्रू आप रील्स देख रहे हैं और इस सोशल मीडिया में है, तो डेफिनेटली वो सारे सेल्फ डाउट और सेल्फ एस्टीम को लेकर के वो आएंगे वो डाउट्स, और फिर जो है ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगा। तो अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है, रूटीन बनाना है जिसमें कि आप बहुत रूटीन होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज होगा, सुबह से ही आपकी दिनचर्या फिक्स्ड होगी, तो आपको समय ही नहीं मिलेगा अपने ऊपर डाउट करने का, एंड देन ओवरथिंकिंग की जो अनप्रोडक्टिव साइकिल है जैसा प्रज्ञा मैम ने बताया
1: बिल्कुल
0: उसको
1: मैम थैंक
0: कंटिन्यू करने का।
1: यू
0: इसके लिए हम
1: अमृता
0: ऐसा
1: मैम।
0: कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स, और जो है बहुत सारे मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले तो
1: राइट
0: सेल्फ अवेयर होना है कि भाई हाँ मुझे जो है ओवर थिंकिंग हो रहा है, आई एम कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, तो ऐसी स्थिति में जब आप अवेयर हो जाएंगे देन यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यू हैव टू बी
1: बिल्कुल
0: अवेयर दैट सर्टेन इमोशन सर्टेन थॉट्स आर कमिंग कंटिन्यूअसली, सो जस्ट बीइंग बिकम अवेयर ऑफ इट, एंड वंस यू बिकम अवेयर ऑफ इट जस्ट प्रैक्टिस अ रिलैक्सेशन टेक्निक, अ रिलैक्सेशन वेयर यू माइंडफुलनेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वेयर यू ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग। तो इस तरह के कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे, कोई ऐसे विचार है, कोई थॉट है जो कि आपको हमेशा जो है लगातार जो है एट द बैक ऑफ माइंड, इट इज जस्ट कमिंग एंड नॉट गोइंग, देन यू कैन इवन हैव अ सपोर्ट। एक अच्छा एक फ्रेंड सर्कल रखिए जहां की आप, जिनसे आप अप्रोच कर सके, जिनसे आप डिस्कस कर सके। वंस मे बी इफ यू डिस्कस, मे बी इट कैन बी योर मेंटर, इट कैन बी योर फ्रेंड, तो आपको लगेगा कि आप जिस चीज को लेकर इतने चिंतित थे, इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, वो तो बहुत छोटी सी बात थी, मे
1: बिल्कुल
0: बी इट
1: मैम
0: वॉज जस्ट ए प्रोक्रेस्टिनेशन, इट वॉज जस्ट ए कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग बाई यू। इस
1: बिल्कुल
0: तरह के जो है प्रैक्टिकल सोल्यूशन से हम इससे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सो
1: बिल्कुल
0: दैट वॉज ऑल
1: सही
0: फ्रॉम
1: कहा।
0: माई साइड। हाँ
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृता कात्यायनी मैम एंड डॉक्टर प्रज्ञा सिंह। आप दोनों ही इस सहयोग सत्र में शामिल हुए और दोनों के विचार बेहद सही तरीके से बच्चों को समझाए गए और बताए गए कि ओवर थिंकिंग को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से इससे पार पा सकते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस। और बच्चों को बस इतना बड़ा इशू नहीं बनाना, ज्यादा नहीं सोचना, बहुत आसान है, सरल है। आपकी जिंदगी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और अगर कोई समस्या है तो आपके दोस्त, जैसा कि अमृता मैम ने बोला, उनसे सलाह लें और अपने जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ भी दोस्ताना रवैया जरूर अपनाते रहें, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन उनके पास भी होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अमृता, डॉक्टर अमृता एंड डॉक्टर प्रज्ञा।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू
1: थैंक
0: फॉर
1: यू,
0: इनवाइटिंग
1: थैंक यू
0: मैम।
1: मैम, थैंक यू मैम।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी हरो गांव हरो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे महिलाएं का समाज हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे नरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट, बच्चों का हुनर खोज में आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदवाड़ा आर में। और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा साथ भंवरलाल जी हमारा उपस्थित है। तो प्रिंसिपल उनको चयन किए, बोला हमारा भंवरलाल सर पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बच्चों का साथ घुल मिलकर करते, तो सर को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और

0: द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव के जो हुनर है, जो टैलेंट को जन जन तक खोजने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा, सर आपको वेलकम करते। राजकीय विद्यालय जो सनवाड़ा आर में आप वरिष्ठ शिक्षक है, तो आप अपना परिचय देंगे।
1: सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे विद्यालय में समय निकाल के आए और हमारे बच्चों का टैलेंट जानने के लिए आप उपस्थित हुए हो। मैं भवनलाल गांची, व्याख्याता हिंदी विषय से, सनवाड़ा आर में पोस्टेड हूँ। 2017 से मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा आप यहाँ पधारे हो और हमारे बच्चों का टैलेंट लेके जाओगे और मतलब सोशल मीडिया से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये पूरे विश्व में हमारे बच्चे इस तरह से फेमस होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप धन्यवाद के पात्र है।
0: सर आज जो इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है क्योंकि एक इशारा से, एक इंगित से आपने हमें चांस दिए और बच्चे चांसलर बन जाएंगे क्योंकि चांस देना आपका काम है और चांसलर बनना बच्चों का काम है। तो आज इस मंच को लोग ढूंढते हैं, जे आज सहूलियत से मिल गया आपको मंच और आपका बच्चे भी इस मंच का माध्यम से अपना हुनर को, अपना प्रतिभा को सुनाएंगे और हमारा श्रोता जो लिसनर सुन रहे इंटरनेट का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे और हमारा श्रोता सुन रहे, सभी का आवाज जब सुनते हैं एक गुलदस्ता बन जाता है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे ग्राम पंचायत, सभी वर्ग से, चाहे किसान हो, सभी से मिलते हैं। तो आज बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सनवाड़ा जो आर का बच्चे आज बारी बारी सुनाएंगे। तो हमारा श्रोता मित्र कहीं नहीं जाइए, अपना वॉल्यूम को ट्यून कर रखिए, आप सुन रहे हैं इस समय खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर। तो सर आपको कैसे लगा, आपने पहले बता दिए बच्चों का जो भागीदारी मैंने देखा, आप सबको पूरा ग्रुप वाइज कर दिए, तो जो चार ग्रुप बने हैं, तो पहला ग्रुप जो हमारा दो बच्ची आई है तो उनका नाम थोड़ा जिक्र करेंगे।
1: जी हाँ, हमारे ये नन्नी मुन्नी बच्चिया, एक का नाम है दीपिका और एक का नाम है मानसी, हमारे पहला ग्रुप है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये बच्चिया देगी जो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सर आप तो एक आरजे जैसे लग रहे हैं, एंकरिंग में आपका नंबर वन है क्योंकि सांस्कृतिक प्रभारी है और उसका साथ कौन सा विषय आप पढ़ाते सर बच्चों?
1: जी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर।
0: इसलिए आपका जो बोलने का तरीका हो और बच्चों को एकत्रित करके आप संबंध बनाते, बहुत खुशी लगा। सर को धन्यवाद देते ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय आज दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे भी कम नहीं है, ऐसे बच्चों को जब मंच मिलता है, जो मौका मिलता है, तो चौका छक्का लगाएंगे आज और स्कूल का नाम रोशन करेंगे और नामांकन में भी वृद्धि होगा स्कूल का क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आ रहे हैं ये कम बात नहीं है। 2000 ताली हो जाए सार के लिए, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ हम खुशी करा दिए क्यों, ताली बजाने में कोई पैसा कोई टैक्स नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और जो सोए हुए नींद, बच्चे तो सोते नहीं है लेकिन कहाँ भी सोए होंगे अगल बगल में वो भी जाग जाएंगे क्योंकि हमारा रेडियो में जब इस तरह आवाज सुनेंगे जो रेडियो को छोड़कर जाते हैं सो जाते हैं कोई, तो उनको भी जगा देंगे, ये हमारा मंशा रहेगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा प्रस्तुतियां शुरू हो जाएगी। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, परियां हैं और मीठे बच्चे हैं, चलिए सुनते हैं उनका मीठी आवाज से, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।
2: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: चले नमस्ते कार्यक्रम के आगे बढ़ा तो देर नहीं करते हुए हमारा जो कार्यक्रम आज तो ऐसे बंद पड़ेगा क्योंकि सर का जो उमंग उत्साह वार्म अप कर दिए और सर का भावना देखो और बच्चे भी भाव और भावना से एक प्रस्तुति सुनाएंगी। तो हम पहला प्रस्तुति की ओर चल रहे, सभी खुशी है ना, सभी बच्चे खुशी है, खुशी होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और बच्चे भी इस साथ दे रहे और सभी स्टाफ खासकर हमारा प्रिंसिपल साहब भी इस कार्यक्रम में अति सहयोग दिए। तो हमारा साथ दो छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मानसी।
0: आज मन का बात को मानसी अपना क्लियर करेगा क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार हर बच्चों का अंदर में रहता है, मन बुद्धि और संस्कार। जिसका मन बुद्धि संस्कार तेज है त्रिमूर्ति, वो मन को जो कंट्रोल करेगा, बुद्धि को जो कंट्रोल करेगा, वो संस्कार तो बन जाएगा, दैवी संस्कार आ जाएंगे। और बोले ये तो हमारा स्कूल के बच्चों का संस्कार है, सुसंस्कारित, हमको सुसंस्कारित बच्चे चाहिए भविष्य के लिए, अच्छा संस्कारित दैवी संस्कार। तो हमारा मानसी आज मन से गीत गाएगी और उसको साथ देने के लिए हमारा साथ और एक गुड़िया है, हेलो क्या नाम है?
1: दीपिका।
0: हाँ दीपिका, मन से आज दीप जलाएंगे दीपिका, नाम जैसे काम उस तरह करेंगे, दीप जला भाई, बुद्धि का दीप मन का दीप जब जलेगा तो हमारा संस्कार बन जाएगा। दीपिका और मानसी को स्वागत करते हैं।

0: खाना खाकर पढ़ने जाते।
1: वाह, ताली बजाना।
2: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। मैंने सोचा था बच्चे सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या करते, दिनचर्या बता दिए। सुबह उठते उठते क्या करना चाहिए? ब्रश। लेकिन इसका पहले मैं आवरे के जोड़ दूंगा, जब नींद खोलेगी तब पहले एक मिनट, जब नींद खोलेगी एक मिनट गुड मॉर्निंग टू गॉड, भगवान को शुक्रिया करना है। सुप्रभात। पहले नींद खोलते खोलते किसको धन्यवाद देंगे? भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, अपना कुलदेवी को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसको बोलेंगे? भगवान को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। इसका बाद जैसे मंजन करना, मुंह धोना, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला गुड मॉर्निंग किसको? भगवान को। इसका बाद माता पिता को, ठीक है, मन में बोलना है गुड मॉर्निंग, माता पिता आप हमें बहुत कुछ दिए, हम आपका रिटर्न करेंगे बड़े होकर, ऐसे मन में बोलना उठते उठते, ठीक है। इसके बाद शिक्षकगण, वो भी गुरु है तो उनको भी धन्यवाद देना मन में। इसके बाद अपना कार्य शुरू कर, उठते उठते बैठ जाने का बेड पे जहां पर सोते, तो फिर तीनों को गुड मॉर्निंग करना मन से, मन से, ठीक है, मन से गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग भगवान, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मानसी तुम बड़े होकर क्या बनेगी लक्ष्य रखा है? जैसे सर मैम वगैरह होते हैं, कार्यकर्ता, पुलिस, राष्ट्रपति, है ना, तुम क्या बनेगी रे?
0: टीचर।
2: हाँ, टीचर मैम बनेंगे। अरे वाह, कोई सिखाए नहीं फिर भी बोले मैं मैडम बनेगी। हाँ, इसलिए पढ़ाई करना। और विद्यार्थी जीवन में बच्चे ध्यान से सुने, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़े में कौन कौन आते हैं हमें बताएगी दीपिका? बड़े में कौन कौन आते हैं?
0: माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, टीचर, बड़े भैया,
2: बड़े भैया बहन सभी बड़े आते। तो बड़े का बात मानेंगे तो जरूर जरूर कामयाबी होंगे। बड़े जो बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं, बोला बड़े आपका भलाई के लिए करते हैं। लेकिन बड़े का बात तो सुनेंगे तो बड़े होकर हमारा टीचर जैसे सुनाएंगे सभी को। आपको सुनाते ना? क्योंकि वो पहले सुने थे माँ बाप का, इसलिए आज बच्चों को सुना रहे सभी चीज, और बच्चे सुनते ध्यान से, इसलिए बड़े होकर भविष्य में सबको सुनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मैनेजर, पीएचडी करने के लिए बड़ों का बात मानना चाहिए। दीपिका तुम बड़े कर क्या बनेगी?
0: टीचर।
2: तुम भी टीचर? अच्छा, तुम्हारा स्कूल के अच्छा टीचर का नाम बताओ। तुम्हारा स्कूल में कितना सारा टीचर है? कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
0: राजेंद्र जी सर।
2: अरे वाह, सभी सर होना चाहिए। राजेंद्र सर को बोलते हमारा भवन लाल सर बोल आपको मार काट देंगे रे, ऐसे नहीं करना, इसलिए छोटे बच्चों का ही है सर, इसलिए राजेंद्र सर। बड़े तो हमारा लेक्चर है, सभी बच्चे सच्चे होते हैं और वो दिल से बात करते हैं, कोई कपड़ नहीं, कोई छल नहीं, और महात्मा होते हैं बच्चे, सच बोलते हैं, कोई इशारा नहीं भाई, सर हो सके कोई इसका पूरा दिल का बात रखते हैं। सर का, सर कौन सा विषय आपको पढ़ाते जो सर आपका नाम लिए, कौन सा विषय पढ़ाते हैं?
0: गणित।
2: हाँ, गणित में मैथ टीचर बनेगी, ये भी हमारा दीपिका, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो मंच आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे खुशी से उनका चेहरा से पता चलता है जो हमें आज तो आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, मीडिया में जाएंगे तो हम तो मीडिया में छा जाएंगे, तो ऐसे होना चाहिए। और श्रोता भी यही बच्चों को प्रोत्साहन दीजिएगा, और कभी जरूरत पड़ेगा तो जरूर सनवाड़ा आर में आप आइए, बच्चों को मिलिए, और जो भी आपको देना चाहिए भामाशाह रूप में, चाहे उनका पानी हो, कुछ आरो, कुछ आवश्यक पड़ता है बच्चों को दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खुला मंच है, रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा गुड डे लोग भी है, बड़े बड़े भाई लोग, तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन।

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो है?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें तो जाने को इच्छा नहीं कर रहा, बच्चों का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, सो मीठे है और हमें भी मीठा बना दिए। और हमारा सार का तो इशारा से सब बच्चे खुश, बार बार आने के लिए इच्छा होगा क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आप सुन पा रहे। चलिए हमारे साथ एक छात्र है तो उनको परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम योगेश कुमार है, मेरे 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा हार।
3: तो आज क्या प्रस्तुत करेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते सच मन से आप एक गीत प्रस्तुत करेंगे।
4: जी। जग सारो घूम्यो मैं, तारो जी सोना कोई पायो,

0: ਆਯੋ ਡੋਰ ਤਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪੀਤ ਕੀ ਅਨੇਕ ਦੇਖ ਲੈ ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਨੁਕਿਆ ਬਣਾਈ ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਨੁਕਿਆ ਬਣਾਈ ਮੇਰੋ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈ ਮੇਰੋ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈ
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤੀ ਕੇ ਲਿਏ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੋ ਤਾਂ ਏਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿਏ ਬੱਚਿਓ ਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਏਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਨ ਪੜਾ ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੀਤ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰ ਕਿਆ ਬਨਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ
0: ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਬਨਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ
1: ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਜ ਤੋ ਸਭ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਹੀਂ ਬਨੇਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਕਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਕੌਨ ਸਾ ਖੇਲ
0: ਕ੍ਰਿਕੇਟ
1: ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਆਦਮੀ ਹੋਤੇ ਹੈ
0: 11
1: 11 ਆਪੋਜਿਟ ਮੇ 11 ਔਰ ਆਪਕਾ ਤਰਫ ਸੇ 11 22 ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਕਾ ਸਾਂਗਵਾੜਾ ਆਰ ਮੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਓ ਹੈ
0: हमारे आसपास में रोईड़ा है स्वरूपगंज है पूला है मांडवाड़ा है वासा है वाटेरा है भारजा है
1: अरे वाह पूरा पिंडड़ा ब्लॉक में 43 ग्राम पंचायत है जिसमें ये बहुत सारा गांव आसपास का गांव का नाम बताए बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े होकर जैसे अपने टीचर बनेंगे आपका टीचर को जो देखते हैं उनका विशेषता गुण कौन सा शिक्षक से आप ग्रहण करते ज्यादा उनका पढ़ाने का तरीका
0: सभी से करते एक से क्यों से
1: सभी से कर सभी से गुण लेना है जब गुण लेंगे तो गुणग्राही होंगे और सबसे विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण है सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है विद्यार्थी जीवन में सबसे सबसे बड़ा गुण क्या है कौन बताएंगे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के समय में सबसे बड़ा गुण सर्वश्रेष्ठ गुण कौन बताएगा
2: शिक्षा
1: शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ा गुण है विद्यार्थी जीवन में लेकिन विद्या ग्रहण कैसे होगा विद्यार्थी जीवन में विद्या ग्रहण करना लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचो विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण तो पढ़ाई तो है लेकिन उसके साथ साथ और कौन सा गुण है कौन बताएगा जिस गुण में दिव्यता ता रहेगा ता मधुरता लास्ट में ता रहेगा मैं क्लू दे दिया विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए विद्यार्थी में
0: शिक्षकता
1: शिक्षा शिक्षकता अच्छा शिक्षकता और एक बोला पढ़ाई एक तो शिक्षा और बताएगा कौन सा गुण होना चाहिए पढ़ाई
3: सहनशीलता सहिष्णुता
1: बहुत सारे गुण है सबसे गुण है लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण सबसे बड़ी गुण है
3: बुद्धिमत्ता
1: नियमितता
3: नियमित
1: जब आएंगे बच्चे बच्चे तो आते हैं नियमित सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमित स्कूल को आना है इसके बाद आपका सर्व गुण आ जाएगा सब गुण ठीक है जैसे सर ने बताया सहनशीलता लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता रेगुलर एब्सेंट रहेंगे तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक अगला ग्रुप हमारा रेडी है तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साइलेंस में, साइलेंस जो बल है ना, शांति से काम होना चाहिए। आज ओम शांति से आए हैं और ओम शांति से ही आज बच्चे शांति से गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक का बाद वंस मोर, और बालिकाएं एक ग्रुप आए हैं तो उनका नाम पहले सुन लेते हैं।
2: सोनू, कक्षा 7, राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा।
3: मेरा नाम दीक्षा है और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूं।
4: मेरा नाम आस्था माली है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम प्रियंका कुबर है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
1: कितना सुंदर सुंदर तुलाय और ताल का साथ अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज छोटे छोटे तोतले आवाज में और मिठास इसमें है। चलिए, हमारा कार्यक्रम को हेल्दी बनाने के लिए चारों को स्वागत करते हैं। एक गीत प्रस्तुत हो जाएगी।

0: बहुत धन्यवाद। कहाँ से सीखते हैं ये सब? स्कूल में?
1: स्कूल से।
0: इसलिए स्कूल आना जरूरी है, स्कूल नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे आज आकाशवाणी में बच्चे अपना आवाज को सुंदर रूप में प्रस्तुत किए, अभिमन्यु है ना? अभिमन्यु का पिताजी का नाम कौन बताएगा, मालूम है? अभिमन्यु
1: अर्जुन।
0: वेरी पूरा इंटेलिजेंट। वहां पर जाएंगे ना बड़े होकर पूरी याद रहेगा। भाई भाई में जब इंटरव्यू होगा तो बच्चे तो याद करेंगे, रेडियो मधुबन में हमको पूछा था अभिमन्यु का पिताजी का नाम। उस समय भी कोई भी पूछेगा ना, अभी से रेडी रखना और जरूर आप कामयाब होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी?
1: हम पुलिस।
0: हाँ, पूरा हाइट तो लग रहे हैं, पुलिस के लिए रेडी है, फिट है पूरा, है ना? टीचर नहीं कोई, इसका पहले बहुत सारे टीचर मिले थे लेकिन अभी पुलिस मिलेगा। पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य मैंने ड्यूटी, उनका काम क्या होता है?
1: चोर को पकड़ती है और उन लोग को सबक सिखाते हैं।
0: सबक से जो खराब लोग को सबक सिखाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, है ना? और पुलिस चोर जो दुर्नीति करेगा उसको पूरा सजा देने के लिए रेडी रहेगा। तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैं शिक्षक।
0: शिक्षिका, शिक्षक, मैडम बनेगी। तुमको पूछेंगे नहीं, तुम बताओ देखी।
1: पुलिस।
0: पुलिस। हाँ, पुलिस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जिसको पुलिस चाहिए याद रखना, पूरा सांगवाड़ा आर को याद करेंगे बड़े होकर। ये लोग पुलिस, दो पुलिस तो मिल चुके, कोई आसपास गांव में कुछ भी हो तो तुरंत को कराएंगे, ठीक है? फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

होटल पंडित, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन

0: तो ये अगला प्रस्तुति हम लेकर आ रहे हैं, और खासकर बच्चों का आवाज, बच्चों का आवाज में जो दम है, बड़े बड़े भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए कितना भी धन्यवाद दे, हमारा सर कोऑपरेशन कर रहे हैं भंवरलाल जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर, सुनते हैं प्रस्तुति।
1: उसीना केडबर्मा परकार, ए राम राम, ए राम राम। टिम्पा वालू डीजे आयुने आया, है वीरो जोई पसी आवुने आया। टिम्पा वालू डीजे आयुने आया, है वीरो जोई पसी आवुने आया। जावा दे, जावा दे, जावा दे।

0: lauta. Ali no pemero lauta, pemero lauta, pemero bogule lauta. Javade, javade, javade. Evo pona leto paso a vene allá. Evero paso a via vene allá.
1: चलो सर इस गीत में इसका भावार्थ क्या है हमारा सर जी बताएंगे क्योंकि हमारा श्रोता मित्र जो आदिवासी गीत नहीं जानते होंगे अथवा मारवाड़ी गीत नहीं जानते होंगे तो हमारा जैसे लोग जो आते हैं तो वो भी क्योंकि रेडियो मधुबन
2: तो नहीं आता इसका पूरा भावार्थ तो मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत ही आदिवासी ठेठ अंचल से ये गीत है और इसका मुख्य भाव ये है कि कभी भी शादी वगैरह में आजकल जो डीजे का प्रचलन है तो जो एक गाड़ी डीजे वाली आती है उसके ऊपर ये गाना पूरा बना हुआ है कि टेम्पा वारू डीजे आयु रे मतलब एक गाड़ी आई है जिसके साथ डीजे लगा हुआ है
1: तो होने वाला है इसका आवाज से हाँ तो बहुत कुछ सीखा मिलते है तो हमारा जो भाकर क्षेत्र है भाकर क्षेत्र में जिस आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको मजा आता होगा डीजे का तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम को संदर्भ में सजाए और अंतिम प्रस्तुति बच्चों का आवाज को सुन के हमारा शिक्षक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे वो अपना अब राजेंद्र सर अपना इस कार्यक्रम को देख रहे हैं साक्षी दृष्टा रूप में और भीष्म पितामह जैसे सभी में सभी शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं कोऑपरेशन एक परिवार जैसे चलिए हमारा सर जी को राजेंद्र सर को स्वागत करते हैं सर आज रेडियो मधुबन में आपको स्वागत करते हैं बच्चों का साथ आप भी बच्चे बन गए अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे तो आपको तालियों का साथ
2: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन को कि आज आप एक ठेठ आदिवासी अंचल के गांव सनवाड़ा आर में आकर के आप बच्चों को इनकी प्रस्तुति देने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं वास्तव में आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इतनी खुशी आज मुझे हो रही है और वास्तव में ये प्रयास आखिर में रंग लाएंगे इन बच्चों की आवाज जब दुनिया वाले सुनेंगे तो वास्तव में मालूम पड़ेगा इनको लोगों को कि इन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं ये भी कुछ कर सकते हैं और ये भी कुछ कर दिखाने में सक्षम है तो अंत में जैसा कि सर ने मुझे आह्वान किया है मैं राजेंद्र टेलर चूंकि इन छोटे छोटे बच्चों का कक्षा अध्यापक रहा हूं बहुत सारे गीत मैंने इनको सिखाए भी है तो बच्चे भी डिमांड करेंगे सर आप भी एक गीत तो सुनाई दो तो हमारी देश की संस्कृति जैसी है और जैसा मैं इन बच्चों को मानता हूं उसी अनुरूप उसी भाव को लिए हुए मैं ये गीत की कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं आशा है आपको अच्छी लगेगी

हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। वास्तव में मेरे लिए इस विद्यालय के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हर बाला हर बालिका एक देवी के रूप में है, वो पूजनीय है, और हर बच्चे में मुझे राम दिखाई देता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव

0: हैं, थैंक यू वेरी मच रेडियो मधुबन और यहाँ से आए हुए सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय परिवार हमारे सनवाड़ा आर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।
1: इसका राज अभी पता चला, राजेंद्र सर का जो मेहनत बच्चों के प्रति, तो बच्चे भी आज सर का नाम रोशन किए और बच्चों का साथ आज तो पूरा मनोरंजन हुआ, इसका श्रेय तो पूरा संस्था को जाता है, स्कूल के विद्यालय के परिवार को और बच्चों को भी जाता है। तो माँ बाप भी जब सुनेंगे अरे हमारा बच्चों का ये आवाज, सही में इनको एक मंच जरूर था, आज वो मंच मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर और हमारा भंवर सर, अपना सभी स्टाफ को भी, प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, आप सबसे हम इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर का आवाज जो आपका पास हमें रखे हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच प्रदान करता है, तो आज उसका आप सब साक्षी रूप में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
0: किक किक किक किक
1: स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खाना नहीं बार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता है ना, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। आप करो इंसाफ करो,
1: नहीं जी
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी।
2: यू आई डोंट नो,
1: यू मैं क्या बोलूं जी,
0: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
1: यू टेल मी मैं क्या बोलूं जी।
0: ओ बाप
2: अल्लाह,
0: दादाजी
1: और मेरी बात तो सुनो
0: बेटे।
1: ओ बाप दादाजी मेरी बात तो सुनो,
0: दादाजी मेरी बात तो सुनो,
1: बेटे मेरी बात तो सुनो, दादाजी मेरी बात तो सुनो।
3: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
4: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
5: ओम शांति, नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो।

0: हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की श्रृंखला जीना इसी का नाम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब कोई व्यक्ति की या किसी का भी हम जीवन देखते हैं और उनके जीवन को गहराई उनसे जानते हैं, ऐसा लगता है कि क्या जिया है इन्होंने, काश हम भी ऐसे जी पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी प्रेरणादायी अनुभवों के साथ आज हमारे साथ हैं बाला साहेब अप्पा घोरपाड़े भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज की जो हेडक्वार्टर्स है उस परिसर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य करना, क्या सन्यासी कोई कार्य कर सकता है? अगर कार्य करने वाले हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क अगर संभालते हैं, क्या वो सन्यासी बन सकते हैं? आखिर सन्यास का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, तो इन सारे सवालों की उलझनों को आज हम सुलझेंगे और कई सारी नई जानकारियां आज हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। चलिए स्वागत करते हैं बाला साहेब भाई जी को। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जीना इसी का नाम है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका लौकिक जो परिवार है, आपका लौकिक जो जन्म है, वो कहाँ पे हुआ और वो शुरुआत जीवन की कहाँ से हुई, और संक्षिप्त में आपके परिवार और ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे।
1: तो बहुत अच्छा आपने पहला क्वेश्चन किया। वैसे हमारा जो लौकिक गांव है वो महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा फेमस है
0: जी,
1: सारे विश्व के अंदर जाए एयरपोर्ट भी है। वहाँ से ही 10-12 किलोमीटर शिरडी शिंगनापुर हाईवे, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वह हमारा जन्म हुआ 1970 में, और उसी गांव में हमारी पढ़ाई भी हुई प्राइमरी और हाई स्कूल 10वीं तक। उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर हमारा कॉलेज था, वहाँ हम उस समय साइकिल पर ही जाते थे, 7 किलोमीटर था। तो हमने बीए कॉमर्स करने के बाद EMA में एडमिशन लिया, 1 पार्ट किया, और उसके बाद हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित हो गए।
0: भाई साहब, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लौकिक परिवार की अपनी अपनी पढ़ाई तो कही आपने, आपके माता पिता क्या करते थे और आप धार्मिक परिवार से थे?
1: हाँ जी, हमारे माता पिता खेती करते हैं, आज भी हमारे घर में खेती है, और धार्मिकता कहेंगे तो बचपन से ही हमारे मम्मी पापा भी धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले थे, इसलिए हमें भी ईश्वर के प्रति आस्था थी
0: जी। तो वो कौन सा मोमेंट रहा आपको इस ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की जो राजयोग मेडिटेशन है इसका परिचय हुआ, और आपके परिवार में सिर्फ आप ही इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या अन्य सदस्य भी करते हैं?
1: तो सबसे पहला ये मोमेंट रहा कि जब मैं 10वीं में था तब मुझे शिव के मंदिर में हम हर सोमवार को दर्शन करने के लिए जाते थे, शिव की हम पूजा करते थे, और आज भी हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं शिव को मानने वाले हैं, तो हम भी सोमवार के दिन जाते थे मंदिर में, बेलपत्र चढ़ाते थे। और एक था कि ईश्वर के प्रति मुझे कि मन में बचपन से था, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तो ईश्वर एक होना चाहिए, भले साई बाबा शिरडी साई बाबा नज़दीक है, फिर भी मन में कभी ये नहीं आया कि ईश्वर है, क्योंकि वो भी कहते सबका मालिक एक है। और मैं हमारे टीचरों को भी पूछता था कि घर में जैसे चित्र होते हैं देवियों को 8-8 हाथ दिखाते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि त्रिमुख दिखाते ब्रह्मा को, 3 मुख दिखाते, तो मन में क्वेश्चन होता था कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि इंसान को तो एक ही मुख है, किसी को भी 8-8 हाथ नहीं, तो ये कैसा हो सकता है, ऐसे कोई देवता हो सकते हैं, मन में क्वेश्चन होते थे। तो मैं टीचरों को भी पूछता था कि ईश्वर आखिर का है, ये मेरे मन में एक बचपन से ही क्वेश्चन था। देहधारी कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए, ये मेरी बचपन से ही मन में एक संकल्प था
0: जी।
1: और जब हम शिव के मंदिर में गए तो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, अपनी जो 7 दिन की यहाँ प्रदर्शनी होती है इस विद्यालय के अंदर, तो उसके अंदर मैंने पहले ही आत्मा का चित्र देखा, उसके बाद में परमात्मा का देखा, और एक एक जैसे मैं चित्र पढ़ता गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कोई अलग चीज़ है, ये जो नॉलेज है ये कोई अलग है। आत्मा के बारे में हम गीता में भी सुनते थे, क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़ा था, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी थी, तो सेकंड जो अध्याय है भगवद गीता का उसमें आत्मा के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन एक होता है कि उसकी आत्मा की जानकारी रहना, और दूसरा होता है कि उसकी महसूसता होके उसका अनुभव होना। और ये अनुभव नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे मैंने ये प्रदर्शनी पढ़ी तो मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई सत्य है। परमात्मा के जब गुण मैंने पढ़े तो ये जो गुण है इस विश्व में किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकते, तब मुझे परफेक्ट निश्चय हुआ कि इसको हम भगवान कह सकते हैं, सुप्रीम सोल, जिसको अन्य धर्मों के अंदर डिवाइनिटी, सुप्रीम सोल ऐसे भिन्न भिन्न नाम दे देते हैं, चाहे मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहेंगे, या जैसे क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जापानीज लोग देखेंगे तो लाइट को मानते हैं, मतलब इस विश्व को चलाने वाली कोई लाइट है, सत्ता है, ये हमारा निश्चय हो गया। और मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैंने पूरी प्रदर्शनी पढ़ लिया और मैंने कहा कि ये ज्ञान एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सब तरह के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की थी, लेकिन उससे हटकर ये था, क्योंकि आज तक किसी ने भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं बताया। वह मैथमेटिक्स, साइंस, जैसे और भी सब्जेक्ट होते, अलग अलग सब्जेक्ट होते, साइकोलॉजी होता है, फिलासॉफी, मुझे फिलासॉफी भी था, इसका जो आंसर है ना कहीं भी नहीं मिलता था, इस बात का कि ईश्वर कहाँ रहता है
0: जी,
1: या आप कौन है वास्तविक, इसका भी कोई भी परिचय नहीं देता था। हर एक अपने आप को यही समझता है कि मैं फलाना हूँ, फलानी कास्ट का हूँ, फलाने धर्म का हूँ, फलाने घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये सर्विस करता हूँ, हर एक ऐसा परिचय देता है। तो वास्तविक ये जो मैं आत्मा हूँ, बस ये जो परिचय है बहुत अच्छा लगा कि मैं और कोई नहीं है, शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ और परमात्मा एक है। ये दो चीज़ें मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर परफेक्ट और सत्य मालूम हुई। बाकी जो भी परमात्मा बताएगा वो सत्य ही होगा, ये मेरा पूरा पूरा निश्चय हो गया
0: जी। सो आपके परिवार में आप अकेले ही इस ज्ञान को समझा है, या फिर आपकी आपके भाई बहने, माता पिता, उनको भी इस बात पे निश्चय हुआ?
1: अभी तो माता पिता नहीं है, लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो उन लोगों को मैंने बताया, तो वो लोग भी बड़े, उनको अजीब लगता था, उनका कहना था कि इतने संत होके गए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, साई बाबा, ईश्वर के लिए उन्होंने इतनी तपस्या किया, उनको भगवान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि शिव बाबा, उनके कन्फ्यूजन में ये भी था कि ये कौन सा बाबा है, क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, बाकी बाबा दिखाई देते, तो ये भी एक कन्फ्यूजन था कि बाबा को दिखाए कैसे। तो फिर मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाता था कि फूल का सुगंध तो दिखाई देता नहीं है, हवा दिखाई देती नहीं, ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति आई इस संसार में कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन है, ये तो मानना पड़ेगा, हवा है मानना पड़ेगा, फूल में सुगंध आता है आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति चला जाता है तो इसमें कोई चैतन्यता थी, इसलिए तो आप गए थे ना, वो चला गया, कौन चला गया मैं बताता था तो वो चुप रह जाते थे, उनको इसके आंसर नहीं आते थे। तो मुझे ये ज्ञान इतना परफेक्ट हुआ था कि 7 डेज मेरा किया नहीं किसी ने, लेकिन कल पहले जैसे क्लिक हुआ होगा कि मैं इस ज्ञान को दूसरों को बताने में मैं इतना मतलब ये करता था कि ये सत्य है और आप मानते क्यों नहीं। उस समय हमारे यहाँ स्वाध्याय का चलता था, पांडुरंग शास्त्री आठवले फेमस था उस समय, 87-88 की बात है, वो लोग भी गीता को मानते हैं। तो मैं उनको क्वेश्चन करता था कि आप गीता को मानते हैं, गीता को हाथ में लेते हैं, लेकिन गीता में जो कहा हुआ है गीता की कहाँ तक मानते हैं, उसमें कहाँ तक आप चलते हैं, कहते हैं तो सभी है लेकिन उन बातों को आप लोग कहाँ तक मानते हैं। तो ये मैं उनको क्वेश्चन करता था लेकिन किसी से भी मुझे आंसर नहीं मिलते थे। तो मुझे बहुत बड़ा एक नशा चढ़ जाता था कि अरे ये ज्ञान इतना सत्य है, किसी भी एंगल से कोई मुझे कुछ भी क्वेश्चन करे तो मैं उसको प्रूव करके देता था, तो ये बड़ा एक नशा था। फिर हमारे माता पिता मधुबन तो आके गए, 2 साल बाद पिताजी आके गए, लेकिन जैसे ज्ञान योग की धारणाएं जैसे हमारी रेगुलरिटी हो वो नहीं करते थे, लेकिन बाद में सभी सपोर्ट हो गए, हमारी भाभी हो भाई हो सब मधुबन आके गए, लौकिक जो संबंधी है बहुत बड़ा परिवार है, कुछ आके भी गए, लेकिन जैसे रेगुलर है वो मैं ही इतने बड़े परिवार से निकला हूँ।
0: जी, आपके कितने भाई बहने हैं?
1: मेरे से बड़ा एक भाई है और छोटी बहन है, मैं बीच वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: और उनकी शादियाँ हो गई है, वो अपने अपने संसार में सेटल है और हम बीच में शेप रह गए।
0: तो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा भाई कुछ अलग जीवन जी रहा है, मुझे भी इस बात को समझना है?
1: नहीं, उनको पूरा सपोर्ट है उन लोगों का और बहुत गौरव है उनको। हमारे पिताजी भी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनको भी मेरे जीवन के प्रति बहुत एक सम्मान था, एक रिगार्ड भी उनको बहुत था ज्ञान के प्रति। और हमारे वैसे लौकिक घर में जैसे सेंटर जैसे माहौल होता था बहनों का आना जाना, और आज भी 2012 में हमारे वहाँ घर में 6 जोन इंचार्ज आए थे, सिल्वर जुबली थी हमारी, तो बड़ी बड़ी बहनें आई थी, तो भाभी भी हमारी बहुत, वो बचपन से उनको आध्यात्मिकता है, भाभी को ग्रंथ पढ़ना, स्वामी समर्थ का वो करते हैं, तो पूरा ऐसा मतलब जैसे उनका रोल नहीं हुआ होगा लेकिन पूरा सपोर्ट है, मानते भी है बाबा को, पूरा बाबा का कमरा भी घर में बना हुआ है, पूरा जैसे ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन जैसे ये धाराओं में चलने के लिए कोई ऐसी बात बन जाएगी तो इस पर भी वो चलेंगे।
0: भाई साहब, ये बताइए कि वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ मुझे समर्पित होना है, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय तो लिया, आपको निश्चय भी हो गया ये सत्य ज्ञान है जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जब MA इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अचानक से ये क्या हो गया कि आप अपने सब कुछ छोड़ के मधुबन आ गए हैं जीवन समर्पित करने?
1: वो जो मोमेंट है वो बहुत बड़ा विचित्र था
0: जी।
1: पता नहीं मुझे क्या हुआ कि जब मैंने ये एग्जाम ही नहीं दिया तो हमारे क्लास में जो आज भी याद करते जो क्लासमेट है हमारी, लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो उनको बड़ा शौक लगा कि ये किसने क्या किया, एग्ज़ाम भी नहीं दिया और ये माउंट आबू निकल गया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम इसमें तो है शुरू से, क्योंकि मैं सोमवार के दिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मौन रखता था पूरे साल, और उसका प्रभाव इतना हुआ कि एक दिन लास्ट में सोमवार के दिन ओरल एग्ज़ाम आई, तो यूनिवर्सिटी से जो टीचर आए मैडम ने कहा इसको अगर मौन तोड़ेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो सभी की एग्ज़ाम हो गई, तो वो मेरे लिए खास रुकिया। और मंगलवार के दिन उन्होंने सुबह मुझे बुलाया तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया, जैसे आपने कहा कि भाई इस एज में आपको ये कोई उम्र है का आपकी करने की अध्यात्म, ये जो है सारे 60 साल के बाद 50 साल के बाद करना चाहिए ये सारा, तो वो यही क्वेश्चन करते रहा, लेकिन मुझे ज्ञान का इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करे तो मैं हार नहीं मानता था कि नहीं इसको प्रूव करके ही देना है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, उसको ये नॉलेज नहीं है, दुनिया का नॉलेज है लेकिन परमात्मा नॉलेज उसके पास नहीं है, मुझे बड़ा नशा था, तो सर भी सुनते रहते थे। और पता नहीं अचानक मुझे जब ये हुआ कि थोड़े से बचपन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या जो क्रांतिकारी होके गए देश के लिए, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में ये भी बताया कि 3-4 जन्म जो देश के लिए आपके बलिदान हुए, ब्राह्मण ने जन्म कुंडली में बताया था, तो मुझे एक 4 दीवार के अंदर बंधना या किसी देवदारी से बंधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसा सोशल वर्क करें या देश के लिए हम सेवा करें। लोग मिलिट्री में जाते हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान करते हैं, तो वो संस्कार मेरे अंदर था कि हम क्यों न विश्व के लिए सेवा करें। और जब इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हमने विश्वव्यापी संगठन को देखा कि इसकी जो शाखा है पूरे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में है, ये कोई हद नहीं, ये बेहद में है, और इसको चलाने वाला भी स्वयं निराकर सुप्रीम सोल है कि जिसने ये संस्था स्थापन की है, इसका कोई गुरु नहीं है, तो ये जब ध्यान में आया कि ये स्वयं, आज भी कई लोग हमें पूछते हैं कि या यहाँ आते हैं तो ये चलता कैसे, लोगों को घर के अंदर 4 लोग होते हैं तो उनको उस फैमिली को चलाने के लिए टेंशन आता है, खर्चा चलाने के लिए इकोनॉमी करेंगे ये करेंगे, या कई लोग आके हमको पूछते हैं कि भाई ये चलता कैसे है, तो वास्तविक उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक परमात्मा के लाखों बच्चे, जिस परमात्मा के लाखों बच्चे हो, जैसे लौकिक में बच्चे कमाने वाले होते हैं, तो यहाँ जो भी अपनी कमाई है उन कमाइयों को इकोनॉमी करके इतना बड़ा जो यज्ञ है वो चलता है। और इसमें विशेष हम यही लोगों को सुनाते हैं कि जो भी अपने जीवन के अंदर की जो बुराई थी पहले जीवन में, वो सारा खर्चा आपका बच गया है। और हम लोगों का खर्चा है क्या है, उनको हम ये बताते कुछ भी खर्चा नहीं, खान पान शुद्धि है, न कोई होटल में जाना है, न कोई घूमना है, न फिरना है, तो ये इकोनॉमी से ये इतना चलता है। तो सब बातें जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत यूनिक लगी, बहुत अच्छी लगी। और ये ज्ञान जो है एक व्यक्तित्व या एक देवता बनाने वाला ज्ञान है, ये पक्का निश्चय हुआ, इसलिए हम सेवा में लग गए
0: जी। तो जब आप मधुबन में आ गए हैं, वो कौन सा साल था समर्पित हुए जब आप?
1: समर्पित जब मैं हुआ तो 91 में मैं MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, 6 महीना हुआ था। वैसे ज्ञान में आने के बाद मैं 2-3 बार हर साल छुट्टियों में हम सेवा में आए, पांडव भवन में सेवा किया, हिस्ट्री हॉल में जो वहाँ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है उसमें सेवा किया, दादी के पास भी सेवा किया। 2-3 साल कॉलेज लाइफ में सेवा करते थे, लेकिन 91 में या शांतिवन में ये बनना खेती थी सारी यहाँ, तो यहाँ एक भाई थे भोपाल भाई के साथ में, महादेव भाई करके, उन्होंने 94 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शांतामणि दादी को कहा ऊपर, तब शांतामणि जो हमारी दादी थी वो सेवादारी संभालती थी, इंचार्ज थी, तो उनको कहा कि इसको घर में खेती इसको अनुभव है, या गाय भी थी, जाठोली डिपार्टमेंट है, वह गाय का गोठा था और पूरी खेती थी। और बाबू भाई उस समय खेती में थे, जो टेलीफोन एक्सचेंज में वो भी खेती में थे। तो जब हमको कहा कि आप नीचे आ जाओ या ज़रूरत है, तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो पढ़ाई, तो एग्ज़ाम देना था, उन्होंने बोले छोड़ दो अभी, तुम समर्पित हो जाओ। तो पता नहीं हमें भी क्या हुआ कि चलो जीवन बलिहार करना, एक धक से करना, कोई सोचना नहीं, तो हम समर्पित हो गए, मतलब रह गए सेवा में। 3-4 साल खेती किया और फिर उसके बाद किचन में आए, तो तब से लेके अभी हम किचन में ही।
0: जैसे आपने इतनी पढ़ाई की है और अभी जब किचन में सेवा कर रहे हैं, या आपको जब शुरुआत में जो बुलाया गया पढ़ाई छोड़ के खेती करने के लिए, आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं तो पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बन सकता था, पढ़ाई करते तो मैं हो सकता है संस्था में भी एक अच्छे पोजीशन में रह सकता था, मुझे जाके खेती बाड़ी करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूँ?
1: नहीं, मुझे एक था कि यहाँ जैसे हमारे टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई है, सूरज भाई, ये सारे ग्रेजुएट ही है लोग, जैसे हमारे साथ भी जितने भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा किचन में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हुए, ऐसा कोई नहीं कि जो अनपढ़ है जिसको आता नहीं, तो ये तो भगवान ने विशेषता दी है कि हम लोगों को किचन में रखा है। एनीवन जितने भी डिपार्टमेंट इंचार्ज या है किचन में, सब ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे घर के, ये भी है कि सबके घर में अच्छा है, मैं काफ़ी लोगों के वहाँ गया हुई हूँ, तो ऐसा कोई नहीं कि जिसको कुछ कमी थी और वो यहाँ आ गया, ऐसा कोई भी नहीं, सब लौकिक परिवार में संपन्न थे। हाँ, ये बुद्धि में था कि जो हमारे बड़े हैं वो भी इतने पढ़े लिखे हुए हैं और वो जब किचन में सेवा कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सेवा मैं समझता हूँ कि भाग्य बनाने की, किचन डिपार्टमेंट है, जहाँ भगवान की मुरली के अंदर भी आता है कि रोटी पकाना भी आना चाहिए, बर्तन मांजना भी आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए। तो बाद में ये तो मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जब चीज़ें निकली तभी ये सेवा बढ़ गई, नहीं तो यज्ञ की स्थापना में शुरू में अगर

0: हिस्ट्री में देखेंगे तो जो हमारी दादियां बन गई उन्होंने हर प्रकार की सेवा की,
1: कर्मणा सेवा,
0: सब कर्मणा सेवा सब की हुई है। तो इसमें कोई बॉडी कॉन्शियस की बात नहीं थी, हमें तो नशा था कि चलो खेती का काम है तो हम यहाँ खेती कर रहे, घर में भी खेती अनुभव था, गाय का दूध निकालते थे, खेती करते थे। और जैसे कहते कि एक बार प्रण ले लिया, व्रत ले लिया, उसको वापिस क्यों लेना है, तो ये पक्का निश्चय था।
1: बहुत सुंदर भाई साहब, जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं 91 से, आप यहाँ पे मधुबन में हैं, और 91 में तो काफ़ी वो संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनके साथ जो कराची से आए हुए जो दादियाँ हैं, काफ़ी लोग तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी को तो जानते हैं, लेकिन आप तो और भी बहुत सारी दादियों के साथ पालना लिए हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की आपकी एक लंबी यात्रा रही है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपने सीखा और आप आपकी व्यक्तित्व को ऐसा गढ़ा है, जो हो सकता है अगर आप लौकिक दुनिया में होते तो आप इन चीज़ों को कभी सीख नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या चढ़ती कला थी आपकी?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हमारे साथी है जो लौकिक पढ़ाई करके आज प्रोफेसर है, टीचर है, 2-3 महीने पहले ही मुझे बुलाया था, जो हमारे क्लासमेट थे, हमारे क्लास में ज़्यादा कन्याएं थी, और वो अभी भी हंसती कि तुम इतना पक्का था, हमने बहुत कोशिश किया तुम्हारा मौन तोड़ने का। और वो आज भी उन पलों को याद करती आपस में कि ये ब्रह्म कुमारी में पता नहीं इसके बुद्धि में इतना, कि हम उसी समय समझते थे कि ये लौकिक दुनिया में रहेगा नहीं, ये इस जीवन में समर्पित हो जाएगा। लेकिन वो आज भी कहते कि जो आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। तो उनको सब कुछ होने के बाद भी आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है, ये आज भी वो लोग हमें स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति आध्यात्मिकता है और इसी से ही आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन किया, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले हमारे अंदर जो चेंजेस आया उस पढ़ाई और इस पढ़ाई के अंदर हमने जो फर्क महसूस किया कि वहाँ हम एक डिग्री के लिए या कुछ अपना बिजनेस या कुछ पदवी ले लेते हैं कि कुछ हमारी इनकम बड़ी हो, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है वास्तविक जब जीवन में इसको हमने फॉलो किया तो सबसे पहले हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल, मुझे भी गुस्सा जल्दी आ जाता था, कोई अगर गलत करता था, असत्य कोई बोलता था, झूठ बोलता था, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता था। तो ये मेरे स्वयं के जीवन के अंदर, जैसे कई लोगों को भी अभी भी होता होगा कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, कई रॉन्ग चीज़ देखते हैं, सहन नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरा ये चेंजेस आया कि मैंने शांत रखना सीख लिया कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और वह अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। जैसे फिल्म आप देखते हैं 3 घंटे की स्टोरी होती है, तो हर एक का जो पार्ट, जिसको जो रोल दिया है वो रोल निभा रहा है, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी तरह इस ज्ञान के आधार से एक समझ मिल गई कि हर एक का रोल है और वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, इसलिए मुझे क्वेश्चन करके परेशान नहीं होना है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। तो ये मेरे स्टॉप हो गए। दूसरी एक प्राप्ति की, जैसे इस ज्ञान के आधार से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं में था तो एक उसमें इकोनॉमिक्स के 4 पेपर थे, तो उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे एक पेपर में। तो मेरा पेपर टीचर ने सब स्टूडेंट को दिखाया था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि ये जो पढ़ाई है, विशेष सुबह अमृत वेले के बाद स्टडी करता था और कॉलेज जाने के पहले उसको पढ़ के जाता था मैं, तो वो पूरा बुद्धि में फिट बैठ जाता था। कॉलेज में भी टीचर पढ़ाते थे और पहले स्टडी करके जाता था। तो ये एक मैंने फायदा देखा कि हमारे जीवन के अंदर इस ज्ञान का ये फायदा है कि मन की एकाग्रता एक बढ़ती है, और मन की एकाग्रता के साथ साथ जो हमारा अचीवमेंट है, चाहे कोई भी टारगेट हम रखते हैं, तो उसको बहुत ईजी हम प्राप्त करते कम समय में। अगर मेडिटेशन जीवन में न हो तो वहाँ लंबा काल लगता है, और मेहनत लगती है, लेकिन मेडिटेशन का ये फायदा मैंने देखा मेरे पढ़ाई में, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जबकि मेरा लास्ट ईयर में भी सेकंड नंबर था कॉलेज में, तो ये प्राप्ति इतनी हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा जो यम यही था कि नहीं, इस जीवन को ही जीना है, और कोई भी एक लक्ष्य को आप सामने रख के अगर उस पर फोकस करते हैं तो निश्चित आपका जीवन महान हो जाता है। तो इस ज्ञान में आने के बाद अनेक प्राप्तियां हुई, अंदर की गुण और शक्तियों का विकास हुआ, अपनी क्वालिटीज़ को बाहर आने का मौका मिला, ऐसे भाषण करना, इन इवन मैं इतना सीख गया कि झाड़ू पोछे से लेकर आप भाषण तक कहीं भी हमें डाल दो तो हम फिट बैठ जाते, वहाँ करके रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक प्राप्ति मिली। तो ये हमने लाइफ में ऐसा प्रोग्रेस किया है।
1: बहुत सुंदर। मतलब आप बचपन में जिन शास्त्र या फिर ग्रंथों को आप जो पढ़ते थे उसकी आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है, तो उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, वो जीवन में किस प्रकार से प्रभाव करते हैं और जीवन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, जिस सुख शांति की तलाश है हर एक इंसान को आज के समय में, वो ज्ञान कहाँ से कैसे मिलता है, आप उसको बहुत ही सरल शब्दों में मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचाते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं भाई जी। आज आप हमारे बीच में आई हैं और हमारे रेडियो मधुबन के श्रोताओं को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ जब आध्यात्मिक पढ़ाई हमारे जीवन में आती है तो जीवन कैसे निखरता है और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस से कैसे आती है, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया। और ना सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं लेकिन एक परिवार भी आपस में मिलजुल करके रहना, बड़ों को आदर करना, उनसे हमेशा सीखने की भावना रखना, बहुत सुंदर बातें हैं भाई जी। थैंक यू सो मच आप आज हमारे बीच में आए हैं, आपकी जीवन के उन चंद पलों को जो बहुत ही प्रेरणादायी है उन पलों को हमारे साथ शेयर किया, शुक्रिया आपको।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और इस कार्यक्रम में आप उनके अनुभव सुन रहे थे, बालू भाई जी का। आप शांतिवन में किचन है, स्पेशल फूड बनाते हैं, आप उस किचन का देखभाल करते हैं और अनेक आत्माओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में आपका अपना एक योगदान रहता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ और एक नए व्यक्तित्व और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और कौन सा कार्यक्रम है ये आज आपको इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, एक ऐसे कार्यक्रम की जैसा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अक्सर हम डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम सुनते हैं, किसी में जुड़ते हैं, बातें करते हैं, किसी में फैक्ट्स जानते हैं, किसी में और चीज़ें, जानकारियाँ, क्विज़ होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो कहीं कोई गाने सुनाई देते हैं, तो कहीं नगमे खुद ही हम गुनगुना लेते हैं। लेकिन अब जो कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है इस वीक से, इस हफ्ते से, वो बहुत ही निराला है, बहुत ही यूनिक है। क्या आप सभी को सीरियल्स देखना पसंद है? हो सकता है किसी को ना भी पसंद हो सकता है किसी को आज नहीं पुराने सीरियल्स देखना पसंद हो, लेकिन दोस्तों रेडियो मधुबन पर पहली बार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा सीरियल जो आपको सुनाई देगा, एक ऐसा परिवार जो बड़ा अद्भुत है, बड़ा कमाल का है, बड़ा फनी भी है और गुत्थियों में उलझा हुआ भी है। और वो कौन सा परिवार है, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, उनकी जानकारी हम आपको आज देंगे, और ये भी बताएंगे कि आप उसे कब सुन पाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम अभी आपको बताएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि नाम पता चलेगा जब सीरियस लॉन्च होगा और क्या होने वाला है उस कार्यक्रम में, उस सीरियल में, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके मनपसंद फेवरेट आरजे, आरजे विशाल जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी।
1: नमस्ते सभी को, मेरे सब सुनने वाले श्रोताओं को, साथ में आरुषि आपको भी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। रात्रि के इस पहर में आप सभी के साथ मुलाकात हुई है और एक खूबसूरत मौजू है कि एक नई सीरीज आपको सुनने के लिए मिलेगी, बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें एक बहुत ही प्यारे से परिवार की खट्टी मीठी कुछ कहानियां हैं, कुछ दास्तानें हैं, कुछ उनके किस्से हैं, कुछ उनके मजेदार है, एकदम फर्स्ट क्लास। और मेरा रोल भी कुछ हटके ही है, एक अलग तरह से मैं आपके सामने आने वाला हूँ। अब आप अपने विशाल को देखेंगे एक नए अवतार में, जिसमें वह वीरेंद्र राठौड़ की भूमिका में आपको नजर आएंगे।
0: क्या बात है, मतलब विशाल जी कुछ बदले बदले से सुनाई देने वाले हैं।
1: मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, मैं खुद सुनने के लिए उतावला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार किया गया है, बहुत अच्छे किरदार है और एकदम नेचुरल वे में एक सुंदर से परिवार की पृष्ठभूमि है। मजा आएगा सबको, आई थिंक मुझे तो इंटरेस्ट बहुत जगह है और मेरे सब सुनने वाले भी इंटरेस्टेड रहेंगे इसके लिए।
0: जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी बातों से भी कि कुछ नया
1: मेरा किरदार, बल्कि इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग उनके फ्लेवर हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं, थोड़े तीखे हैं, थोड़े से रसीले हैं, थोड़े से हठीले भी हैं, कुछ रंगीले हैं।
0: जी,
1: तो इतने सारे एक पैकेट है बना हुआ, जिसको खुलते ही फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलने वाली है,
0: मतलब फुल धमाल होने वाला है, बहुत सारे फ्लेवर्स आने वाले हैं रेडियो पर एक साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्या बात है। तब तो हम सभी, मुझे लगता है, इस कार्यक्रम को बेसब्री से इंतजार करते हुए देखना सुनना चाहेंगे और पोस्टर भी बहुत जल्दी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हैं और कार्यक्रम भी कब आने वाला है वो भी उन्हें बताने वाले हैं। विशाल जी, आप नए रूप में आने वाले हैं, मुझे लगता है आपने बहुत सालों तक रेडियो को, 15 साल हो चुके हैं आज, और खुशी के नगमे हो या कुछ और कार्यक्रम हो, आप अपनी आवाज देते ही आए हैं, पर इसमें आपका किरदार ही बदल गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग तरीके की भूमिका मुझे इसमें निभाने का अवसर मिला है, संभवतः उतना मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ, मेरे श्रोताओं को मजा आए उसको सुनने समझने में।
0: जी जी, मतलब हम ये डिसीजन श्रोताओं पे छोड़ते हैं कि आपको कैसा लगेगा।
1: मुख्य न्यायाधीश वही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के ऊपर है सारा डिसीजन। बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया विशाल जी, बहुत बहुत, और आपको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस नई शुरुआत के लिए।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभरात्रि, सभी का मंगल हो, नमस्ते।
0: नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुना कि आपके पसंदीदा आरजे विशाल जी भी आने वाले एक नए रूप में, और वो नया किरदार कौन सा निभाने वाले हैं, वीरेंद्र राठौर उनका नाम होने वाला है उनके कैरेक्टर का, और परिवार में कौन कौन होगा बताऊंगी जल्दी, बस थोड़ा सा करिए इंतजार और सुनिए ये गीत जो अधूरा रह गया था उसे करते हैं पूरा।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और आज हम लॉन्च कर रहे हैं जी हाँ एक ऐसा कार्यक्रम जो अब तक आपने रेडियो मधुबन पर नहीं सुना है यानी कुछ डिफरेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना भाई, रेडियो को 15 साल हो चुके हैं, आप सभी ने हमारा बहुत साथ दिया है और आप सभी के लिए एक ये सुंदर कार्यक्रम तो बनता ही है। और हमारे साथ जुड़ गई हैं आपकी चहेती आरजे, जिनकी आवाज़ आप रोज शाम 6 बजे सुनते हैं और अनेक ड्रामास में भी आप उनको सुनते ही रहते हैं। आरजे मोना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत खुशी हुई। काफी दिनों से इस पूरी जो एक हम लोग चाह रहे थे कि एक सीरीज शुरू हो और सिलसिला शुरू हो। यूजुअली जब छोटे थे तो अक्सर हम लोग टेलीविजन या उसमें लॉन्ग सीरीज की चीजें देखना शुरू करे थे, तो ऐसा ही हमें था कि कुछ हम भी रेडियो मधुबन में ऐसा कुछ क्रिएट करें। फाइनली वो क्रिएट हुआ भी और उसकी जल्द ही आप अनाउंस करेंगे कब से वो ब्रॉडकास्ट होगा, तो खुशी है मुझे इस सीरीज में जुड़ने की।
0: जी बिल्कुल। और मोना जी, आपको हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, आप बहुत सारी फैक्ट्स, बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इसमें आपका किरदार क्या होने वाला है? क्योंकि एक सीरियल है तो भाई क्या निभाने वाले हैं आप, क्या बनने वाले हैं आप, वो भी बताइए हमें।
1: जी वैसे तो मेरा नाम शांति है,
0: क्या बात है,
1: दूर दूर तक शांति मेरी जिंदगी में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंडी हूँ, जो लेटेस्ट फैशन है वो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर के जीवन में शांति कहाँ से आएगी? इन्फ्लुएंसर हमेशा किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो उसे लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट न्यूज और साथ ही साथ लेटेस्ट फैशन के अलावा भी जहाँ सेल वहाँ शांति है, ठीक है। तो इसी कारण जहाँ सेल लगेगा वहाँ शांति पहुंचेगी, और जब शांति सेल को दिखेगी तो कहाँ उसके जीवन में शांति रहेगी। इसी प्रकार का एक कूल सा कैरेक्टर है और ऐसा वाइब है जो हमेशा लेटेस्ट चीजों को फॉलो करती है, लेटेस्ट के साथ रहना पसंद करती है और
0: बिल्कुल मुझे लगता है हमारे परिवारों में भी कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, जो सबको बताता है अरे अभी ये चल रहा है आपको ये करना चाहिए, अरे अभी ये हो रहा है आपको ये करना चाहिए, है ना।
1: जरूर वैसा ही बिल्कुल
0: वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है।
1: सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात है कि आज यदि आज ये नहीं तो कुछ नहीं वाला होगा, और वहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये ट्रेंड नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है,
0: कुछ भी नहीं,
1: ये यदि कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और रील बनाना उसकी फेवरेट चीज है,
0: क्या
1: तो जहाँ जा रही है वहां उसको उसका वो लाइव वहां पर प्रसारण कर रही है।
0: जिंदगी लाइव है शांति जी के साथ,
1: लाइव है बिल्कुल, शांति जी की जीवन में लाइव ही सब कुछ है।
0: क्या बात है मोना जी, मुझे लगता है आपको एकदम नए रूप में हम सभी सुनने वाले हैं, नए अंदाज में देखने वाले हैं।
1: खुशी है कि हमें भी खुशी है कि हम कुछ ऐसी शांति लेकर आ रहे हैं सभी के जीवन में और सीरीज लेकर आ रहे हैं जो हमारे सभी श्रोतागण बहुत एंजॉय करेंगे।
0: थैंक यू सो मच मोना जी, आपने अपना वक्त निकाला और कैरेक्टर और प्रोग्राम के बारे में भी हमारे साथ शेयर किया। जल्दी मुलाकात होगी शांति के अवतार में आपसे। शुक्रिया। तो दोस्तों आपने सुना मोना जी को भी, ऐसे ही आपके बहुत सारे फेवरेट आरजेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये ऐसा वैसा परिवार नहीं है, ये पूरा बड़ा सा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है, इसमें ढेर सारे सदस्य हैं जो रहते हैं साथ साथ, और जब साथ साथ वो आते हैं तो क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, चलिए मैं आपको परिचय करा देती हूँ कौन क्या भूमिका निभाने वाला है उनसे।

जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई खत्म और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा रोल प्ले करने वाला है। वैसे तो भाई आप सभी को इंतज़ार होता है कुछ ऐसा है जो एंटरटेन भी करे आपको, जो कुछ अपनी ज़िंदगी सा भी लगे और अपनापन भी दे, कुछ परिवार का हिस्सा और बन जाएं लोग। ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं ना टीवी पर कभी, तो अब रेडियो पर भी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं कैरेक्टर जो आपकी

का हिस्सा बन जाएंगे। सबसे पहले ये कहानी होने वाली है राठौर परिवार की, राजस्थान का राठौर परिवार। दादाजी की जो भूमिका निभाने वाले हैं वो हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनकी आवाज से आप परिचित होंगे, आप उनको सुनते हैं कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी। और इसके बाद दादी जी का जो किरदार निभाने वाली हैं वो आरजे संध्या जी हैं। ताऊ जी का जो किरदार, यानी उनके सबसे बड़े बेटे का जो किरदार है, जिसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौर, उसको निभाने वाले हैं रोहित जी। और चंद्रावती जो कि उनकी पत्नी है, यानी ताई जी की जो भूमिका निभा रही हैं, वो है आरजे प्रभा जी, जिनको आप पंडिताइन के रूप में आज तक सुनते आए हैं। और उनसे छोटे बेटे का किरदार निभाने वाले हैं विशाल जी, जिनकी आपने अभी अभी आवाज सुनी, और वो रोल प्ले करेंगे वीरेंद्र राठौर का। और उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली हैं, यानी वो कैरेक्टर जो बहुत ही क्लमजी भी है, थोड़ा फनी भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, वो किरदार निभाने वाली हैं आरजे आरुषि, यानी कि मैं। और बुआ का कैरेक्टर, यानी कि उनकी छोटी बहन का कैरेक्टर निभाने वाली हैं अभी अभी जिनकी आवाज आपने सुनी, यानी कि आरजे मोना जी। और उनके किरदार का नाम है शांति राठौर। आपने सुना कि शांति का उनके जीवन से कोई वास्ता नहीं है। और उनकी बड़ी बहन का किरदार निभाने वाली हैं, यानी बुआ नंबर टू, कृष्णा जी, जिनका नाम होगा रागिनी राठौर। रागिनी जी एकदम फेमिनिस्ट हैं और महिलाओं के मुद्दों पे बहुत ही सजग हैं, वो भी एक कमाल की भूमिका होने वाली है। और जो फूफा जी, यानी कि जो पहली बुआ है, उनके पति का किरदार निभाने वाले हैं ऋषि जी, और उनका नाम है सूरजमल चौहान। सबसे छोटे बेटे का किरदार निभाने वाले हैं आप सभी के फेवरेट आरजे श्रीनिधि जी, जिनका नाम है किशन सिंह राठौर। और एक पड़ोसी ना हो तब तक परिवार में कुछ कमी कमी सी लगती है ना दोस्तों। पड़ोसी का किरदार तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है सबके जीवन में, आप सभी को पता है कि थोड़ी ताकझांक भी करते हैं, परिवार में कुछ बिगड़ जाए तो मदद भी करते हैं, अपने भी होते हैं, और थोड़ा कभी कभी उनसे बच के भी रहना पड़े। ऐसे पड़ोसी की भूमिका निभाने वाली हैं आरजे उषा जी, जिनका नाम है कार्यक्रम में माधुरी महेश्वरी। और जो बच्चे हैं परिवार के वो होंगे जतिन, रुहान, पलक, रुहानी और अमीक्षा। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैमिली, यानी मैंने आपको गिना दिए दोस्तों 13 सदस्यों का ये परिवार है, और बच्चों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे 17 लोग का ये परिवार है। बड़ा परिवार आपके पास आने वाला है, आपसे रूबरू होने वाला है, जिसमें डेली की, यानी कि दिनचर्या, जो भी दिन भर में हमारे होता रहता है हमारे जीवन में, उथल पुथल, ऊपर नीचे, छोटी बड़ी घटनाएं, वो आपको सुनाई देंगी। साथ साथ उस परिवार में क्या क्या होने वाला है, क्या छोटी छोटी बात कभी कभी इतनी बड़ी बन सकती है, वो भी आपको पता चलेगा। और जब केवल छोटी सी बात है तो इतने सारे सदस्य और सभी अलग अलग व्यवहार वाले, अलग अलग सोच वाले, वो एक साथ आते हैं तो वो बात बात नहीं रहती, वो बात पहाड़ बन जाती है। क्या होने वाला है, कैसा घमासान होगा, क्या धमाल होगा, क्या मस्ती, क्या मजाक होगा, आपको पता चलेगा कार्यक्रम में, जिसका नाम है घर ऑन एयर। यानी कि रेडियो पर है ये घर, पूरा बसता है रेडियो पर, ऑन एयर है और हवा में रहते हैं इसके सारे घर वाले, क्योंकि सोचते रहते हैं अपने ख्यालों की दुनिया में वो रहते हैं। तो ये घर ऑन एयर आने वाला है, ये टीवी सीरियल की जगह रेडियो सीरियल होने वाला है।
यानी इसके किरदार आपके साथ हर हफ्ते रहेंगे, हर हफ्ते एक कार्यक्रम ये ब्रॉडकास्ट होगा, इसके एपिसोड्स होंगे, कहानी आगे बढ़ती रहेगी, ये किरदार आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। और ये कार्यक्रम आप कब सुन पाएंगे? जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हर रविवार को यानी संडे को दोपहर 12:30 बजे, 12:30 से 1 बजे कहीं मत जाइएगा। रविवार को पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने वाला है, और अगर आप ना सुन पाएं तो इसका रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है संडे को, माफ कीजिएगा थर्सडे को, यानी कि जैसे आज हम आपके साथ हैं ना, तो थर्सडे को 9:30 बजे आप इसका रिपीट टेलीकास्ट भी सुन पाएंगे। तो नोट करके रख लीजिए अपने पास, रविवार को दोपहर 12:30 बजे और थर्सडे को 9:30 बजे ये कार्यक्रम, ये परिवार आपके पास पहुंचेगा।

0: और हमारे साथ जुड़ गई हैं कृष्णा जी, जो रागिनी राठौर की भूमिका निभाने वाली हैं इस कार्यक्रम में, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो कृष्णा जी, क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में नया?
1: मैं समझती हूँ ये फैमिली ड्रामा का एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है रेडियो मधुबन पर, और अभी तक रेडियो मधुबन में इस तरीके के कोई भी कार्यक्रम हम लेके नहीं आए हैं। इस बार बहुत ही नवीनता के साथ एक फैमिली ड्रामा, जो वो टीवी में तो हम देखते रहते हैं, लेकिन रेडियो में एक फैमिली ड्रामा जो आपको मनोरंजन दे, ये कुछ नया
0: है,
1: अनोखा एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट रेडियो मधुबन कर रहा है। तो मैं 100% गारंटी देख सकती हूँ कि आप जब भी इसको सुनेंगे, आप लोगों के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। और जब भी हम कॉमेडी की बातचीत करते हैं तो लोग, हाँ कई बार ये होता है कि क्या हम पूरी फैमिली के साथ सुन सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी है ये सारी चीजें, बट इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। हर कोई इस ड्रामा को सुन सकते हैं और इसे हर बार कुछ नया अनुभव, कुछ नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
0: क्या बात है, मतलब सबके लिए है, परिवार का ड्रामा पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं।
1: यस, घर आने हैं तो हवा में बहुत सारी बातें होती रहती है घरों में, और वो क्या है जो बातें हवा में होती रहती है, आप रेडियो मधुबन की घर आने में सुन सकते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि घर ऑन एयर है, हवा में भी है और रेडियो पर भी है, तो दोनों तरीके से ऑन एयर है। और इसके किरदार ऐसे हैं कि आप सोचेंगे कि ये कुछ मेरी तरह लग रहा है, या फिर हो सकता है ये मेरे भाई की तरह लग रहा है, ये तो पक्का जाना पहचाना कोई है।
2: ये बात तो है, क्योंकि जब हम घर की बात करते हैं तो वही फूफा मासी चाचा दादा दादी भाई मम्मी पापा, ये सारे रिश्ते होते हैं, और हर एक रिश्ता की एक डायनेमिक्स और एक कैरेक्टराइजेशन होता है। तो इस ड्रामा में भी आप उसी तरीके के या फिर कुछ हट करके आप डायलॉग्स या फिर कैरेक्टर्स को सुनेंगे, थोड़ी सी कॉमेडी भी होगी और मनोरंजन भी होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और अभी तक 15 साल की हिस्ट्री में कुछ नया हटके प्रोग्राम होगा रेडियो मधुबन पर।
0: तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा, हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम का नाम,
2: इसका पुनः प्रसारण गुरुवार रात को
0: 9:30 बजे, और कार्यक्रम का नाम है घर ऑन एयर। तो मुलाकात होगी घर ऑन एयर में सभी किरदारों के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। आशियाना में दिन की शुरुआत तो एक सुंदर विचार के साथ करेंगे, फिर घरेलू नुस्खे कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा पेन और डायरी लेकर के, लिख लेना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नुस्खे देने वाली हूँ। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे सविता जी के साथ, नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, उसके लिए भी पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, और सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, शिक्षा के साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां। आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। देखिए, पढ़ाई की ऊंची डिग्री होते हुए भी हम जीवन की परीक्षाओं में धोखा खा जाते हैं। डिग्री रूपी कागज का टुकड़ा हमें नौकरी तो दिला सकता है, परंतु आकर्षणों को ना करनी है यह शक्ति नहीं दे पाता है। यही कारण है कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी मनोबलहीनता का शिकार है, समस्याओं से ग्रसित है। शिक्षा के साथ साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति, सामना करने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, पारिवारिक शिष्ट आचरण की शक्ति वगैरह वगैरह, इन सभी का विकास अनिवार्य है। नहीं तो पल भर का मजा और जीवन भर की सजा, इस कहावत को चरितार्थ होते देर नहीं लगती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। तो यह हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा। और शिक्षा तो हम सभी को लेनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक शक्तियों का भी बढ़ाना है। और ये तभी बढ़ेगा जब हम थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत। उसके बाद और भी आशियाना में आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे सफेद दाग पर। सफेद दाग की समस्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स भी करते हैं कि बहन जी क्या करें, एक दाग से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बताऊंगी। देखिए, पहले तो जो सफेद दाग शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खाने पीने का परहेज रखिए। एक तो क्या आपको चने और चने की रोटी ये आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए इस स्थिति में, ठीक है ना। चने भी खा सकते हैं, कच्चे चने भी, और आप चने को पीस करके उसकी रोटी बना करके खाइए, लेकिन उसमें नमक न के बराबर लेवे, नमक नहीं लेना है। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कब तक हम नमक ना खाएं, तो फिर आपसे नहीं रहा जाता है, तो सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। और जैसे कि चने की रोटी खाते खाते बोर हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। बाकी आप जितने चने की रोटी खाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और इसमें आपको थोड़ा परहेज रखना है, जैसे कि खट्टी चीजें नहीं खानी है, तेल, चावल, गुड़, मिर्च, मसालेदार चीजें, इन सभी को कम कर देना है। और चने की रोटी ज्यादा से ज्यादा खानी है थोड़े लंबे समय तक, ताकि आपके सफेद दाग जब शुरुआत में होते हैं तो ठीक हो जाए, और फिर भी फैलते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बता रही हूँ। दवा और दुआ दोनों ही करिएगा। बथुआ, देखिए बथुआ उबाल करके इसको निचोड़ दीजिए, ठीक है। इसके रस को फिर आप पीजिए, इससे भी सफेद दाग में फायदा होता है। इसकी सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, बथुआ की भाजी आप बना करके, बथुआ की भाजी, चने की आटे की रोटी ये आप खाइए, इससे भी काफी फायदा मिलेगा ये, क्योंकि ये चरम रोग के लिए अच्छा है। और बथुए के उबले पानी को आप जहां पर सफेद दाग होते हैं ना, वहां पर आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर अगला नुस्खा आप ध्यान से सुनेंगे। बथुए के कच्चे पत्ते को पीस लीजिए, पीस करके निचोड़ कर इसका रस निकालिए। फिर 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिला करके मंद मंद आंच पर आपको गर्म करना है। जब रस जल करके तेल ही रह जाए तो छान करके आप शीशी में भर लीजिए और रोज सफेद दागों पर लगाइए, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, ठीक है। थोड़े लंबे समय तक लगाते रहिए, इससे धीरे धीरे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। बथुए के कच्चे पत्ते पीस करके इसको निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके इसका रस निकालिए। फिर 2 कप रस में आप आधा कप तिल का तेल मिला दीजिए और मंद मंद आंच पर आप गर्म करिए। जब रस जल करके तेल खाली रह जाए तो छान करके आप कांच की बोतल में भर लीजिए और सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले सफेद दागों पर लगाइए। लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम रिचका और 100 ग्राम ही ककड़ी का रस मिलाकर पीजिए, इससे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। रिजका, रिजका जानते हैं आप क्या होता है? रिजका होता है जो हम गायों को खाने के लिए देते हैं, जिसको हम चारा भी कहते हैं, ठीक है ना। रिजका थोड़ा सा मोटा मोटा होता है और चारा जिसको हम घास भी कहते हैं वो थोड़ा पतला होता है, तो रिजका इसी को मैं बता रही हूँ। रिजका 100 ग्राम और ककड़ी का रस 100 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को मिला करके फिर आप सफेद दाग पर लगाइए, इससे दाग ठीक हो जाएंगे। और पीजिए भी, पीना भी है लगाना भी है, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें खाने पीने से ही बीमारियों पर असर करती है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और कभी कभी उन्हीं चीजों को खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। तो लगाइए भी और पीजिए भी थोड़े लंबे समय तक, तो सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। जो शुरू शुरू में प्रारंभ होते हैं दाग होना, तो आप इस तरह के नुस्खों को आजमा करके बीमारियों को बीच में ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बहुत बढ़ जाता है उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सालों साल इलाज करना पड़ता है, लंबे समय तक नुस्खों को भी आजमाना पड़ता है और डॉक्टर को भी बताना पड़ता है। तो बस आप ध्यान रखिए, शुरुआत में जो भी बीमारियां होती है तो थोड़ा सा आप उस बीमारी पर ध्यान दीजिए और उसी समय से आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दीजिए। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। फिर से समय हो रहा है एक किस सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। हमारी सखी सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी, क्या कहना है आप, जिसके कहते हैं ना कि सच्चाई जिसके जीवन में है उसके पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है।
3: जी उषा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, सच्चाई की बात आपने की, इतनी बढ़िया जो चंद पंक्तियां आपने सुनाई, सच्चाई महकता गुलाब है। गुलाब कहाँ होता है उषा जी? कांटों के बीच में। तो सच बोलना इतना सरल नहीं है दुनिया में, सच रहना भी सरल नहीं है। सत्य बोलने वालों को सदा कांटों की सेज ही मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें एक खिलता हुआ और महकता हुआ गुलाब बन के ही रहना चाहिए,
2: क्योंकि परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन कहते हैं परिस्थितियों को पार करते हुए अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाते, अपनी मन की स्थिति को बनाए रखते हैं मजबूत के
3: जी,
2: एकदम कहते हैं फौलाद की तरह, और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही इंसान है। बाकी परिस्थितियां तो इंसान के अंदर ही आती है
3: जी, लेकिन आज का जो माहौल देख रहे हैं उसमें सत्य परेशान हो रहा है। हालांकि सत्य की कभी हार नहीं होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी हारता नहीं है।
2: तभी तो कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
3: और सत्य का सूरज कभी छिपता भी नहीं है। झूठ के काले बादल थोड़े ही दिन उसे ढक सकते हैं, फिर वो अपनी रोशनी लेकर के सूरज फिर भी आसमान में जगमगाता है और दुनिया उसको फिर से सलाम करती है। तो कहीं ना कहीं सत्य में वो जयते चुका कहा गया है, तो सत्य की विजय निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
2: बिल्कुल सविता जी, तो चलिए हम सत्यता पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य बोलने में एक तो एक सत्य बोलेंगे तो 100 झूठ से बच जाएंगे, और एक अगर झूठ बोला तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ, तो कितना हमारा विकर्म बढ़ेगा, कितना पाप के खाते में हमारा पाप बढ़ता जाएगा
3: जी, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे से तीसरा बोलते हैं, फिर ये जो
2: बहानों पर बहाने,
3: हाँ, बहाने पर बहाने और झूठ पर झूठ, ये संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो जो गलत चीजों की जो संख्या होती है, जो आपने पाप का खाता कहा है, तो ईश्वर के हम सबकी जो एक फाइल है उसमें हम सबकी काउंटिंग होती रहती, कितना हम अच्छा करते हैं कितना खराब करते हैं, तो वो जो संख्या होती है गलत चीजों की वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो उससे हमारे पाप का खाता या विकर्म का खाता जो कहा गया है, अकाउंट बढ़ता ही जाता है, फिर समस्याएं हमारे सामने आती चली जाती हैं।
2: बिल्कुल सविता जी, फिर भी आपको पता होगा कि मतलब लोग फिर भी चापलूसी भी करते हैं, और जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी और मेरी ज्यादा बनती, ठीक है, फिर आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया
3: जी, बिल्कुल,
2: अब आपने मुझे बीच में बुलाया कि देखिए ना उषा जी मेरे साथ ये कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि आपके और उसके बीच क्या हुआ
3: जी,
2: फिर भी मैं आपका ही पक्ष लूंगी, नहीं नहीं सविता जी आप सही हो, सामने वाले को मैं डांटूंगी, नहीं आप गलत हो
3: जी जी,
2: तो वो भी कहते हैं कि
3: पक्षपात हो गया,
2: वो भी सत्यता नहीं रही।
3: हाँ, क्योंकि हमने सिक्के के दोनों पहलू को नहीं देखा, ना आपने मुझे जाना ना उन्हें जाना
2: जी,
3: क्योंकि आप मेरे मित्र हैं
2: जी,
3: तो इसलिए आप मेरा ही पक्ष लेंगे, और ये भी एक गलत निर्णय होता है, और गलत कहते हैं कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं। और इस जगह पे हमें ऐसे करना चाहिए, अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसी बात आए आपस में झगड़े की, तो बेहतर हो कि हम उस पर ध्यान न दे दूसरों के झगड़े पे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि हमारे सामने कोई बात आती, होता है कई बार, व्यक्ति भाई सोचता है कि कोई हमारा सहयोग करे, सच भी सोचता है झूठ भी सोचता है, तो व्यक्ति उसी से सहयोग मांगेगा जो उसके करीब भी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कहीं भी कि हमें कोई पूछे कि आप बताइए क्या मैं गलत हूँ सही हूँ, तो उस जगह हमें सहेली नाता या जान पहचान ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक हंस की भांति, जो हंस होता है ना कंकड़ और मोती को देखिए क्या कर देता है, अलग कर देता है, और पानी और दूध को भी अलग कर देता है ना। क्षीर और नीर को कहा गया कि ये शक्ति जो होती, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति एक हंस में होती, इसीलिए देखिए देवी देवताओं को कहा गया हंसानन, हंस का आसन पर विराजमान रहते माता सरस्वती, जो
2: हंसासन गरुड़ासन,
3: हाँ जी, जो दिव्य बुद्धि की दात्री हैं, बुद्धि में दिव्यता भरती है, ज्ञान भरती है, ज्ञान का प्रकाश भरती है, उनका आसन भी हंस होता है। इसीलिए हम मनुष्यों को भी जब भी कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आए, चाहे किसी और के लिए या हमारे लिए, हमेशा हमारी बुद्धि में दिव्यता होनी चाहिए, और हंस आसन पर विराजमान होकर अगर आप कोई भी निर्णय करेंगे उषा जी, तो मुझे लगता है वो सत्य ही होगा, गलत नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल आपने सही कहा है सविता जी। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में जो भीड़ लगती जा रही है, तो हम देखते हैं कि बस वो झूठ और सत्य के आधारित पर ही होता है ना ये सारा खेल। तभी जाकर के कहते देखते हैं कि वकीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सत्य का साथ लोग बहुत कम देते हैं, झूठ का, जिसने पैसे खिला दिए, अच्छे से पोस्ट पोजीशन पर है और वो पैसे खिला दिया, तो फिर उसके लिए 100 झूठ भी लोग बोल जाएंगे। ऐसा भी देखा है सविता जी आंखों से कि
3: हो ही रहा है,
2: हो रहा है, तभी तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इतना।
3: और देखिए कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, हम भी जीत नहीं पाते हैं कई बार सत्य, हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, लेकिन कई बार हम सबके भी जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि किसी ने हमें मतलब दबा दिया है पैसे देकर, या किसी ने अपना कहीं सोर्स लगाकर, होता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे अदालत में इतने मुकदमे हो रहे हैं और कितने पेंडिंग पड़े हैं, आज तक सुलझाए नहीं जा सके। मुझे लगता है बरसों बरस बीत जाते हैं, कई बार तो पैरवी करने वाले वकील भी शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं,
2: वकील भी खत्म हो जाते हैं, तो जिन्होंने केस किया वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं,
3: पीढ़ी दर पीढ़ी वो कई बार
2: चलता रहता है।
3: तो ये सबसे क्या होता है कि खुद के अंदर जब क्षमता नहीं है सत्य को जानने की, परखने की, निर्णय करने की, तब हम अदालत के दरवाजे जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर कई केसेस तो इतने होते हैं कि बड़ी हंसी भी आती है, ऐसा लगता है इसके लिए हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, पास पड़ोसियों की होती है या परिवार की होती है, हम अदालत का भी समय नष्ट करते हैं, अपना भी नष्ट करते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में उषा जी मुझे लगता है वो एक विधि थी पंचायत वाली,
2: जी,
3: अदालत तक ना जाके घर की बात है या अपना गांव की बात है या मोहल्ले कबीले जो भी बात होती है उसमें वहीं सॉल्व कर दिया जाता, क्योंकि उस समय लोग जो निर्णय करते थे उनको बहुत अच्छा माना जाता, पंच परमेश्वर, तो कई बार बहुत अच्छा फैसला आता था कि दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हो जाते थे और बहुत सही निर्णय होता था, लेकिन कई बार उसमें भी फिर धीरे धीरे बाद में जा करके समस्या उत्पन्न होने, उसमें भी वही बात आ गई, पक्षपात हो गया या फिर किसी के साथ लेन देन हो गई, तो सत्य को छिपा दिया जाता, तब अदालतें बनाई गई, तब ये होने लगा भाई जज बैरिस्टर और वकील सब शुरुआत हो गई, लेकिन आज देखेंगे फिर भी हम जहाँ के तहाँ रह गए बल्कि और आगे ही बढ़ गए, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब के पीछे हमारी जो सोच है ना वो काम करती है, अगर हमारी सोच सही होगी तो ना हमें किसी अदालत की आवश्यकता है ना किसी पंच की आवश्यकता पड़ती है।
2: इसलिए सबसे पहले तो जरूरत है अपने सोच को बदलने की और सत्य को बोलने की। जब हम सत्य बोल सकेंगे तो अदालत तक नहीं, घर में ही मामला सुलझ जाएगा, और थोड़ी देर के लिए सत्य बोलने पर थोड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे लेकिन बाद में खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए सविता जी आपके साथ और भी बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए
3: मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 90.4।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन है, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है, सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। सविता जी, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। तो कहते हैं कि सत्य बोलने में तकलीफ बहुत पड़ती है, तकलीफ को सहना भी पड़ता है, कष्टों को भी सहना पड़ता है, क्योंकि एक सत्य पर कितने ही प्रहार होते हैं, लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं और उसके साथ क्या होता है वो तो आप जानते ही है।
4: कई बार सत्य को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। उषा जी, आपने देखा भी होगा, और कई बार हम कई घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा दुख भी होता है कि मतलब किसी को न्याय नहीं मिल पाता है, या किसी को आप देखिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। वो होता नहीं है वैसा, लेकिन कई बार लगता है, तो सुन के बड़ी तकलीफ होती है। फिर हम सोचते हैं अरे दुनिया में तो न्याय है ही नहीं,
3: है नहीं। जैसे खत्म हो चुका, जैसे हम देख रहे हैं ना दुनिया में किस तरह के जो रेप कांड हो रहे हैं, उसमें जो बच्ची होती है उनके दबा दिया जाता है, उनको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि माता पिता ही वो नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। इसलिए कह रही हूँ कि सत्य बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ईश्वर उसी के साथ होता है जो सत्य बोलता है।
4: और कई लोग ऐसे भी होते हैं उषा जी, कि जो दुनिया से डरते नहीं, दुनिया की परवाह करे बिगर सच का सामना करते हैं और सत्य बोलते हैं, भले उनकी बदनामी हो या कुछ भी हो, तो वो संसार में एक मिसाल कायम कर जाते हैं। महात्मा गांधी जी को ही देखिए, उन्होंने सदा सत्य बोला, सत्य और अहिंसा का पालन किया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके जीवन में सत्य था उषा जी, तभी उनका प्रभाव दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर
3: और
4: पड़ता,
3: तभी
4: है।
3: उनको महापुरुष के नाम से जाना गया, पदवी भी दी गई।
4: महानता का पहला लक्षण ही सत्य बोलना है
3: जी।
4: और आप देखिए अभी जो आपने जो कविता पढ़ी अभी जो हमारे सेकंड राउंड में, बहुत सुंदर कविता थी, उसमें एक लाइन थी कि क्षमा बनना है, रोशनी करना है, जैसे एक बात है सत्य जो एक रोशनी की भांति है, इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है और ईश्वर रोशनी है। गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ, दोनों का समन्वय है आपस में। तो सत्य और रोशनी, जो सत्य की जो रोशनी है वो ईश्वर है, और ईश्वर से जब हमारी आत्मा भी कनेक्ट होती है तो आप देखिए हमारे अंदर भी वही सत्य का प्रकाश आता है और हमारी आत्मा भी एक रोशन होती है।
3: और सविता जी, हम देखते हैं कि जैसे कि घर परिवार में कोई बातें करते हैं तो भी क्या कहते हैं, देखो वो एकदम सही बोलती है, सत्य बोलती है, इसलिए अपने सुख दुख की बातें उनके सामने जाकर शेयर करते हैं, है ना। और जिनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो उनके पास जाकर के कोई अपने दिल की बात नहीं
4: करता, कभी नहीं कहता। सत्य में वो शक्ति होती है कि हर एक व्यक्ति को आपके सामने वो सरेंडर करवा देता है। भले शुरू में ऐसा लगता है कि लोग हमारा विरोध करें, लेकिन आप देखिए जो विरोधी भी होते हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे,
3: और बाद में वो ही सहयोगी
4: बनते हैं। हां सहयोगी बन जाते हैं कई बार, नहीं तो डरते हैं। और अदालत में भी आप देखिए, अगर वकील समझदार है तो मेरा ये मानना है और विश्वास है 100% संसार की कोई भी समस्या हो, कोई भी केस हो, वकील चाहे तो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उससे सत्य निकलवा लेगा, वो कितना भी झूठ क्यों ना बोले सामने वाला, लेकिन अगर वकील समझदार है और सत्य है वकील तो वो कोई भी केस हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सत्य को निकाल लेंगे, क्योंकि बातों की अगर कला है हमारे अंदर और सत्य को खंगालने की समझ है और परखने की शक्ति है, तो आप एक हंस की भांति छीर और नीर को अलग कर लेंगे और झूठ भी पता चल जाएगा और सत्य भी पता चल जाएगा। और मुझे लगता है तब शायद जो लोगों का कहना है कि अदालत में न्याय नहीं होता वो होने लगेगा।
3: जी,
4: कई लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना उषा जी, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं या तो उनके कपड़े होते हैं काले रंग के, तो उनको लोग बोलते हैं कि अदालत में सब कुछ काला ही काला,
3: काला
4: है।
3: ही काला
4: और
3: है।
4: कानून की आंख में पट्टी बंधी उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बनाया गया है काला ड्रेस बनाया गया है या कानून की आंखों पे, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई, उसका रहस्य उषा जी है। वास्तव में पट्टी इसलिए बांधी गई है, और एक चीज तो लोग देखते ही नहीं, काली पट्टी तो देख लेते हैं कि कानून की आंख में पट्टी बांधी गई, काला ड्रेस है, लेकिन आपने उसके हाथ में पकड़ा हुआ तराजू नहीं देखा। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होते हैं, और पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े पद वाला हो, मान शान वाला हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म या हमारा पारिवारिक व्यक्ति ही क्यों ना, संबंधी क्यों ना, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन चीजों को ना देख के नजरअंदाज करके हमारे लिए दोनों पलड़े समान हैं। और काला ड्रेस इसलिए दिखाया गया, देखिए जो जजेस बैठते हैं उनके भी जो गाउन होते हैं वो भी काले कलर की होती है, और आप देखिए वकीलों के भी कपड़े काले दिखाए गए, कोट पहनते, कि काले कलर में यदि आप कोई भी रंग डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा, होगा क्या?
3: नहीं होगा,
4: नहीं होगा। इसीलिए उसमें बताया गया कि अगर हम अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं, जज बनकर बैठे हैं या कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी रंग नहीं लगेगा, ना हमारे संबंधों का रंग लगेगा, ना पैसे का रंग लगेगा, ना बुराई का रंग लगेगा,
3: ना
4: स्वार्थ का लगेगा, ना चापलूसी और ना जान पहचान का रंग लगेगा, और ना कपट करने, क्योंकि वहां पे कपट भी होता है। कहा गया है कि कपट करके केस जीत रहे हैं लोग आजकल, तो शकुनी ने भी कपट करके मतलब पांडवों से उनका राज्य हरण कर लिया था। तो जो कपट की जगह बताई गई वो अदालत कहा जाता है कि हो रहा है। हालांकि मैं इस चीज पर इतना विश्वास नहीं करती हूँ कि सत्य वहां भी है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें सत्य की विजय नहीं हो पाती, तो लोगों की जो धारणाएं हैं वो गलत हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है और सत्यता का पावर है, तो जो हमारा केस लड़ने वाले वकील हैं उनको हम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हंस की भांति छीर और नीर जैसे अलग हो जाता है, अलग कर देते हैं वो कंकड़ और पत्थर को, उस बुद्धि को आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अदालत की जो गरिमा है वो और अच्छी उसमें बनी रहेगी, और चार चांद लग जाएंगे, और जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो भी फटाफट निपटेंगे। और मैं तो कहती हूँ घर ही एक अदालत है। अगर हम घर की बात घर में ही, या जो हमारे आस पड़ोस की भी समस्याएं हैं या हमारे समाज की, उनको वहीं समाप्त कर लें, तो हमारे
3: उन समस्याओं का समाधान वहीं कर लिया जाए, आगे न बढ़ाया जाए तो अच्छा है, बाकी
4: असत्य की विजय हो जाएगी 100% हो जाएगी,
3: बाकी कोर्ट कचहरी में जिंदगी बीत जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी
4: समय नष्ट होता है, पैसा भी जाता है,
3: समय स्वास्थ्य संकल्प पैसा सब व्यर्थ होता है, और फिर भी कहते हैं कि परिणाम घास का तीन पान की तरह ही होता है।
4: जी, तो हमारे जो दिमाग है उसको ही एक अदालत समझ के हम सदा सत्य की कुर्सी पर जज बन के विराजमान रहे और निर्णय करते रहे, तो बहुत सरल है हर काम करना।
3: बिल्कुल सविता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें की है आपने कि सत्यता पर अड़िग रहना ही मानवता का धर्म है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है और सदैव हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, समय हो रहा है।

आशियाना जी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और ये गीत जो मैंने अभी दो पंक्तियां सुनाई है, तो आप समझ रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो जाता है, बीच बीच में गीत सुनाती रहती है। इसलिए मैंने आप सभी को याद दिलाया जो हमारी माताएं बहने व्रत उपवास रखती है उनके लिए, इसलिए गीत की लाइन बोली थे, तो क्यों ना आपको फराली सिखाया जाए। तो चलिए, कितनी बहने हमारी असमंजस में होगी कि क्या फराल बनाए क्या नहीं बनाए। तो प्यारी बहनों, बिल्कुल आप टेंशन मत रखिए, मैं बहुत ही सरल सिंपल फराल सिखा रही हूँ, तो आप चाहे फटाफट बना करके खा सकते हैं, परिवार वालों को खिला सकते हैं। तो आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। ठीक है, पकौड़े तो वैसे ही फटाफट बन जाते हैं, 5-10 मिनट में पकौड़े बना करके आराम से आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो पेन और डायरी आप ले लीजिए, और सामग्री मैं आपको लिखवा रही हूँ। सामग्री इस प्रकार है, सिंगाड़े का आटा लीजिएगा 1 कटोरी। ठीक है, अगर सिंगाड़े का आटा मौजूद नहीं है घर में तो फिर आप राजग्रह का भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लीजिए सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी। फिर आप लीजिए मीडियम साइज के आलू 2 ले लीजिए, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। फिर हरी मिर्च लीजिए बारीक कटी हुई 1। बस सामग्री इतनी सी ही है जो आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। तो पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा, सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी, आलू लीजिए मध्यम आकार के 2, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी स्वाद के अनुसार। फिर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च लीजिएगा 1। तो ये सिंगाड़े के आटे के पकौड़े की सामग्री हो गई है। अब पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ विधि सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सिंगाड़े के आटे में पानी मिला करके पकौड़ा बनाने का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़े से आप अधकटा इसको कूटी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक भी नहीं काली मिर्च को, और मोटी पूरी साबुत भी नहीं रखनी है, अत कचरी कूट करके डालिए। सेंधा नमक, हरी मिर्च ये सब डाल दीजिए। आलू को छील करके काट लीजिए और इसके गोल गोल स्लाइस कर लीजिए। और जो हमने खीरा तैयार किया है ना पकोड़े का, उसमें आप आलू के गोल स्लाइस को डुबाइए और उसके सब तरफ उस आटे के घोल को लगा दीजिए और तेल में छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो जाए फिर आप आंच मध्यम पर कर दीजिए, और मध्यम गैस पर आप इस तरह पकोड़े सारे तल लीजिए। मध्यम आंच पर जो हम चीज़ों को सेकते हैं वो अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से भी पक जाती है और बाहर से भी पक जाती है। तो भाई कच्ची खाएंगे तो पेट दर्द करेगा ना, इसलिए मध्यम आँच पर ही आप चीज़ बनाइए। पहले आप फास्ट रखिए गैस को ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आप मध्यम कर दीजिए ताकि इस तरह चीजें अंदर से भी पक जाए। तो ये सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। पुनः दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। सिंगोड़े के आटे में पानी मिला करके पकोड़े का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें अधकचरी कूटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल दीजिए, और आलू की धुलाई करके इसके छिलके उतार करके गोल गोल इसकी स्लाइस कर लीजिए, अलग रखिए इसको। फिर पकोड़े के घोल में स्लाइस को जब आप पकोड़े तलने जा रहे हैं उस समय स्लाइस को आप घोल में डुबाइए। जब घोल चारों तरफ लग जाए बस आप तेल में छोड़ते जाइए, हल्के ब्राउन कलर के चारों तरफ से हो जाए पकोड़े, उसके बाद आप पकोड़ों को निकालते जाइए। तो इस तरह सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार किए जाते हैं। भाई तैयार हो गए हैं, अब इसके साथ आप चाहे तो टमाटर सॉस भी आप ले सकते हैं, या फिर हरी मिर्च की चटनी, या दही ले लीजिए। दही में हल्का सा शक्कर डाल दीजिए और दही के साथ इन पकोड़ों को आप खा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए एक स्वच्छ प्लेट, प्लेट में आप पकोड़े रखिए, दही ताजा हो तो रख दीजिए एक कटोरी में, और कटोरी रखिए प्लेट में, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा को, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा सिंगोड़े के आटे के पकोड़े का, और साथ ही साथ एक गीत तो बनता ही है। तो सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ आती है, थोड़ी सी शारीरिक व्याधि बढ़ती है और गए मेडिकल स्टोर पर, दवा लेकर के आए और खा ली, बस एंटीबायोटिक लेकर के आते हैं और खा लेते हैं डॉक्टर के बिना परामर्श के। तो ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के बिना परामर्श के अगर हम गोलियां लाते हैं तो ये नुकसानदेह होती है। कैसे होती है वो भी आपको बता रही हूँ कि कितने ही शोधों में साबित हो चुका है ये बातें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नुकसान देता है कितनी ही बीमारियों में। ठीक है, जैसे कि सर्दी हो रही है, सर्दी में हम दवा लेकर के आए, ठीक है सर्दी जुकाम है जबकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती गोली की, फिर भी हम सर्दी जुकाम की बीमारी में गोलियां लेकर के आए, खाली खत्म। लेकिन दूसरे जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन जो आवश्यक तत्व हमारे अंदर होते हैं वो भी कितनी बार साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी आवे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेवे। कितनी बार देखिए एंटीबायोटिक से संक्रमण भी फैलते हैं, जैसे कि संक्रमण फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है ना उनको मारने की संख्या को कम करना या फिर उनसे बढ़ने को, जैसे संक्रमण फैलते उनको बढ़ाने से रोकना। लेकिन जब बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी बीमारी आएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही एंटीबायोटिक का असर भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना, गए मेडिकल पर लेकर के आए खाली और बात खत्म, तो फिर एंटीबायोटिक गोलियों का असर भी कम हो जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से ये ऐसे अच्छे बैक्टीरियों को भी मारने लगता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं ऐसी गलती मत करिएगा। भले हमें सर्दी जुकाम या सिर दर्द ये सब नॉर्मल दिखते हैं कि इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास जावे, क्यों खर्चा करे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कितना होता है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जाइए डॉक्टर से परामर्श करिए। कितनी बार लोगों को लगता है कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक तो समय हमारा जाएगा, दूसरा फिर मोटी फीस भरनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा समय लगता है अगर भीड़ है तो प्राइवेट में भी कितनी बार भीड़ रहती है ना, फिर भी हम प्राइवेट में इंतज़ार करते हैं, 200-300 रुपये की फीस भी भरते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए बिल्कुल नहीं जाते। भाई 200-300 तो वेस्ट खोना है, चलो मेडिकल से डायरेक्ट गोली ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, उसके अनुसार फिर आप दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सोच समझ कर दवाइयाँ देते हैं, वो फिर आपके दूसरे बैक्टीरिया को खत्म करने से रोकेंगे, नहीं तो जो काम के आवश्यक तत्व है वो अगर खत्म हो जाएंगे तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि देखो उस दवा ने असर किया और हमारा सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि दूसरी कौन सी बीमारी या दूसरा कौन सा तत्व हमारे अंदर खत्म हो गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर दूसरी बीमारी हो गई, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि एकदम तो ऐसा होता नहीं है, वो दवा जब असर करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे असर करता है, और धीरे धीरे असर करता है तो फिर बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि फिर से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि फिर से ये प्रॉब्लम कैसे हुई। हम तो यही समझते हैं कि चलो पहले सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, चलिए फिर से चलते हैं मेडिकल पर और दूसरी गोली इसकी भी ले आते हैं, और फिर जा करके ले आते हैं। तो इस तरह बड़ा रोग, कितनी बार बड़े बड़े रोग भी हमारे को हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पुनः आप सभी को कह रही हूँ कि कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी जो बिल्कुल सामान्य दिखती हो, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से काम करिए, बाकी इसके साइड इफेक्ट और फिर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ती जा रही है, तो ध्यान देंगे, थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर से समय हो रहा है किस सुनाने का, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: को साधुर बसेरे मिले गाड़ी आए कबीर कमाई क्या करे बड़े हरि न पूरे आस ओंदो देवे हाथ कोरे टूटे हाथ पसास।
1: अरे भाई।

0: की जय हो। भगत विशल भगवान की जय हो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की सविता जी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी हुई है, तो सत्यता पर हमेशा अड़िग रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आवे। और नए नए व्यंजन में जो आपको अभी पकोड़े सिखाए हैं, आप जरूर बना करके खाइएगा, सिंगोड़े के आटे का पकोड़ा। हमारी माताएं बहनें तो व्रत उपवास रखती ही है, तो इस तरह के फराल भी आप बना सकते हैं। और सामान्य जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छी दी है कि एंटीबायोटिक से बच के रहना है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी है, ठीक है। आज के अनमोल वचन भी इस प्रकार है, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाशी पूरी हो जाए। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सोने का देश बना दे। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे। अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो। अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो। विरह गीत गाने वालों को मिलन गीत गा लेने दो। आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है। आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है। जगा देर से माजी भी अपनी गागर लाया है। ऐसे प्यासे माजी को ज्ञानामृत का पान करा दे। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। तूफान में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं। तूफान में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं। अडिग रहे तरु टूट मध्य से गिर जाया करते हैं। संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे। संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे। सच मानो तो अंधकार के सब बादल फट जाएंगे। जन जन को आओ फिर से पावनता का पाठ पढ़ा दे। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं। बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं। जो आगे बढ़ मुड़कर देखे वो क्या कर सकते हैं। जिसका चलना काम रहा हो, जिसका चलना काम रहा हो, वो क्या कभी थका है। जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है। जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है। ऐसे उन्मादी में फिर से सोया पुरुषार्थ जगा दे। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे। आओ हम समझा दे।

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता। लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
3: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो। माँ प्लीज।
4: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे। मैं थन आगे पढ़ाऊ तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वहां को भी सोचना है मारे।
5: देख बेटा, मारी माँ भी मैंने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ। बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चलाबा ही नहीं देऊं तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मानी मान है पूछे न बताओ।
1: बेटा बीनणी तो घणी अच्छी है ये, पर गूंग तो घणो ओछो काढ़े, यो अभी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पढ़न कसे मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू गुंगट वदारा काड़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते अरे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनणी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी ना, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपा, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अत्रो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अत्रा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहुरो कोई अधिकार कोनी वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है नवा घबराए रही है, तो मैं बने हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हा, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासुमा आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगी की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बीनड़ी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बीनड़ी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपने भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बीनड़ी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय गणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, डीगड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दर्पा मत राधा।
2: दर्पावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनड़ी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रियो है बीनड़ी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बीनड़ी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां और फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें, ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती, क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरा ध्यान रख जे।
6: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
7: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन है उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है, यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजीशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
6: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी हारो गांव हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे महिलाएं का समाज हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे नरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट बच्चों का हुनर खोज में आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदवाड़ा आर में। और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा साथ भंवरलाल जी हमारा उपस्थित है। तो प्रिंसिपल उनको चयन किए बोला हमारा भंवरलाल सर पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बच्चों का साथ घुल मिलकर करते। तो सर को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के लिए, फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है आसपास गांव के जो हुनर है जो टैलेंट को जन जन तक खोजने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा। सर आपको वेलकम करते हैं। राजकीय विद्यालय जो सांदवाड़ा आर में आप वरिष्ठ शिक्षक है, तो आप अपना परिचय देंगे।
1: सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे विद्यालय में समय निकाल के आए और हमारे बच्चों का टैलेंट जानने के लिए आप उपस्थित हुए हो। मैं भंवरलाल कांची व्याख्याता हिंदी विषय से संदवाड़ा आर में पोस्टेड हूँ। 2017 से मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा आप यहाँ पधारे हो और हमारे बच्चों का टैलेंट लेके जाओगे। और मतलब सोशल मीडिया से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये पूरे विश्व में हमारे बच्चे इस तरह से फेमस होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप धन्यवाद के पात्र है।
0: सर आज जो इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है क्योंकि एक इशारा से, एक इंगित से आपने हमें चांस दिए और बच्चे चांसलर बन जाएंगे, क्योंकि चांस देना आपका काम है और चांसलर बनना बच्चों का काम है। तो आज इस मंच को लोग ढूंढते हैं जो आज सहूलियत से मिल गया आपको मंच और आपका बच्चे भी इस मंच का माध्यम से अपना हुनर को, अपना प्रतिभा को सुनाएंगे। और हमारा श्रोता जो लिसनर सुन रहे इंटरनेट का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे हैं, और हमारा श्रोता सुन रहे, सभी का आवाज जब सुनते हैं एक गुलदस्ता बन जाता है। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे ग्राम पंचायत, सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, सभी से मिलते। तो आज बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांदवाड़ा जो आर का बच्चे आज बारी बारी सुनाएंगे। तो हमारा श्रोता मित्र कहीं नहीं जाइए, अपना वॉल्यूम को ट्यून कर रखिए, आप सुन रहे हैं इस समय खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदवाड़ा आर। तो सर आपको कैसे लगा, आपने पहले बता दिए बच्चों का जो भागीदारी मैंने देखा, आप सबको पूरा ग्रुप वाइज कर दिए, तो जो चार ग्रुप बन रहे हैं, तो पहला ग्रुप जो हमारा दो बच्ची आई है तो उनका नाम थोड़ा जिक्र करेंगे।
1: जी हाँ, हमारे ये नन्नी मुन्नी बच्चिया, एक का नाम है दीपिका और एक का नाम है मानसी, हमारे पहला ग्रुप है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये बच्चिया देगी जो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सर आप तो एक आरजे जैसे लग रहे हैं, एंकरिंग में आपका नंबर वन है क्योंकि सांस्कृतिक प्रभारी है। और उसका साथ कौन सा विषय पढ़ाते सर?
1: जी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर,
0: इसलिए आपका जो

बोलने का तरीका हो और बच्चों को एकत्रित करके आप संबंध बनाते, बहुत खुशी लगा। सर को धन्यवाद देते ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय आज दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे भी कम नहीं है, ऐसे बच्चों को जब मंच मिलता है, जो मौका मिलता है, तो चौका छक्का लगाएंगे आज और स्कूल का नाम रोशन करेंगे और नामांकन में भी वृद्धि होगा स्कूल का, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आ रहे हैं ये कम बात नहीं है। 2000 ताली हो जाए सार के लिए, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ हम खुशी करा दिए, क्योंकि ताली बजाने में कोई पैसा कोई टैक्स नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और जो सोए हुए नींद, बच्चे तो सोते नहीं है लेकिन कहाँ भी सोए होंगे अगल बगल में वो भी जाग जाएंगे, क्योंकि हमारा रेडियो में जब इस तरह आवाज सुनेंगे जो रेडियो को छोड़कर जाते हैं, सो जाते हैं कोई, तो उनको भी जगा देंगे, ये हमारा मंशा रहेगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा प्रस्तुतियां शुरू हो जाएगी। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे परियां हैं और मीठे बच्चे हैं, चलिए सुनते हैं उनका मीठी आवाज से, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चले नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए, देर नहीं करते हुए हमारा जो कार्यक्रम आज तो ऐसे बंद पड़ेगा क्योंकि सर का जो उमंग उत्साह वार्म अप कर दिए और सर का भावना देखो और बच्चे भी भाव और भावना से एक प्रश्न सुनाएंगे। तो हम पहला प्रस्तुति की ओर चल रहे, सभी खुशी है ना, सभी बच्चे खुशी है ना, खुशी होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और बच्चे भी इस साथ दे रहे और सभी स्टाफ खासकर हमारा प्रिंसिपल साहब भी इस कार्यक्रम में अति सहयोग दिए। तो हमारा साथ दो छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मानसी।
0: आज मन का बात को मानसी अपना क्लियर करेगा क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार हर बच्चों का अंदर में रहता है, मन बुद्धि और संस्कार। जिसका मन बुद्धि संस्कार तेज है त्रिमूर्ति, वो मन को जो कंट्रोल करेगा, बुद्धि को जो कंट्रोल करेगा, वो संस्कार तो बन जाएगा, दैवी संस्कार आ जाएंगे। और बोले ये तो हमारा स्कूल के बच्चों का संस्कार है, सुसंस्कारित, हमको सुसंस्कारित बच्चे चाहिए भविष्य के लिए, अच्छा संस्कारित दैवी संस्कार। तो हमारा मानसी आज मन से गीत गाएगी और उसको साथ देने के लिए हमारा साथ और एक गुड़िया है, हेलो क्या नाम है?
1: दीपिका।
0: दीपिका, मन से आज दीप जलाएंगे, दीपिका नाम जैसे काम उस तरह करेंगे, दीप जलाओ भाई, बुद्धि का दीप मन का दीप जब जलेगा तो हमारा संस्कार बन जाएगा। दीपिका और मानसी को स्वागत करते हैं।

0: खाकर पढ़ने जाते।
1: वाह, ताली बजाना।
2: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। मैंने सोचा था बच्चे सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या करते, दिनचर्या बता दिए। सुबह उठते उठते क्या करना चाहिए? ब्रश। लेकिन इसका पहले मैं आवरे के जोड़ दूंगा, जब नींद खोलेगी तब पहले एक मिनट, जब नींद खोलेगी एक मिनट गुड मॉर्निंग टू गॉड, भगवान को शुक्रिया करना है। सुप्रभात। पहले नींद खोलते खोलते किसको धन्यवाद देंगे? भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, अपना कुलदेवी को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसको बोलेंगे? भगवान को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। इसका बाद जैसे मंजन करना, मुंह धोना, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला गुड मॉर्निंग किसको? भगवान को। इसका बाद माता पिता को, ठीक है, मन में बोलना है गुड मॉर्निंग माता पिता, आप हमें बहुत कुछ दिए, हम आपका रिटर्न करेंगे बड़े होकर, ऐसे मन में बोलना उठते उठते, ठीक है। इसके बाद शिक्षकगण, वो भी गुरु है तो उनको भी धन्यवाद देना मन में। इसके बाद अपना कार्य शुरू कर, उठते उठते बैठ जाने का बेड पे जहां पर सोते, तो फिर तीनों को गुड मॉर्निंग करना मन से, मन से, ठीक है, मन से गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग भगवान, है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मानसी तुम बड़े होकर क्या बनेगी लक्ष्य रखा है? जैसे सर मैम वगैरह होते हैं, कार्यकर्ता, पुलिस, राष्ट्रपति, है ना, तुम क्या बनेगी रे?
0: टीचर।
2: हाँ, टीचर मैम बनेंगे। अरे वाह, कोई सिखाया नहीं फिर भी बोले मैं मैडम बनेंगे। हाँ, इसलिए पढ़ाई करना। और विद्यार्थी जीवन में बच्चे ध्यान से सुने, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़े में कौन कौन आते हैं हमें बताएगी दीपिका? बड़े में कौन कौन आते हैं?
0: माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, टीचर।
2: हाँ,
0: बड़े भैया,
2: बड़े भैया बहन सभी बड़े आते, तो बड़े का बात मानेंगे तो जरूर जरूर कामयाबी होंगे। बड़े जो बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं, बोला बड़े आपका भलाई के लिए करते, लेकिन बड़े का बात तो सुनेंगे तो बड़े होकर हमारा टीचर जैसे सुनाएंगे सभी को। आपको सुनाते ना क्योंकि वो पहले सुने थे माँ बाप का इसलिए आज भी बच्चों को सुना रहे सभी चीज, और बच्चे सुनते ध्यान से, इसलिए बड़े होकर भविष्य में सबको सुनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मैनेजर, PhD करने के लिए बड़ों का बात मानना चाहिए। दीपिका तुम बड़े कर क्या बनेगी?
0: टीचर।
2: तुम भी टीचर? अच्छा, तुम्हारा स्कूल के अच्छा टीचर का नाम बताओ। तुम्हारा स्कूल में कितना सारा टीचर है? कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
0: राजेंद्र जी सर।
2: अरे वाह, सभी सर होना चाहिए। राजेंद्र सर को बोलते हमारा बहुत लाल सर बोल आपको मार काट देंगे रे, ऐसे नहीं करना, इसलिए छोटे बच्चों का ही है सर, इसलिए राजेंद्र सर बड़े तो हमारा लेक्चर है। सभी बच्चे सच्चे होते हैं और वो दिल से बात करते हैं, कोई कपड़ नहीं, कोई छल नहीं, और महात्मा होते हैं बच्चे, सच बोलते हैं, कोई इशारा नहीं, भाई सर हो चाहे कोई, इसका पूरा दिल का बात रखते हैं। सर का, सर कौन सा विषय आपको पढ़ाते जो सर आपका नाम लिए, कौन सा विषय पढ़ाते?
0: गणित।
2: हाँ, गणित में मैथ टीचर बनेगी, ये भी हमारा दीपिका, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो मंच आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे खुशी से उनका चेहरा से पता चलता है जो हमें आज तो आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, मीडिया में जाएंगे तो हम तो मीडिया में छा जाएंगे, तो ऐसे होना चाहिए। और श्रोता भी यही बच्चों को प्रोत्साहन दीजिएगा, और कभी जरूरत पड़ेगा तो जरूर सनवाड़ा आर में आप आइए, बच्चों को मिलिए, और जो भी आपको देना चाहिए भामाशाह रूप में, चाहे उनका पानी हो, कुछ आरो, कुछ आवश्यक पड़ता है बच्चों को दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खुला मंच है, रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा गुड डे लोग भी है, बड़े बड़े भाई लोग, तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, यह था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन।

0: रुक रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें तो जाने को इच्छा नहीं कर रहा, बच्चों का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, सब मीठे हैं और हमें भी मीठा बना दिए। और हमारा सार का तो इशारा से सब बच्चे खुश, बार बार आने के लिए इच्छा होगा क्योंकि बच्चे सच्चे होते और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आप सुन पा रहे। चलिए

0: साथ एक छात्र है तो उनको परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम योगेश कुमार है, मेरे 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा हार।
0: तो आज क्या प्रस्तुत करेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते सच मन से, आप एक गीत प्रस्तुत करेंगे।
1: जी। जग सारो घूम्यो मैं तारो जिसो ना कोई पायो, जग सारो घूम्यो मैं तारो जिसो ना कोई पायो, लारे लारे तुम्हारे हबन कर चाले चायो, लारे लारे तुम्हारे हबन कर चाले चायो, डोर तारे मारे पीत की अनेक देख ले, रीति राम ने अनुकिया बनाई, रीति राम ने अनुकिया बनाई, मेरो पहलो पहलो प्यार मेरी माई, जीनी जिंदगी आज जिसने सिखाई, मेरो पहलो पहलो प्यार मेरी माई, जीनी जिंदगी आज जिसने सिखाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमारा कार्यक्रम को तो एक गुलदस्ता जैसे बना दिए। बच्चियों का आवाज, सर का आवाज, फिर आपका आवाज, एक गुलदस्ता बन पड़ा। और जो श्रोता सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि राजस्थानी रेडियो चैनल है और राजस्थानी गीत न हो, हाँ, कितना सुंदर रूप में गीत गाए। और बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: जी, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ।
0: शिक्षक, आज तो सब शिक्षक ही बनेंगे। और मैंने क्या बोल रहा है, आप का अच्छा खेल खेल खेलते हैं?
1: हाँ, जी।
0: कौन सा खेल आप?
1: क्रिकेट।
0: क्रिकेट, क्रिकेट में कितना आदमी होते हैं?
1: 11
0: ऑपोजिट में 11 और आपका तरफ से 11, 22 लोग हैं। बहुत अच्छा। आपका सांगवाड़ा आर में आसपास कौन सा गांव है?
1: हमारे आसपास में रोईडा है, सुरूपगंज है, पूला है, मांडवाड़ा है, वासा है, वाटेरा है, भारजा है।
0: अरे वाह, पूरा पिंडरा ब्लॉक में 43 ग्राम पंचायत है, जिसमें ये बहुत सारा गांव, आसपास का गांव का नाम बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े होकर जैसे अपने टीचर बनेंगे, आपका टीचर को जो देखते हैं उनका विशेषता गुण कौन सा, शिक्षक से आप ग्रहण करते ज्यादा, उनका पढ़ाने का तरीका?
1: सभी से करते, एक से क्यों से,
0: सभी से कर, सभी से गुण लेना है। जब गुण लेंगे तो गुणग्राही होंगे। और सबसे विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है विद्यार्थी जीवन में, सबसे सबसे बड़ा गुण क्या है, कौन बताएंगे? विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के समय में सबसे बड़ा गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण कौन बताएगा?
2: शिक्षा।
0: शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ा गुण है विद्यार्थी जीवन में। लेकिन विद्या ग्रहण कैसे होगा विद्यार्थी जीवन में? विद्या ग्रहण करना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचो। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण तो पढ़ाई तो है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सा गुण है, कौन बताएगा? जिस गुण में दिव्यता ता रहेगा, ता मधुरता लास्ट में ता रहेगा, मैं क्लू दे दिया। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए विद्यार्थी में,
1: शिक्षकता।
0: शिक्षा, शिक्षकता, अच्छा शिक्षकता। और एक बोला पढ़ाई, एक तो शिक्षा, और बताएगा कौन सा गुण होना चाहिए पढ़ाई?
3: सहनशीलता, सहिष्णुता,
0: बहुत सारे गुण है, सबसे गुण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण, सबसे बड़ी गुण है
3: बुद्धिमत्ता,
0: नियमितता।
3: नियमितता भी है,
0: नियमित जब आएंगे बच्चे, बच्चे तो आते हैं नियमित, सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमित स्कूल को आना है, इसके बाद आपका सब गुण आ जाएगा। सब गुण ठीक है जैसे सर ने बताया, सहनशीलता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, रेगुलर। एब्सेंट रहेंगे तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अगला ग्रुप हमारा रेडी है तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साइलेंस में, साइलेंस जो बल है ना, शांति से काम होना चाहिए। आज ओम शांति से आए हैं और ओम शांति से ही आज बच्चे शांति से गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक का बाद वंस मोर और बालिकाएं एक ग्रुप आए हैं, तो उनका नाम पहले सुन लेते हैं।
2: सोनू, कक्षा 7, राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा।
3: मेरा नाम दीक्षा है और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूं।
4: मेरा नाम आस्था माली है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम प्रियंका कुबर है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
1: कितना सुंदर सुंदर तुलय और ताल का साथ अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आज, छोटे छोटे तोतले तोतले आवाज में और मिठास इसमें है। चलिए हमारा कार्यक्रम को हेल्दी बनाने के लिए चारों को स्वागत करते हैं, एक गीत प्रस्तुत हो जाएगी।

0: बहुत धन्यवाद। कहाँ से सीखते हैं सब? स्कूल में?
1: स्कूल से।
0: इसलिए स्कूल आना जरूरी है, स्कूल नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे आज आकाशवाणी में बच्चे

0: अपना आवाज को सुंदर रूप में प्रस्तुत किए अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु का पिताजी का नाम कौन बताएगा मालूम है? अभिमन्यु
1: अर्जुन।
0: वेरी पूरा इंटेलिजेंट। वहां पर जाएंगे ना बड़े होकर पूरी याद रहेगा। भाई भाई में जब इंटरव्यू होगा तो बच्चे तो याद करेंगे, रेडियो मधुबन में हमको पूछा था अभिमन्यु का पिताजी का नाम। उस समय भी कोई भी पूछेगा ना, अभी से रेडी रखना और जरूर आप कामयाब होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी?
1: हम पुलिस।
0: हाँ पूरा हाइट तो लग रहे हैं, पुलिस के लिए रेडी है, फिट है पूरा, है ना। टीचर नहीं कोई, इसका पहले बहुत सारे टीचर मिले थे लेकिन अभी पुलिस मिलेगा। पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य मतलब ड्यूटी, उनका काम क्या होता है?
1: चोर को पकड़ती है और उन लोग को सबक सिखाते हैं।
0: सबक से जो खराब लोग को सबक सिखाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, है ना। और पुलिस चोर जो दुर्नीति करेगा उसको पूरा सजा देने के लिए रेडी रहेगा। तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: शिक्षक।
0: शिक्षिका, शिक्षक, मैडम बनेगी। तुमको पूछेंगे नहीं, तुम बताओ देखिए।
1: पुलिस।
0: पुलिस। हाँ पुलिस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जिसको पुलिस चाहिए याद रखना, पूरा सांगवाड़ा आर को याद करेंगे बड़े होकर। ये लोग पुलिस, दो पुलिस तो मिल चुके, कोई आसपास गांव में कुछ भी हो तो तुरंत को कराएंगे, ठीक है, फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हम लेकर आ रहे हैं, और खासकर बच्चों का आवाज में जो दम है, बड़े बड़े भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए कितना भी धन्यवाद दे, हमारा सर कोऑपरेशन कर रहे हैं भंवरलाल जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर, सुनते हैं प्रस्तुति।
1: उसीना केडबर्मा प्रकार, ए राम राम, ए राम राम। टिम्पा वालुडी जे आयुने आया, है वीरो जोई पसी आवुने आया। टिम्पा वालुडी जे आयुने आया, है वीरो जोई पसी आवुने आया। जावा दे जावा दे जावा दे।

0: lauta. Alino pemero lauta, pemero lauta, pemero bogle lauta. Javade, javade, javade. Evo pona leto paso a vene allá, evero paso a via vene allá.
1: चलो सर इस गीत में इसका भावार्थ क्या है हमारा सर जी बताएंगे क्योंकि हमारा श्रोता मित्र जो आदिवासी गीत नहीं जानते होंगे या मारवाड़ी गीत नहीं जानते होंगे तो हमारा जैसे लोग जो आते हैं तो वो भी क्योंकि रेडियो मधुबन
2: नहीं आता इसका पूरा भावार्थ तो मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत ही आदिवासी ठेठ अंचल से ये गीत है और इसका मुख्य भाव ये है कि कभी भी शादी वगैरह में आजकल जो डीजे का प्रचलन है तो जो एक गाड़ी डीजे वाली आती है उसके ऊपर ये गाना पूरा बना हुआ है कि टेम्पा वारू डीजे आयू रे मतलब एक गाड़ी आई है जिसके साथ डीजे लगा हुआ है
1: तो होने वाला है इसका आवाज से हाँ तो बहुत कुछ सीखा मिलते है तो हमारा जो भाकर क्षेत्र है भाकर क्षेत्र में जिस आदिवासी लोग रहते तो उनको मजा आता होगा डीजे का तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम को संदर्भ में सजाया और अंतिम प्रस्तुति बच्चों का आवाज को सुन के हमारा शिक्षक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे वो अपना अब राजेंद्र सर अपना इस कार्यक्रम को देख रहे हैं साक्षी दृष्टा रूप में और भीष्म पितामह जैसे सभी में सभी शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं कोऑपरेशन एक परिवार जैसे चलिए हमारा सर जी को राजेंद्र सर को स्वागत करते हैं सर आज रेडियो मधुबन में आपको स्वागत करते हैं बच्चों का साथ आप भी बच्चे बन गए अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे तो आपको तालियों का साथ
2: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन को कि आज आप एक ठेठ आदिवासी अंचल के गांव सनवाड़ा आर में आकर के आप बच्चों को इनकी प्रस्तुति देने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं वास्तव में आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इतनी खुशी आज मुझे हो रही है और वास्तव में ये प्रयास आखिर में रंग लाएंगे इन बच्चों की आवाज जब दुनिया वाले सुनेंगे तो वास्तव में मालूम पड़ेगा इनको लोगों को कि इन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं ये भी कुछ कर सकते हैं और ये भी कुछ कर दिखाने में सक्षम है तो अंत में जैसा कि सर ने मुझे आह्वान किया है मैं राजेंद्र टेलर चूंकि इन छोटे छोटे बच्चों का कक्षा अध्यापक रहा हूं बहुत सारे गीत मैंने इनको सिखाए भी है तो बच्चे भी डिमांड करें कि सर आप भी एक गीत तो सुनाई दो तो हमारी देश की संस्कृति जैसी है और जैसा मैं इन बच्चों को मानता हूं उसी अनुरूप उसी भाव को लिए हुए मैं ये गीत की कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं आशा है आपको अच्छी लगेगी

बच्चा बच्चा राम है। वास्तव मेरे लिए इस विद्यालय के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हर बाला हर बालिका एक देवी के रूप में है, वो पूजनीय है, और हर बच्चे में मुझे राम दिखाई देता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मान

0: हैं, थैंक यू वेरी मच रेडियो मधुबन और यहाँ से आए हुए सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय परिवार हमारे सनवाड़ा आर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।
1: का राज अभी पता चला, राजेंद्र सर का जो मेहनत बच्चों के प्रति, तो बच्चे भी आज सर का नाम रोशन किए और बच्चों का साथ आज तो पूरा मनोरंजन हुआ, इसका श्रेय तो पूरा संस्था को जाता है, स्कूल के विद्यालय के परिवार को और बच्चों को भी जाता है। तो माँ बाप भी जब सुनेंगे, अरे हमारा बच्चों का ये आवाज, सही में इनको एक मंच जरूर था, आज वो मंच मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर और हमारा भंवर सर, अपना सभी स्टाफ को भी, प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, आप सबसे हम इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर का आवाज जो आपके पास हमें रखे हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच प्रदान करता है। तो आज उसका आप सब साक्षी रूप में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

0: ओम शांति सभी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल और मधुबन रेडियो, जो कि अवेलेबल है 107.8 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हमारे अबू रोड और सिलोही के श्रोताओं के लिए, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप जुड़ सकते हैं मधुबन रेडियो के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हम जैसी बात कर रहे थे, बात चल रही थी दिव्यांगता की, और जिसे कहते हैं हमारा फेवरेट शो मन की आंखों से, हमारे मन की बात, हमारी जीवन की बात, दिव्यांगता की बात, पुनर्वास की बात, और इसके साथ साथ जीवन को कैसे हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो सामान्य लोग अपने जीवन में करते हैं। तो इसको करने के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ कोई ना कोई पुनर्वास को लेकर एक्सपर्ट हो या हमारे बीच में उस विषय के जानकार हो। तो हम हर बार किसी न किसी नए व्यक्ति को या फिर किसी जानकार व्यक्ति को, उस विषय विशेषज्ञ को आपके बीच लेकर आते हैं। तो आज दोबारा से, क्योंकि बात भी गंभीरता के साथ होनी चाहिए, तो हमारे बीच हैं डॉक्टर नीरज मधुकर, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के CRC सेंटर जयपुर से। डॉक्टर नीरज मधुकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: नीरज जी, हमने पिछली बातचीत में, जो हमारा पिछला एपिसोड रहा, उसमें हमने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सारे विषयों को सतही रूप से छुआ, और हमने उसमें बात करी पेरेंटिंग को लेकर, CRC पर उपलब्ध सेवाओं को लेकर, वयोश्री योजना को लेकर, और दिव्यांग व्यक्ति को दी जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के बारे में हमने बातचीत करी। लेकिन बातचीत का अब ये जो सिलसिला है, जिसमें हम अगले कुछ समय तक या कुछ एपिसोड तक हम विशिष्ट विषयों पर कुछ विशिष्ट तरीके से गंभीर बातचीत गहराई के साथ करेंगे, और ये एक सामान्य बातचीत नहीं होगी, यह कोई आपका ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है। ये एकदम निवेदन करेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर अपने कान मजबूती के साथ लगा ले और बात को समझे। और चूंकि बात कान की हो गई है, डेफिनेटली बात आज विषय है डेफ लोगों के बारे में, और डेफ लोगों को संप्रेषण में आने वाली चुनौतियां, उनके भाषा विकास को आने वाली चुनौतियां और संप्रेषण में आने वाली चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको लेकर हमारे बीच में नीरज जी है। तो नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेफ व्यक्ति है, जिसका चाहे वो जन्मजात हो या उसने जीवन के किसी अन्य मोड़ पर डेफ मतलब सुनने संबंधी दिव्यांगता जो है वो हासिल कर ली हो, तो उसके लिए कैसे वो अपने जीवन में वापस आ सकता है, पुनर्वास किया जा सकता है, उसकी चुनौतियां क्या है। पहले चुनौतियों बताएं आप, उसके बाद फिर हम आगे बात कर पाएंगे। जी नीरज जी, स्वागत है।
1: जी शरद जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कृष्णा बेन हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम है रेडियो मधुबन का, इसमें हमें आमंत्रित करने के लिए और इतना बड़ा मंच देने के लिए, ताकि मैं आम जनमानस के साथ जुड़ सकूं, सामान्य मानविकी के साथ जुड़ सकूं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और CRC की स्थापना ही समाज को संबल देने के लिए किया गया है, विशेष तौर पर दिव्यांगजनों और विशिष्ट जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं हमारे समाज के, उनके लिए। लेकिन आज का जो विषय है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि हम बेजुबान लोगों, जिनको बेजुबान बोलते हैं, श्रवण बाधित बोलते हैं, उनके पास अपनी स्पीच नहीं है, और इसकी वजह से कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि वो समाज में अपनी बातों को पूरी तरह रख नहीं पाते। शुरुआती दौर जब देखेंगे तो जब 0 to 6 months की जो कंडीशन होती है, उसमें बच्चा शुरुआती दौर में भाषा का अलग अलग रूप जो है वो उसको अख्तियार करता है, सामान्य संप्रेषण के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए। और मैं इसमें एक चीज और जोर देना चाहूंगा कि खास करके माँ जो है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा विकास के लिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, आप देखिए दो चीजें

स्मेल से, ऑल्फैक्टरी सेंस, गैस्ट्रेटरी सेंस और बाकी जो हमारे काइनेस्थेटिक सेंस है, प्रोप्रायसेप्टिव सेंस है, ये जो अलग अलग इंद्रियां हैं, वो चाहे संतुलन इंद्रिय की बात करें या सूंघने की क्षमता

की बात करें, या आपको एक जानकारी मैं दूं, आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चा होता है छोटा, वो अपनी माँ को शुरुआती दौर में गंध से पहचानता है। जब जन्म लेता है तो वो उसके देखने की क्षमता भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, थोड़ा विजन उसका शुरुआती दौर में हफ्ते 10 दिन तक उसका ब्लर होता है, और उसकी वजह से वो गंध से और टच से माँ को पहचानता है। और यही कारण है कि जब बच्चा रोता है, रोना उसका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। किसी भी चीज की जरूरत उसको पड़ती है तो वो रोता है, रोने के अलावा उसको दूसरी कोई भाषा आती नहीं। लेकिन मैं इस चीज में सल्यूट करना चाहूंगा उन करोड़ों माताओं को जो उस रोने के पैटर्न से पता कर लेते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। पिता को नहीं पता चल पाता, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा समय देती है। इसलिए माँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी धरती पे अगर कोई दूसरा देवता है तो वो माँ है। इसलिए उनका उनसे बड़ा कोई नहीं, उसने जन्म दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में जब बच्चा रोता है, कभी आप उस चीज को थोड़ा महसूस कीजिए कि कभी तो बच्चे का डायपर गीला हो गया, उसके लिए रोता है। कभी तो उसको डर लग गया है, घबरा गया है किसी चीज से, उसकी वजह से रोता है। कभी उसको भूख लगी है, इसकी वजह से रोता है। कभी उसको बाहर से गांव में घूमने के लिए जाना है, घर से बाहर निकलना है, इसके लिए रोता है। या कभी उसको अलग अलग तरह की जरूरतें हैं, माँ के साथ समय गुजारना चाहता है, इसलिए रोता है। सो रोना को एक प्राइमरी नीड, प्राइमरी कम्युनिकेशन के तौर पे लिया जा सकता है कि बच्चे को कुछ भी आवश्यकता होगी तो वो रोएगा। और रोने के पैटर्न से माँ को पता चल जाता है कि वो किस चीज के लिए रो रहा है। वो उसके पापा के साथ बाहर घूमने जाने का टाइम हो गया, या उसको डायपर चेंज करना है, या ऐसी जो भी जरूरतें हैं। सो पहली चीज तो ये हुआ कि जो भाषिक संप्रेषण होता है, जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, उससे पहले भी संप्रेषण होता है, उससे पहले भी वो अपनी चीजों की अभिव्यक्ति कर पाता है लोगों के सामने, और लोगों को समझ भी पाता है। जैसे ही माँ उसके पास आती है, उसको आलिंगन करती है, गोद में लेकर के पुचकारती है, तो उसके बाद जैसे ही टच मिलता है, स्मेल मिलता है, उसको समझ में आ जाता है मेरी माँ। उसके बाद वो धीरे धीरे चीजों को और पहचानना शुरू होता है। आप देखिए, बच्चा जब 1-1.5 साल के आसपास का रहता है, या उससे थोड़ा छोटा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोगों को पहचानने के लिए उनके चेहरे से नहीं पहचानता, उनके कपड़े से नहीं पहचानता, पर उनको मतलब उसकी पहचान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे, जितना लोग शर्ट पैंट पहनने वाला है, धोती कुर्ता पहनने वाला है, ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन है। पायजामा शर्ट पहनने वाले हैं, उसको मूछे हैं उसकी, तो एक उसके दिमाग में जो एक संकल्पना बनती है कि अच्छा, मेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा, फीमेल मेंबर है तो ऐसा कपड़ा होगा। सो अपनी मम्मा से और अपने पापा से, वो दोनों के कपड़ों, पोशाक, रहन सहन, उन सब चीजों को देख करके ऑब्जर्व करता है, और जितने मेल मेंबर होते हैं सबको पापा बोलना शुरू करता है। 1-8 महीने 10 महीने का बच्चा जो है सबको पापा बोलता है, महिलाएं अगर है तो सबको मामा बोलता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट है वो अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है, और उसकी वजह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद वो धीरे धीरे फिर कॉन्सेप्ट अलग अलग जो भी होंगे, उसके विजुअल कॉन्सेप्ट है, या काइनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, सेंसिटाइजेशन उसकी जो हो रही है, सो सेंसरी नीड्स है, ये सब अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है। और हर एक कॉन्सेप्ट के डेवलप होने के लिए एक पर्टिकुलर विंडो है, वो विंडो पर्टिकुलर एक एज के बाद खुलता है। हम 6 महीने के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको तैरना आएगा पानी में, लेकिन वो तैरने की आप सिखाना जब शुरू करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपका ज्यादा रिग्रस एक्सरसाइज कराए तो 6 महीना पहले आ जाएगा, 2 महीना पहले आ जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहुत छोटा सा बच्चा एकदम बड़े बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू करे। समाज में उसको बातचीत करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है जो डेफ पर्सन होते हैं। मैं यहाँ पे 2 भाग में बांटना चाहूंगा। डेफ पर्सन जितने भी हैं उनके लिए, एक तो होते हैं जो कंप्लीटली डेफ होते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग। टर्मिनोलॉजी की भाषा अगर बात करूं तो 60 डेसिबल्स का अगर लॉस है और 70 डेसिबल तक का सुनने की आवाज, सुनने की जो क्षमता उनकी आती है प्योरटोन एवरेज निकालने पे, तो ऐसी परिस्थिति में, या सामान्य बात करूं तो जो सामान्य बातचीत की आवृत्तियों को सुन पाता है उसको तो बोलेंगे नॉर्मल। सामान्य आवृत्ति से थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि कोई अगर बुजुर्ग लोग घर में है तो थोड़ा तेज लाउड साउंड में इनसे बात कीजिए तो सुन पाते हैं, अदरवाइज नहीं सुन पाते। तो ऐसी परिस्थिति में उसको डेफ के कहने के बजाय हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, ऊंचा सुनने वाले। और तीसरी जो कंडीशन है, 70 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज उनको सुनाई पड़ रही है, माने लाउड साउंड देने पे भी नहीं सुनाई पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको डेफ की श्रेणी में रखें। तो ये 3 श्रेणी हुए नॉर्मल।

0: हियरिंग सेंसिटिविटी, दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग और तीसरा डेप्थ। और क्राइटेरिया जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें तो 60 से 70 डेसिबल तक के हार्ड ऑफ हियरिंग का केस, और 70 डेसिबल से ज्यादा अगर होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में वो डेफनेस की कंडीशन में उनको रख सकते हैं। फिर उसका भी और क्लासिफिकेशन है, बहुत बहुत ज्यादा डीप में आज नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सामान्य जनमानस के लिए है, तो टेक्निकल भाषा से बचना चाहता हूँ। ये है जी सर।
1: जी, बिल्कुल। आपने न केवल डेफ व्यक्तियों के और उनके चिन्हीकरण कैसे किया जा सकता है, उनकी समस्याओं के को के आधार पे, उनकी समस्या उनकी चुनौती या उसकी उसकी सुनने की क्षमता के आधार पे आपने उसकी परिभाषा तय करी। निश्चित रूप से आपने जो बात शुरू की है, हमने चूंकि ये बात की कि हम उन लोगों की बात करेंगे जो श्रवण बाधित हैं, तो उनका पुनर्वास भी आवश्यक है और पुनर्वास को लेकर भी हमें बात करनी है। नीरज जी, आप इसके पुनर्वास को लेकर एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है और हम एक डेफ व्यक्ति को जन्म से ही अर्ली इंटरवेंशन करके कैसे सामान्य मुख्य धारा में ला सकते हैं। जी नीरज जी।
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डेफ पर्सन है, शुरुआती दौर में सर अपने समाज में इतना अवेयरनेस नहीं था। जब बहुत पहले की बात करें, 19th सेंचुरी की बात अगर करते हैं, तो उस समय में डेफ पर्सन को और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को, दोनों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही थी, एक साथ एक समझा जाता था, कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं हैं कि डेफ पर्सन शादी नहीं कर सकता, डेफ पर्सन सोसाइटी के साथ एसिमिलेट नहीं हो सकता, डेफ पर्सन पढ़ करके क्या कलेक्टर बन जाएगा। ये जो
1: जी
0: चीजें लोगों के मन में विचार आता है, ब्लाइंड पर्सन के लिए भी आता है, डेफ के लिए भी आता है,
1: जी
0: और उनको समाज से आइसोलेट कर दो। तो
1: जी
0: सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा शरद सर, कि सबसे पहली चीज है फैमिली का एक्सेप्टेंस।
1: जी
0: और मैं चर्चा कर रहा था कि बच्चे का जब जन्म होने के लिए होता है तो परिवार में कितनी खुशियां होती है, लोग कितना उम्मीद से एक एक एक दिन गुजारता है। जो 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर्स है, पहला ट्राइमेस्टर, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, 9 महीने का जो टाइम है, और
1: जी
0: हर
1: जी
0: आदमी प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। और उसके बाद जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद जब शुरुआती दौर में कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे का जन्म जो हुआ वो प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो गई, जन्म लेने में ज्यादा समय लगा, या बच्चे के गले में कोई ऐसा एम्बिकल कॉर्ड फंस गया, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बच्चे का कोई एस्फिक्सिया की कंडीशन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। माता को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से दिक्कत हुई, वैक्सीनेशन, माँ जो है उसको अलग अलग तरह का कोई हेपेटाइटिस का टीका नहीं लग पाया टाइम पे, या बीपी का प्रॉब्लम है उसका, शुगर का प्रॉब्लम है उसका, इन सब चीजों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और इस कंडीशन में जब बच्चे का जन्म हो गया, अब डॉक्टर ने देख करके उनको बताया, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बात है कि डेफ बच्चे की पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि ये बच्चे में नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी होगी या डेफ होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि स्क्रीनिंग का ऐसी कोई व्यवस्था अभी हमारे सारे PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे नहीं है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि साउथ में इस पर ज्यादा थोड़ा फोकस है। तो एक एक टेस्ट किया जाता है जन्म के टाइम में, जिसको बोलते हैं अपगार स्कोर निकाल। अपगार स्कोर में बहुत सारी चीजों के बारे में देखा जाता है, जैसे उसका अपियरेंस क्या है, या उसका जो पल्स रेट है वो कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, इन सब, हार्ट बीट कैसा है, इन सब चीजों के आधार पर पता किया जाता है कि बच्चे में डिफॉर्मिटी आगे आएगी कि नहीं, या डेवलपमेंटल इश्यूज आएगा कि नहीं। एक छोटा सा टेस्ट और है जिससे पता किया जा सकता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि अपगार स्कोर में गड़बड़ हो रहा है, स्कोर बराबर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एक टेस्ट होता है, ऑटो एक्वास्टिक इमिशन टेस्ट, और वो CRC में उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से हम लोग शुरुआती दौर में ही बच्चा का हियरिंग सेंसिटिविटी पास है कि फेल है ये पता चल जाता है, ताकि उसकी अगर कोई ऐसा कोई इशू आने वाला हो तो फिर स्पेशल उसके लिए इंटरवेंशन प्रोसेस शुरू कर सके। घर में अगर बच्चा 2 महीना 3 महीना का हो गया, 4 महीने का हो गया, उसके बाद 4 से 6 महीने होते होते बच्चा बाबा बाबा दादा दादा करना शुरू करता है। अब वहां पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि क्या उनका बच्चा 6 महीने का हो जाने के बाद, 7 महीने का हो जाने के बाद शुरू किया बाबा बाबा, बैबलिंग स्टेज उसको टेक्निकली बोलते हैं, वो कंटिन्यूस आवाज निकलता रहता है, बा बा बा बा बा दा दा दा, इस तरीके का। तो अगर ये स्टेज नहीं आया तो बच्चे के पेरेंट्स के कान खड़क जाने चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू है। बच्चा 4 महीने के बजाय 6 महीने में ऐसा कर सकता है, 8 महीने में कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब सिग्निफिकेंट डिले है, तो फिर तुरंत हमको ऑडियोलॉजिस्ट के पास या जो ENT डॉक्टर्स हैं उनके पास मिलना चाहिए, या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो नजदीक का हो, CRC हो, DDRC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या RBS के स्कीम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहां जाकर के उसकी टेस्टिंग कर सकते। सो ये सब अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से बच्चे को शुरुआती दौर में सहायता मिल सकती है और उसका स्क्रीनिंग संभव हो सकता है। ये भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं ये निःशुल्क है BPL कैटेगरी के लिए, छोटे जो बच्चे हैं BPL कैटेगरी का उनके लिए। अदरवाइज कहीं कहीं 10-20-50 रुपए का एक नॉर्मल चार्ज होता है। जिस टेस्ट को आप बाहर कराने के लिए जाते हैं 2000 रुपए चार्ज लगता है, वो उस टेस्ट के लिए CRC में, DDRC में या नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी आपके पास है वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ये सारे टेस्टिंग अवेलेबल। एक तो ये बात है, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में आगे लेकर के चलो शरद सर, चूंकि टाइम हमारा काफी कुछ हो चुका है और समय पे खत्म भी इसको करना है। तो बहुत बहुत ब्रीफ में और आम आदमी की भाषा में कोशिश करूंगा कि इसको मैं समझाऊं। सो इसमें अगर हम देखेंगे, दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन मानव एक ऐसा प्रजाति है जिसको ईश्वर ने एक खुशनसीबी दी है कि वो संप्रेषण कर सकता है, सामान्य मानविकी के बीच में संप्रेषण कर सकता है, अपनी जरूरतों को बता सकता है, और उसकी भाषा एक निश्चित है। संप्रेषण तो सभी कर लेते हैं, आप देखेंगे कि तो जानवर भी जो है वो आपस में बात तो करते हैं। जैसे शाम के टाइम होते होते सियार जो है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। किसी चीज को हो जाने पे कुत्ता अगर भौं-भौं करता है तो आसपास के सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब संप्रेषण तो हुआ, लेकिन लिंग्विस्टिक संप्रेषण नहीं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारा ये जो लिटरेसी स्किल की बात करते हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, एरिथमेटिक स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इसकी बात जब करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो एक तो होता है मानव संप्रेषण और एक होता है एनिमल संप्रेषण, जिसको जंतु संप्रेषण बोल सकते हैं। कि व्यक्ति व्यक्ति से जब बात करता है तो वो हो सकता है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो सकता है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो। मैंने छोटा बच्चा जब भाषा का विकास नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश या जो भी उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें अगर उसका विकास नहीं होता, तब भी वो अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने आसपास के लोगों से बात तो कर पाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा रोता है, लेकिन रोने के स्टेज से जब आगे बच्चा बढ़ जाता है और उसको जरूरत पड़ती है, भूख लगी, तो वो जाकर के सिंबॉलिक कम्युनिकेशन करता है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, कोई सिंबल लेकर, जैसे उसको भूख, हम लोग जो सबसे ज्यादा संप्रेषण करने के लिए माध्यम का चयन करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरल मोड। अब इसको एक चीज और ध्यान देना है जिसमें हम लोग बोलते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में ओरल क्यों आया, ओरल क्यों नहीं, इस पर भी सवाल उठता है। क्योंकि ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद ईयर और ओरल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद माउथ, ओरल से रिलेटेड है माउथ, मतलब सुनना और बोलना, लिसनिंग और स्पीकिंग। सो इसलिए इसको रखा गया है ओरल को पहले, बिकॉज हम कुछ सुनते हैं, इनपुट पहले मिलता है, बाद में आउटपुट निकलता है। छोटा बच्चा जब 4-5 महीने कंटिन्यूअस भाषा के बाढ़ में रहता है, फ्लड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, कम्युनिटी में सब लोग उससे बात कर रहे हैं, अरे रे रे, मम्मा बोलती है उसे, अरे चुप चुप चुप, दूध पीना है क्या, बाहर चलना है क्या, अच्छा मालिश का टाइम हो गया, मालिश करना है क्या, तो ये करके उनसे बात करते हैं। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माँ इतनी अच्छी टीचर है कि वो सारी चीजों को, बच्चे को बेशक नहीं समझ में आता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ माँ उनसे बात करती है कि अगला 4-5 महीने 6 महीने के बाद हमारी भाषा को सीखेंगे और वो बैबलिंग स्टेज पे पहुंचेंगे, वो भाषा की समझ उनकी बढ़ेगी। सो ये है। दूसरा है विजुअल ग्राफिकल मोड में हम रीडिंग राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद विजुअल फेशियल मोड, जैसे हम किसी के हाव भाव को समझते हैं, चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा को समझते हैं। जैसे हमारा बॉस अगर गुस्सा है तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज उनके पास फाइल पुटअप करना है कि नहीं। ऐसा छोटा बच्चा जो है उनको माँ का चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि हम माँ के पास जा रहे हैं तो वहां पे डांट पड़ने वाली है, गाली मिलने वाली है, थप्पड़ पड़ने वाला है, या फिर वो खुश होकर के चॉकलेट देने वाली। सो ये सारी चीजें छोटे बच्चे में जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करता है संप्रेषण के। अब देखिए, कुछ लेना होता है अगर माँ से उसको या पापा से उसको, बच्चे को आप ऑब्जर्व कीजिए, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, अपनी चीजों को बतलाएंगे, थोड़ा प्यार दुलार करेंगे उनसे, और उनको ये उम्मीद होती है कि इन सब चीजों से रीज करके उनके माता उनके पिता उनको बाहर लेकर के जाएंगे घूमने खेलने के लिए देंगे और कुछ ना कुछ उसको रिवॉर्ड देंगे। सो हो सकता है वो चॉकलेट टॉफी हो सकता है उसको कोई किट खरीद करके दे दिया खेलने का, खिलौना दे दिया, जो भी उनकी परिस्थिति हुई या जो भी उनकी अच्छी चीजें हो जो उनको पसंद। इसके बाद एक विजुअल मैनुअल मोड है जिसके ऊपर हम लोग पिछली बार के सेशन में चर्चा किए थे, साइन लैंग्वेज के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, और हमको खुशी हो रही है शरद सर ये बताते हुए और कृष्णाबेन कि यहाँ पे साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने 2 साल का पर्टिकुलर एक कोर्स चलाया है RCI की मान्यता के साथ, भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता के साथ, और ये भाषा शिक्षक होंगे और पूरे देश में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी एक अलग अलग भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चिन्हित कर रही है। आसाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पे आसाम का जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि डेफ बच्चों के लिए अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो साइन लैंग्वेज तो होगा ही। साइन लैंग्वेज अगर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी वाले पर्सन अगर सीखना चाहते हैं तो 12वीं के बाद कोई भी एक ऑप्शनल भाषा के रूप में साइन लैंग्वेज को चुन सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी डिसेबल्ड पर्सन का, डेफ पर्सन का, और उसमें अगर उनको भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर तो हम कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बहुत जरूरी है हमारे। नेक्स्ट जो इसका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव, हम जब बात करते हैं आपसे तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा भी आ रही है, साथ में हम हाथ भी आपका मूवमेंट करते हैं, पूरे शरीर का मूवमेंट होते रहता है, पोस्चर जेस्चर वो हमारा बदलते रहता है। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल बोल रहे हैं तो बोलेंगे ही, चेहरे की एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। सो इसका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है सर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हमारा प्राइमरी मोड और सेकेंडरी मोड, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में 2 तरह के मोड हो सकते हैं सर। जैसे ओरल ओरल मोड जो है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि ये लिसनिंग स्पीकिंग का है, वो हमारा प्राइमरी मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। छोटा बच्चा लिखना पढ़ना नहीं चाहता, विजुअल ग्राफिकल स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं है, लेकिन सुनता है बोलता है, धीरे धीरे करके वो सुनने बोलने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बेस बनता है हमारा जो पर्पजफुल कम्युनिकेशन जो है, या जो हमारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है, या उसका प्रोफेशनल ग्रोथ है, लोगों के साथ एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना है, उन सब के लिए ये प्राइमरी मोड का काम करता है ओरल ओरल कम्युनिकेशन। जो विजुअल ग्राफिकल कम्युनिकेशन की बात हमने की, वो सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो उसको आगे चल करके मदद करेगा एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पज के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे में बच्चे ने सीख लिया या 1 घंटे का कोचिंग कर लिया और सीख लिया। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है E3। E3 का मतलब होता है एनवायरनमेंट, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। ये तीनों चीजें अगर नहीं होगी तो बच्चे में या व्यक्ति में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आज अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाऊं और 1 घंटे में बतलाता है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए, फर्राटेदार आप फ्रेंच बोलना सीखिए, ऐसा कहीं नहीं होता है शरद सर। कितना टाइम माँ देती है बच्चे के साथ, कम्युनिटी देता है बच्चे के साथ, तब वो बच्चा 6 महीना में बाबा बाबा करना सीखता है। लेकिन जब डेफ बच्चे की बात हम करते हैं तो उसका शुरुआती दौर में जो प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने किसी की आवाज ही नहीं सुनी, बिकॉज उसके कान से होकर के जो दिमाग तक आवाज जानी चाहिए और वहां डब्बा भरना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जो फाउंडेशन ही नहीं बना प्राइमरी लैंग्वेज का, तो रीडिंग राइटिंग डेवलप होगी कहां से। हम शुरुआत में माँ हमको ABCD सिखाई, क ख ग घ सिखाई, और उस क से फिर आगे जाकर के टीचर ने उस बेस पर सिखाया कि क से कबूतर होता है, क से कमल होता है, कब क से कमला है या ख से खरगोश है। तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है रीडिंग राइटिंग का, ये तो हमारा लिसनिंग स्पीकिंग डेवलप होगा तो ही होगा। डेफ बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है कि उसका प्राइमरी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं लैंग्वेज का, तो फाउंडेशन का ही लॉस है, और उसमें फिर साइन लैंग्वेज उसको मदद करता है। लेकिन साइन लैंग्वेज में भी सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर ऐसा बच्चा जिसके परिवार में कोई डेफ है तो वो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनहेरेंट कैपेसिटी के साथ वो सीख जाता है उनके कम्युनिटी में रह करके और एक्वायर कर लेता है उस लैंग्वेज को, जबकि हमको सेकेंडरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रीडिंग राइटिंग के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है। ये बेसिक चीजें हैं। अब उसमें ऑडिटरी स्किल की बात करें कि ऑडिटरी स्किल डेवलप कैसे होता है, और उसमें हम देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें ऑडिटरी स्किल डेवलप करने के लिए शुरुआती दौर में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब हम लोगों को भी ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन अनोइंगली मिली है। मामा ने कितनी कविताएं और लोरी सुनाई होगी सोने के टाइम में, कितने लोगों ने बात किया होगा, सो उससे ऑडिटरी इनपुट तो हमको मिलता रहा। बोलने का एक्सेंट कैसे हो सकता है, कैसे बात करेंगे, तो वो जो तरीका हमने समाज से अनोइंगली सीख लिया तो हमको कम मेहनत करनी पड़ी। लेकिन डेफ पर्सन चूंकि सीख ही नहीं रहा है तो उनके लिए फिर असिस्टिव डिवाइसेज की जरूरत पड़ेगी, ऑडिटरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, स्पीच ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये पेरेंट्स नहीं कर पाते तो उनको आसपास का रिहैबिलिटेशन सेंटर से जाकर के जोड़ करके और किसी न किसी तरीके से उनको तरीका समझाना है। करेंगे तो पेरेंट्स ही, क्योंकि एक घंटा हमारे पास बच्चा आएगा, हम उसमें कोई ऐसा जादू की छड़ी किसी रिहैब प्रोफेशनल के पास नहीं है कि वो एक घंटे में लैंग्वेज डेवलप कर ले। लेकिन क्या करना है घर पे जाके, यहाँ हम क्या करा रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन, पेरेंटल ट्रेनिंग, सिबलिंग्स का ट्रेनिंग, कम्युनिटी का अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजों के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। जैसे आज हम अलग तरह के हियरिंग इम्प्रूवमेंट के बच्चे के लिए सुनने की जो मशीन आती है हियरिंग एड, हम वो एडिट स्कीम में फ्री दे रहे हैं। हम पूरे देश में 500 बच्चों का हर साल कॉकलियर इम्प्लांट करती है सरकार, और एक कॉकलियर इम्प्लांट के ऊपर अप्रोक्सीमेट 7 लाख आसपास का खर्च कर रही है। और हियरिंग सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि कॉकलियर इम्प्लांट अगर किसी ने कराया 7 लाख का, उसमें उनका स्पीच थेरेपी का ऑडिटरी ट्रेनिंग का वो सारा पैकेज फिक्स होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये कर नहीं पा रहे हैं या फिर हमारे स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि हियरिंग और लिसनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। जस्ट एक लाइन इस पर लेना चाहूंगा, अगर आप पर्पसिव लिसनिंग करते हैं, माने किसी चीज के ऊपर अगर फोकस करते हैं, तो वो लिसनिंग है। जैसे शरद सर यहां से बैठ करके मगअप कर रहे, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं होता क्या है ये सारा का सारा, ये जो पंडा क्या है, तो ये आपका पूरा ध्यान इधर है, आप मनसा वाचा कर्मणा, ये जो तीनों चीज कहते हैं उससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप केवल हियरिंग नहीं कर रहे, आप लिसनिंग कर रहे। हियरिंग का जो प्रोसेस है वो तो केवल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारा शरीर, कान तो हमेशा खुला हुआ है, तो उस परिस्थिति में कान में आवाज आई, हमने सुन ली, लेकिन उसको ब्रेन तक पहुंच भी गया और उसको हम भी उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे कई बार ऐसा होता है, आधे बच्चे अटेंटिव है, आधे बच्चे में सुनने के प्रति रुचि नहीं। सो जब रुचि नहीं हुई तो केवल हियरिंग हुआ, लिसनिंग नहीं हुआ, ये चीजें हैं। दूसरी कंडीशन है कि अलग अलग स्टेज पे हम इसमें दिखाने की कोशिश किए हैं प्रेजेंटेशन में कि किस लेवल पे रहेगा बच्चा तो क्या उसको कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप होता है। जैसे छोटा बच्चा है, ऑडिटरी अवेयरनेस की बात हम करते हैं, सबसे पहले क्राइंग स्टेज जिसकी बात हमने करी, और वो क्राइंग स्टेज के बाद कुइंग स्टेज आता है, स्माइलिंग का स्टेज आता है। बच्चा 3 महीने 4 महीने का हो गया, 2 महीने के बाद से ही वो समझना शुरू कर देता है दूसरे लोगों के स्माइल को समझना, और स्माइल अगर आप करते हैं उसके साथ तो वो भी आपको स्माइल करके रिप्लाई करता है। आप अगर उसको कुछ बोलते हैं, सुनता है, तो उस पर आपको रिएक्ट करता है, लोकलाइज करता है, आवाज किधर से आ रही है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करना मतलब पापा की आवाज, मम्मा की आवाज अलग है, मेल की आवाज, फीमेल की आवाज अलग है, कुत्ते की आवाज, बिल्ली की आवाज अलग है, मोबाइल की घंटी और डोरबेल की घंटी, इसकी आवाज अलग है। सो उसके आधार पे वो खुश होगा तो हंसेगा, अगर उसको आवाज पसंद नहीं आएगी तो वो रोएगा। सो ये डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है अलग अलग साउंड स्टिमुलस के। इसके अलावा हमारा वोकलाइजेशन है, हमने बोला बैबलिंग स्टेज, उसके अलावा जार्गोन्स आते हैं, और साल भर होते होते उसमें फर्स्ट वर्ड डेवलप हो जाता है। कहते हैं कोई बच्चा अगर 1 साल का हो गया तो फर्स्ट वर्ड, 1 वर्ड का वो सेंटेंस शुरू करता है, 1 वर्ड सेंटेंस। मम्मा को जाकर बोलेगा भूभू, और मम्मा समझ जाती है कि उसको दूध पीना है, वो दूधू बोलेगा, भूभू बोलेगा, या कुछ भी बोलना है तो एक शब्द बोला और वही पूरा एक सेंटेंस के रूप में मान करके मम्मा उसको समझ करके और रिएक्ट करती है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, और मैं आगे चलना चाहूंगा कि हमारा रीडिंग स्किल की बात जब हम करते हैं, सामान्यतः लोग समझते हैं कि रीडिंग स्किल का मतलब तो हुआ पढ़ने से संबंधित, लेकिन हम पढ़ तो कई बार अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजीज को ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो किसी तरह उसको सीख करके, किसी तरह छोटी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी पढ़ना एक विजुअल एक्टिविटी है, लेकिन अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन भी उनको है क्या? हम कई बार अखबार पढ़ते हैं, छोटे बच्चे अखबार पढ़ते हैं, और उनको अखबार पढ़ना तो आ गया लेकिन उसका मतलब नहीं समझते।

करके रीड कर सकते हैं। जैसे कोई एक किसान है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बगल में कुदाल रखा हुआ है, तो कोई लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ में आ सकता है। उसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो, कि ये निहायत गरीब आदमी होगा, आधा फटी हुई धोती पहना है, ऊपर कोई कपड़ा है नहीं, ये मजदूर वर्ग है। दूसरी कंडीशन, बहुत मेहनत करके और पेड़ के नीचे छाव में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। पेड़ के नीचे छाव में बैठा है मतलब गर्मी का दिन होगा, बाहर धूप निकली हुई होगी, तो ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ये कैसे होगा, ये हमारा इन्फर करते हैं, इन्फेरेंशियल लैंग्वेज जो हमारे पास अपने इस डब्बे में भरा हुआ है, इस कंप्यूटर में जो भरा हुआ है, उसके आधार पे इन्फर करके, उसके आधार पे अनुमान लगा करके और इन्फेरेंशियल लैंग्वेज हम लोग डेवलप कर पाते हैं उस बच्चे में या व्यक्ति में या हम लोग खुद भी। ऐसी परिस्थिति में अब हम देखते हैं कि ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं रीडिंग के, जरूरतें क्या होती है रीडिंग, किसी में डेवलप होना है, लिटरेसी स्किल की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, तो खास करके जब लिटरेसी स्किल में रीडिंग की बात करते हैं तो वो कैसे डेवलप होता है और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो छोटा बच्चा हमारे पास आया है, तो क्या वो जो फाइनाइट सिंबल्स हैं लैंग्वेज के, जो सिंबल्स हैं, हम जैसे क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, या ए बी सी लिखते हैं, इसमें अलग अलग जो कंडीशंस हैं, अलग अलग जो सिंबल्स बनाते हैं, ए लिखने का तरीका अलग, बी लिखने का तरीका अलग, तो क्या इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, इसको पहचान पाता है। दूसरी चीज उसमें ये है कि क्या वो प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या सिंबल्स जो अलग अलग बने हुए हैं, क ख गा, क्या उसको प्रोनंसिएशन कर सकता है, क्या पढ़ सकता है, क्या आर्टिकुलेट कर सकता है, क्या। तीसरी चीज है कि क्या वो उसको विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या जो शब्द लिखे हुए हैं या अक्षर लिखे हुए हैं, क्या उसमें विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या उसको। अगर ये स्किल उसके अंदर नहीं है तो वो मीनिंगफुल वर्ड को पहचान नहीं पाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा और शब्दों को नहीं पहचान पाएगा, तो वो एक साथ जोड़ करके पढ़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक व्यक्ति है जो व्यवसायी था और उसने एक बोर्ड बनाने के लिए दिया और बोर्ड पे लिखवाया रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा। अब वो बोर्ड पर लिखने वाला जो होता है वो इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो उसने क्या किया, दुकान बंद रखा जाएगा में बंद में और रखा में रखा का र जो है वो बंद के साथ जोड़ और खा अलग लिख दिया। अब दिक्कत क्या हो गई, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाएगा। छोटी सी चेंज हुई है, केवल एक अक्षर उस शब्द से हट करके दूसरे शब्द में जुड़ गया और रविवार को दुकान बंद रखा जाएगा के जगह पे पूरा अर्थ ही उसका बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, रविवार को दुकान बंदर खा जाए, तो उसका पूरा जो बना हुआ बोर्ड था वो बेकार हो गया उसका। सो भाषा की महिमा बहुत अजीब है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है और कई बार हम भाषा को सुपरफेशियल तौर पे समझते हैं, हम उसके इनडेप्थ में जाकर के हम उसको अगर समझते हैं तो फिर व्यक्ति एडवांस लेवल पे उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है, अलग अलग चीजों को गहराई से लिखता है, टीकाकार भाष्य लिखना, उपनिषद का भाष्य लिखना, उसके ऊपर टीका लिखना, ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो बहुत एडवांस लेवल का आदमी हो गया। फिर उनके पास अद्भुत शब्द संकलन है, शब्दों को समझने की क्षमता है, ये सारी चीजें होती है। दूसरा और चीजें है कि क्या वो दो शब्दों के बीच में एम्प्टी स्पेस को समझता है, क्या वो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना सीखता है, क्या वो बाएं से दाएं की तरफ जैसा सामान्यतः भाषा में सीखते हैं पढ़ने के लिए, क्या वो कर सकता है क्या, या अगर नहीं कर, कुछ भाषाओं में दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हैं जैसे उर्दू में, उसमें उल्टा पढ़ना पड़ता है, तो क्या इतना उसको नॉलेज है और इतना स्किल डेवलप है। जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो समझ पाते हैं क्या, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का, छोटा बच्चा है उसको हम पढ़ा रहे हैं, अब एक मिलाना शब्द है या काटना शब्द है, काटना शब्द का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे समझना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से बतलाना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, कि उसमें देखिए कोई छोटा बच्चा है, जब हम उसको सिखाते हैं तो किसी शब्द को ऐसे शब्द का संकलन हम करते हैं या चयन करते हैं जिसको हम टेंजिबल रूप में सामने दिखा सके, टेंजिबल रूप में माने वस्तु के रूप में सामने हाथ में दिखा सके, जिसको वो महसूस कर सके। जैसे काटना शब्द है तो पेपर काटना, कपड़ा काटना या कोई लकड़ी काटना, ये काटना समझाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बेस पर आगे चल करके उसको ये भी समझाना जरूरी है, जब 8वीं 10वीं 9वीं में पहुंच जाएगा वो बच्चा तो उसी डेफ बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि सजा काटना भी होता है, ततैया का काटना भी होता है, दांत काटना भी होता है, और ये चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है तो कई बार समझ में नहीं आता। बात काटना,
अब ये बात काटना कुछ कैची से काटने जैसी चीज तो है नहीं, तो ये लेवल जो है वो बच्चे में बाद में आता है।

0: दूसरी चीज है, हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये प्रॉब्लम्स कहाँ करते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन में, सेंटेंस के कॉम्प्रिहेंशन में इनको दिक्कत होती है, तो आइसोलेटेड वर्ड के रूप में उसको पढ़ता है बजाय कंप्लीट एक सेंटेंस के रूप में समझने। दूसरी कंडीशन है कि जो लैंग्वेज का फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसका समझने में इनको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है। संख्याओं के बारे में समझना, मात्राओं के बारे में समझना, अलग अलग मात्रा जैसे आधा किलो, पौना किलो, ये बताया तो क्या उसको समझ पाता है वो, ये चीज है। दूसरी चीज कि जो वर्ड है उसको आइसोलेशन में पढ़ने के बजाय क्या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ करके पूरे सेंटेंस को पढ़ पा रहा है, वो एक इशू उसमें आती है डेफ बच्चों को। और इसके बाद अब ये कंडीशन आती है राइटिंग की। मैं थोड़ा सा समय का भी ध्यान रख रहा हूँ ताकि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो समय पे खत्म हो सके। सो राइटिंग में भी इसी तरह की समस्या आती है, और वो जो अपने डिजायर को, अपने विल्स को, अपने जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, थॉट्स है, उन सब चीजों को प्रशस्त करने का, दूसरे के सामने रखने का ये एक माध्यम है। अपने अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी जो है उसको व्यक्त करने का माध्यम है राइटिंग। और इसमें बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो सामान्यतः जब डेफ बच्चों को लिखने के लिए आप देंगे कि आप अपने बारे में 10 लाइन लिखो, तो आप देखिएगा बहुत सिंपलर शब्द जो है वो यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेज यूज करेंगे, शॉर्ट सेंटेंसेज यूज करेंगे, और ऐसी कंडीशन में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेज में। So, जैसे लिखते हैं कि राम ने खाना खा लिया, राम चला गया, राम अब पढ़ने के लिए जाएगा, राम खेलने के लिए जाएगा। सो राम के जगह पे वह वर्ड जो है, प्रोनाउन जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता। मैक्सिमम नाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का नहीं। ये उसको एडवर्ब समझने में, वर्ब समझने में, ये सब में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कितने तरह के रीडिंग हो सकते हैं। हम जब रीडिंग की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, सो इसमें पर्पजिव रीडिंग हो सकते हैं कि किसी पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमको आनंदित होना है इसलिए हम चुटकुला की किताब पढ़ रहे हैं, हमको आनंदित होना है इसलिए कोई मजा आता है तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मजा आता है तो किसी को बाइबल पढ़ने में मजा आता है। हो सकता है कि उसको अखबार पढ़ने की लत लग गई हो सकता है कि कोई कहानी पढ़ने की लत लग गई हो। हमारा पर्पस क्या है रीडिंग का? दूसरी चीज है कि हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं जनरली, उनको पहले नन्ही दुनिया की किताब आती थी शरद सर, अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वो फनी लैंग्वेज में बना हुआ रहता था, चेहरे उसके कार्टून के बने हुए होते थे, तो इन सब चीजों से बच्चे को सीखने में थोड़ा मजा आता है। और आप टॉम एंड जेरी देखे हैं, उसके जो लैंग्वेज है बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिए सीरियल जब भी देखने के लिए करेंगे, मोटू पतलू, बच्चा उसको पसंद करता है, क्यों? उसका भाषा उसकी जो है वो फनी है और वो उसके लेवल की भाषा है और उसको मजा आता है। वो चूहा बिल्ली भाग रहे हैं, मजा आता है उसको, और दूसरे जो अलग अलग तरह के कार्टून्स हैं उसको देख करके। सो ये अलग अलग टाइप के रीडिंग हो सकते हैं। स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या है हमारा? लाउड हम रीडिंग कर रहे हैं या मन ही मन पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। हमारा असिस्टेंस क्या जरूरत पड़ रही है? बच्चा पढ़ता है, कहते हैं उसको, हम लोगों का इमला पढ़ने के लिए कहता था कि जब क्लासरूम में खड़े हो गए, बारी बारी से टीचर देते थे कहानी को पढ़ो और बीच में रोक देते थे, पूछते थे वो कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, तुम उंगली रखो उसके ऊपर और बताओ। और प्रायः उसमें बड़ी मार पड़ती थी, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरे लोग बोर होते थे और वो ध्यान ही नहीं देता था। तो ये डेफ बच्चों के साथ समस्या आती है, और उसमें जो लैंग्वेज का असिस्टेंस लेवल है वो कई बार हो सकता है कि बीच बीच में आपको एक आध शब्द पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है तो आपने थोड़ा प्रमोट कर दिया, हो सकता है कि पूरा ही पढ़ करके आपने सुनाया और उसको इमिटेट कर रहा है वो, ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्टाइल्स के ऊपर, अब राइटिंग के ऊपर आएंगे कि कॉपिंग क्या होता है। राइटिंग जो होता है उसमें तीन तरह की राइटिंग हो सकती है, एक तो कॉपिंग हो सकती है, दूसरा गाइडेड राइटिंग हो सकती है, और तीसरा इंडिपेंडेंट राइटिंग हो सकती है। ये लेबल है। जब छोटे क्लासेज में बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे भी और डेफ बच्चे भी, तो हम क्या करते हैं, एक शब्द लिख दिए उसका बोलते हैं नीचे कॉपी करो, या एक लाइन लिख दिए और उसको बोलते हैं कि इसको देख करके लिखो। सो बेसिकली इसमें हम कॉपिंग का कर रहे हैं, और इसमें उसको दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, केवल देखना है और उसका जो शब्द का या जो उसका सिंबल है उसको देख करके एज इट इज उतारना होता है, देखना देख करके लिखना होता है। दूसरा उससे एडवांस लेवल पे आया तो गाइडेड राइटिंग होती है कि हम उसको बोलते हैं 10 शब्दों में लिखिए या 10 वाक्यों में लिखिए या निबंध लिखिए, डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। या हम उनको लिखते हैं खाली स्थानों को भरो, तो ऐसी कंडीशन में रीडिंग डेवलपमेंट और राइटिंग डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो रहा है, बिकॉज वहां कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है और एक्सप्रेशन भी हो रहा है। इंडिपेंडेंट राइटिंग की बात हम करते हैं कि बड़ा बच्चा हो गया अब अपने से लिख सकता है, जैसे शरद सर ने कई सारी किताबें लिखी है, तो वो उनका इंडिपेंडेंट राइटिंग है कि कोई अगर व्यक्ति एडवांस लेवल पे पहुंच गया तो इंडिपेंडेंट राइटिंग कैसे कर सकता है। सो ये एक हमारा प्रेजेंटेशन था डेफ बच्चों में लिटरेसी स्किल, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, और अब हम शरद सर के पास चलना चाहेंगे अगर इसके बारे में कुछ और चर्चा करनी है। शरद सर
1: जी, मैं सुन पा रहा हूँ और बिल्कुल जी। तो जी, आपने लगभग पूरा अपने पुनर्वास की संकल्पना और उसके उसके पूरे दर्शन के बारे में आपने विस्तार से बताया, और इनफैक्ट पुनर्वास के लिए जो सुविधाएं अवेलेबल है वो भी अच्छा बताई। क्या ऐसा कोई की बात है जो आप इस इंटरव्यू में कहना चाहते हैं और मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ, और खास तौर पे कि एक सामान्य डेफ व्यक्ति आप तक कैसे पहुंच सकता है? और भारत सरकार ने आईआरसीटीसी की भी स्थापना की और सीआरसी की भी स्थापना की कई राज्यों में, तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास में कार्य कर रहे व्यक्तियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार से डेफ इंडियन साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में है, कृपया इस बारे में।
0: जी शरद सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को ये बतलाना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये उनका एक सामाजिक दायित्व है कि अपने आसपास में अगर कोई डेफ पर्सन हो, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो या सीनियर सिटीजन हो, उनको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़े। हमारा ये अवेयरनेस कार्यक्रम जो चल रहा है मन की आंखों से, उसका भी पर्पस वही है कि आम सामान्य मानविकी तक सरकार की योजनाओं और बाकी चीजों को, लाभकारी चीजों को, कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाए। मैं उनके साथ सीआरसी का नंबर शेयर करना चाहूंगा अगर कभी कुछ जरूरत पड़ती है कंसल्टेंसी की या यहाँ से कोई उपकरण लेने की, तो उनके लिए मैं बतलाना चाहूंगा कि आप 0141-268-2075, मैं रिपीट करना चाहूंगा 0141-268-2075, इस नंबर पर संपर्क करके सीआरसी से कभी भी सेवाओं के बारे में जानकारी, सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खास करके अगर डेफ पर्सन की बात करें तो कहीं भी अगर डेफ पर्सन को स्कूल में एडमिशन में दिक्कत आ रही है, हम उनकी स्थानीय गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, स्थानीय स्वशासन के साथ मिलकर के उनकी मदद करेंगे ताकि उनको पढ़ाई में व्यवधान न हो। अगर उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की दिक्कत हो रही है तो समग्र शिक्षा का अभियान हर एक विद्यालय को कवर करता है आज के डेट में, सो उसके लिए वो अपने स्थानीय डीईओ से संपर्क कर सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको टीचर मिल सके। अगर उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ हियरिंग एड उसके पास नहीं है, तो उसके लिए 3 कागज लेकर के सीआरसी से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास के जो पीएमडीके है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, भारत सरकार की बहुमुखी योजना है ये और फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके माध्यम से किसी भी तरह का उपकरण किसी भी दिव्यांग जन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है, जैसे दिव्यांग जन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID वो रहना चाहिए 40% या उससे ज्यादा का, तो ऐसी कंडीशन में उनको हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए, उनको कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए 100% डेफनेस की जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, चूंकि उसको जब हियरिंग एड से काम चलता है तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते। कॉकलियर इम्प्लांटेशन का मैं अलग से चर्चा करता हूँ, अभी मैं पहले हियरिंग एड के बारे में बता दूं। सो कोई भी व्यक्ति उसमें हियरिंग एड के लिए आते हैं तो उनको UDID कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र जो 22,500 रुपए तक होगा, अगर आय प्रमाण पत्र तो उनको हियरिंग एड फ्री मिलेगा। 30,000 रुपए तक अगर मासिक आमदनी उनकी है तो उसके लिए उसको 50% का कंसेशन मिलेगा, और अगर आय उनका 30,000 रुपए मासिक से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो पे कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने उनके लिए कोई भी छूट नहीं दिया, पर सरकार का निर्धारित जो रेट है वो दे करके वो सामान को खरीद सकते हैं। अब मैं 4,000 के आसपास का अप्रोक्सीमेट रेट, अभी मैं ध्यान में नहीं है कि 4,000 समथिंग कितना है, लेकिन 4,000 के आसपास का एक हियरिंग एड मिलता है और वो उनको फ्री मिलता है। 8,000-8,500 रुपए का हियरिंग एड उनको फ्री देते हैं, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल। अब कॉकलियर इम्प्लांटेशन की बात करें, ऐसे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हों और उनको सुनने में दिक्कत, और इतनी दिक्कत है कि हियरिंग एड से उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उनको कोई एसोसिएटिव डिसेबिलिटी नहीं। तीसरी कंडीशन है कि उनका सारा वो टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है, लैंग्वेज टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और जितना भी तरह के टेस्ट होते हैं वो सब प्रोसेस पूरा हो गए, तो ऐसी कंडीशन में अगर सब जगह से ये पता चल गया कि यह कॉकलियर इम्प्लांटेशन का सुटेबल केस है, देन सरकार उनको 7 लाख रुपए तक का कॉकलियर इम्प्लांटेशन का खर्चा अनुदान के रूप में देती है, वो उनको नहीं मिलेगा, वो आकर के हमारे पास या जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान है अपना AYJ NISHT मुंबई, वाणी एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, तो उसके पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कॉकलियर इम्प्लांटेशन के लिए। वहां से फिर उनको संपर्क करके और बता दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में जाकर के उनको टेस्टिंग करवानी है और वो टेस्टिंग का रिपोर्ट कैसे करना है। सो पूरी जानकारी उस पर उपलब्ध है अली अवर्जन के वेबसाइट पे। गूगल में जाकर के AYJ NISHT अली अवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज इसको टाइप करना है और सरद सर उनके पास पूरा एक वेबसाइट खुल करके आएगा। कॉकलियर इम्प्लांटेशन और एडिप सेक्शन में जब जाएंगे तो उनको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगा, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, इम्पैनल्ड सेंटर्स कौन कौन से हैं जहां जाकर के वो संपर्क करें, और वो पूरा उनका एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। जी सरद सर,
1: श्रोताओं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CRC के माध्यम से हम कॉकलियर इम्प्लांट भी करवा सकते हैं और साथ साथ हियरिंग एड हमें सुविधा भी हमें प्राप्त हो सकती है। सर एक महत्वपूर्ण विषय रह गया कि इस क्षेत्र में जो पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों खासकर डेफ व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में जो युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध है वे पर हम अलग से कभी गंभीरता के साथ बातचीत करेंगे। पूरा हम चाहेंगे कि इस पर एक पूरा शो है, पूरा एक पूरा ब्रॉडकास्ट करें हमें
0: जरूर रोजगार के जितने अवसर हैं उस पर हम लोग अलग अलग डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक घंटे का अलग से सेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं सामान्य तौर पर बता दूं कि उनके लिए सामान्य क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर है जिसको ओपन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं 4% सीटें उनके लिए रिजर्व है चाहे किसी भी चीज की वैकेंसी आए। दूसरा बहुत सारे बैकलॉग वैकेंसी जाते रहते हैं जो पर्सन्स विद हियरिंग इम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, तो अब इनको ध्यान रखना है रोजगार समाचार पत्र पे, इनको ध्यान रखना है जो डेफ पर्सन है हमारे उनको ध्यान रखना है कि कहाँ से अलग अलग वेबसाइट्स का हम चयन कर सके, या freejobalerts.com हालांकि वो प्राइवेट वेबसाइट है लेकिन बावजूद उसके डिस्क्लोजर के साथ बात करना चाहूंगा कि उस पर जाकर के अगर चेक करते हैं तो कहीं से भी आता है कोई एडवर्टीजमेंट तो उस पर तुरंत वो अपलोड करते हैं, इसलिए वो भी एक अच्छा वेबसाइट है। बाकी जितने भी हमारे राष्ट्रीय संस्थान है या कंपोजिट रीजनल सेंटर्स है उनके साइट्स पे जाकर के अभी गूगल में जाकर के जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट में वो चाहते हैं CRC जयपुर, CRC पटना, CRC अहमदाबाद, CRC गोरखपुर, CRC लखनऊ इतना लिखना सफिशिएंट होगा, वेबसाइट खुल जाएगा, वहां सामने पहला पेज दिख जाएगा वेबसाइट का। सो ऐसी कंडीशन में वो सारी जानकारी वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से और कौन कौन सी सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में सारी चीजों के बारे में चर्चा करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको खजाने की चाबी दे दूं कि आप वहां से सारी जानकारी दे सकते हैं। जी सर चल
1: जी, तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मन की आंखों से इसलिए कि कुछ चीजें यदि आपकी सामान्य आंखों से छूट जाए तो दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट शक्तियों से हम उन चीजों को से जोड़ सकें। इसलिए नजर की नहीं नजरिए की जरूरत ज्यादा है जीवन जीने के लिए। तो आप ऐसे ही सुनते रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम को और आप सुन रहे थे नीरज सर को। आप फिर किसी प्रोग्राम में नीरज सर के साथ और इस विषय पर गंभीर बातचीत के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं अंतिम एक शब्द के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, बहता कान सावधान, कभी भी कान से अगर मवाद निकलता है, पस निकलता है, कान में डिफॉर्मिटी दिखती है बाहर से दिखने वाली, या कान में रैसेज हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, बच्चा बार बार कान को खुजलाता है, ऐसी कंडीशन में चुप नहीं बैठना है, पूरी जिंदगी खराब हो सकती है उसकी, तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट के पास या हॉस्पिटल में जाकर के संपर्क करें ताकि इंटरवेंशन हो सके। ओम शांति।
1: अति सुंदर, बहता कान सावधान जी, आपका आभार कार्यक्रम।
0: थैंक यू सो मच सर। रेडियो मधुबन और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण का भी आभार, और जो इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट की है हमारी कृष्णा बेन उनका भी आभार, हमको आपने मौका दिया, CRC परिवार को आपने आमंत्रित किया। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे समाज के कल्याण के लिए, समाज के संबल देने के लिए और उनको एम्पावर्ड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 15 मई 2026 और आज है विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस अर्थात आज दुनिया के अंदर दिनों दिन परिवार बिखरते जा रहे हैं और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये विशेष कदम उठाया है कि जहां साल में कम से कम एक बार परिवार के साथ मिल करके सभी बैठे बात करें, संवाद करें, एक दूसरे का हालचाल जाने आदि आदि।

प्रवेश होते गए, वैसे वैसे परिवार बिखरते गए। और इसलिए शायद आज कई जगह देखते हैं सिंगल पेरेंटिंग है, परिवार ही नहीं रहा। माता पिता कहीं अलग है, कोई वृद्धाश्रम में होंगे, और बच्चे अपने बच्चों के साथ कहीं और रह रहे होंगे, या बच्चे अकेले फ्लैट लेकर के रह रहे हैं। संबंधों का महत्व, रिश्तों की कदर समाप्त होती जा रही है, और इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे विश्व परिवार दिवस मनाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के करीब आए। आज संबंधों में जो दूरी आ गई है, उसका कारण क्या है? देखा गया कि कहीं मोबाइल है, या तनाव बहुत बढ़ गया है जीवन में, या अनेक प्रकार की व्यस्तता, बाहरी व्यस्तता इतनी हो गई है जो हम अपने परिवार की ओर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, ना संस्कार के बीज बो पा रहे हैं। इसीलिए विश्व परिवार दिवस मनाना, अर्थात पुनः अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो परमपिता परमात्मा ने हमें सिखाया कि परमात्मा मात पिता है और हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं, और ये दृष्टि अगर विकसित किया जाए तो जरूर है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत करें और सब आपस में मिलकर के एक परिवार की भांति उस स्नेह के साथ, उस प्यार के साथ रह पाए और एक दूसरे के करीब आ सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हम बढ़ा सके। परिवार के जो मूल्य है, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग, एक दूसरे को प्रेरणा देना, एक दूसरे की सुरक्षा करना, उसके लिए चाहे हमें कुछ सहन करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, इन भावनाओं को अपने अंदर विकसित करें। और इसी विधि से हम आज ये विश्व परिवार दिवस मनाएं। सभी भाई बहनों को विश्व परिवार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है, शुभभावना है, और नित्य एक दूसरे के समीप रहे, यही बधाई देना चाहते हैं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, और ये मधुर महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को इसी बात के साथ स्मृति दिलाई है या स्वमान दिया है कि बच्चे, तुम्हारे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि हम बच्चे डायरेक्ट उस बाप के बने हैं जिससे हमें सदगति का वर्षा मिलता है। भले बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम गरीब बच्चे हैं, शाहूकारों के पास तो समय नहीं है बाप को याद करने का या बाप की श्रीमत पर चलने का, तुम बच्चे खुश नसीब हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, शाहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं,
और बच्चे सम

रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। वैराग भी बाबा दिला रहे हैं, बेहद का वैराग, कि अब ये जमाना कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है, और अभी तो बहुत स्पष्ट दिखने लगा है कि सारा दुनिया जो है अब कब्र दाखिल होने वाली। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। बेहद बाप से हम बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, कल्प पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भाव है। अगर ऐसी स्मृति भी रहे तो बेहद के बाप की याद स्वतः आ जाएगी, और इसी को ही कहा जाता है मन मना भाव। बाप की याद में रहने से ही परिस्थानी बनेंगे। भारत परिस्थान था और खंड परिस्थान नहीं बनते हैं। सत्युग त्रेता सिर्फ भारत खंड देखता है, और कोई खंड में सत्युग त्रेता का समय नहीं होता है। तो बाबा कहते और खंड परिस्थान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का पॉम्प, ये थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भपका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दहली पुरानी क्या थी, अभी नई दहली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दहली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्थान हो। यह तो टेम्पररी पॉम्प है। इतने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। नरक का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहां से शांति मिलेगी। बाबा कहते सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहां से शांति मिलेगी। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्य को यह पता नहीं है कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहां आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है क्या है कि हम आत्माएं अभी जाएगी अपने घर शांति धाम। यहां तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुखधाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया, इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ नहीं जानते,
तुम्हारी बुद्धि में आया है, बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं, अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य है, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तो बहुत शाहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाप और वर्से को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहां है, ऊपर अंगुली दिखाते कहते ऊपर है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान है, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु ये कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर भी समझाना है, बाबा कहते तुम बच्चों को चित्र पर ही समझाना है। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी शाहूकार मुखी को। बाबा कहते अगर मानो कोई गरीब पंचायत का मुखी बना तो उसको भी उतनी खुशी रहेगी जितनी शाहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, तुम बच्चे अभी समझते हो। बल करोड़पति है परंतु कितने दुखी है। आज दुनिया में भले करोड़पति है लेकिन कितने दुखी है। अभी तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, तो हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब है वह शाहूकार बन जाते हैं, पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। अंत में सिवाय बाबा के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहां तीर्थ वहां धर्मशालाएं नहीं हो तो कहां रहे। इसलिए शाहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर
बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। हम बाबा कहे अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां है वे बड़े से बड़े तीर्थ है, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, मधुबन बेहद का घर भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं है, मधुबन से बड़ा कोई तीर्थ होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहां तो बाप कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। अमरनाथ की कथा मृत्यु लोक में ही बैठ करके सुनाएंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा भी ढेर जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है, मधुबन में कुंभ का मेला लगता है। ये मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में है, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे। हाँ बाबा कहे कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहां ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे ही टिक हुई या गई, आत्मा भी ऐसे है टिक हुई गई, इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहां का कहां पहुंचने में देरी नहीं लगती है, मनुष्य ये बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होगी और वहां बहुत सुखी होंगे। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुए हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। बाबा ने हम बच्चों को इतना समझदार बना दिया जो हमारी बुद्धि चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं।
जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहां ही गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। दुनिया में त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना, तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो, इसलिए देवता बनने के लिए अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, मां में कम याद करो। बहुत सहज है भक्ति मार्ग में, तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। आज बाबा को बहुत रहम आ रहा है, मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है वह भी मैं कराता हूं, वो देवी देवताएं नहीं कराते हैं। बाबा कहते ये साक्षात्कार भी मैं कराता हूं। ड्रामा में नोंद है जो पास्ट हुआ, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है, मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते आयुष्मान भव, धनवान भव, आशीर्वाद बाबा करते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद दे न सके। तो दुनिया नहीं दे सकती, वही बाबा देते हैं। लोग दुनिया में आयुष्मान, क्योंकि जानते हैं हर एक की आयुष्य फिक्स है, बाबा हमारी आयुष्य कितनी बड़ी कर देते हैं, धन अथाह दे देते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, सत्युग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे होता है ये अभी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है, ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद की पढ़ाई है, जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो, वह कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पति पावन है, कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर वार जो बाप के पास है वह तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको ये बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलत

के बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुखधाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज का व्यक्ति इशारा, सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, आपके एक रस अचल स्थिति का ही ये अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रह सके। क्यों क्या शब्द नहीं होना चाहिए। अच्छा ओम।